सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 मई सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन, आराम हराम है। वाचन मनोज कुमार सिन्हा।
1: आराम करना उतना ही आवश्यक है जितनी यह वैज्ञानिक दृष्टि से तय है। आवश्यकता से अधिक आराम व्यक्ति की क्षमताओं को प्रभावित करता है। आराम आलस्य का दूसरा नाम है। जब आपके पास खाली समय होता है तो थोड़ा आराम करने की फिराक में यह आलस्य आपको इतना सुला देता है कि बाकी सब काम अव्यवस्थित हो जाता है, ठप हो जाता है। बहुतों की यह शिकायत रहती है कि हमारे लाख प्रयास के बाद भी मेरे कार्य समय पर नहीं होते, हम पिछड़ते जा रहे हैं। यदि बहुत गहराई से समय को दोष देने की अपेक्षा हम स्वयं के दिनचर्या का अवलोकन करें तो पाएंगे कि कारण बाहरी नहीं बल्कि भीतरी है। सबके मूल में हमारा आलस्य एवं प्रमाद है। आलस्य एवं प्रमाद जीवन का अंग है, ठीक उसी तरह जिस तरह क्रोध, ईर्ष्या, मद, मत्सर और मोह है। फिर स्वाभाविक प्रश्न यह है कि इतने सारे विष रहने के बावजूद जीवन में व्यक्ति कैसे सफल

0: सकता है, बिल्कुल सफल हो सकता है और सफल हो सकता है। बस करना क्या है कि निरंतर अभ्यास से दुर्गुणों के प्रभाव का दमन करें या इसको कम करें एवं सद्गुण जिसे हम सुलाए रखते हैं उसे जिंदा करें। इसी प्रकार अच्छाई की मात्रा बढ़ाने पर हम जीवन में सफल हो जाते हैं तथा जब तक हमारे जीवन में अवगुणों का प्रभाव होता है सफलता हमसे दूर होती है। आराम भी एक ऐसा ही दुर्गुण है। आराम कभी भी शरीर के अंदर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर होता है। लक्ष्य पूरा कर लिया, अब जरा आनंद से सो ले। यह मन के अंदर बैठा एक ऐसा दैत्य है जो आने वाले समय में हमारी आदतों में शुमार हो जाता है तथा हमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने से रोकता है। सफलता प्राप्त करने के बाद जो रुक जाते हैं वे अपने अंदर की असीमित क्षमता को नहीं जानते। यह थोड़ा थोड़ा आराम यदि हम जीवन का जोड़ लें तो पाएंगे कि एक बहुत बड़ी अवधि हम यूं ही बेकार बर्बाद कर देते हैं। जीवन का वैज्ञानिक निष्कर्ष यह है कि पूरी जिंदगी के काल गणना का लगभग 40% समय हम सोने, नहाने और भोजन करने में लगा देते हैं। बचा समय ही वास्तविक जीवन है। किसी न किसी को योग्य बनना है अथवा लापरवाही से जीवन जीते हुए अंतकाल में पछतावा करना है। बचे हुए 60% समय काम के लिए है, इसलिए इसका उचित उपयोग करें, आराम नहीं करें। जीवन के सभी सफल महापुरुषों ने आराम को परिणाम में दुख होने वाला बताया है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि आराम हराम है। वे बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। उनके जीवन में आराम ने क्या दिया और क्या लिया, ये सारे राज उनके इस दार्शनिक सूत्र वाक्य से स्पष्ट होते हैं। आराम आसुरी प्रवृत्ति है। आजकल हम देर रात तक बाहर समय गंवाते हैं और सुबह देर से उठकर रोजाना कई कार्य स्वयं बिगाड़ते हैं। जब मन करता है काम करने लगते हैं। जीवन में हमने सपने तो बड़े बड़े देखे लेकिन जीवनचर्या में जो संयम चाहिए उसे नहीं लागू किया। संयम के बिना कोई बड़ा लक्ष्य नहीं मिलता और यदि काल्पनिक दृष्टिकोण से मिल भी गया तो हम अपने प्रमाद से उसे गंवा बैठते हैं, टिक नहीं पाते। दूसरा तरीका दुर्गुणों खासकर आलस्य या प्रमाद से मुक्त होने का यह है कि जब भी हमें कुछ समय कभी भी आराम करने की इच्छा हो तो हम बिस्तर पर या सोफे पर जरूर जाएं, लेकिन साथ में कुछ सकारात्मक वस्तु कुछ रचना करने का प्रयास करें। यह आपके पसंद पर निर्भर है। इससे जीवन के फुर्सत के क्षणों की भी उत्पादकता बनी रहेगी और यह आराम के दुष्प्रभाव को समाप्त कर देगा। धीरे धीरे आराम शब्द मिट जाएगा और सृजनशीलता उसका स्थान ग्रहण कर लेगी। और यह भी संभव है कि खाली समय का यह सदुपयोग हमारा वास्तविक कर्म और पसंद बन जाए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है जिसे वह अपनी पसंद बताता है। इसमें वह अच्छा कर सकता है लेकिन समय पर इसकी तलाश नहीं कर पाता। यदि आप इसे पाना चाहते हैं तो पहले आराम को मृत्युशैया पर लेटा दें, आपकी तलाश अंजाम तक पहुंच जाएगी।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, आराम हराम है। वाचन स्वर मनोज कुमार सिन्हा का था। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि चर्चा। कृषि चर्चा में आज का विषय है आम के पेड़ पर लगने वाले कीट और वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
2: किसान भाइयों नमस्कार। आम के पेड़ के ऊपर अनेक तरह के कीड़े लग जाते हैं जो मंजरों को नुकसान करते हैं, फलों को नुकसान करते हैं। कीड़ों की पहचान करके उसके अनुसार उपाय करके आप आम के बाग को सुरक्षित रख सकते हैं। हम आज चर्चा करेंगे आम के पेड़ पर लगने वाले कीड़ों के बारे में। आम का मधुआ कीड़ा जो है वो प्रमुख कीड़ा है। यह लगभग 5 मिलीमीटर मटमैले भूरे रंग का फुदकने वाला कीड़ा है। इसके शरीर का अगला भाग चौड़ा और पिछला भाग नुकीला होता है। सिर पर 3 गहरे रंग की बिंदियां होती हैं और पीठ पर कई बिंदियां तथा धारियां होती हैं। शिशु कीट पंख रहित पीले रंग का होता है। वयस्क के 2 जोड़े पंख होते हैं। यह कीड़ा दिसंबर से अप्रैल तक सक्रिय रहता है और इसे 25-60% तक आम के फलों को हानि होती है। इस कीड़े के शिशु एवं

0: वयस्क दोनों आम की मुलायम टहनियों, पत्तियों की निचली सतह, फलों के डंठलों एवं मंजरों पर चिपके रहते हैं तथा लगातार रस चूसते रहते हैं। फलस्वरूप वृक्ष के वे भाग पीले एवं कमजोर पड़ जाते हैं। जरा सी हवा के झोंकों से भी काफ़ी मंजर झड़ जाते हैं, फल कम लगते हैं, जो लगते हैं वे कमजोर होकर गिर जाते हैं। ये कीट अपने शरीर से मधुरस स्राव करते हैं, जो पत्तियों मंजरों पर एक काले रंग की फफूंद के आक्रमण में सहायक होता है। इससे काफ़ी क्षति होती है। दूसरा है आम का सूटगौर। इस कीड़े का वयस्क 3 से 4 मिलीमीटर लंबा, सिर काला और धड़ हल्के भूरे रंग का होता है। मादा कीट मार्च अप्रैल में गौल से निकलकर मुलायम नई पत्तियों की निचली सतह पर रीढ़ के ऊतकों के अंडे देती हैं। सितंबर माह में अंडों से शिशु निकलकर आम की टहनियों पर आक्रमण करते हैं और रस चूसते हैं। आक्रांत टहनियों पर छोटे छोटे नुकीले आकार के हरे तीखे उन्हें गौल बन जाते हैं। गौल को चीरने पर इसके अंदर हल्के गुलाबी रंग के कीड़े दिखाई देते हैं। इसके अलावा आम का दहिया कीड़ा भी काफ़ी नुकसान करता है। इसके शिशु और मादा कीट पंख रहित चिपटे गोलाकार होते हैं। शरीर सफ़ेद रंग के चूर्णनुमा आवरण से ढका रहता है। नर कीट पंखयुक्त होते हैं। मादा कीट मिट्टी के अंदर अंडे देती है, जिनसे नवंबर दिसंबर माह में शिशु निकलकर बड़ी संख्या में रेंगकर पेड़ों पर चढ़ने लगते हैं। पेड़ों पर चढ़े हुए शिशु एवं मादा कीट पेड़ों की टहनियों, पत्तियों, मंजरों पर चिपके रहते हैं और उनसे लगातार रस चूसते हैं। फलस्वरूप आक्रांत टहनियां सूखने लगती हैं, मंजर सूखकर झड़ जाते हैं और फल कमजोर होकर गिर जाते हैं। इसके अलावा आम की फल मक्खी जो है वो भी काफ़ी नुकसान करती है, लेकिन फल आने के समय इसका आक्रमण होता है। यह मक्खी घर में पाई जाने वाली मक्खी से छोटी भूरे रंग की होती है। इसके पंख पारदर्शक और पीले रंग के होते हैं। धड़ पर काले धब्बे होते हैं। शिशु कीट 8 से 9 मिलीमीटर लंबे एवं पीले रंग के होते हैं। अंडों से पिल्लू निकलकर आम के गुदे को खाते हैं, जिससे फल अंदर ही अंदर सड़ने लगता है और पकने से पूर्व ही गिर जाते हैं। आक्रांत फल खाने योग्य नहीं रहते हैं और उनका बाजार भाव भी गिर जाता है। आम का धड़ छेदक जो कीड़ा है वो भी काफ़ी नुकसान करता है। इसके वयस्क कीट भूरे स्लेटी रंग के होते हैं। उनके सिर पर 2 श्रृंगिकाएँ होती हैं। पूर्ण विकसित श्रृंग मांसल और हल्के पीले रंग के होते हैं। यह 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका पिल्लू 6 सेंटीमीटर लंबी एवं पीले सफ़ेद रंग की होती है। मादा कीट आम के धड़ छेदक की मादा कीट पेड़ की छाल या दरारों में एक एक करके अंडे देती है। 20 से 25 दिनों के अंदर अंडों से शिशु निकलकर मुलायम छालों को खाते हैं। बाद में ये तनों एवं शाखाओं में छाल के नीचे वाली लकड़ी में सुरंग बनाकर अंदर से खाते हैं। फलस्वरूप तनों एवं शाखाओं में लंबी लंबी सुरंगें बन जाती हैं। इन सब कीड़ों के नियंत्रण के लिए आप कुछ उपाय करें। बगीचे में फल मक्खी से आक्रांत गिरे हुए फलों को एकत्रित कर नष्ट कर दें, जिससे फल मक्खी के आक्रमण की वृद्धि को रोका जा सकता है।
1: कृषि चर्चा आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। विषय था आम के पेड़ पर लगने वाले कीट और वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। अब हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फालता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया रद्द करने का असाधारण कदम उठाया है। इस विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को नए सिरे से वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन की खबरों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन को जानबूझकर काले टेप से ढक दिया गया था, जिससे मतदान में बाधा आई। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनः मतदान हुआ। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती

0: की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद खत्म करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में आयोजित शौर्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्ण अध्याय बना दिया है। भारत ने पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन का लक्ष्य पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थित आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। इन हमलों के कारण 4 दिनों तक भीषण झड़पें हुई, जो बाद में 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ समाप्त हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों ने युद्ध के मैदान में और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा में साहस का प्रदर्शन किया है। उन्होंने नागरिकों से देश के गुमनाम नायकों की कहानियों और बलिदान को दूर दूर तक साझा करने का भी आग्रह किया। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरामैया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को मजबूत करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके योगदान से सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास को गति मिलेगी। श्री मोदी ने उनके नए कार्यकाल के बेहद उपयोगी और प्रभावशाली होने की भी कामना की है। रोहित जैन को रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। वे 3 मई 2026 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए इस पद पर बने रहेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए संवेद स्वर में ये देश वंदना।

धन्य है माता सीता, फूल सी सुकुमारी जनक नंदिनी, जिसने अपने पति धर्म का पालन करने के लिए क्या क्या नहीं सहा।

सीता जैसी पवित्र पतिव्रता आदर्श नारी को फिर से वनवास दे दिया गया और वह भी गर्भावस्था में। अंततः विरह वेदना सहती जानकी ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में दो सुंदर तेजस्वी बालक लव और कुश को जन्म दिया और फिर एक दिन

मान्य अरोड़ा के स्वर में आप ये भजन सुन रहे थे। कार्यक्रम वंदना में अब सुनिए शब्द। बख्शीश सिंह रागी और साथियों के स्वर में।

इस शब्द के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस पाठ।

वीर तथा पराक्रमी समझने वाले राजे महाराजे शिव के धनुष को करोड़ों प्रकार से उठाने की चेष्टा कर असफल लज्जित हो अपने अपने स्थान पर वापस जा चुके हैं। तब 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाने की चेष्टा की, किंतु शिव का धनुष है जिसे उठाना तो दूर, वे उसे तनिक डिगा भी नहीं सके। एक एक कर सभी वीर तथा पराक्रमी राजे महाराजे अपनी कीर्ति और वीरता गंवाकर उसी प्रकार उपहास के पात्र बन गए जैसे वैराग्य बिना सन्यासी हंसी का पात्र बन जाता है। राजा जनक के मन में संशय पैदा हुआ, क्यों उन्होंने ऐसा प्रण ठाना जिसे सुनकर न केवल द्वीप द्वीप के राजा आए वरन मनुष्य रूप धारण कर देवता तथा दैत्य भी उपस्थित तो हुए, किंतु धनुष तोड़कर सीता के हाथों जयमाल पहनने वाले को विधाता ने मानो रचा ही नहीं। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ना तो दूर, कोई भूमि पर ही उसे हिला भी नहीं सका। जनक जी की अकुलाहट नैराश्य में परिणत हो गई। ब्रह्मा ने सीता के ललाट में विवाह शायद लिखा ही नहीं। राजा जनक के निराशा भरे वचन सुनकर उपस्थित समाज तो खिन्न हुआ, किंतु लक्ष्मण की भ्रिकुटि तन गई, होठ फड़कने लगे और क्रोध से आंखें लाल हो आईं। यदि उन्हें राम की आज्ञा मिले तो वो धरती को गेंद के समान उछालकर कच्चे घड़े की भांति फोड़ दें, फिर इस पुराने धनुष की तो बिसात ही क्या है।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस पाठ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा में आज का विषय है जल जनित रोगों के उपचार, और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रामचंद्र कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार। स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है जल जनित रोगों का उपचार, और आज हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पर डॉक्टर रामचंद्र कुमार, जो कि नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पटना के मेडिसिन विभाग में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जल जनित रोग कौन-कौन से होते हैं?
2: सबसे पहले श्रोताओं को मेरा प्रणाम। जैसे जल जनित रोग में सबसे ज़्यादा अभी पीलिया, टाइफाइड, डायरिया, मतलब एक्यूट गेस्ट्रो एंटेराइटिस सब आता है, जो कि जैसे अभी जैसे कि हम लोग गंदा पानी पीने से गांव घर में कोलरा की बीमारी हो जाती है। तो मतलब पानी को हमेशा स्वच्छ पीना है। जैसे अभी हम लोग जो बाहर में फुचका खा लेते हैं या
1: जी
2: फिर ये सब, तो उससे टाइफाइड की बीमारी भी होती है। तो मतलब हमेशा स्वच्छ पानी का पीना चाहिए आदमी को। स्वच्छ पानी पीने से जो मिनरल्स होते हैं और सब भी, जो बैक्टीरिया उक्टीरिया नहीं होता, तो चापाकल का पानी पिए, उसमें आयरन वायरन की मात्रा भी अच्छी होती है। अगर आप शहर में रहते हैं तो आड़ू का पानी पिए।
1: जी
2: और टाइफाइड, जैसे कि टाइफाइड

0: सब जो है फूड एंड वाटरबोन डिजीज है। अगर कोई जॉन्डिस है तो मतलब गंदा पानी गंदा खाने से होता है। तो आदमी को चाहिए कि घर में बना हुआ खाना खाइए, ज्यादा बाहर का खाना नहीं खाइए, जैसे फास्ट फूड ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि अब किसी को जॉन्डिस का लक्षण आ रहा, जॉन्डिस मतलब बोले तो आँख का पीला होना, थकावट होना, खाना का नहीं पचना, उल्टी जैसा लगना, अगर ये सब लक्षण आए तो सबसे पहले आदमी को अपने आप को रेस्ट देना चाहिए, आराम देना चाहिए। दूसरी बात, तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, अपना जांच कराना चाहिए।
1: जी
0: आदमी में जैसे पेशाब का पीला होना हमेशा जॉन्डिस नहीं होता है, क्योंकि हम कभी कभी पानी कम पीते हैं तो उसके वजह से ही ज़्यादातर लोगों में पेशाब का पीलापन होता है। लेकिन अगर हमको पेशाब 1 से 2 दिन पीला हो रहा है और हमको, तो हम उसको पहले हम देखेंगे कि पानी खूब पिए। अगर पानी पीने के बावजूद अगर हमको पेशाब पीला हो रहा है, थकान लग रहा है, तो हमें तुरंत ही
1: संपर्क
0: चिकित्सक से
1: करना।
0: मिलना चाहिए।
1: जी अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी होता है क्या कि जॉन्डिस जब ज़्यादा ही बढ़ जाता है पीलिया रोग, तो वो हेपेटाइटिस में भी परिवर्तित हो जाता है, कुछ ऐसा भी है क्या?
0: देखिए, एक्चुअली में जॉन्डिस हेपेटाइटिस है ही है। हेपेटाइटिस में भी ढेर सारे तरह के वैरायटी होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। तो हेपेटाइटिस ए जो होता है वो जॉन्डिस होता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में जॉन्डिस बोलते हैं।
1: जी
0: जैसे जॉन्डिस क्या है, ये वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी है। ये जो हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण से जो होता है उसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। ये स्वतः सेल्फ लिमिटेड है, मतलब अगर आप आराम करते हैं, शरीर को आराम देते हैं, तेल और मसाला
1: मसाले
0: वाला चीज नहीं खाइए, थोड़ा ग्लूकोज का सेवन करें। ग्लूकोज मतलब लीवर, ये जॉन्डिस जो मूलतः बीमारी लीवर का है, लीवर क्या करता है, हमारा ग्लूकोज बनाता है। जब हम बीमारी से ग्रसित होते हैं जॉन्डिस से, तो लीवर में थोड़ा ग्लूकोज नियोजन मतलब ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया कम हो जाता है। इसलिए उसको लीवर को कंपनसेट करने के लिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराने के लिए हम लोग ग्लूकोज को देते हैं पेशेंट को। बाकी अगर ज्यादा है तो फिर हम लोग उसके लिए जांच कराते हैं, हेपेटाइटिस ए की वजह से है कि बी के वजह से या सी के वजह से है। मोस्ट कॉमनली ये 3 चीज होते हैं। आप हेपेटाइटिस बी के बारे में पूछना चाह रहे थे, हेपेटाइटिस बी का अब इलाज है, हम लोग इलाज कर रहे हैं, पेशेंट ठीक हो रहा है, बशर्ते कि आप समय पे दवाई ले और पूरा कोर्स करें।
1: जी संक्षिप्त रूप से डॉक्टर साहब, टाइफाइड और डायरिया के उपचारों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को
0: डायरिया
1: बताएं।
0: के लिए सबसे पहले अगर किसी को पतला पैखाना हो या मारयुक्त लेटरिंग हो, उल्टी दस्त हो, तो आदमी को सबसे पहले चाहिए कि घर में अगर कुछ नहीं है तो नमक चीनी पानी का घोल बना के पीना चाहिए। उसमें क्या होता है, नमक में आपको सोडियम मिल गया, ग्लूकोज मिल गया चीनी में, है ना। तो फिर लोकल में तो आप यही कर सकते हैं, या फिर ORS का पैकेट जो होता है वो पीना चाहिए। उसके बाद आप ORS का बनाने का भी विधि होता है, जैसे कि एक पैकेट ORS को 1 लीटर पानी में घोल के बनाना चाहिए, ना ही कम नहीं ज्यादा, क्योंकि ज्यादा पानी लेते हैं तो वो डाइल्यूटेड हो गया, और कम पानी लिए 1 लीटर से तो मतलब कंसंट्रेटेड हो गया, मतलब उसमें ज्यादा मात्रा में मतलब सोडियम पोटासियम का मात्रा आ जाता है,
1: लवण की मात्रा ज्यादा
0: लवण
1: हो
0: की मात्रा
1: जाएगी।
0: ज्यादा हो जाए, तो वो दोनों ही चीज बेनिफिट्स नहीं है,
1: जी
0: मतलब
1: जी जी
0: हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए हमेशा ORS पीजिए, पानी पीजिए, और ज्यादा उल्टी दस्त हो तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाइए। सब
1: चलिए
0: टाइफाइड में तो मूलतः सर में दर्द होता है, हेडेक होता है, बुखार आता है, उसके बाद पेट दर्द होता है। इस तरह की समस्या आए तो पारासीटामोल घर पे ले सकते हैं। पारासीटामोल जो है कि मतलब दर्द की दवाइयों में सबसे सेफ माना जाता है। अगर आप किसी भी तरह के बुखार में पीड़ित हैं तो पारासीटामोल ले सकते हैं। तो आप घर में पारासीटामोल रखिए, आपको अगर इमरजेंसी में बुखार आ गया, सरदर्द हो रहा, तो पारासीटामोल खाइए और नज़दीकी अस्पताल में जाके जांच कराइए, क्योंकि अभी सरकारी सुविधा सारा उपलब्ध है। तो कभी भी कोई भी इस तरह की समस्या हो, बुखार से या पेट से जुड़ी समस्या, तो आप तुरंत में कोई दवाई ले सकते हैं घर पे, लेकिन उसके बाद आपको सरकारी अस्पताल में जाके इलाज कराना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए और इतनी अच्छी जानकारियों को हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा किया, आपका बहुत बहुत आभार।
0: जी, धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। विषय था जल जनित रोगों के उपचार। कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर रामचंद्र कुमार से चंद्रमणि कुमार सिन्हा की बातचीत। अब आपको अवगत करा दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों से। अब से कुछ देर बाद 6:55 पर संस्कृत में समाचार और 7 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम हालचाल आप सुनेंगे सुबह के 7:05 पर। पॉप म्यूजिक का प्रसारण होगा सुबह के 7:15 पर।

शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे सुबह के 7:25 पर। शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे प्रभा अत्रे का शास्त्रीय गायन राग तेसी। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा दिन के 9:10 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी आप सुनेंगे दिन के 10:00। प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी का प्रसारण समय होगा दिन के 10:15 पर। बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल मंडली आप सुनेंगे दिन के 10:30 पर।

फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का प्रसारण होगा दिन के 11 बजे। बिहार का लोक संगीत आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे। कार्यक्रम वैज्ञानिकी का समय होगा दोपहर 12:30 पर। समवेत गान शिक्षा ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:05 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे दोपहर 1:30 पर और दोपहर 2:30 पर।

0: युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युवावाणी का समय होगा शाम के 4:30 पर। मैथिली कार्यक्रम भारती आप सुनेंगे शाम के 5:30 पर। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी का प्रसारण होगा शाम के 6:30 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम के 7:30 पर और जिले की हलचल शाम के 7:47 पर प्रसारित होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात के 8:00। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात के 8:30 पर। सुगम संगीत में आप सुनेंगे गजल प्रवीण रतन सहाय की आवाज में। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात के 9:30 पर और अखिल रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण होगा रात के 10:00। प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब संस्कृत और हिंदी में समाचार सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से।
1: संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगालस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रे सहायक मतदान केन्द्राणि समेत्य सर्वेषु 85-200 मतदान केन्द्रेषु पुनर्मतदानाय आदेशः प्रदत्तः। आयोगेन उक्तं यत् बुधवासरे फाल्टा विधानसभा क्षेत्रे बृहत् संख्यायां मतदान केन्द्रेषु मतदानावधौ नैर्वाचनिकापराधः लोकतांत्रिक प्रक्रियायां विघ्नता च जाता। अस्य मासस्य 21 दिनांके सर्वेषु मतदान केन्द्रेषु प्रातः 7 सायं 6 यावत् नूतन मतदानं भविष्यति। मतगणना मई मासस्य 24 दिनांके भविष्यति। पश्चिम बंगाले दक्षिण चतुर्विंशति परगना जनपदस्य 15 मतदान केन्द्रेषु ह्यः जाते पुनर्मतदाने प्रायः 90% यावत् मतदानं जातम्। द्वयोः विधानसभा क्षेत्रयोः पुनर्मतदानं शान्तिपूर्णरीत्या सम्पन्नताङ्गतम्। निर्वाचनायोगेन सम्बद्ध निर्वाचनाधिकारिभिः पर्यवेक्षकैः च प्राप्त प्रतिवेदनानाम् आधारे पुनर्मतदानस्य आदेशः प्रदत्तः आसीत्। पश्चिम बंगाल केरल तमिलनाडु असमेषु केन्द्र शासित प्रदेशे पुडुचेरी इत्यत्र संजातेभ्यः विधानसभा निर्वाचनेभ्यः मतगणना श्वः भविष्यति।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान में गंभीर चुनावी गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद लिया गया। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसे गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटना सामने आई है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर कल फिर वोट डाले गए। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।

0: 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरामानिया को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को मजबूत करेगी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि उनके योगदान से सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास को गति मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने को मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है। भारत ने पिछले 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश किया जा सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षार्थियों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। अमेरिका की किफायती स्पिरिट एयरलाइंस ने 34 वर्ष बाद अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है। यह एयरलाइंस प्रतिदिन सैकड़ों उड़ानें संचालित करती है। इसमें लगभग 17,000 लोगों को रोजगार मिलता है। एयरलाइंस ने कहा है कि तत्काल प्रभाव से परिचालन बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कंपनी ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध के कारण तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से परिचालन जारी रखना असंभव हो गया था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया है। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और 1 गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अहमदाबाद में एक अन्य मैच में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। पहले सिंगल्स में भारत के आयुष शेट्टी फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव से हार गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हालचाल। श्रोताओं, कार्यक्रम हालचाल में आप सबों का स्वागत है। आज 3 मई है। आज जिन जिन श्रोताओं का जन्मदिवस है उन सभी श्रोताओं को आकाशवाणी पटना की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में अब आपको कुछ प्रमुख लोगों के जन्मदिवस से अवगत कराते हैं। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ उमा भारती, इनका जन्म 3 मई 1955 ईस्वी को हुआ था। वी के कृष्ण मेनन, भारतीय राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, इनका जन्म 3 मई 1896 ईस्वी को हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार में जानी मानी राजनीतिज्ञ और कैबिनेट मंत्री थी कमला रानी वरुण, इनका जन्म 3 मई 1958 ईस्वी को हुआ था। गणित की दुनिया की प्रतिष्ठित सम्मान फील्ड्स मेडल पाने वाली पहली महिला गणितज्ञ थी मरियम मिर्जा खानी, इनका जन्म भी 3 मई 1977 ईस्वी को हुआ था। सुमित्रा सिंह, राजस्थान की प्रसिद्ध महिला राजनीतिज्ञ, इनका जन्म 3 मई 1930 ईस्वी को हुआ था। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में हम आगे और भी चर्चा करेंगे। तब तक सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम हालचाल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं। कार्यक्रम में अब जानते हैं आज का इतिहास और देखते हैं क्या छुपा है आज के इतिहास में। यूरो को यूरोपियन मुद्रा के रूप में स्वीकार करने का यूरोपियन नेताओं का ऐतिहासिक फैसला 3 मई 1998 ईस्वी को हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने 3 मई 2003 ईस्वी को। टाटा स्टील लिमिटेड को ब्रिटेन में कोयला खनन करने का पहला लाइसेंस प्राप्त हुआ 3 मई 2008 ईस्वी को। 3 मई 2016 ईस्वी में 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन और कंगना रानौत सम्मानित हुए। वेस्टइंडीज ने छठे एक दिवसीय मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से परास्त किया था 3 मई 2004 ईस्वी को। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं आज के दिन का इतिहास। आगे हम और भी चर्चा करेंगे, तब तक सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोता मित्र, कार्यक्रम में अब आपको मौसम संबंधी जानकारी से अवगत कराते हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी अब तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार में आसमान साफ एवं मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। औसतन 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 22 पछिया हवा तथा उसके बाद पूर्व हवा चल सकती है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 40 से 50 प्रतिशत तथा दोपहर में 10 से 20 प्रतिशत रहने की संभावना है। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में आप मौसम संबंधी जानकारियों से अवगत हो रहे थे। हालचाल के आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हालचाल, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पॉप म्यूजिक। सबसे पहले पॉप म्यूजिक सुनिए शाजिया हसन की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे पॉप म्यूजिक। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिए प्रभा अत्रे का शास्त्रीय गायन राग देशी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आप सुन रहे थे प्रभा अत्रे का शास्त्रीय गायन राग देसी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित पार किया। अमेरिका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, पर फिर से मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की रिपोर्टों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्टों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पा रहा था। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। कोलकाता से संदीपन दास।

0: गुप्ता और अविरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कौशलेंद्र।
1: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर कल फिर से वोट डाले गए। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
2: मतगणना प्रक्रिया को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ड्यूटी पर तैनात हर व्यक्ति को QR कोड वाला एक फोटो ID कार्ड जारी किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मतगणना केंद्रों पर किसी भी तरह की गलत पहचान या धोखाधड़ी ना हो। मतगणना कक्षों और EVM स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार पर सबसे अंदरूनी सुरक्षा की कमान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हाथों में होगी। स्थानीय और राज्य पुलिस के अलावा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 65 कंपनियां तैनात की गई हैं। राज्य में 4,87,98,833 मतदाताओं में से 85.10% मतदान दर्ज किया गया है। महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए 2,52,59,596 वोट डाले, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,35,34,720 रही। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से NEET UG परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है।
3: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है। शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है जहां राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है जहां हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर मां भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
1: भारत ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली, CBS और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल जैसी तकनीकों को अपनाने से आपदा से निपटने की तैयारी में काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कल सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि इससे शासन व्यवस्था में सुधार होगा और प्रत्येक नागरिक तक समय पर और प्रभावी ढंग से सूचना पहुंच सुनिश्चित होगी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली का शुभारंभ किया था। इसे दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से स्वदेश में ही विकसित किया है। प्रणाली का कल पूरे देश में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज सुबह जमैका के किंगस्टन पहुंचे। श्री जयशंकर जमैका, सुरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकारी यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि जमैका के विदेश मंत्री कमीना जे स्मिथ ने कहा कि वे अगले 2 दिन में जमैका के नेताओं, व्यापारियों और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस 10 मई तक अपनी यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर 3 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। भारत आ रहे मार्शल आइसलैंड ध्वज के एलपीजी टैंकर एमटी सर्वशक्ति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इसमें 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी है और 18 भारतीयों सहित चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस टैंकर के 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में सैन्य उपस्थिति में काफी कमी करेगा। इससे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ अमेरिका का विवाद और बढ़ गया है। श्री ट्रंप यूरोपीय सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन ने शुक्रवार को पहले घोषणा की थी कि वो जर्मनी से लगभग 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। शनिवार को इस कदम के कारण के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और कहा कि इससे भी बड़ी कटौती होने वाली है। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि जर्मनी में अमरीकी सैनिकों की नियोजित कटौती से यूरोप को अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। माली में सुरक्षा बलों ने लक्षित हवाई हमलों में 200 से अधिक हमलावरों को मार गिराया है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार शुक्रवार को सुबह ये हमले सशस्त्र आतंकियों के एक बड़े समूह को निशाना बनाकर किए गए। ये आतंकी पड़ोसी सीमा क्षेत्र से आए थे और हमलों की तैयारी कर रहे थे। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, रायलसीमा, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच दिल्ली में कल रात मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
4: भुवनेश्वर में इंडियन इंडोर पोल वॉल्ट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कुलदीप कुमार ने पुरुषों के पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर ऊंचाई की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। कुलदीप कुमार ने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल कर देव कुमार मीणा के 5.40 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज फ्रांस का सामना चीन से होगा। सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराया था। इस बीच उबर कप के फाइनल में आज चीन का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। इधर आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और एक गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने आज अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
5: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 150,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
1: भारतीय सेना का एक दल भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास CINBX2 के दूसरे संस्करण के लिए कंबोडिया रवाना हो गया है। सेना ने बताया कि अभ्यास कल से 17 तारीख तक नॉम फॉर मारियास प्रांत के शाही कंबोडियाई वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास में कंपनी स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद लवलीन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्रीय कर्मियों की पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती का निर्वाचन आयोग का निर्देश बरकरार रखने को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। अमर उजाला कहता है मतगणना कर्मियों

0: के चयन के लिए आयोग स्वतंत्र आदेश की जरूरत नहीं। देशबंधु ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तृणमूल कांग्रेस को झटका बताया है। अब आपात स्थिति में पलक झपकते ही अलर्ट होगा देश, दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र ने आगे लिखा है, केंद्र ने लॉन्च किया सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, बिना इंटरनेट भी पहुंचेगा फ्लैश मैसेज। हिंदुस्तान ने इसे सुर्खी दी है, करोड़ों मोबाइल में गूंजी इमरजेंसी वाली घंटी। पश्चिम एशिया में संघर्ष के असर को जनसत्ता ने बॉक्स में देते हुए लिखा है, लगातार तीसरे महीने कीमतें बढ़ीं। पत्र ने इसे संकट और चिंता बताते हुए लिखा है, खाने के दाम बढ़ने से रोजगार पर विपरीत असर की आशंका। दैनिक भास्कर की खबर है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से 7 की जगह 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, चार धाम यात्रा 5 से 6 दिन में पूरी हो जाएगी। पत्र ने चार धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री से बद्रीनाथ तक के सफर की जानकारी विस्तार से दी है। नवभारत टाइम्स ने बदलता मौसम शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में 2050 तक ज्यादा होने लगेगी बारिश, गर्म दिन हटेंगे लेकिन रात तपेगी। राजस्थान पत्रिका की विशेष खबर है, सोच का बोझ, हर रात 28 मिनट की नींद खो रहे हैं लोग, पढ़ाई करियर और आर्थिक स्थिरता की चिंता। पत्र के अनुसार दुनिया में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से और 30 करोड़ से ज्यादा एंजाइटी से है परेशान, जिसका प्रमुख कारण ओवरथिंकिंग। समुद्र के भीतर फहराया सबसे बड़ा तिरंगा, हिंदुस्तान ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, अंडमान निकोबार में दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा ध्वज फहराकर बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्वराज द्वीप पर गोताखोरों ने पूरा किया अभियान। पंजाब केसरी के अनुसार, कश्मीर को पीछे छोड़ विदेश में धमाल मचाएगा लद्दाख का पश्मीना। पत्र कहता है कि पहले लद्दाख के चरवाहे कच्चा ऊन कम दामों पर बेच देते थे, अब कुछ बड़े बदलावों के साथ लद्दाख में ही आधुनिक संयंत्र और फिनिशिंग यूनिट्स लग रही है, जिससे लद्दाख के शॉल ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य सुरक्षित पार किया। अमरीका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉटर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Election Commission orders re-polling across all 285 polling stations at Halta Assembly constituency in West Bengal on the 21st of this month. Operation Sindoor reflects government's unwavering resolve to eliminate terrorism through decisive action, says Defence Minister Rajnath Singh. Another India-bound LPG tanker safely crosses Strait of Hormuz. United States to pull over 5,000 troops out of Germany. IMD forecasts heavy rainfall over some parts of northeastern and peninsular India. Central plains to witness thunderstorms and lightning today. And Madhya Pradesh pole vaulter Kuldeep Kumar breaks national record at Bhubaneswar. And now the news in detail. The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Phalta Assembly constituency of South 24 Paragana's district in West Bengal. Fresh polling will be held on the 21st of this month across all 285 polling stations, including auxiliary booths. Counting of votes will be held on the 24th of May. More from our correspondent.
3: The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Phalta Assembly constituency of South 24 Paragana's district in West Bengal. Fresh polling will be held on 21st May across all 285 polling stations, including auxiliary booths. Counting of votes is scheduled for 24th May. In its statement, the Commission explained that the decision followed reports of severe electoral offences and large-scale subversion of the democratic process during voting on 29th April. Observer reports highlighted serious irregularities, including tampering with electronic voting machines.

0: ये आकाश आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके में तमाम 285 पोलिंग मराकज पर इस महीने की 21 तारीख को दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत के पुख्ता अज्म की अक्कासी करता है। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर बहिफाजत आबनाए हुरमुस से गुजर गया है। अमरीका ने जर्मनी से 5,000 से ज्यादा फौजियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने मुल्क के शिमाल मशरकी और जजीरा नुमा इलाकों के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मुल्क के वस्ती मैदानी इलाकों में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने भुवनेश्वर में नया कौमी रिकॉर्ड कायम किया है। अब खबरें तफसील से। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के जनूबी 24 परगना जिला के फाल्टा असेंबली हलके में वोटिंग के पूरे अमल को रद्द करने का गैर मामूली इकदाम किया है। इस महीने की 21 तारीख को फाल्टा असेंबली हलके के तमाम 285 पोलिंग मराकज पर दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। वोटों की गिनती 24 मई को की जाएगी। मजीद तफसील हमारी नामा निगार से।
1: इंतखाबी कमीशन ने गैर मामूली कदम उठाते हुए मगरबी बंगाल के जनूबी 24 परगना जिले के फाल्टा असेंबली हलके में वोटिंग के पूरे अमल को रद्द कर दिया है। 21 मई 2026 को तमाम 285 पोलिंग मराकज में दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। वोटों की गिनती 24 मई 2026 को की जाएगी। चुनाव कमीशन ने अपने बयान में वजाहत की कि यह फैसला 29 अप्रैल 2026 को वोटिंग के दौरान शदीद इंतखाबी धांधली और बेजाबतगी नीज जमहूरी अमल को बड़े पैमाने पर मुतासिर करने की रिपोर्ट्स

0: के बाद किया गया है। इंतखाबी मुशाहिदीन की रिपोर्ट्स में संगीन खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की गई, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में छेड़छाड़, वोटरों को धमकाना और पोलिंग कवानीन की खिलाफ वर्जियां शामिल हैं। कई बूथ्स पर बैलेट यूनिट के बटन को जानबूझकर स्याह टेप से ढांप दिया गया था, जिससे दुरुस्त वोटिंग मुमकिन नहीं हो सकी। गैर मजाज अफराद को भी पोलिंग स्टेशनों में दाखिल होकर दूसरों की जानिब से वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो रिकॉर्डिंग के गायब या गैर मुतालिक पाए जाने पर भी शफाफियत के हवाले से खदशात मजीद बढ़ गए थे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता और अविरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुदुचेरी के असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती कल सुबह शुरू होगी। तमिलनाडु में वोटों की गिनती तमाम 62 काउंटिंग सेंटरों पर कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। वोटों की गिनती के लिए अमले के कुल 10,545 अफराद को तैनात किया गया है, जबकि उनकी मदद के लिए काउंटिंग ड्यूटी पर 4,624 माइक्रो ऑब्जर्वर्स को भी तैनात किया गया है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि हर एक असेंबली हलके पर 234 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स तैनात रहेंगे और गिनती के अमल की निगरानी करने के साथ इंतखाबी कमीशन की जानिब से दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल को यकीनी बनाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
0: रियासत भर में पीर को होने वाली वोटों की गिनती के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वोटों की गिनती की ड्यूटी पर तैनात हर एक शख्स को QR कोड के साथ एक फोटो ID कार्ड जारी किया गया है, ताकि काउंटिंग मराकज पर कोई गैर मजाज शख्स दाखिल ना हो सके। जहां भी काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, उसके 100 मीटर के दायरे से सिक्योरिटी इंतजाम शुरू हो जाते हैं। काउंटिंग मराकज में दाखिले के दूसरे दरवाजे पर रियासती मुसल्ला पुलिस तैनात रहेगी, जबकि काउंटिंग हॉल्स और EVM स्ट्रॉन्ग रूम्स में दाखिले से मुतालिक अंदर और बाहर की तमाम सिक्योरिटी का जिम्मेदार मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस के पास रहेगा। इसके अलावा इलाकाई और रियासती पुलिस, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस की 65 कंपनियां काउंटिंग मराकज पर मजीद सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए तैनात की गई हैं। रियासत में 487,98,833 राय दहिंदगान ने अपने हक की रायदही का इस्तेमाल किया और 85.10% पोलिंग दर्ज की गई थी। रियासत में वोटिंग के इस अमल में खवातीन ने मर्दों से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तमिलनाडु से चौक रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: मगरबी बंगाल में इंतखाबी हुक्काम ने कहा है कि शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए रियासत भर में सभी 77 काउंटिंग मराकज पर सिक्योरिटी के कसीर सतही इंतजाम किए गए हैं। मगरबी बंगाल के जनूबी 24 परगना जिले के 15 बूथों पर कल हुई दोबारा पोलिंग में 90% लोगों ने वोट डाले। दो असेंबली हलकों में हुई दोबारा पोलिंग आमतौर पर पुरअमन रही। इंतखाबी कमीशन ने मुतालिका रिटर्निंग अफसरान और मुशाहिदीन की तरफ से मौसूल होने वाली रिपोर्टों की बुनियाद पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल के इंतखाबात में काउंटिंग सुपरवाइजर के तौर पर सिर्फ मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को तैनात करने के इंतखाबी कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने हिदायत दी है कि कमीशन के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तृणमूल कांग्रेस की जानिब से कमीशन के इस फैसले को अदालत में चैलेंज करने के बाद आया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को मौसर कार्रवाई के जरिए दहशतगर्दी के खात्मे के मोदी हुकूमत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी करार दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुसल्ह अफवाज की गैर मामूली बहादुरी ने भारत की फौजी तारीख में एक सुनहरी बाब का इजाफा किया है। जनाब सिंह ने यह बात कल नई दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर के एक साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनाकिदा शौर्य नामी तकरीब से खिताब करते हुए कही।
2: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है। शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है, जहां राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है, जहां हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर माँ भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
1: मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS और कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल जैसी टेक्नोलॉजीज को अपनाने से कुदरती आफात से मुतालिक तैयारी को मजबूत करने, हुक्मरानी को बेहतर बनाने और हर शहर

0: तक बरवक्त और मौसर रसाई को यकीनी बनाने में नुमाया तौर पर मदद मिलेगी। जनाब शाह ने ये बात कल सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम के आगाज के मौके पर अपनी नई ख्वाहिशात पेश करते हुए कहीं। हुकूमत की जाने से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक इस निज़ाम के जरिए शहरियों को उनके इलाकों में हंगामी सूरत हाल और कुदरती आफात के सिलसिले में आगाह किया जा सकता है। टेलीकॉम के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने CBS का आगाज किया। इस निज़ाम को वजारत दाखिला और आफात से मुतालिक बंदोबस्त की कौमी अथॉरिटी के तआवुन से टेली कम्युनिकेशन के महकमे के तहत सेंटर फॉर डिवेलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT के जरिए भारत में ही तैयार किया गया है। कल मुल्क की सतह पर इस सिस्टम को कामयाबी के साथ टेस्ट किया गया, जिसके दौरान मुल्क भर में मोबाइल फोन्स पर इमरजेंसी अलर्ट मैसेजेस भेजे गए। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए कौमी अहलियत और दाखिला टेस्ट NEET का इम्तिहान आज मुनक्किद होगा। इम्तिहान दोपहर 2 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। NEET के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के मुताबिक इम्तिहान के मराकज में आखिरी दाखिला दोपहर 1:30 बजे तक दिया जाएगा। NEET UG 2019 से इम्तिहानात कराने वाली कौमी एजेंसी NTA के जरिए मुनाकिद किया जा रहा है, जो सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत और तालीम की वजारत की मंजूरी से अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए होता है। NTA ने उम्मीदवारों के लिए मखसूस हिदायत जारी की हैं। एडमिट कार्ड के साथ उम्मीदवारों को एक असल तस्वीर वाला शिनाख्ती सबूत जैसे वोटर ID, आधार कार्ड या राशन कार्ड भी साथ लाना जरूरी होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
2: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: मार्शल आइलैंड के परचम बरदार LPG MT सर्वशक्ति ने 46,313 मैट्रिक टन LPG भारतीय कार्गो के साथ 20 अमले के अरकान, जिनमें 18 भारतीय शामिल हैं, बहिफाजत आबनाए हुरमुज अबूर कर लिया है। सरकारी जराये के मुताबिक जहाज की इस माह की 13 तारीख को विशाखापट्टनम पहुंचने की तवक्को है। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत ने गुज़श्ता रोज एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि खित्ते में तमाम भारतीय मल्लाह महफूज हैं और भारतीय परचम बरदार जहाजों को पेश आने वाले किसी भी वाक़े की इत्तला नहीं मिली है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि जमैका, सूरीनाम और ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के सरकारी दौरे पर हैं, आज सुबह जमैका की राजधानी किंगस्टन पहुंच गए। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि जमैका की वजीर खारजा कैमीना जे स्मिथ ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि वो अगले 2 दिन के दौरान जमैका की क्यादत, कारोबारी बिरादरी और वहां मुकीम भारतीय बिरादरी से मुलाकात के मुंतजर है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस महीने की 10 तारीख तक जारी रहने वाले इस दौरे में डॉक्टर जयशंकर मजकूरा तीनों मुल्कों की क्यादत से मुलाकात करेंगे। अपने हम मनसबों के साथ बातचीत में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी मामलात समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू होगी। उनके इस दौरे का मकसद जमैका, सूरीनाम और ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के साथ भारत के सियासी रवाबित को मजीद मजबूत बनाना और दैरीना दोस्ताना ताल्लुकात को फरोग देना है। ये दौरा आलमी खित्ते जुनूब के मुल्कों के दरमियान बाहमी तआवुन और तरक्की के मुश्तरका अज़्म की भी अक्कासी करता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका जर्मनी में अपनी फौज की मौजूदगी को नुमाया तौर पर कम करेगा, जिससे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ तनाजे मजीद बढ़ गया है, क्योंकि वो यूरोपीय सलामती के लिए अमरीकी अहद बस्तगी को कम करने के ख्वाह हैं। पेंटागन ने जुमे को इब्तदाई तौर पर ऐलान किया था कि वो जर्मनी से तकरीबन 5,000 फौजी वापस बुलाएगा, लेकिन जब हफ्ते के रोज उनसे इस इकदाम की वजह पूछी गई तो जनाब ट्रंप ने कोई वजाहत पेश नहीं की और कहा कि इससे भी बड़ी कमी आने वाली है। उन्होंने फ्लोरिडा में नामानिगारों को बताया कि अमरीका फौज में बहुत ज्यादा कटौती करने जा रहा है और वो 5,000 से कहीं ज्यादा फौजियों को वापस बुला रहे हैं। इससे पहले जर्मनी के वजीर दिफा बोरिस पिस्टोरियस ने आज कहा कि जर्मन में अमरीकी फौज की मंसूबाबंद कमी यूरोप को अपनी दिफाई सलाहियतें मजबूत करने पर मजबूर करेगी। उन्होंने यूरोप में जोर दिया कि वो अपनी सलामती की ज्यादा जिम्मेदारी उठाएं और इस बात का जिक्र किया कि जर्मन अपनी फौज और इंफ्रास्ट्रक्चर को वसत दे रहा है।

0: इत्तलात और नशरियात की वजारत ने मारूफ नामा निगार, नगमा निगार, मुसन्निफ और मवासलात के माहिर परसून जोशी को भारतीय पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती का चेयरमैन मुकर्रर किया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज शिमाल मशरकी रियासतों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम ने जनूबी रियासतों केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी में शदीद बारिश की पेशगोई की है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज चमक और झालाबारी का इम्कान है। मध्य प्रदेश में नुमाइंदगी करने वाले कुलदीप कुमार ने नेशनल मेंस पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर का नया रिकॉर्ड कायम करते हुए भुवनेश्वर में जारी इंडियन इंडोर ओपन कंबाइंड इवेंट्स और पोल वॉल्ट मुकाबले के पहले दिन सोने का तमगा जीता। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले बेशतर अखबारात ने मगरबी बंगाल में जारी इंतखाबी अमल से मुतल्लिक खबर को अपनी सुर्खी बनाया है।

0: जीता। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईनी के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले बेशतर अखबारात ने मगरबी बंगाल में जारी इंतखाबी अमल से मुतल्लिक खबर को अपनी शसुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की इस सिलसिले में शसुर्खी है, मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मजीद सख्त। जबकि अखबार इनकलाब ने बंगाल में 15 बूथों पर दोबारा पोलिंग में 90% वोटिंग की खबर को नुमाया किया है। इसी अखबार की एक और खबर है, आफात से मुतालिक मुलगीर मोबाइल इंतबाही निज़ाम का आगाज, शहरियों को फौरी अलर्ट्स की सहूलत। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, प्रसून जोशी प्रसार भारती के चेयरमैन मुकर्रर। अखबारात ने बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के म्यांमार दौरे से मुतालिक खबर को भी अहमियत के साथ शाया किया है। अखबारात की अहम बैन अलावा खबरें इस तरह हैं, मकसद हासिल किए बगैर जंग खत्म नहीं करेंगे ट्रंप का बयान, अमेरिका के साथ नई जंग का इम्कान मौजूद है ईरानी फौज का बयान।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके में तमाम 285 पोलिंग मराकज पर इस महीने की 21 तारीख को दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत के पुख्ता अज्म की अक्कासी करता है। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर बहिफाजत आबनाए हुरमुज से गुजर गया है। अमेरिका ने जर्मनी से 5,000 से ज्यादा फौजियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने मुल्क के शिमाल मशरिकी और जजीरा नुमा इलाकों के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: छोट शहर मगर सपना ग्लोबल, आप इंजीनियरिंग के टॉप लेवल पढ़ाई बिहार में ही संभव छी।
5: हर जिला में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, 38 प्रतिष्ठित संस्थान, विश्व स्तरीय शिक्षा अपने राज्य में,
4: हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम, अनुभवी फैकल्टी आ मजबूत प्लेसमेंट सपोर्ट।
5: नामांकन JEE मेन 2026 या BCECE मेरिट के आधार पर, अंतिम तिथि 5 मई 2026।
4: जखन मौका अपने राज्य में हो तो सफलता दूर नहीं हो छी, उत्कृष्ट प्लेसमेंट अहाँ के इंतजार में छी।
5: बेसी जानकारी खातिर विजिट करू BCECEboard.bihar.gov.in। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सरगर्मी तेज। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। प्रदेश की सभी पंचायतों में प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को लगेगा सहयोग शिविर। 19 मई से होगी शुरुआत। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश में 48,50,000 से अधिक लोगों ने स्वगणना में लिया भाग। वैशाली जिला पहले स्थान पर। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तरी भागों में अगले दो दिनों तक आंधी बारिश और वज्रपात की आशंका। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि 6 या 7 मई तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मंत्रिमंडल के विस्तार के मुद्दे पर पार्टी के केंद्रीय नेताओं से चर्चा के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली गए हुए हैं। वहां वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल पटना में मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। इधर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और बिहार से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात को भी संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश की सभी पंचायतों में इस महीने की 19 तारीख से प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को भेजे निर्देश में कहा है कि शिविरों में प्रखंड, अंचल और थानों से जुड़ी शिकायतों का ऑन स्पॉट निपटारा किया जाएगा। इसका आयोजन पंचायत सरकार भवन या इसके आसपास किसी सार्वजनिक स्थान पर होगा। विकसित भारत समृद्ध बिहार अभियान के तहत सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद आम नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत स्वगणना का कार्य पूरा हो चुका है। इस दौरान प्रदेश भर में 48,50,848 लोगों ने स्वगणना प्रपत्र भरे हैं। इस मामले में पहले स्थान पर वैशाली जिला रहा, जहां 5,86,220 परिवारों की सूचनाएं ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की गई हैं। दूसरे स्थान पर गया जिला रहा, जहां 4,95,331 लोगों ने स्वगणना पत्र भरा है, जबकि गोपालगंज 3,06,491 स्वगणना पत्र अपलोड कर तीसरे स्थान पर है। पटना जिला 2,38,750 स्वगणना पत्र भरकर चौथे स्थान पर है। गौरतलब है कि 17 अप्रैल से 1 मई के बीच स्वगणना पत्र भरे गए थे। स्वगणना की समय सीमा समाप्त होने के बाद 2 मई से राज्य में मकान सूचीकरण और आवास गणना का कार्य किया जा रहा है। जदयू अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार अपनी पहली राजनीतिक यात्रा की शुरुआत आज से करेंगे। निशांत कुमार की इस यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा रखा गया है। श्री निशांत 11 बजे पटना स्थित पार्टी मुख्यालय से सद्भाव यात्रा के लिए रवाना होंगे। यात्रा की औपचारिक शुरुआत पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया से होगी। इस दौरान उनके साथ जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार और पार्टी अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि यात्रा के दौरान निशांत कुमार पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे।
1: माननीय निशांत कुमार जी की सद्भाव यात्रा की शुरुआत चंपारण की धरती से हो रहा है। नीतीश जी की विरासत को जनता दल की केवल विरासत नहीं, बिहार की विरासत नहीं, देश की राष्ट्रीय राजनीति में विरासत है। उस विरासत को सजाने और संवारने का काम निशांत कुमार जी को दिया गया।
0: पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना कल होगी। असम की 126, केरलम की 140 और

0: पुडुचेरी की 30 सीट के लिए मतदान 9 अप्रैल को हुआ था। तमिलनाडु की 234 सीटों के लिए 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल की 293 सीटों के लिए दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे। प्रदेश के सभी 927 राजस्व न्यायालयों को आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं से लैस किया जाएगा। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेजा है। अपने निर्देश में उन्होंने कहा है कि राजस्व न्यायालयों का आधुनिकीकरण का काम संबंधित जिलाधिकारी की निगरानी में होगा। उन्होंने कहा कि न्यायालयों के आधुनिकीकरण से न्याय प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के साथ ही दस्तावेजों का डिजिटलीकरण भी आसान होगा। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए जारी निर्देश में कहा है कि प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। पटना जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई को 2 महीने के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही 3 दिनों के अंदर छात्रा की माता का बयान सक्षम अधिकारी के समक्ष दर्ज करवाने को भी कहा है। अदालत ने प्रत्येक 14 दिन पर शपथ युक्त प्रगति प्रतिवेदन दाखिल करने का आदेश सीबीआई को दिया है। विशेष अदालत ने छात्रा के परिजनों को 2.5 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के उत्तरी भागों में आंधी बारिश की स्थिति लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग से मिली रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कटिहार के प्राणपुर में 114 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पूर्णिया के कस्बा और ढेंगरा घाट में 106 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर बिहार के अधिकांश स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना है। इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की आशंका भी जताई गई है।
4: दिनांक 3 मई, राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर राज्य के दक्षिणी भागों में उमस भरी गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद समेत दक्षिण पश्चिम भागों में तापमान में वृद्धि दर्ज किए जाने की संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद खत्म करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित शौर्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस

0: ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्ण अध्याय बना दिया है।
1: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है, शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है जहां राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है जहां हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर मां भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
0: ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थित आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। इन हमलों के कारण चार दिनों तक भीषण झड़पें हुई, जो बाद में 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ समाप्त हुई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड में 12 जून से शुरू हो रहे टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर की को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में टी20 पुरुष लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कल अलग अलग स्थानों पर खेले गए मुकाबले में खगड़िया, पूर्णिया, समस्तीपुर और अररिया की टीमों ने जीत दर्ज की। पटना में खेली जा रही बिहार राज्य अंडर 9 शतरंज प्रतियोगिता के बालक वर्ग का खिताब पूर्णिया के आर्यन कुमार ने जीता, जबकि बालिका वर्ग का खिताब मुजफ्फरपुर की दिशा कुमारी ने जीता है। जमुई के मलयपुर में 25 मई से बिहार राज्य सीनियर खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी बिहार खो खो संघ के सचिव नीरज कुमार पप्पू ने दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। हैदराबाद में यह मैच आज दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में एक अन्य मैच में गुजरात टाइटन्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। सीवान जिले के बढ़हरिया थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी सोनू यादव मारा गया है। उस पर 25,000 रूपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने बताया कि पिछले दिनों पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे और उनके बहनोई पर गोलीबारी की घटना में भी सोनू यादव वांछित था। गौरतलब है कि इस घटना में पूर्व एमएलसी के भांजे की मौत हो गई थी। मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र के मलंगिया गांव में जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। इधर कैमूर जिले के भभुआ भगवानपुर पथ पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। कटिहार पुलिस ने निबंधन कार्यालय के रिकॉर्ड रूम से जमीन के दस्तावेज की चोरी कर फर्जी नाम पर जमीन बेचने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। इस संबंध में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने सुपौल जिले के निर्मली में अनुमंडल व्यवहार न्यायालय का उद्घाटन किया। मधेपुरा जिला मुख्यालय के पास साहूगढ़ में पुल धंसने से 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। अररिया जिले के रानीगंज में खनन विभाग की टीम ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान बालू लदा एक ट्रैक्टर जब्त किया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने बिहार लोक सेवा आयोग के निर्णय को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, AEDO की भर्ती परीक्षा रद्द, परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर केस दर्ज। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, सैटेलाइट टाउनशिप पर चरणबद्ध तरीके से काम करें, समय सीमा का ध्यान रखें। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सम्राट दिल्ली पहुंचे, कैबिनेट का विस्तार अगले सप्ताह, 3 से अब 30 हो जाएंगे मंत्री। प्रभात खबर लिखता है, बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने पर भारत और नेपाल में बनी सहमति। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सरगर्मी तेज। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। प्रदेश की सभी पंचायतों में प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को लगेगा सहयोग शिविर, 19 मई से होगी शुरुआत। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश में 48,50,000 से अधिक लोगों ने स्वगणना में लिया भाग, वैशाली जिला पहले स्थान पर। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तरी भागों में अगले 2 दिनों तक आंधी, बारिश और वज्रपात की आशंका। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: किसान भाइयों एवं बहनों, अब सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना हुआ और भी आसान।
2: IVRS सुगम कॉल सेंटर के माध्यम से सहकारिता विभाग की सभी योजनाओं यथा खाद्यान्न अधिप्राप्ति, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, पैक्स सदस्यता एवं अन्य सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें।
1: कोई समस्या, कोई शिकायत, कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो तुरंत कॉल करें।
2: टोल फ्री नंबर 1800-3454-110 पर सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सहकारिता विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: अपनी तस्वीर को हाथों से लगाता क्या है। आप सुन रहे थे गुलाम अली की आवाज में ये कलाम। दोस्तों, मीडिया को जमहूरियत का चौथा सुतून कहा जाता है और हर साल यौमे आलमी आज़ादी सहाफ़त हर साल 3 मई को मनाया जाता है। ये दिन पूरी दुनिया में मीडिया यानी सहाफ़त की खिदमात को याद करने के लिए वक्फ़ है। ये दिन हमें मीडिया की आज़ादी की अहमियत के बारे में बताता है और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाने का जज्बा देता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मीडिया कितना अहम है, लेकिन सहाफ़त एक बहुत पुरख़तरा पेशा है। दुनिया भर में आए रोज़ सहाफ़ियों पर जिस तरह से ख़तरात को देखे जाते हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए हर साल 3 मई को आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद आज़ादी सहाफ़त के उसूलों को मनाना, मीडिया का जायज़ा लेना और इसे हमलों से बचाना और फ़राइज़ की अदायगी में अपनी जानें गंवाने वाले सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश करना है। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन 1993 में अक़वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली ने 1991 में यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के बाद मनाया। ये पहली बार 1994 में मनाया गया था। इस दिन के मनाने का मकसद आज़ादी सहाफ़त की अहमियत के हवाले से शऊर उजागर करना और उन्हें खिराज अकीदत पेश करना है। इन सहाफ़ियों के लिए जो फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी जान की बाजी हार बैठते हैं। गुल्लेर्मो कैनो एक मशहूर इतालवी सहाफ़ी, मुसन्नफ़ और न्यूज़ एडिटर थे। उन्होंने मीडिया की आज़ादी और सहाफ़त की अहमियत को उजागर करने में खसूसी किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी जान को ख़तरे में डालकर बहुत से मुतनाज़ो सच्चाइयों को आम लोगों के सामने पेश करने के लिए बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया। इनकी हौसला अफजाई और शराकत के एज़ाज़ के लिए इन्हें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड मुतारफ भी किया गया था। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं सेहतनामा, जिस्मानी निज़ामे सेहत व ग़िज़ाइयत, डॉक्टर जमाल अख्तर से शगुफ्ता परवीन की गुफ्तगू।
1: आदाब सामीन, आपका अंजुमन की आज की खास नशिस्त सेहतनामा में खैर मकदम है। हमारी हुकूमत की ये कोशिश जारी है कि वो आवाम में सेहत की अहमियत को लेकर उन्हें बेदार करे। इसी कोशिश के तहत हुकूमत हर साल नई नई थीम के साथ आवाम को सेहतमंद गिजा और सेहतमंद जिस्म की अहमियत बताने में कोशा है। इसके बारे में तफसीली गुफ्तगू के लिए आज हमने आकाशवाणी के स्टूडियो में डॉक्टर जमाल अख्तर को मदऊ किया है। डॉक्टर साहब, सेहतनामा में हम आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे सामेन के लिए खास वक्त निकाला।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने इस स्टूडियो में इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया। मैं इस टाइटल पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा

0: कि ये टाइटल जिसका नाम सेहतनामा है, इस टाइटल के तहत जैसा कि ये टाइटल दिख रहा है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को बेदार करने की कि जो गिज़ा के ताल्लुक से हमारे समाज के अंदर या हमारे लोगों के अंदर एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को क्लियर किया जाए।
1: जी, इसी के तहत हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है और हमारी कोशिश रहती है कि हम सामीन को अच्छी सेहत के बारे में बताएं और उन्हें बेदार करें और वो अपनी सेहत को ज़्यादा बेहतर कर सकें ताकि वो ताहयात सेहतमंद रह सकें। सबसे पहले तो सामीन को बताइए कि इंसानी जिस्म के लिए ग़िज़ा क्यों ज़रूरी है।
0: मैं बात करूं थोड़ा सा उससे पहले की, गिजा से पहले की, कि एक जो कंसेप्ट है हमारे यहाँ सेहत का, जिसको यूनानी के अंदर असबाबे सित्ता जरूरिया के अंदर रखा गया है, कि अगर इंसान अपनी जिंदगी में इसको नाफिज कर ले, न कि अपनी सेहत को वो बरकरार रखे बल्कि अपनी सेहत की वो हिफाजत भी कर सके। असबाबे सित्ता जरूरिया के अंदर 6 चीजें रखा गया है, जिसमें पहला है आबो हवा, दूसरा है माकूलो मशरूब, तीसरा है हरकत सुकून बदनी, चौथा है हरकत सुकून नफसानी, पांचवा है नींदो बेदारी और छठा है एतबास इस्तफराग। ये जो असबाब सित्ता जरूरिया है, अगर इंसान इसको अपनी जिंदगी में नाफिज कर ले तो वो अपनी सेहत को बरकरार भी रह सकता है और सेहत को अपनी हिफाजत भी कर सकता है। इस नाहिये से अगर देखा जाए तो इस असबाब सित्ता जरूरिया में जो दूसरे नंबर पर है, माकूल व मशरूब, यानी खाने पीने की चीजें, खाने पीने की चीजें भी क्या है, इनका असर हमारे जिस्म के ऊपर डायरेक्ट पड़ता है। आज के टाइटल के ताल्लुक से देखा जाए तो जो उसका दूसरा पार्ट है, यानी खाने की चीजें, तो इस खाने का जो इफेक्ट है हमारे बॉडी के ऊपर या हमारे सेहत के ऊपर क्या असर पड़ता है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि असबाबे सित्ता जरूरिया क्या है, जिस तरीके से मर्ज का सबब है वैसे ही सेहत का भी सबब है। ऐसा नहीं है कि सेहत है तो बगैर किसी सबब के है या सिर्फ मर्ज का काज है, बल्कि जिस तरीके से मर्ज का कोई काज होता है, कोई सबब होता है, ठीक उसी तरीके से सेहत का भी सबब होता है। सेहत में जो गिजा के ताल्लुक से अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको हम अपनी जिंदगी में नाफिज करके बहुत सारी डिजीज से बच सकते हैं। अब जो बात आती है हमारे इसमें कि गिजा का हमारे जिंदगी के अंदर क्या रोल है, उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे सिस्टम के अंदर उम्र को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला, पैदाइश से लेकर उसकी 25 साल की उम्र, जिसके अंदर बॉडी क्या है, ग्रोथ करती है। दूसरा जो सेक्शन है उसका, वो 25 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र, और तीसरा सेक्शन है 40 साल से 60 साल की उम्र, और लास्ट जो है फोर्थ नंबर पे है कि 60 साल से लेकर आखिर उम्र तक। तो इस जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्से में गिजा का बहुत अहम रोल है। अगर हम पहले हिस्से की बात करें, जिसको हम सिन्ने नमू कहते हैं, उम्र के इस हिस्से में गिजा की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्यों? इसकी वजह यह है कि जो बच्चा ग्रोइंग एज में है, एक तो उसको डाइट इस हिसाब से चाहिए कि जो उसकी डेली रूटीन है, जो उसकी बॉडी की एक्टिविटी है वो तो हो ही, साथ ही साथ उसकी ग्रोथ भी उसी के अकॉर्डिंग हो। इस सिन्ने नमू के अंदर या इस पैदाइश से लेकर 25 साल तक की उम्र में गिजा के अंदर किसी भी तरह की कमी अगर पाई गई या गिजा के अंदर किसी भी तरह की कमी होगी तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट बच्चे की ग्रोथ पर होगा।
1: यानी हर उम्र के लिए ग़िज़ा बहुत अहमियत रखता है। ये मेरा
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सवाल होता आपसे, लेकिन खैर आपने बहुत अच्छे से इस बात को बता दिया और आपने ये भी बताया कि हर उम्र को अलग-अलग तरीके से डिवाइड करने के साथ साथ में उसके बारे में उसकी ग़िज़ा की भी अहमियत अलग-अलग होती है। और यकीनन हुकूमत हमारी लगी हुई है कि हम हमारी आवाम को किस तरीके से सेहतमंद रखें। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, हम चलते हैं उस जानिब जहाँ हमारे सामीन को बताइए कि दुनिया में सबसे जो बेहतरीन ग़िज़ा है, जो कहते हैं कि एक इंसान के पैदाइश से लेकर के आखिर तक में बहुत तरह की ग़िज़ा हमें मिलती है, लेकिन जब इंसान की नशोनुमा जब होती है, जिस वक्त वो जब पैदा होता है, तो एक पैदा हुए हुए किसी भी इंसान के लिए वो सबसे बेहतरीन ग़िज़ा कौन सी हो सकती है?
0: इस बेहतरीन गिजा की तरफ अगर हम जाएं, पैदा होने वाले बच्चे की अगर हम बात करें, तो उस बच्चे के लिए जो सबसे बेहतरीन गिजा होगी वो माँ का दूध होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो माँ का दूध तो सिर्फ बच्चे के लिए है, लेकिन बच्चा जैसे जैसे ग्रोथ करेगा, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, तो माँ के दूध के साथ उसके लिए और भी गिजाओं की जरूरत पड़ती है। डेली डाइट की अगर हम बात करें तो हमारे डाइट के अंदर जो दो कंपोनेंट मेनली होते हैं, एक को हम कहते हैं मेजर कंपोनेंट गिजा का और दूसरा होता है माइनर कंपोनेंट। मेजर कंपोनेंट में के अंदर जो चीजें आती हैं वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, और जो माइनर कंपोनेंट है उसमें मिनरल्स और विटामिन्स हैं। इनमें जो हमारे गिजा का जो मेजर कंपोनेंट है, ये ही मेजर कंपोनेंट क्या है, बॉडी के अंदर एनर्जी और ग्रोथ के जो प्रोसेस हैं वो मेजर कंपोनेंट।

0: करता है, जबकि जो माइनर कंपोनेंट है ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन जो बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शन है, जो मुख्तलिफ अफाल है आजा के, उस मुख्तलिफ अफाल को प्रॉपर तरीके से अंजाम देने के लिए जिम्मेदार होता है।
1: जिस्म के लिए अगर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स है तो उसके साथ साथ में हमें मिनरल्स विटामिन्स इसकी भी सख्त ज़रूरत है,
0: बिल्कुल बिल्कुल, बगैर
1: ताकि हमारी
0: उसके
1: बॉडी जो है वो, हमारा जो जिस्म है वो अच्छे से अपने नशोनुमा को कर सके। ये बहुत अहम है सामीन, इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और इसके साथ ही हम चलते हैं उस सवाल की जानिब जहाँ आज के वक्त के जो वालदेन हैं वो बहुत परेशान है। जैसे आपने कहा कि माँ के दूध के बाद बच्चों को एक उम्र आती है जिसके बाद में उन्हें ज़रूरत होती है कि उन्हें बाहर से भी कुछ खाने दिए जाएँ, तभी तो फिर वो आगे बढ़ेगा और अच्छी उसकी नशोनुमा होगी। आज के वक्त में वालदेन बच्चों के ना खाने से ज़्यादा, ना बच्चों के फास्ट फूड के खाने से ज़्यादा परेशान है। कैसे वो अपने बच्चों को अच्छे खाने की तरफ उसको ले करके जाएं, और कैसे वो बच्चों को फास्ट फूड से थोड़ा दूर करें, क्योंकि फास्ट फूड पेट तो भर देता है, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि हमें चाहिए मिनरल्स विटामिन्स और सारे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन, तो ये सारी चीज़ें फिर उनको कैसे मिलेंगी? फास्ट फूड में तो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, थोड़ा हमारे सामने को बताइए इसके बारे में।
0: मैं समझता हूं कि इसमें जो सबसे बड़ी गलती है वो वालिदैन की है। इसके कई एक फैक्टर्स हैं, चूंकि आज के वक्त में जो वालिदैन हैं दोनों लोग जॉब करते हैं, दोनों लोग काम करते हैं, टाइम की कमी होती है अपने इस टाइम को पूरा करने के लिए। जैसे अगर ऑफिस जाना है, पेरेंट्स को भी, बच्चे को भी स्कूल जाना है, जो कम टाइम है, तो पेरेंट्स क्या करते कि उस कम टाइम में ऐसी गिजा बना के बच्चों के लिए देते जो जल्दी से तैयार हो जाए, जैसे नूडल्स है, मैगी है, पास्ता है, ये तमाम चीजें जो बनाए। ये सबसे बड़ी गलती इसमें क्या है, ये पेरेंट्स की है कि वो बच्चे की सेहत को ना रखे, तरजीह किसको दे रहे हैं, टाइम को दे रहे हैं कि हमारा टाइम बच जाए, लेकिन जब वही बच्चे को आदत पड़ जाती है वो चटपटा खाना खाने की, तो फिर वही वालिदैन के लिए सबसे बड़ी परेशानी
1: मुश्किल,
0: बन
1: हाँ
0: जाती है।
1: बिल्कुल, उनकी मुश्किल
0: तो
1: बढ़ा देता है।
0: इसमें मेरा कहना यह है कि जो वालिदैन को इस बात का ख्याल रखा जाए कि जहां अपना थोड़ा टाइम है, थोड़ा सा टाइम अगर आप ज्यादा दे दें तो उन बच्चों के लिए आप खाना भी अच्छा बना देंगे, और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि उसके अंदर जो हम बच्चे को दे रहे हैं क्या उसमें प्रॉपर तरीके से प्रोटीन है, फैट है, क्या उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट उतना है, उसमें मिनरल्स और विटामिन्स प्रॉपर तरीके से हैं या नहीं है।
1: अच्छा, यहाँ पर मैं कहूँ कि ठीक है, माँ बाप दोनों जॉब पर हैं, दोनों काम पर लगे हुए हैं, लेकिन वो अपने लिए भी तो लंच बनाते होंगे ना सुबह के वक्त में आखिर, और बच्चों के लिए फिर अलग से, तो क्यों ना उसी लंच में कुछ अलग वो कर दें और फिर अपने बच्चों को उसी में से कुछ दें जिससे कि उनको सेहत भी मिल सके। आखिर वो अपने लिए तो वो पास्ता नूडल्स नहीं लेके जाते होंगे, चपातियाँ बनती होंगी घरों में, सब्जी या जो भी चीज़ें बनती होंगी। तो ये बहुत अच्छी मतलब गुफ्तगू से ये बहुत बेहतरीन निकल करके आया कि हमें थोड़ा सा वक्त मैनेज करके अपने बच्चों को अच्छी सेहत का ख्याल रखते हुए उनके लिए अच्छे लंच यानी कि उनके टिफिन का बेहतरीन इंतजाम कीजिए। इसके साथ ही डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि जो न्यूट्रिशन है वो किस तरीके से हमारे जिस्म में जा करके वो काम करता है।
0: ये जो गिजा, जिसको हम न्यूट्रिशन या फूड या हम गिजा कहते
1: या
0: हैं,
1: गजा जी,
0: ये गिजा जो है बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। यानी जब कोई भी चीज जब हम अपने माउथ के अंदर रखते हैं तो उसको हम फिर दांतों से क्रश करते हैं, उसके साथ जो माउथ का जो सलाइवा है उसके साथ मिक्स होता है, फिर वो गिजाई अज्जा हमारे ओसोफेगस से होते हुए स्टमक के अंदर जाता है। तो कुछ चेंजेस क्या हैं, स्टमक के अंदर होते हैं, स्टमक से फिर वो इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, तो वहां इंटेस्टाइन में फिर चेंजेस होते हैं। तो जो चीजें हमने खाई है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट का ही कोई मिश्रण, जैसे हमने चावल खाया, रोटी खाई, तो वो क्या है, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट भी है उसमें, थोड़ा बहुत फैट भी है, थोड़ी बहुत प्रोटीन भी है, लेकिन मैक्सिमम उसमें मेजर जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जब तक अपने सिंपलेस्ट यूनिट में टूटेगा नहीं तब तक ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब ये कंप्लीट इसके मेटाबोलिज्म के बाद ये एब्जॉर्ब होके जिस्म का हिस्सा बन जाए वो चीज गिजा कहलाता। अगर इसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो फिर वो गिजा के जुमरे में नहीं आएगी, वो चीज तो ऐसे ही एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जीआईटी से या हमारे इंटेस्टाइन से जिस्म से बाहर निकल जाएगी। तो गिजा का ये पहला वसूल है कि वो जिस्म के अंदर जाए और मेटाबॉलिज्म के बाद जिस्म का हिस्सा हो जाए, ऐसी चीज गिजा के जुमरे में आती है।
1: इसीलिए फास्ट फूड जो होता है वो हमारे जिस्म के साथ कहीं भी मैच नहीं कर पाता है, मतलब हमारी जो जिस्म है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और हम फास्ट फूड खा के बिल्कुल फास्ट फास्ट से और फैट फैट से हो जाते
0: नहीं,
1: हैं।
0: उसमें ये बात नहीं है, रियल में उसमें क्या है, जो फास्ट फूड है उस फास्ट फूड के अंदर अगर आप देखें तो मैक्सिमम चीजें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है।
1: कार्बोहाइड्रेट्स जी,
0: लेकिन हमारे बॉडी के लिए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है, ये अलग बात है कि जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, उस एनर्जी का 50% जो है वो कार्बोहाइड्रेट से होता है।

0: लेकिन अगर हम अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट की अगर मकदार बढ़ा दें तो एक वक्त ऐसा आएगा कि बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा,
1: कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो
0: कार्बोहाइड्रेट का
1: जाएगा
0: लेवल ज्यादा हो
1: जी।
0: जाएगा, तो ये हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है। कार्बोहाइड्रेट फिर फैट डिपॉजिट के अंदर तब्दील होता रहता है, तो आदमी क्या होता है कि ओबीज हो जाता है, यानी मोटापा आ जाता है। और मोटापा क्या है, एक खुद बीमारी है, बल्कि बीमारी क्या, मैं तो कहूंगा मोटापा क्या है, एक सिंड्रोम है, यानी बीमारियों का मिश्रण है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस, या इसी तरह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हाइपरटेंशन, ये तमाम बीमारियां मोटापा जो है इन बीमारियों को दावत देता है।
1: ये कहा जाए कि मोटापा एक छोटा सा बीज है जो हमारे जिस्म अगर दाखिल हो गया तो उसके साथ पता नहीं कितनी सारी बीमारियों की शाखें निकल आती हैं। ये अगर
0: बिल्कुल
1: कहा जाए
0: बिल्कुल
1: तो ज्यादा ही सही है। लोग जो हैं जो वो समझना नहीं चाहते हैं कि मोटापा दरअसल बस थोड़ा सा तो बढ़ गया, ये सोच करके लोग ध्यान नहीं देते हैं अपने बॉडी के ऊपर। अच्छे लग रहे हैं क्योंकि बॉडी फैलती है तो कहीं ना कहीं स्किन थोड़ा ग्लो करने लग जाता है और लोग समझते हैं कि हम तो स्मार्ट लग रहे हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनकी बॉडी जब फैली तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज़्यादा ही फैल गई तो मोटापे में शामिल हो गए। तो सामीन, हमें इस बात का ख्याल रखने की भी ज़रूरत है कि अगर हम मोटापे की तरफ जा रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, तो ज़रूर ये ध्यान दीजिए कि हमारी बॉडी कोई और बीमारी तो साथ में शामिल नहीं कर रही है, लेकर तो नहीं आ रही है। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, हमारे सामीन को और हमें ये बताइए, जिस्म है जो हमारे जिस्म की सेहत खराब होती है, इसकी खास वजह क्या-क्या होती है?
0: मैंने अभी सबसे शुरुआत में ही आपको असबाबे सित्ता जरूरिया का एक एग्जाम्पल दिया था। तो ये ऐसे फैक्टर हैं कि इंसान जब तक जिंदा रहेगा इन फैक्टर से उसको दो चार होना पड़ेगा। जैसे पहला मैंने बताया हवा, अगर हवा अच्छी होगी सेहत होगी। हवा के अंदर किसी भी तरह का चेंजेस आए, चाहे उसके कंपोजिशन में कोई हार्मफुल गैस उसके अंदर दाखिल हो जाए, कोई पॉल्यूटेंट उसके साथ शामिल हो जाए, जैसा कि अभी, चाहे कोई ऐसे इन्फेक्टियस सब्सटेंस जैसा कि अभी बहुत करंटली हमने देखा कोरोना
1: कोरोना
0: वायरस का, एक
1: जी
0: कि उसके जो ड्रॉपलेट थे उस एयर में थे, और उस एयर को जितने लोग इनहेल करेंगे सब उससे इन्फेक्टेड होंगे। तो जहां पर ये हवा के, इसके बिना जिंदगी का तस्वीर ही मुमकिन नहीं है, तो ये इसका असर हमारे जिंदगी के ऊपर या हमारी सेहत के ऊपर डायरेक्ट है। इसी तरीके से जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं, इस पानी में अगर आप बॉडी को देखें तो बॉडी के अंदर लगभग 40 लीटर्स वाटर होता है। और ये वाटर क्या है, जो हम पीने से या कुछ मेटाबॉलिज्म के नतीजे से बनता है, तो पानी के बिना भी हमारे जिंदगी का तस्वीर मुमकिन नहीं है। तो अगर आप पानी पी रहे हैं, तो अगर पानी कंटामिनेटेड है, पानी खराब है, उसके अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस है, उसके अंदर किसी मिनरल्स की कमी है, तो जाहिर है कि जो कमियां उसके अंदर होंगी उसका इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर डायरेक्ट दिखेगा। उसी तरीके से जो हमारी गिजा है, उस गिजा के अंदर जिस भी चीज की कमी होगी, आयरन की कमी है तो आयरन की कमी के असरात हमारे जिस्म के ऊपर मुरतब होंगे, कैल्शियम की कमी है तो उसके असरात मुरतब होंगे, प्रोटीन की कमी होगी तो प्रोटीन माल एनर्जी न्यूट्रिशन जो सभी लोग जानते हैं। तो जिस तरीके की चीजें हम इस्तेमाल करेंगे उसी तरीके की जो उसका इफेक्ट है डायरेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर आता है।
1: तो जब भी हम कुछ खाने की चीज़ें हो या हम जिन जिसे कहते हैं दिखती तो नहीं है हवा लेकिन हम सांस तो लेते हैं पानी से, जैसे आपने बताया, तो पानी से ही बहुत तरह की बीमारी होती है, जैसे इकोलाई, आजकल टाइफाइड बहुत चला हुआ है, बहुत वायरल हो जाता है कुछ कुछ बीमारियां, तो बिल्कुल कहते हैं वायरल हो गया। वायरल वो होने का मतलब ही है कि वो हवा के ज़रिए या पानी के ज़रिए अक्सर हमारे जिस्मों में पहुँचती है और उसके बाद फिर हमारे जिस्म में बीमारी मुरतब होती है। इसके साथ ही साथ सामीन को बताइए कि हमारे जिस्म के लिए जिस तरह की ग़िज़ा आपने बताई कि बहुत ज़रूरी है, तो उन ग़िज़ाओं में कोई ऐसी ख़ास चीज़ जो सुबह नाश्ते के वक्त में वो लें और दोपहर के खाने के वक्त में लें, शाम में बहुत लोगों को कुछ हल्का फुल्का खाने की आदत होती है, तो वो उस वक्त ऐसी क्या अशिया लें जिससे उनके जिस्म को तवानाई मिले, सेहत मिले, और फिर रात में खाना कैसा होना चाहिए?
0: देखिए, डाइट के अंदर अगर सुबह के हम नाश्ते की बात करें, तो उम्र के लिहाज से मैंने कहा कि सबसे पहला फैक्टर होता है जब हम देखेंगे कि किसके लिए हम बना रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं, या जो वर्किंग आवर्स है या जो लोग काम कर रहे हैं। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा वर्क है वो सिडेंट्री है, मॉडरेट हैवी वर्क है, जैसे कोई किसी को फिजिकल वर्क ज्यादा है, कोई ऐसी जगह काम कर रहा है जहां फिजिकल वर्क ज्यादा है, तो हर एक के लिए गिजा का तयन जो है वो अलग अलग होगा। लेकिन अगर सबसे बेहतरीन अगर गिजाओं की अगर हम बात करें, अगर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर उसको नाफिज कर ले, तो बहुत सारी बीमारियों से उसको छुटकारा हासिल हो सकता है। उसमें सबसे बेहतरीन गिजाओं के अंदर अंडा, और बच्चा है, ग्रोइंग एज है, जवान है, तो वो यक के साथ ले सकता है। लेकिन अगर एल्डर एज है या ओल्ड एज है, तो विदाउट यक, यानी सिर्फ उसकी जो अल्बुमिन है वो इस्तेमाल करें। इसी तरह दूध का इस्तेमाल हर उम्र के लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से चने का इस्तेमाल, पनीर का इस्तेमाल, सोयाबीन का

0: इस्तेमाल, इन इस तरह की चीजों का इस्तेमाल हम अपने नाश्ते के अंदर कर सकते हैं। इसी तरह रात का जो खाना है, उस रात के खाने के अंदर भी मिक्स डाइट, यानी उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तमाम चीजें उसके अंदर होना चाहिए। तो रोटी, दाल, चावल, सब्जी, ये तमाम चीजें हमारे डाइट के अंदर जरूरी है, क्योंकि कुदरत ने ये बनाया है कि किसी, जैसे चावल के अंदर जो चीज नहीं है वो चीज दाल के अंदर है। तो आप दाल चावल दोनों चीज खाएंगे तो एक की कमी दूसरे से पूरी हो जाएगी। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि डाइट को मिक्स डाइट आप खाइए, एक ही चीज आप हमेशा नहीं खाइए कि उसके अंदर जो कमी हो तो उस कमी के असरात हमारे जिस्म के ऊपर पड़े।
1: जो भी खाना हम खाएं इसमें हमें इस बात का ख्याल रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है सामीन, कि जिस खाने से हमारे जिस्म में तवानाई हासिल होगी वही खाना दरअसल ग़िज़ा से भरपूर खाना कहलाता है, और वही खाना हमारे जिस्म को तवानाई भी देगा, और वही खाना फिर हमारे जिस्म के हर एक हिस्से की नशोनुमा करेगा, चाहे वो बढ़ते बच्चों के लिए हो, एज वाले लोग हों। जैसे कि कहते हैं कि अंडा, सही, ये बात तो बिल्कुल सही है कि बहुत से लोगों को अंडा नहीं खाते हैं, महाग्रा या जो भी तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो खाना चाहिए, और वो इस तरीके से लें जिस एज में वो हैं, जिस उम्र के हैं, उस हिसाब से उनको लेना चाहिए। और ये भी बहुत अहमियत का हामिल है कि जिनका जितना वर्क है, जो जिस तरीके से काम करते हैं, अगर कहा जाए कि एक मजदूर है तो उसे तो ज्यादा हर एक चीज लेने की जरूरत है,
0: 100% उसको ज्यादा जरूरत पड़ेगी।
1: जैसे फील्ड वर्क होता है, जो लोग बाहर मार्केट में बहुत घूम रहे हैं, उनके लिए इस तरह की चीजें होनी चाहिए। तो इसके साथ साथ हमारे सामीन को ये बताइए कि कोई ऐसी चीज़ जो हमारे जिस्म में कमी होती है, जैसे आजकल बहुत तरह की बीमारियां हो रही हैं और हर बार नई नई बीमारी आ जाती है हमारे सामने, तो क्या हम खाने से, अपनी उस ग़िज़ा से भरपूर जो हमारा जो खाना होता है उससे हम बीमारी पे कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, उसको थोड़ा कुछ कम कर सकते हैं?
0: थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारी बीमारियों को हम 100% क्योर कर सकते हैं। ये यूनानी के अंदर तो इलाज बिल गिजा सदियों, हजारों साल से है, मॉडर्न के अंदर ये कंसेप्ट नहीं था, बल्कि मॉडर्न के अंदर एक ब्रांच डाइटोथेरेपी की खुल गई कि वो लोग दवा के बजाय गिजा से इलाज करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो एब्जॉर्प्शन चीजों का, जैसे मान लीजिए कि आप एक आयरन की टेबलेट दे रहे हैं और एक ऐसी गिजा जिसमें आयरन मौजूद है, जिसको हम कहते हैं गुड़, जिसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा है, तो जितना बेहतरीन एब्जॉर्प्शन नेचुरल गिजा का होगा उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन दवा से नहीं होता है। तो अगर इस तरह की डाइट को, जैसे कैल्शियम की कमी, आमतौर से आप देखते होंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या लैक्टेटिंग मदर हैं, उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, पहले से अगर अवेयर रहें तो बजाय उसको कैल्शियम की टेबलेट देने के हम ऐसी गिजाओं का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर कैल्शियम पाया जा रहा हो। इस तरह का पहले से अगर हमारे पास ये कंसेप्ट है, पहले से हमको अगर पता हो, तो बहुत सारी बीमारियों से हम खुद बच सकते हैं, बजाय इसके कि बीमार होने के बाद हम उसका इलाज करें।
1: ये बहुत अच्छी बात है और हमें इस बात से तो बिल्कुल सीखना चाहिए कि हमारे पास जो भी चीज़ें अल्लाह पाक ने जो हमें जो नेमत दी है खाने की शक्ल में, उसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये बहुत अच्छी बात निकल करके आई कि हम बाद में जा करके दवाइयों से अपनी बीमारी को ठीक करें, उससे बेहतर है कि हमारे पास जो खाना है उससे हम सेहतयाब रहें। ये भी हमें पता होना चाहिए सामीन हजरात कि किस खाने से हमें कैल्शियम मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है, आयरन मिल रहा है। और इसके साथ ही साथ हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब ले जाना चाहते हैं और ये कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आप हमारे सामीन को जाते जाते एक कोई ऐसी बात बता के जाइए जिससे कि वो सेहतयाब रहे ताहयात, और उनकी सेहत अच्छी रहे, उनके अपनों की सेहत अच्छी रहे। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं एक शेर से ही इसको खत्म कर दूं कि खालिद ने कहा था कि तंग दस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तो इस तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए आपको जरूरी है कि आप अपनी गिजा का ध्यान रखें, आपकी गिजाओं में प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, इन चीज़ों को अगर हम रखते हैं तो ना ये कि हम अपनी सेहत को बरकरार रखेंगे बल्कि अपनी सेहत की हम हिफाजत भी करेंगे।
1: बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे सामीन के लिए निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मौजू पर हमें बुलाया ताकि लोगों के अंदर इस बात की बेदारी पैदा हो सके और लोग इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करके अपनी सेहत को बरकरार रख सके। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: अभी आप सुन रहे थे सेहतनामा, जिस्मानी निज़ामी सेहत व ग़िज़ाइयत, जमाल अख्तर से शगुफ्ता परवीन की बातचीत। आइए सुनते हैं मौसिकी के तहत चंद गज़लें। सबसे पहले सुनते हैं पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये कलाम।

तेरे खामोश होठों से मोहब्बत गुनगुनाती है। आप सुन रहे थे मौसीकी के तहत पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये कलाम। दोस्तों, वर्ल्ड लाफ्टर डे यानी कहकहे का दिन हर साल मई के पहले इतवार को मनाया जाता है, जिसका मकसद हंसी के ज़रिए सेहत, खुशी और आलमी अमन को फ़रोग देना है। ये दिन 1998 में डॉक्टर मदन कटारिया ने शुरू किया था, जो हंसी के तिब्बी फ़वाद जैसे तनाव में कमी और मुदाफ़ती निज़ाम में बेहतरी के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए वक्फ है। हंसी खून के दबाव को मुनज़्ज़म करती है, तनाव को कम करती है और जिस्म में हार्मोन्स पैदा करती है, खुशी के हार्मोन्स। हंसना एक मस्बत इंसानी एहसास है, जो न सिर्फ सेहत के लिए अच्छा है बल्कि ये ताल्लुकात को मजबूत बनाता है और मनफी तवानाई को दूर करता है। इस दिन को लोग अवामी मकामात पर इकट्ठे होकर लाफ्टर योगा भी करते हैं और हंसते हैं और गुदगुदाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी का इज़हार करते हैं। गर्ज़ की वर्ल्ड लाफ्टर डे हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी में हंसी और खुशी का क्या मकाम है और ये कि सेहतमंद रहने के लिए रोज़ाना हंसना कितना ज़रूरी है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं मौसीकी के तहत अगला कलाम, नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ में।

मौसीकी के तहत अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में ये कलाम। सामईन हज़रात, हमारे आज के उर्दू प्रोग्राम अंजुमन को इख्तिताम करने का वक्त हो गया है। फ़िलहाल हमें दीजिए यहीं इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे आपके अपने पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम रसमंजरी में सबसे पहले सुनिए आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में प्रिंस फिल्म के इस गीत को। संगीत सचिन गुप्ता का है और गीतकार हैं समीर।

कार्यक्रम रसमंजरी की अगली पेशकश पुष्पा टू फिल्म से जावेद अली और मधुबंती बागची की आवाज़ में, संगीत देवीश्री प्रसाद का है और गीतकार हैं रकीब आलम।

कार्यक्रम रसमंजरी की अगली पेशकश अलका याग्निक, उदित नारायण और अमित कुमार की आवाज में। फिल्म है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, गीत के बोल समीर ने लिखे हैं।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी।

0: तो दोस्तों, आपने सुनना शुरू कर दिया है बाल किलकारी रेडियो कार्यक्रम। बाल किलकारी के इस नए एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का खूब स्वागत है।
1: क्या तुमने कभी सोचा है, इस वक्त दुनिया के किसी कोने में बारिश हो रही होगी, तो कहीं सूरज उग रहा होगा और कहीं कोई इंसान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले रहा होगा।
0: सही कहा, और तो और कोई रेडियो ऑन करते हुए सोच रहा होगा आज कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए।
1: खैर, 3 मई की इस सुबह जब मई का महीना अपनी पूरी तपिश और उम्मीदों के साथ दस्तक दे चुका है, वहीं एक तरफ मेहनत की आग और दूसरी तरफ शांति की चांदनी मई को और जानदार बना देती है।
0: बिल्कुल, और इसी महीने में आते हैं 2 ऐसे खास मौके जो हमें जिंदगी के 2 बिल्कुल अलग लेकिन जरूरी पहलुओं से मिलवाते हैं।
1: एक तरफ मई दिवस जो हमें याद दिलाता है मेहनत, संघर्ष और अधिकारों की कहानी, और वही दूसरी तरफ बुद्ध पूर्णिमा जो हमें सिखाती है शांति, सुकून और आत्मज्ञान का रास्ता।
0: प्रकृति, 1 मई तो निकल गया, लेकिन क्या हमने सच में मई दिवस को जिया?
1: अगर सच कहूँ तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जिनके लिए ये दिन था वे उस दिन भी जी जान लगाकर पूरी लगन से मेहनत कर रहे थे।
0: यही तो विडंबना है, मजदूर दिवस और मजदूर ही सबसे ज्यादा व्यस्त।
1: सही कहा, 1886 में अमेरिका का शिकागो शहर मजदूर सड़कों पर उतरे। उनकी मांग बहुत बड़ी नहीं थी, बस इतना कि दिन में 8 घंटे ही काम हो।
0: और आज हम सोचते हैं बस 8 घंटे ही, लेकिन उस समय तो 14-16 घंटे काम करवाया जाता था।
1: और जब उन्होंने आवाज उठाई तो जवाब में गोलियां चली, कई मजदूर मारे गए। वही घटना इतिहास में दर्ज हुई और उसे कहा जाने लगा हिमाक्रेट कांड।
0: मतलब आज जो हमें आराम, छुट्टी और अधिकार मिलते हैं वो किसी की कुर्बानी से आए हैं।
1: और आज हम उनकी कुर्बानी को हॉलिडे कहकर भूल जाते हैं, लेकिन वे लोग हारे नहीं थे, उन्होंने दुनिया को जगा दिया था।
0: और जब भारत में ये आवाज गूंजी तो पहली बार मई के पहले दिन ही 1923 में चेन्नई में पहली बार मई दिवस मनाया गया।
1: मतलब ये सिर्फ किताबों की कहानी नहीं है, ये हमारे आसपास के हर मजदूर की कहानी है, चाहे वो खेत में हो, फैक्ट्री में या हमारे घर के आसपास।
0: हम सोशल मीडिया पर अक्सर लिखा करते हैं रिस्पेक्ट लेबर,

0: उसी समय किसी कामगार से कहते हैं जल्दी करो।
1: सही कहा तुमने, सम्मान पोस्ट से नहीं व्यवहार से दिखता है। और अब बात रास्ते की करते हैं, जहाँ भाग दौड़ नहीं ठहराव है, जहाँ शोर नहीं शांति है।
0: बिल्कुल, बुद्ध पूर्णिमा,
1: वो दिन जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया।
0: मतलब एक ही दिन जीवन का आरंभ, सत्य की प्राप्ति और अंत का भी संदेश।
1: और सोचो अनुराग, एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, वो क्यों सब कुछ छोड़कर चला जाएगा भला?
0: शायद इसलिए क्योंकि बाहर सब कुछ था लेकिन अंदर कुछ कमी थी।
1: हाँ, आज हम भी तो वैसे ही हैं। मोबाइल, इंटरनेट सुविधा सब कुछ है लेकिन मन वो फिर भी बेचैन ही है।
0: सही कहा, फोन की बैटरी 100% चाहिए लेकिन खुद की ऊर्जा 10% पर भी चल रही है।
1: और बुद्ध हमें यही सिखाते हैं, रुको, देखो, समझो, क्योंकि असली शांति बाहर नहीं अंदर है।
0: बुद्ध ने कहा दुख है, दुख का कारण है और उससे बाहर निकलने का रास्ता भी है। लेकिन हम क्या करते हैं, दुख से भागते हैं और कारण को पकड़कर बैठे रहते हैं। अगर आज बुद्ध होते तो शायद कहते, इतना स्क्रॉल मत करो, थोड़ा खुद को भी देख लो।
1: और ये भी कहते कि नोटिफिकेशन से ज्यादा अपने मन की आवाज सुनो।
0: आज 3 मई है और इतिहास भी जैसे आज थोड़ा एक्टिव मोड में है,
1: जैसे टाइम मशीन ने आज का दिन हाईलाइट कर रखा हो।
0: सही कहा, आज के दिन ही 1919 में जब अमानुल्लाह खान ने ब्रिटिश भारत पर आक्रमण किया।
1: यानी उस समय भी पड़ोसी रिश्ते व्हाट्सएप फ्रेंडली नहीं थे।
0: बिल्कुल, और हालात इतने गंभीर थे कि ये घटना आगे चलकर बड़े राजनीतिक बदलाव की वजह बनी।
1: फिर 1998 में जब यूरोप के नेताओं ने यूरो को अपनाने का ऐतिहासिक फैसला किया,
0: मतलब कई देशों ने मिलकर कहा चलो एक ही जेब से खर्च करते हैं।
1: यानी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, लेकिन जेब में एक ही करेंसी, यानी दिल अलग पर खर्च का सिस्टम एकदम यूनिफाइड।
0: बिल्कुल, फिर 2002 जब परवेज मुशर्रफ के जनमत संग्रह को अमेरिकी मीडिया ने शर्मनाक बताया।
1: यानी पॉलिटिक्स में भी कभी कभी रिव्यू बहुत सख्त आते हैं।
0: और आज के दिन ही 2003 में क्रिकेट की दुनिया में धमाका हुआ जब स्टीव वो टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए।
1: वाह, ये तो वैसा ही है जैसे क्लास में हमेशा सेकंड आने वाला बच्चा हीरो बन जाता है।
0: और 2004 में भी वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को हरा दिया।
1: यानी अंडरडॉग वाली कहानी जो हमेशा दिल जीत लेती है।
0: फिर 2006 भी कम दिलचस्प नहीं था, पाकिस्तान और ईरान ने गैस पाइपलाइन पर करार किया
1: और भारत को उसमें शामिल नहीं किया, मतलब ग्रुप प्रोजेक्ट में किसी को बाहर कर देने जैसा।
0: लेकिन उसी साल कमलेश पटेल को ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पीयर बनाया गया।
1: यानी एक तरफ राजनीति में दूरी और दूसरी तरफ उपलब्धि की ऊंचाई।
0: 2008 में भी टाटा स्टील लिमिटेड को ब्रिटेन में कोयला खनन का लाइसेंस मिला।
1: ये तो वही बात हुई, जहाँ से कोयला आया वहीं जाकर कोयला निकालो।
0: और उसी साल सरबजीत सिंह की फांसी टल गई।
1: कुछ खबरें सुकून देती हैं, भले ही अधूरी क्यों ना हो।
0: हाँ, वही आज के दिन गिरिजा प्रसाद कोइराला संविधान सभा के लिए चुने गए थे।
1: यानी लोकतंत्र की नई कहानी लिखी जा रही थी।
0: और चिली में ज्वालामुखी फट गया।
1: वाह, मतलब प्रकृति भी कभी कभी कहती है मैं भी इतिहास बना सकती हूँ।
0: और आखिर में 2016 जब 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन और कंगना रनौत को सम्मानित किया गया।
1: यानी सिनेमा ने भी इस दिन को ब्लॉकबस्टर बना दिया।
0: तो दोस्तों, देखा आपने, एक ही दिन और कितनी कहानियाँ,
1: कहीं युद्ध, कहीं खेल, कहीं राजनीति और कहीं कला।
0: यही तो है समय का जादू,
1: हर तारीख अपने भीतर एक पूरी दुनिया समेटे हुए है।
0: सही कहा, पर मुझे मजदूर दिवस पर कुछ पंक्तियाँ याद है जिसे लिखा है ओम प्रकाश यती ने। दुनिया जगर मगर है कि मजदूर दिवस है, चर्चा इधर उधर है कि मजदूर दिवस है। मालिक तो फायदे की कवायद में लगे है, उन पर नहीं असर है कि मजदूर दिवस है। ऐलान तो हुआ था कि घर इनको मिलेंगे, अब भी अगर

0: अगर है कि मजदूर दिवस है, साधन नहीं है कोई भी, भरने हैं कई पेट, एक टोकरी है सर है कि मजदूर दिवस है, हाथों में फावड़े हैं यति रोज की तरह, उनको कहाँ खबर है कि मजदूर दिवस है।
1: सच में ये गजल दिल को छू गई। ओम प्रकाश यति ने बहुत सादगी से मजदूरों की असलियत दिखा दी। हम मनाते रह जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनका दिन कब आया और कब चला गया।
0: हमारे बीच स्टूडियो में साधना डी मौजूद है, जो बुट के जीवन की एक कहानी से रूबरू करवाएंगी। तो सुनते हैं उनकी जुबान से एक कहानी।
2: तो मैं भी तो यही प्रतीक्षा कर रही थी कि कब तुम बच्चे मुझे कहानी सुनाने को बोलोगे। तो चलो मैं सुनाती हूँ आज एक कहानी, और वह है बुद्ध के जीवन की एक कहानी। तो भगवान बुद्ध का एक भक्त था, जो उनका चचेरा भाई भी था। वह एक प्रतिभाशाली और अत्यंत समर्पित व्यक्ति था। आरंभ में बुद्ध का संघ यानी कि समुदाय काफी छोटा था, लेकिन समय के साथ वह बढ़ता ही गया। इस प्रकार बुद्ध के निकट के भक्त अधिक अधिकार भाव रखने लगे, और उनके चचेरे भाई को लगा कि बुद्ध उसके स्वामित्व में है, जबकि बुद्ध किसी के स्वामित्व में तो हो ही नहीं सकते। आप यह नहीं कह सकते कि आप सागर के मालिक हैं। इसी कारण क्या हुआ कि कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हुई और उनके चचेरे भाई ने बुद्ध के विरुद्ध रुख अपना लिया। जब कुछ लोगों की अपनी राय या नकारात्मकता होती है, तो कुछ और लोग भी उनका साथ देने लगते हैं। तो फिर क्या, बुद्ध के इस चचेरे भाई और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर एक बड़ा सा समूह बना लिया। और एक दिन जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, तो वह पहाड़ी पर चढ़ गया और वहां से एक बड़ा सा पत्थर बुद्ध की ओर धकेल दिया। फिर क्या थी, इससे बुद्ध की तो जान भी जा सकती थी ना। लेकिन क्या हुआ पता है? लेकिन पत्थर बुद्ध से कुछ सेंटीमीटर दूर ही जाकर रुक गया। तो अन्य जो वफादार शिष्य थे, बहुत क्रोधित हो गए और बहुत परेशान भी हो गए। वे उन्हें दंडित करना और सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें वहीं रोक दिया। बोले, रुको, और बस थोड़ा सा मुस्कुरा दी। और उन्होंने क्या कहा पता है बच्चों? उन्होंने कहा कि यह कर्म है, तुम कुछ मत करो, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। तो यह कहानी हमें यही सिखाती है कि आप बस कर्म करो और फल की चिंता बिल्कुल भी ना करो।
0: वाह, बड़ी सुंदर कहानी थी। पर अब समय सीमा को देखते हुए हमारे श्रोताओं से विदा कहने का समय आ गया है।
1: तो प्यारे श्रोताओं, आप भी हमारे इस बाल किलकारी के कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कविता, कहानी या गीत इस कार्यक्रम में शामिल हो, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9142432658।
0: जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 9142432658।
1: बाल किलकारी होगा और मजेदार।
0: मिलते हैं अगले रविवार,
1: जिसमें होगी नई सोच, नया विचार।
0: इस कार्यक्रम को दे ढेरों प्यार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक प्रभु राम।
1: वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता।
0: सुनिए प्रतिदिन प्रातः 6:35 पर संत तुलसीदास कृत रामचरितमानस गान।
2: भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभिष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं।

0: ना सफाई।
1: स्वच्छता की आवाज आकाशवाणी के साथ।
0: ओ भाई सफाई, ओ बहना सफाई।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बाल कार्यक्रम बाल मंडली।

0: नन्हे प्यारे बच्चों को रेडियो दीदी गुंजन कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आज के बाल मंडली कार्यक्रम में सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जीवन में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। जीवन में आगे बढ़ना है, सपने पूरे करना है, उसके लिए पढ़ाई जरूरी है। और ये तभी संभव है जब हम पढ़ाई पूरे मेहनत और लगन से करते हैं। बच्चों, मेहनत जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है और अपने सपने को पूरा करता है। इसलिए हमें न केवल मेहनत करनी चाहिए बल्कि दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करना चाहिए। बच्चों, मेहनत का सम्मान करने का मतलब है कि हम हर किसी के मेहनत को समझें, उसकी कदर करें, उसका मजाक ना उड़ाएं। हमारे आसपास बहुत से लोग अलग-अलग काम करते हैं, जैसे किसान खेत में मेहनत करता है, मजदूर, शिक्षक, डॉक्टर, सफाई कर्मी, हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर मेहनत करता है और समाज को बेहतर बनाने में योगदान देता है। हमें कभी भी किसी के काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। जब हम किसी की मेहनत की सराहना करते हैं तो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अगर घर में बच्चे कुछ काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो माता-पिता को भी चाहिए कि बच्चे की तारीफ करें। जैसे बच्चे अपनी किताबें व्यवस्थित रखता है, अपनी बोतल में पानी भर के रखता है, खिलौने समेट कर रखता है, तो उसकी तारीफ जरूर करें, क्योंकि ये सब काम में भी थोड़ी मेहनत लगती है और इससे बच्चे मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। मेहनत करने वाला इंसान हमेशा आगे बढ़ता है और हमें अपनी और दूसरों की मेहनत का सम्मान करना चाहिए। और बच्चों, आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, कादम्बनी। कादम्बनी, आप अपने दोस्तों को अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मेरा नाम कादम्बिनी प्रियंवदा है। मैं कक्षा 6 में हूँ और मैं आज बाल मंडली के लिए आई हुई हूँ।
0: तो कादम्बनी, आप अपने दोस्तों की मदद करती हैं?
1: हाँ, मैं अपने सारे दोस्तों की मदद करती हूँ।
0: अगर कोई, जैसे आपके कोई दोस्त हैं या कोई व्यक्ति, अगर कोई आपके सामने दिख रहा है, कोई मुसीबत में है, आपसे वो हेल्प मांगता है, तो आप कैसे उसकी मदद कर सकती हैं, बताइए।
1: उन्हें जो काम में मदद चाहिए उसे करके, या फिर उनकी किसी और तरीके से मदद करके।
0: हाँ, क्योंकि मदद करनी अच्छी बात है ना,
1: हाँ
0: और हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। रेड क्रॉस के बारे में पता है आपको,
1: हाँ
0: बताइए।
1: रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र मानवीय संगठन है जो युद्ध और प्राकृतिक आपातकालीन स्थितियों में बिना

0: किसी भेदभाव के, घायलों और बीमारों को जरूरतमंद सहायता प्रदान करता है।
1: हाँ, सही कह रही हो कादम्बिनी। रेड क्रॉस एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जरूरतमंद और पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए काम करती है। इसका मुख्य काम है बीमार, घायल और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना।
0: जी।
1: ये संस्था पूरी दुनिया में मानव सेवा के लिए जानी जाती है और रेड क्रॉस का चिन्ह सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग का क्रॉस होता है, जो शांति और सहायता का प्रतीक है। बच्चों, रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनॉट ने की थी। उन्होंने युद्ध के समय घायल सैनिकों की हालत देखकर ये संस्था शुरू की थी, ताकि सभी को बिना भेदभाव के सहायता मिले। कादम्बिनी, ये संस्था दुनिया के लगभग हर देश में काम कर रही है और रेड क्रॉस के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि ये संस्था बाढ़, युद्ध, भूकंप और अन्य आपदाओं के समय लोगों को भोजन, पानी, दवाइयाँ और आश्रय प्रदान करती हैं। जैसे अभी आपने कुछ देर पहले बताया ना रेड क्रॉस के बारे में। और इसके अलावा ये रक्तदान शिविर भी आयोजित करती है और लोगों को प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड की जानकारी देती है। रेड क्रॉस का सबसे खास बात ये है बच्चों, किसी भी धर्म, जाति या देश का हो, ये बिना भेदभाव के सभी की मदद करती है और इसका उद्देश्य केवल मानवता की रक्षा करना है और सेवा करना है। और बच्चों, रेड क्रॉस एक प्रेरणा का स्रोत है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, दयालु बनना चाहिए। सच बच्चों, रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जो हमें मानवता और सेवा का महत्व सिखाती है। हमें इसके आदर्शों को अपनाकर समाज में अच्छे कार्य करने चाहिए और हमेशा मदद के लिए आगे आने चाहिए।
0: जी दीदी,
1: अगर आपके भी आसपास कोई लोग मदद मांगते हैं तो आपको हम तैयार रहना चाहिए हमेशा मदद के लिए, करती है ना?
0: जी दीदी,
1: अपने दोस्तों को आप क्या कविता या कुछ कहानी क्या सुनाने जा रही हैं?
0: मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ।
1: सुनाइए।
0: फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पत्तों से सीखो दुख में धीरज धरना, दीपक से सीखो जितना हो संगे अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में पढ़ना, और धुएं से सीखो ऊंचे ही पर चढ़ना।
1: वाह, बहुत सुंदर। तो हम हर चीज से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, पेड़ों से, जानवर से, प्रकृति से, है ना? क्योंकि प्रकृति में भी देखिए, हमें सूरज, चांद, पेड़ बहुत कुछ देती है।
0: हाँ।
1: और उसके बदले में हमें भी अपनी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए।
0: जी जी जी
1: आपके घर में कौन कौन है?
0: मेरे घर में मेरी मम्मी, पापा और मेरे भाई बहन है।
1: अच्छा, और दादा, दादी, नाना, नानी?
0: हाँ, वो सारे लोग भी हैं।
1: हाँ, तो आप उनसे बात करती हैं?
0: हाँ,
1: कैसा लगता है उनसे बात करके?
0: उनसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगता है।
1: कहते हैं ना कि बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे बुजुर्ग घर के नींव होते हैं, है ना? तो
0: जी
1: आप
0: जी
1: कैसे उनकी सेवा करती हैं?
0: वो अगर किसी चीज के लिए मदद मांगते हैं या फिर उन्हें कुछ चाहिए होता है तो मैं उन्हें ला के देती हूँ, या फिर कुछ कार्य करने में उनकी मदद करती हूँ।
1: अच्छा, बहुत अच्छा काम करती हैं कि अपने दादा या दादी हैं, नाना नानी, जो भी घर में बुजुर्ग हैं या जो बड़े सदस्य, जो बड़े पापा हैं, ताई हैं, उनकी आप कुछ हेल्प करती हैं या कभी जरूरत उनको पड़ता है आपसे मदद के लिए, तो आप हमेशा तैयार रहती हैं, ना? तो दादा दादी से कहानियां भी सुनती होंगी?
0: जी दीदी, मैं उनसे कहानियां सुनती हूँ।
1: बच्चों, बुजुर्गों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। जब वे उम्र के कारण कमजोर हो जाते हैं तो उन्हें सहारे और प्यार की जरूरत होती है। ऐसे समय में हमें उनकी मदद करनी चाहिए, जैसे उनके साथ समय बिताना, उनकी बातें सुनना और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना।
0: जी दीदी,
1: बच्चों, हमारे माता पिता और दादा दादी ने हमें बचपन से प्यार और देखभाल की है। अब हमारी बारी है कि हम उनका ख्याल रखें और उन्हें खुश रखें। उनसे हमें जीवन में अच्छे संस्कार और अनुभव सीखने को मिलते हैं। बच्चों, बुजुर्ग हमारे परिवार की नींव होते हैं। वे हमेशा हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं और हमारा भला चाहते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में खुशियां और सफलता मिलती हैं। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए और उनकी बातों को ध्यान से भी सुननी चाहिए। जब किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए।

0: कि जैसे उन्हें पानी देना है, दवाई लाकर देना है या उनके साथ समय बिताना है। बच्चों बुजुर्ग हमारे जीवन का आशीर्वाद है और हमें हमेशा उनका आदर और सेवा करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे परिवार की सबसे बड़ी ताकत है ना कादम्बनी?
1: जी दीदी, मैं अभी आप सभी को दादाजी के बारे में कविता सुनाने जा रही हूँ। सीधे साधे नेक हमारे दादाजी, लाखों में एक हमारे दादाजी, हमें खिलाते लड्डू पेड़ा रसगुल्ला टॉफी बिस्कुट केक हमारे दादाजी, शेयर कराए कहे कहानियाँ संग खेले करते काम अनेक हमारे दादाजी, चाहे जितना खेले हम मचाए हम पन्ना लगाते ब्रेक हमारे दादाजी, पापा मम्मी डांट मार गलती पर माफ कर मिस्टेक हमारे दादाजी।
0: हाँ, तो दादाजी हमें कितना कुछ करते हैं ना, दादा दादी ये घर के जितने भी बुजुर्ग होते हैं, अगर हमसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं तो वो हमें मम्मी पापा के डांट से बचाते हैं, है ना।
1: हाँ
0: और बहुत सारी चीजें हमें खाने को देते हैं, बाजार में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें खिलाते हैं।
1: जी दीदी,
0: और आपकी क्या क्या हॉबी है, आप अपनी
1: मेरी
0: हॉबी के बारे में बताइए अपने दोस्तों को।
1: मेरी हॉबीज है चेस और क्रोशे। मैं चेस खेलना सीख रही हूँ एंड मैंने क्रोशे से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप चेस खेलती हैं, तो चेस तो एक तरह का हमारा एक दिमागी खेल है, इससे हमारा दिमाग चुस्त भी रहता है और तेज भी होता है।
1: जी दीदी,
0: खाली समय में आप क्या करना आपको अच्छा लगता है?
1: मुझे मेरे खाली समय में क्रोशे करना अच्छा लगता है।
0: क्रुशिया से आप क्या क्या बनाई हैं?
1: मैंने अब तक एक स्कार्फ बनाया, एक टोपी और भी बहुत सारी चीज़ें
0: अच्छा, ये आपको कौन सिखाया?
1: मैंने खुद से सीखी।
0: अच्छा, खुद से सीखी आपने, अरे वाह बढ़िया, वो तो बहुत अच्छी बात है। और सीखना भी चाहिए क्योंकि खाली समय में हमें अपना समय का सदुपयोग करना चाहिए, है
1: जी
0: ना।
1: दीदी,
0: और बच्चों, हॉबी यानी शौक वो काम होता है जिसे हम अपने खाली समय में खुशी के लिए करते हैं, है ना। ये कोई पढ़ाई का काम नहीं होता बल्कि हमें अच्छा लगता है ना,
1: जी दीदी,
0: और इसलिए हम करते हैं। जैसे एक पेंटिंग है, किसी को जैसे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है और किताबें पढ़ना। हॉबी हमें खुश रखती है और हमें सोच को बेहतर बनाती है। ये हमें रोजमर्रा की पढ़ाई और काम के तनाव से दूर रखती है। बच्चों, जब हम अपनी पसंद का काम करते हैं तो हमारा मन खुश रहता है और हम तरोताजा महसूस करते हैं। हॉबी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारे अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर लाती है। धीरे धीरे हम अपने शौक में निपुण भी हो जाते हैं और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। कई बार हॉबी आगे चलकर हमारे करियर का रास्ता भी बन जाता है। बच्चों, हॉबी हमें रचनात्मक और सकारात्मक बनाती है। यह हमें नई चीजें सीखने का अवसर देती है और हमारा समय भी सही तरीके से उपयोग होता है। आज के समय में मोबाइल और टीवी में ज्यादा समय बिताने की जगह आप हॉबी पर ध्यान दीजिए और इसका आनंद उठाइए। आपको अच्छा लगता है ना, जो काम आपको करने में अच्छा लगता है उसमें आनंद भी मिलता है।
1: जी दीदी,
0: और आपको कौन कौन सा खेल पसंद है या खेलना पसंद है?
1: मुझे बैडमिंटन, क्रिकेट और भी कई सारे खेल पसंद है।
0: अच्छा, तो गेम कई प्रकार के होते हैं ना।
1: जी दीदी,
0: कई गेम होते हैं आउटडोर गेम्स जो हम घर के बाहर खेलते हैं, है
1: दीदी
0: ना, और कई गेम्स जो होते हैं वो घर के अंदर हम खेलते हैं। इंडोर गेम्स के बारे में आप दोस्तों को बता सकती हैं कि कौन कौन से गेम होते हैं?
1: इंडोर गेम्स वैसे गेम्स होते हैं जिन्हें हम घर पे खेल सकते हैं। इंडोर गेम्स के उदाहरण में चेस, लूडो, कैरम और भी कई सारे खेल हैं।
0: तो आपको कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है?
1: मुझे मेरे दोस्तों के साथ लूडो, चेस और कैरम ये सारे खेल खेलने अच्छे लगते हैं।
0: अभी गर्मी की छुट्टी भी आ रही है ना, तो
1: जी
0: गर्मी
1: दीदी,
0: की छुट्टी में हम लोग बाहर खेलने नहीं जा सकते, गर्मी बहुत रहती है, तबीयत भी खराब हो सकती है। तो ऐसे बहुत से कई इंडोर जो गेम्स जो आपने बताया है, लूडो है, चेस भी आप घर में खेल सकती हैं, सांप सीढ़ी का खेल है ना, ऐसे कई गेम्स है जो हम घर में भी खेल सकते हैं।
1: जी दीदी,
0: बच्चों, ये खेल खासकर तब खेले जाते हैं हम जब बाहर खेलना संभव ना हो, जैसे बाहर बारिश हो रही है या गर्मी या ठंडा ज्यादा हो रहा है ना। इंडोर गेम्स बच्चों बड़ों दोनों के लिए मनोरंजन और सीख का अच्छा माध्यम है। इंडोर गेम्स के कई प्रकार होते हैं, जैसे कैरम है, शतरंज है, लूडो है, सांप सीढ़ी, पजल और ताश। ये खेल खेलने में आसान भी होते हैं और कम जगह में भी खेले जाते हैं।
1: जी जी जी
0: इन खेलों का सबसे बड़ा फायदा ये होता है,

0: ये हमारे दिमाग को तेज करता है। जैसे आपने बताया कि आप चेस यानी शतरंज खेलती हैं, पजल जैसे खेल भी जैसे सोचने की शक्ति को बढ़ाता है ना। जैसे पजल हम खेलते हैं, कुछ स्पेलिंग बनाते हैं, तो उसमें हमें सोचना पड़ता है और हमें सही निर्णय लेना भी सिखाता है। इसके अलावा ये खेल हमें ना धैर्य और एकाग्रता भी सिखाता है। अब किसी चीज़ को हम खेलते हैं तो हम बहुत सोच समझ कर खेलते हैं, ध्यान से खेलते हैं, है ना।
1: जी
0: उससे में
1: जी
0: हमारा ध्यान भी नहीं भटकता है। और

0: हम बहुत सोच समझ कर खेलते हैं, ध्यान से खेलते हैं, है ना।
1: ठीक
0: उससे
1: है
0: भी
1: जी।
0: हमारा ध्यान भी नहीं भटकता है। और इंडोर गेम्स परिवार के साथ समय बिताने का एक अच्छा तरीका भी होता है। जब हम अपने परिवार या दोस्तों के साथ खेलते हैं तो आपसी प्यार और संबंध भी मजबूत होते हैं। इससे हमें खुशी और आनंद मिलता है। इंडोर गेम्स मनोरंजन के साथ साथ सीखने का भी अच्छा माध्यम है। हमें अपने खाली समय में इन खेलों को जरूर खेलना चाहिए और इसका आनंद लेना चाहिए। लेती है ना?
1: जी।
0: और क्या अपने दोस्तों को सुना रही हैं? कुछ ऐसी बातें अपने दोस्तों को बताना चाहती हैं?
1: हमें कहीं भी हम कोई खेल खेल रहे तब उसमें ध्यान से खेलना चाहिए
0: हाँ।
1: और चीटिंग नहीं करनी चाहिए, और अगर हमारे साथ कोई छोटे खेल रहे तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए।
0: हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। बच्चों, एक प्यारी सी कविता आपको सुना रही हूँ, पत्तों का खेल। तरह तरह के पत्ते लाकर आओ खेले खेल, तरह तरह के पत्ते लाकर आओ खेले खेल। मैं पीपल का कोमल कोमल चिकना चिकना पत्ता लाऊं, मैं पीपल का कोमल कोमल चिकना चिकना पत्ता लाऊं, और बनाऊं उसका बाजा पी पी पी पी उसे बजाऊं, और बनाऊं उसका बाजा पी पी पी पी उसे बजाऊं। मेरे पीछे तुम सब चलना बन जाएगी रेल, मेरे पीछे तुम सब चलना बन जाएगी रेल। तरह तरह के पत्ते लाकर आओ खेले खेल। लाऊं मैं बरगद का पत्ता उतना मोटा जितना गत्ता, लाऊं मैं बरगद का पत्ता उतना मोटा जितना गत्ता। इस पत्ते का पत्र बनाकर भेजूंगा सीधे कलकत्ता, इस पत्ते का पत्र बनाकर भेजूंगा सीधे कलकत्ता। बरगद के पत्ते की चिट्ठी ले जाएगी मेल, बरगद के पत्ते की चिट्ठी ले जाएगी मेल। तरह तरह के पत्ते लाकर आओ खेले खेल। आह नीम की पत्ती भाई, अरे भाई क्या तुमने खाई। आह नीम की पत्ती भाई, अरे कभी क्या तुमने खाई। इसकी टहनी दातुन बनती और छाल से बने दवाई, इसकी टहनी दातुन बनती और छाल से बने दवाई। इस नीम के फल से निकले कड़वा कड़वा तेल, इस नीम के फल से निकले कड़वा कड़वा तेल। तरह तरह के पत्ते आओ खेल खेले खेल, तरह तरह के पत्ते लाकर आओ खेले खेल। तो खेलना बहुत ही जरूरी है बच्चों, अपने दोस्तों के साथ तरह तरह के खेल खेलिए, खेल से आनंद उठाइए और खुशियां मनाइए। और आपको कहानी आती है?
1: मैं अपने दोस्तों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है माँ की ममता।
0: सुनाइए।
1: आम के पेड़ पे सुरीली चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे इसलिए सुरीली उन्हें खाना लाकर खिलाती थी। एक दिन तेज बरसात हो रही थी और बच्चों को जोर से भूख लगने के कारण वो जोर जोर से रो रहे थे। सुरीली परेशान हो गई कि इतनी तेज बारिश में खाना कहाँ से लाएं। लेकिन बच्चों को भूख से तड़पता देख उसने हिम्मत की और पंडित जी के घर पहुंची। वहां आंगन में रखे चावल देखकर उसने चावल के कुछ दाने अपने मुंह में भर लिए और झटपट घोंसले में लौट आई। सुरीली ने अपने बच्चों को चावल खिलाया, उनका पेट भर गया और वे चुपचाप खेलने लगे।
0: तो ये है कहानी माँ की ममता। बच्चों को भूख से तड़पता देखकर माँ कहीं से भी खाना ला के उन्हें दी, है ना। इस कहानी से क्या हमें सीख मिलती है कि माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं, वो हर विपत्ति में अपने बच्चों का ख्याल रखती है।
1: जी।
0: आपको पता है 7 मई को किसका जन्मदिन मनाते हैं? 7 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन है ना।
1: जी
0: वे
1: जी जी
0: भारत के एक महान कवि, लेखक और विचारक थे। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में हुआ था। वे बचपन से ही प्रतिभाशाली थे और उन्हें कविता, संगीत और लिखने का भी बहुत शौक था। टैगोर जी ने कई सुंदर कविताएं, कहानियां और गीत लिखे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन भी लिखा और इसके अलावा उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया और शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना की, जहां बच्चों की प्रकृति के बीच पढ़ाया जाता था। टैगोर जी बहुत ही सरल और महान विचारों वाले व्यक्ति थे। वे शांति, प्रेम और मानवता में विश्वास करते थे। लोग उन्हें सम्मान से गुरुदेव भी कहते थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ

0: टैगोर एक महान लेखक और शिक्षक थे। उनके विचार और रचनाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं।
1: जी।
0: तो अभी गर्मी की छुट्टी भी कुछ दिनों के बाद अब आने वाली है,
1: जी।
0: तो आप इन छुट्टियों में क्या करने का आपका मन है?
1: मैं इन छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ खेलूंगी और अपने नाना नानी से मिलने जाऊंगी।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और नाना नानी के साथ मिलके थोड़ी सी उनकी बातें सुनिएगा, उनके साथ खेलिएगा, उनके साथ समय बिताइएगा, उनको भी अच्छा लगता है ना? बच्चों, एक कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं। कहानी का शीर्षक है संगत का असर। बहुत समय पहले की बात है, एक दूर देश का राजा जंगल में शिकार करने निकला। वहां कुछ सैनिकों के साथ था, लेकिन शिकार का पीछा करते करते वो अकेले बहुत दूर निकल आया। घने जंगल में राजा भटक गया। एक पेड़ के नीचे पहुंचते ही उसने एक आवाज सुनाई दी, राजा आया, राजा आया, लूटो लूटो, जल्दी लूटो। उसने ऊपर देखा तो पेड़ पर बैठा तोता डाकुओं को बुला रहा था। कोई डाकू वहां आता इससे पहले ही राजा वहां से भाग निकला। वह एक कुटिया के पास पहुंचा। कुटिया के दरवाजे पर उसे एक और आवाज सुनाई दी, आइए महाराज, हमारी कुटिया में आपका स्वागत है। वह आवाज एक तोते की थी। राजा कुटिया में गया। कुटिया में बैठे साधु को उसने प्रणाम किया। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि एक ही जाति के दो पक्षियों में इतना अंतर कैसे हो सकता है। उसने साधु से ये बात पूछी। साधु ने राजा को बताया, कुछ समय पहले इसी जंगल में तोतों का एक जोड़ा रहता था। उसके दो बच्चे थे। एक दिन जोरदार तूफान आया। उस तूफान में उस जोड़े की मृत्यु हो गई। उनके दोनों बच्चों में से एक जंगल में रहने वाले डाकुओं के पास और दूसरा इस आश्रम में पहुंच गया। डाकुओं ने उस तोते को अपनी तरह बना दिया। अब वह चोरी डकैती में उनका साथ देता। दूसरा तोता जो कुटिया में आया था उसने ही आपका स्वागत किया। राजा समझ गया कि यह सब संगत का असर है। सच बच्चों, हमें हमेशा अच्छी संगत करनी चाहिए। अगर हम अच्छे दोस्त बनाएंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो हम भी एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, एक अच्छा बच्चा बन सकते हैं। इसलिए अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए।
1: जी।
0: जब दो दोस्त मिलते हैं, कुछ मजाक करते हैं, तो आपको हंसी आती है। हंसना
1: जी।
0: तो अच्छी बात है, हंसना भी जरूरी है, क्योंकि हंसने से हम खुश रहते हैं, है
1: जी
0: ना?
1: जी जी
0: आजकल इतना टेंशन है ना, पढ़ाई है, एग्जाम देना है, तो इसमें थोड़ा सा हंस लेते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता
1: जी जी जी
0: है ना? और जीवन में बच्चों हंसना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ खुशी दिखाने का तरीका नहीं, बल्कि ये हमारे शरीर और मन के लिए भी एक अच्छा व्यायाम है। जब हंसते हैं तो हमारे शरीर की कई मांसपेशियां काम करती है और हमें अंदर से अच्छा महसूस होता है। बच्चों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग तनाव में रहते हैं, ऐसे में हंसी हमें राहत देती है। बच्चों, हंसने से कई फायदे हैं। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है, तनाव को कम करती है और हमें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है। इसके अलावा हंसी से हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ हंसते हैं तो आपसी प्यार और विश्वास भी बढ़ता है।

0: बच्चों, हर साल मई के पहले रविवार को वर्ल्ड लाफ्टर डे यानी हंसी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को ये बताना कि खुश रहना और हंसी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों, हंसी एक प्राकृतिक दवा के रूप में काम करती है। इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हंसी से हमारे दिल दिमाग को आराम मिलता है और हम बेहतर महसूस करते हैं। बच्चों, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि हंसी ही एक ऐसा व्यायाम है जो हमें स्वस्थ, खुश और सकारात्मक बनाता है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और दूसरों को भी खुश रखते रहिए। तो बच्चों, घड़ी की सुई अब इशारा कर रही है कि अब वक्त हो गया है यहाँ से जाने का। तो बच्चों, खूब पढ़िए, खूब खेलिए और हमेशा खुश रहिए। इसी के साथ अब गुंजन दीदी आपसे विदा चाहती है। जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे बाल कार्यक्रम बाल मंडली। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश,
2: फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कॉल्स आ रहे हैं, लेते हैं आपका कॉल। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: हेलो सर, नमस्ते। बड़वा
2: जी नमस्कार, कैसे हैं?
3: मध्य प्रदेश से नम्रता पांडे बोल रही हूँ सर।
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है नम्रता जी, कैसे हैं आप?
3: हाँ हम बढ़िया है सर, आप कैसे हो?
2: बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
3: गर्मी बहुत पड़ रही है।
2: आपके तरफ
3: हाँ सर, बहुत गर्मी पड़ रही है।
2: तो गर्मी का मजा लीजिए, इसमें बहुत रसदार फल मिलते हैं।
3: हाँ, अभी
2: तो
3: आम का सीजन भी आ रहा है।
2: जी आ रहा है।
3: आम का मजा और संतरे आम।
2: जितने रसदार फल हैं सारे उपलब्ध हैं। प्रकृति
3: जी
2: का
3: सर,
2: बहुत ही अच्छा संतुलन है कि भाई जब
3: हाँ
2: गर्मी में सब सूख रहा है तो हमें रसदार फल उपलब्ध हो रहे हैं।
3: सावधानी भी रखने की जरूरत है इस महीने में गर्मी
2: बिल्कुल
3: के।
2: बिल्कुल। वैसे क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, क्या कर रहे हैं बताइए।
3: हाँ सर, ठंडा पी रहे हैं, नींबू नींबू का रस है, कच्चे आम का रस है, नारियल
2: अच्छा
3: पानी है, ये
2: जी,
3: सब पी रहे हैं सर अभी। जी
2: हाँ, शरीर में तरलता बनाए रखने के लिए सब जरूरी है।
3: जी
2: तो सब ठीक है आपके यहाँ?
3: जी सर, सब ठीक है, बढ़िया।
2: जी बढ़िया है। तो एक बढ़िया वाला गाना भी आपकी तरफ से हो, क्या सुनेंगे?
3: हाँ सर, मैं सुनूंगी सर, सोना रे तुझे कैसे मिलूं, कैसे कैसे मिलूं। फिल्म का नाम तो पता नहीं है सर मुझे, लक्ष्मी पंडित और मोहम्मद रफी की आवाज में है।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: नमस्ते सर।
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम जय हिंद तेंदुआ नबी नगर से गिरेंद्र सिंह।
0: स्वागत है गिरेंद्र जी। बहुत बढ़िया, सब कुछ आपका चल रहा है?
1: हाँ सर, खेती बाड़ी काम निपट गया है। अभी खेत खाली है, थोड़ा आराम के पल है और बैठे हैं घर घर।
0: गेहूं की फसल ली आपने या कोई और?
1: गेहूं का फसल था, थोड़ा सरसों भी चना भी सब कट गया, अनाज निकल गया घर पर।
0: जी, ठीक ठाक फसल निकली आपकी?
1: जी हाँ सर, बहुत बढ़िया निकल का फसल था, बहुत
0: आह,
1: अच्छा।
0: क्या बात है, मन खुश हुआ सुनकर। तो अच्छा लाभ मिलेगा इस बार आपको।
1: जी हाँ सर, बहुत अच्छा।
0: ठीक है, उसको जल्दी से बाजार तक पहुंचाइए, आमदनी आपको हो, बहुत बढ़िया दाम मिले। हमारी शुभकामना आपको। और अब ये
1: धन्यवाद।
0: जो खेत है आपका, कितने दिनों तक ऐसे ही परती पड़ा रहेगा?
1: जुलाई में फिर आपका खरीफ फसल का खेती शुरू करेंगे जुलाई से।
0: बारिश होगी तब जोतेंगे,
1: जी
0: तो धान
1: हाँ,
0: वगैरह लगाएंगे ना?
1: जी, मानसून जो बारिश होती है उसके बाद धान का फसल बीज डालेंगे, जुताई
0: आपके
1: करेंगे।
0: आपके नबीनगर में तो नहरों का जाल है, पहले भी हो सकता है?
1: जी हाँ सर, पहले भी होता है, नहर पानी देता है, खेती काम शुरू हो जाता है।
0: जी, तो आपका इलाका तो धान का कटोरा है।
1: जी हाँ सर, बहुत बढ़िया धान। अब गेहूं भी बहुत बढ़िया होने लगा,
0: अच्छा, गेहूं भी बढ़िया होने लगा है,
1: बहुत बढ़िया गेहूं।
0: तो बहुत अच्छा। आप लोग खुशहाल किसान हैं और
1: जी सर,
0: बहुत अच्छी बात है ये कि देश के किसान जो हैं खुशहाल रहें। क्या सुनेंगे आप?
1: चांदनी फिल्म का गाने का बोल है, तेरे मेरे
0: इश्क
1: होठों पे मीठे मीठे गीत मुस्कुरा।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: जी, आपकी आवाज़ नहीं मिली मुझे, फिर से बताएं कौन
1: हेलो
0: कहां से बोल रहे हैं।
1: सर, मैं साहिल बोल रहा हूँ, मुरादाबाद से।
0: साहिल जी मुरादाबाद से, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू सर। आप कैसे हैं सर?
0: जी हम अच्छे हैं, आप अपने बारे में बताइए, अपना परिचय थोड़ा सा और दें, क्या करते हैं बताएं।
1: सर मैं यूपी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से साहिल बोल रहा हूँ
0: जी।
1: और मैं एक स्टूडेंट हूँ।
0: अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं?
1: जी
0: क्या
1: जी
0: क्या पढ़ रहे हैं वैसे?
1: सर, मेरा बीकॉम फर्स्ट ईयर था और इस टाइम पे एग्जाम भी हो चुके हैं।
0: बहुत अच्छा, तो अब थोड़ा फ्री हैं अभी?
1: जी जी फ्री थे तभी कॉल कर रहा था सर आपको।
0: इतनी दूर से हमारा कार्यक्रम सुन लेते हैं आप?
1: जी जरूर सर, संडे को मिलता है 11 से 12। ये हेलो फरमाइश सर बहुत अच्छा लगता है सर। सर
0: जी
1: दूर क्या है, बस फोन का अपना इस्तेमाल कीजिए और न्यूज ऑन AIR ऑन कीजिए, बस कहीं से भी सुन सकते हैं, देश
0: जी,
1: या विदेश या कहीं से भी।
0: तकनीक ने इंसान को बहुत नज़दीक कर दिया है, जोड़
1: जी
0: दिया
1: जी
0: है।
1: ये तो हम सर इंडिया वाले इंडिया में ही सुन सकते हैं और लोग तो विदेश से भी सुनते हैं सर।
0: बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं,
1: जी जी
0: तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे आकाशवाणी के साथ, इस ऐप के साथ, कि कोई भी श्रोता किसी भी प्रदेश में रहकर अपने प्रदेश का गाना
1: जी
0: सुन
1: कहीं
0: सकता
1: भी सुन
0: है।
1: सकते हैं सर।
0: जी तो आप सुन रहे हैं, अच्छा लग

0: जानकर। वैसे और क्या शौक हैं आपके?
1: सर मेरा क्रिकेट खेलने का और पढ़ाई करने का, और ये सर सबसे ज्यादा तो मेरा यही रेडियो सुनने का बहुत शौक है सर। बचपन से ही पापा सुनते थे, भाई सुनते थे, अब मैं सुनता हूँ सर।
0: उन लोगों ने कॉल कभी नहीं किया? आपने ही किया कॉल?
1: जी नहीं सर, कॉल तो लगती नहीं है सर, बड़ी मुश्किल से अभी भी लगी। तो
0: अच्छा,
1: देखो कितना टाइम हो गया, 17 हो रहे हैं, एक फुल 1 बजा था जब से कॉल ट्राई कर रहा हूँ सर मैं।
0: जी अभी हमारे पूरे देश भर के श्रोता इस लाइन पर
1: जी
0: बिजी हैं,
1: सर
0: तो
1: पता
0: ये
1: है।
0: लक की बात है। देखिए, बहुत सारे ऐसे
1: जी
0: श्रोता हैं जिनका कॉल बार बार लग जाता है। मैं गुजारिश करता
1: जी
0: हूँ
1: जी जी
0: हमेशा कि आप थोड़ा अंतराल लेकर कॉल करें ताकि नए श्रोता को भी मौका मिले।
1: सर, एक बजते ही सब सब लोग टूट पड़ते हैं कॉल करने के लिए। बताओ किसकी किस्मत आजमाती है, वही उसको पता चलता है सर।
0: जी, इसलिए मेरी गुजारिश आज फिर से एक बार कि भाई नए को मौका दें। आप लोग बहुत दफे कॉल पर आ
1: सर
0: चुके हैं,
1: जी सर
0: तो इस कार्यक्रम में जब नए श्रोता जुड़ते हैं तो हमें भी बड़ी खुशी होती
1: बहुत
0: है।
1: अच्छा लगता है सर,
0: जी
1: सबकी वार्तालाप सुनने को और गाना सुनने को और सबको क्या चल रहा क्या नहीं सब सुनने को मिलता तो अच्छा लगता सर। कि एक ही लोग
0: जी
1: आ जाए हर हफ्ते तो फिर सही
0: अच्छा लग
1: सर,
0: रहा है आपको? बहुत दिनों के
1: बहुत
0: बाद
1: अच्छा लग रहा
0: आपने
1: सर।
0: ट्राई
1: जी
0: किया
1: जी
0: और कॉल लग गया आपका।
1: सर, कॉल लग गया, बहुत अच्छा लग रहा सर। इतने प्रयास करने के बाद कॉल लग गया, बहुत अच्छा लग रहा सर। मेहनत रंग लाई है,
0: जी
1: नहीं तो मुझे तो उम्मीद ही नहीं लग रही थी अब तो कॉल नहीं लगेगा।
0: नहीं, देखिए प्रयास जो है वो आपका सफल रहा। कोशिशें कामयाब होती हैं, आपको सतत
1: जी
0: प्रयास करते रहना चाहिए और लगे रहना चाहिए। वैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही माकूल भी है ये वाक्य
1: जी जी
0: कि आप किसी भी क्षेत्र में लगे रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी।
1: जी जरूर सर। मूवी रहेगी बाहर आने तक, और उसमें गाना सर मोहब्बत इनायत करम देखते हैं।

0: हम मुकेश कुमार सर बोल रहे हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से।
1: जी मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, कैसे हैं आप?
0: हम सर ठीक हैं। 42 से 43 डिग्री गर्मी का टेम्परेचर है और स्कूल तो बच्चे लोगों का बंद है, तो इस मौसम में सोचे आज आपसे बात कर ले, बुधवार है।
1: अच्छा, क्या आपका ऑफिस तो नहीं बंद होगा?
0: नहीं नहीं ऑफिस तो सर वो तो गवर्नमेंट है तो चलता रहेगा कंटिन्यू।
1: 42-43 डिग्री तापमान हो गया आपके मध्य प्रदेश में?
0: हाँ सर।
1: और विद्यालय भी बंद हो गए, तो आने वाले दिनों में तो तापमान और बढ़ेगा। मेरा जैसा मानना है, ख्याल है कि जून में और तापमान बढ़ेगा, तो विद्यालय कितने दिन तक बंद रखा जाएगा?
0: मतलब 20 जून 22 जून 25 जून, मतलब जून लास्ट तक एंड तक जा सकता है।
1: ये लगभग लगभग 2 महीने बंद हो जाता है?
0: हाँ 2 महीने पर बंद हो जाता है। यहाँ क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी रहता है, उमस भी उतनी ज्यादा है।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो ये सब प्रॉब्लम तो है सर।
1: ऐसे बिहार में तो विद्यालय बहुत ज्यादा है, तो सरकारी 22 दिन का शेड्यूल रहता है, प्राइवेट स्कूल 1 महीने के लगभग बंद होते हैं।
0: हाँ सर
1: जी, हमारे यहाँ तो विद्यालय अभी मई में भी चलेंगे, हालांकि यहाँ भी बहुत गर्मी हो गई है अभी।
0: हाँ हाँ हाँ सर,
1: तो ठीक है, गर्मी से बचाव जरूरी है और बच्चों का ध्यान रखना तो खासकर जरूरी है।
0: हाँ सर।
1: जी बच्चे सब घर पर ही रह रहे हैं अभी?
0: हाँ बच्चे उच्चे घर पे हैं, घर पे ही ट्यूशन उशन पढ़ रहे हैं। हम तो ड्यूटी जा रहे हैं तो शाम में आते हैं तो हम भी पढ़ाते हैं, बाकी ट्यूशन पढ़ाने यहीं पार्टर में आती है मैम, वो पढ़ाती है बच्चे लोगों को।
1: अच्छा जी।
0: हाँ सर
1: पढ़ाई जारी है, चलिए बहुत अच्छा है। शाम का वक्त मिल जाता है तो बच्चे पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत।
0: हाँ सर पढ़ाई लिखाई सब जारी है और आपके कार्यक्रम का भी आनंद हम उठा रहे हैं। डीटीएच भी लगाए हैं, उस पर भी सुनते हैं और अपना मोबाइल ऐप पर भी सुनते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोग का रहता है पटना केंद्र का।
1: धन्यवाद, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं।
0: हाँ सर।
1: और परिवार के साथ सुन रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। डीटीएच घर पर लगा होगा?
0: हाँ सर
1: जी। तो आप बताइए क्या सुनेंगे आज?
0: कुली नंबर 1 फिल्म का पाँव जले हो सैया पाँव जले, जेठ की जो पहाड़ी में पाँव जले, ये गाना है ना कुली नंबर 1 फिल्म का।

0: जी नमस्कार, स्वागत
1: हेलो।
0: है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार सर
0: जी कौन, कहाँ से?
1: जी, मैं रविंद्र कुमार रवि, गांव कमरगामा, जिला मधेपुरा से बोल रहा हूँ सर।
0: हाँ, बहुत बहुत स्वागत है रवि जी। बहुत लंबे अंतराल के बाद आपका आज कॉल आया।
1: जी सर, मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ, लगभग 55 साल पहले से मैं सुनते आ रहा हूँ।
0: जी, इस कार्यक्रम में
1: आपकी
0: भी बहुत
1: पसंद
0: हिस्सा
1: जब
0: लिया है
1: चलता
0: आपने।
1: आपकी पसंद जब चलता था उसी समय से मैं आपके कार्यक्रम में हिस्सा लेता हूँ।
0: अच्छा जी, चलिए एक अच्छी और जानकारी मिली आपकी तरफ से कि आप बहुत पुराने कार्यक्रम भी सुना करते थे, तो
1: जी
0: इधर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, लगातार कार्यक्रम तो जा ही रहा है
1: हाँ, सुन रहे हैं सर।
0: जी। इस बीच आपका बहुत लंबे समय तक कॉल नहीं आया, सब ठीक
1: जी
0: है?
1: सर, बहुत दिन तक ट्रैक है। आप आज भी 2 बार कॉल लगा, फिर भी आपने नहीं उठाया। आप, मैं थोड़ा चिंतित था।
0: लगातार मैं कॉल ले रहा हूँ, श्रोताओं से बातचीत कर रहा हूँ, उस बीच आपका भी कॉल आया। देखिए अभी सब क्या हालचाल है अपने घर परिवार में,
1: जी सर, कुशल मंगल है सर।
0: और आप क्या कर रहे हैं कुछ बताइए।
1: मैं तो अभी किसानी कर रहा हूँ।
0: तो इस दोपहरी में क्या है खेत में अभी?
1: अभी मक्का का खेत कटने वाला है,
0: अच्छा,
1: और
0: थोड़ी
1: पटवा होता है हम लोगों का, पटसन
0: अच्छा पटसन
1: वो लगा
0: भी
1: हुआ है।
0: लगाते हैं। अच्छा, ये तो बंगाल की खेती है पटसन।
1: जी, यहाँ भी होता है तो बंगाल का मुख्य रूप से वहाँ का खेती है पटसन, लेकिन यहाँ भी बिहार में भी थोड़ा बहुत होता है।
0: तो उसका जो लाभ जो है या क्वालिटी है वो मिल पाता है जैसे बंगाल में लेते हैं लोग उस तरह से?
1: सब ठीक ठाक रहता है। हम लोगों का नगदी फसल तो वही ना होता है। जी,
0: अच्छा, चूंकि पानी वाला इलाका है क्या आपका भी?
1: पानी वाला इलाका है। यहाँ का मुख्य रूप से फसल मक्का, गेहूं और धान होता है, पटसन होता है। इसमें भी हम लोगों का कोसी क्षेत्र है ना, यहाँ से नेपाल का बॉर्डर साइड है, इसलिए थोड़ा।
0: बहुत अच्छा, तो अच्छी फसल ली।

0: जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। अब बताइए कि क्या सुनवाया जाए आपको।
1: जी सर, लता दीदी और किशोरदा का गीत है, कोरा कागज का ये मन मेरा।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: नमस्कार सर
0: जी कौन कहाँ से बोल रहे हैं बताइए।
1: जी। रमेश राम बोल रहा हूँ, मुजफ्फरपुर।
0: जी रमेश जी, सब ठीक ठाक, बढ़िया। कैसा चल रहा है आपका,
1: हाँ बढ़िया है सर।
0: क्या हो रहा है बताइए।

0: सिलाई हो रहा है। जी
1: लगन का मौसम है,
0: जी
1: आपके ऑर्डर्स बढ़ गए होंगे अब।
0: हाँ, बहुत बढ़ गया।
1: जी तो काफी व्यस्त हैं आप,
0: हाँ, व्यस्त तो रहते हैं सर।
1: तो इधर फोन करने का समय निकाल लिया आपने।
0: जी, आपका रेडियो सुनते हैं तो हम लोग दिन भर समय पास होता है। अब बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान वर्धक आपका रेडियो से प्रोग्राम सुनवाता है।
1: क्या क्या सुन रहे हैं बताइए हमें भी।
0: ये इनसे मिलिए जो एक प्रोग्राम आता है मंगलवार का,
1: हाँ
0: ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है। और इसके बाद हेलो फरमाइश है, खेती गृहस्थी का है, ये सब एक से एक प्रोग्राम आपके यहाँ से जो आप लोगों को बहुत खुश करता है और बहुत ज्ञानवर्धक है। बच्चों सब के लिए ये रविवार के जो 10 बजे 10:15 से आता है वो बहुत अच्छा आता है। मैं बच्चा से वही जो सुनाता हूँ और मोबाइल से दूर रखने का प्रयास करता
1: अच्छा जी, बाल मंडली कार्यक्रम के बारे में कह रहे हैं।
0: जी।
1: हमारे तो कार्यक्रम ऐसे हैं ही जो सभी वर्गों के लिए हैं, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए कार्यक्रम है। अच्छा है कि आप इन कार्यक्रमों को सुन रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं, काम भी अपना कर रहे हैं। क्या सुनने का मन है अभी?
0: पसंद से सर सुना।

0: जी नमस्कार सर।
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
0: हम अवधेश जी रजौली क्षेत्र से बोल रहे हैं
1: जी। अवधेश जी, क्या हाल चाल है रजौली के?
0: हाल चाल ठीक हो गया है, बहुत अच्छा है। बहुत दिन हो गए हैं, तो जरा संगीत सुना दीजिए कुछ।
1: जी, सुनवाने के लिए ही हम हैं। अपनी बात बताइए और क्या क्या कर रहे हैं सब बताइए। गाना तो हम सुनवाएंगे ही।
0: हाँ हाँ अभी तो गर्मी का सीजन है सर, पंखा वगैरह सब बना रहे हैं, लाइन बिजली बत्ती से संबंधित वर्क करते हैं, और गर्मी भी बहुत अच्छा पड़ रहा है इधर अभी।
1: आपके काम का भी रफ्तार बढ़ गया होगा चूंकि इस मौसम में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।
0: पूरा पंखा वगैरह भी सब गिर रहा है बनने के लिए।
1: तो उतना बना पा रहे हैं? ठीक ठाक कस्टमर को
0: हाँ
1: डिलीवर हो जा
0: हाँ
1: रहा है?
0: ठीक है। नहीं नहीं बना रहे हैं, मेरे यहाँ मतलब रिटायर से रिटायर पंखे जो हैं, जो कहीं नहीं बनते वो मेरे यहाँ बनते हैं,
1: ये
0: क्योंकि हम
1: बात है।
0: 30 साल से ही वर्क कर रहे हैं सर।
1: तो ऐसी क्या बात होती है जो कहीं नहीं बन पाता है तो आपके यहाँ बन जाता है?
0: जैसे इसलिए बनता है मेरे यहाँ कि हम इसके अब विशेषज्ञ हैं, पुराना मिस्त्री हैं, और जो ज्यादा दिन से काम करता है तो एक्सटर्नल लगाता है, तब जाके कोई काम पूरा हो पाता है।
1: तो आप खुद ही करते हैं
0: हाँ
1: कि और लोग आपके साथ हैं काम करने वाले रखे हुए?
0: ना और लोग भी हैं, लेकिन मेरे इतना मतलब मेहनत नहीं करते हैं। उन लोग जैसे बना से बना, नहीं बना तो उतना ज्यादा माथा दर्द नहीं करते हैं। मेरे ही आने का मतलब हमको जैसे चैलेंज रहता है सर कि किसी का पंखा है वो मतलब नहीं बना, इधर उधर नहीं बनाएंगे तो बिगा जाएगा। अगर बना देते हैं तो नाम के साथ साथ काम भी होगा तो अच्छा बात है, नाम होगा और पैसा भी मिलेगा।
1: सो बात तो है, ये एक अच्छी सोच है।
0: मैं तो सर जैसे कोई भी काम होता है सर तो चैलेंजिंग है, अच्छा भाई यही चीज है, लोगों नहीं बनाया, मेरे यहाँ आए हैं तो हम व्यवस्था करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है सर सामान व्यवस्था में।
1: बहुत अच्छा, इसका मतलब है कि काम को आप गंभीरता से लेते हैं और उसमें
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: अपना
0: सर।
1: मनोयोग के साथ करते हैं आप। बहुत अच्छी बात है, सभी को अपने अपने काम को इसी तरह करना चाहिए। बहुत अच्छा, अच्छी बात हुई आपसे। एक अच्छा वाला गाना बताइए अब।
0: गाना आप अपने मर्जी से सुना दीजिए, किशोर कुमार की आवाज में कोई बढ़िया सा गाना।

0: जी, हम मोहम्मद कानित रजी पटना से बोल रहे हैं।
1: जी स्वागत है आपका। अपना नाम और पता ठीक से बताइए फिर से।
0: मोहम्मद कानित रजी जी,
1: कुछ और बताइए, आप स्टूडेंट हैं लगता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
0: सिक्स्थ में।
1: सिक्स्थ में, बहुत अच्छा। बड़ा हमें बताएं।
0: पढ़ाई के अलावा कोडिंग करते हैं।
1: कोडिंग, वाह क्या बात है। अभी तो आप छोटे हैं, कोडिंग कर लेते हैं?
0: जी
1: अच्छा, ये सीखा कहाँ आपने, या अभी सीख भी रहे हैं?
0: जी, मैंने अपने पापा से और थोड़ा बहुत ऑनलाइन सीखा।
1: अच्छा, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कोडिंग से, कि आगे क्या ज़रूरत आपकी पूरी होगी, कैसे आप इससे लाभ ले सकेंगे, कुछ बताइए, हमारे जो सुनने वाले श्रोता बच्चे हैं उनको भी पता चलेगा।
0: जी, कोडिंग मैंने सीखी क्योंकि मुझे एप्स बनाने का शौक है, और मैं उससे थोड़ा बहुत इधर उधर डेवलपमेंट सीखता हूँ।
1: जी
0: मैंने कुछ गेम्स भी बनाए हैं।
1: वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा प्रयास है। आज के बच्चों के हिसाब से आप एकदम सही तरीके से इसको कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी जो बच्चे इस ओर जाना चाहेंगे वो भी आपसे सुनकर जाना पसंद करेंगे। तो कुछ गेम्स आपने तैयार किए हैं, कुछ ऐप्स भी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज के ज़माने की ज़रूरत है ये।
0: जी
1: तो वो गेम आपके पसंद करने वाले घर में लोग हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, कुछ हैं, किसी को दिखाया आपने?
0: जी मैंने अपने एक दोस्त को दिखाया है।
1: अच्छा, तो क्या कहा आपके दोस्त ने?
0: मेरे दोस्त ने कहा बहुत अच्छा है।
1: चलिए, हमारी शुभकामना है कि ऐसे कोडिंग्स और भी ज़्यादा आपको लाभ पहुँचाएं भविष्य में, और गहराई से सीखें और ऊंचे स्तर पर जाएं। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने रेडियो में कॉल किया है, कुछ गाना सुनने का मन किया होगा आपको, बताइए क्या सुनवाया जाए।
0: जी, स्टॉप दैट बाय देवांग पटेल।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी भैया, योगेश जांगड़े भी मैं तरह छत्तीसगढ़ से। धन्यवाद,
0: जी योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है भैया, अच्छे हैं।
0: और क्या हो रहा है आपकी तरफ?
1: बहुत धूप है भैया, घर ही में रहना होता है।
0: अभी छुट्टियां चल रही हैं स्कूल में आपके तरफ?
1: हाँ, छुट्टी है भैया 16 जून तक।
0: और ये छुट्टियां शुरू कब से हुई अभी?
1: हाँ, अभी मैं देखती हूँ, वैसे तो अप्रैल तक लगता था, लेकिन ये ज्यादा गर्मी के देखते हुए थोड़ा सा 15 दिन पहले ही छुट्टी घोषित कर दिया
0: तब
1: गया।
0: तो लगभग 2 महीने विद्यालय बंद रहेंगे।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो गर्मी भी बहुत है भैया, बच्चों को भेजना भी काफी मतलब मुश्किल का काम है।
0: ओ, छत्तीसगढ़ में तो जंगलों की वजह से ही तापमान थोड़ा कम रहता था, अब धीरे
1: जी
0: धीरे जंगल कम हो रहे हैं तो तापमान और ज़्यादा बढ़ रहा
1: जी
0: है।
1: जी
0: और ये असमानता पूरे देश में है। हमारे बिहार में भी पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी जितनी आजकल पड़ रही है। हम लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, पेड़ों पर नहीं, गर्मी हमें ही लगेगी। और क्या
1: बिल्कुल,
0: उपाय
1: डॉन से
0: है?
1: सुनवा दें। जी, उपाय तो यही है भैया, मतलब हमेशा जो हमारा पर्यावरण है उसको हमेशा अपना मान के चले, और वृक्षारोपण हो गया, साफ सफाई हो गया, जीव जंतुओं के देखभाल हो गया, इन सब चीजों को अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम अपने ही नुकसान करेंगे।
0: बल्कि करेंगे क्या, कर रहे हैं, ये जो हम सह
1: जी,
0: रहे हैं।
1: उसी का तो नतीजा है भैया, ये जो ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और ये जो वृहद गर्मी, ये सब चीजें जो देख रहे हैं।
0: बहुत सारे जीव जंतु जो हैं छोटे वो लुप्त हो रहे हैं हमारे इस एक्टिविटी की वजह से, और हमें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पहले लोग एसी के बिना भी रहते थे आराम से, आजकल एसी भी लगाने के बाद आराम से नहीं है। तो एसी लगा कर क्या होगा, वो तो यांत्रिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक तो नहीं है। प्राकृतिक चीज़ों का आनंद एक अलग है और पेड़ के अलावा इसका कोई विकल्प नहीं। पेड़ लगाएं हम सब मिलके जितनी हो सके, जहाँ कहीं खाली स्थान दिखे पेड़ लगाएं। क्या सुनेंगे?
1: फिल्म मैदान से सुनवा देंगे, खई के पान बनारस वाला।
2: ओ खई के पान बनारस वाला।

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: आज बस इतना ही। यदि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हो तो हमें प्रत्येक बुधवार को दिन के 1:00 से 1:30 के बीच कॉल कीजिए। अब हमारे फोन नंबर नोट कीजिए 0612-22-22500। फोन नंबर पुनः एक बार बता रहे हैं 0612-22-22500। और अब मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त संजय किशोर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: हेलो फरमाइश।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत कलाकार हैं कुंदन कुमार और निशा कुमारी। कुंदन कुमार से पहले सुनिए लोक भजन।

बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कुंदन कुमार से लोकगीत। अब आप सुनिए निशा कुमारी से ये लोक भजन।

बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। कलाकार थे कुंदन कुमार और निशा कुमारी।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम वैज्ञानिकी।

श्रोताओं, हमारे साइंस प्रोग्राम वैज्ञानिकी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रानू सिंह। जीवन के हर पल में साइंस छुपा है। साइंस विश्वास और अंधविश्वास को क्रिस्टल क्लियर करता है। साइंस जानने और मानने में अंतर बताता है। क्यों, क्या, कैसे जैसे सवालों का जवाब लॉजिकली या तार्किक रूप में दे देता है और आज का विज्ञान हमारा कल तैयार करता है। एडवर्ड टेलर ने भी क्या खूब कहा है, द साइंस ऑफ टूडे इज द टेक्नोलॉजी ऑफ टूमोरो। यानी आज का विज्ञान कल की तकनीक है। आज विज्ञान के क्षेत्र में जो भी रिसर्च हो, अचीवमेंट हो,

वही हमारे भविष्य को आसान बनाने में मदद करेंगे। यानी साइंस एक ऐसी जर्नी है जिसका एंड होना पॉसिबल नहीं। तो आइए आज इस जर्नी की शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट के साथ।

क्या आप जानते हैं 1 से 7 मई तक हम मलेरिया रोकथाम सप्ताह मनाते हैं, जिसके पीछे कई कारण हैं। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय मलेरिया बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाती है। भारत 2027 तक शून्य मलेरिया मामले और 2030 तक पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। अगर हम मलेरिया से जुड़े आंकड़ों को देखें तो भारत ने मलेरिया उन्मूलन में ऐतिहासिक प्रगति की है, जिसके तहत 2015 से 2023 के बीच मामलों में 80% से अधिक कमी आई है। 2023 तक वार्षिक मामले घटकर लगभग 20 लाख और मौतें घटकर 83 रह गई हैं। भारत 2024 में WHO के हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट समूह से बाहर हो गया है और 2030 तक पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य है। मलेरिया रोकथाम में अब प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कीटनाशी उपचारित मच्छरदानी यानी लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट, जो कि केमिकली ट्रीटेड होता है, इसके संपर्क में आते ही मच्छर मर जाते हैं। ऐसे नेट 5 साल तक कीटनाशी प्रभाव रखते हैं। मलेरिया रोकथाम के लिए AI बेस्ड ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ड्रोन उन जगहों को स्पॉट करते हैं जहां पानी इकट्ठा है और मच्छर अंडे दे सकते हैं। इन जगहों की पहचान के बाद कीटनाशकों का छिड़काव जरूरी जगहों पर ही होता है। AI की सहायता से मलेरिया की डायग्नोसिस आसान हो गई है। इस वर्ष का थीम है मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रेरित। अब हम कर सकते हैं, अब हमें ही करना होगा। RTS-SAS01 मॉस्क्यूरिक्स दुनिया का पहला मलेरिया टीका है, जिसे WHO ने 2021 में मंजूरी दी थी। इसके अलावा R21 मैट्रिक्स एम, ये अक्टूबर 2023 में स्वीकृत दूसरा टीका है जो RTS-S की तरह ही प्रभावी और सुरक्षित है। इसी सेगमेंट में अब बात करते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में। हर साल 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमारे लिए बहुत खास होता है क्योंकि इसी दिन हम परमाणु संपन्न हुए थे। इस दिन को यादगार बनाने का श्रेय कई हस्तियों को जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1999 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। 1998 में हुए ऑपरेशन शक्ति के तहत भारतीय सेना द्वारा राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज में परमाणु मिसाइल शक्ति 1 का सफल परीक्षण किया गया और इसके साथ ही भारत ने शांतिपूर्वक न्यूक्लियर पावर के उपयोग करने के क्षेत्र में एक अहम मुकाम हासिल कर लिया। और इसके साथ ही भारत ने शांतिपूर्वक न्यूक्लियर पावर के उपयोग करने के क्षेत्र में एक अहम मुकाम हासिल कर लिया। बढ़ते हैं अब अपने अगले सेगमेंट में, जो कि है आइए जानें।

हंसना किसे पसंद नहीं होता, हंसता हुआ चेहरा प्यारा लगता है, पर क्या इसके पीछे भी कोई साइंस छिपा है? आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि इस दिन को मनाने के लिए भी एक खास दिन है। हर साल मई के पहले रविवार को विश्व हंसी दिवस मनाया जाता है और इसलिए इस बार ये आज यानी 3 मई को मनाया जा रहा है। हंसना बहुत जरूरी होता है। हंसने से हमारे आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। अगर इसे साइंटिफिकली समझे तो हंसने से एंडोर्फिन नाम का हार्मोन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, जो कि खुशी और आनंद की भावना पैदा करता है। ये एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है और स्ट्रेस को कम करता है। इसके अलावा हंसने से डोपामाइन और सेरोटोनिन नाम का हैप्पी हार्मोन एक्टिव हो जाता है, जो हमारे मूड को बेहतर बनाता है। केवल हंसने से 17 मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। हंसना एक प्रकार का एरोबिक एक्सरसाइज है। केवल हंसने से 17 मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। हंसना एक प्रकार का एरोबिक एक्सरसाइज है, तो क्यों ना इसे जब मौका मिले तब कर ले। इसी सेगमेंट में अब जानते हैं विश्व प्रवासी पक्षी।

सच में पंछियों को सरहद की जानकारी नहीं होती, वो तो मस्त गगन में बेबाक अपने पंख फैलाए कई सरहदें पार कर देते हैं। उन्हें ना तो अपना घर छूटने का डर रहता है और ना अपनों से दूर जाने का गम। वो जहां जाते हैं वहीं अपना आशियाना तैयार कर लेते हैं, लेकिन विकास के नाम पर हम इंसान इनके पंखों की हदें तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आज 9 मई है और 9 मई को हम मनाते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। दरअसल प्रवासी पक्षी एक जगह से दूसरी जगह जाने के आदी होते हैं। पक्षी हजारों किलोमीटर उड़ने की ताकत रखते हैं। वे खाने पीने रहने के लिए नदी झील तालाब दलदल और पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, लेकिन शहरीकरण के कारण हम उनकी ये व्यवस्था खत्म कर रहे हैं। आज प्रवासी पक्षियों के सामने कई खतरे हैं। 8 में से एक प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है, जो हम मनुष्यों के लिए खतरनाक है। पक्षी कीटों को खाते हैं, बीजों का छिड़काव करते हैं और उनका ना होना इस प्राकृतिक क्रियाओं को रोकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया के 40% पक्षी नियमित प्रवासी हैं। इनको सुरक्षित रखने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने हैं, जैसे हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देना है ताकि वे अपनी घोंसले बना सके, रात की अनावश्यक रोशनी के प्रयोग से बचना है ताकि पक्षी अपना रास्ता ना भटके, प्राकृतिक जल संसाधनों को बचाना है, खेतों में कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करना है और सतत विकास पर हमें ध्यान देना है। ये पंछी एक देश को दूसरे देश से जोड़ती हैं और इसलिए इन पंछियों को एकता का प्रतीक समझा जा सकता है। बिहार पक्षी गणना के मुताबिक बिहार में कुल 202 प्रजातियां पाई गई हैं। यहाँ के प्रमुख पक्षी स्थल हैं गोगा बिल झील जो कि कटिहार में है, इंद्रपुरी बैराज जो कि रोहतास में है और नागा नकटी डैम जमुई में है। बिहार सरकार हर वर्ष कलरव नामक राज्य पक्षी उत्सव आयोजित करती है ताकि हम पंछियों के महत्व को समझ सके। जब पंछियों की बात हो रही है तो आइए जानते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया को। क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई इंसान पंछियों के लिए इतना भावुक होकर यह कह सकता है, मैं पंछियों के लिए जीता हूँ, पंछियों के लिए मरूंगा। ये शब्द थे बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली के। वे भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक, पक्षी प्रेमी और प्रकृति संरक्षणवादी थे। डॉक्टर सलीम अली भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया। उनकी लिखी हुई किताबें पक्षी विज्ञान में मददगार साबित हुई, जिसमें प्रथम स्थान पर है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स 1941। यह पहली ऐसी किताब थी जो आसान भाषा में भारतीयों को पक्षियों की जानकारी दे रही थी। ये आज भी इस क्षेत्र की बेस्ट सेलर बुक है। इसके अलावा हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान 10 खंड, एस डीलन रिप्ले के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक दस्तावेज है। उन्हें 1958 में पद्म भूषण, 1976 में पद्म विभूषण, वन्य जीव संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जॉन सी फिलिप्स मेडल से नवाजा गया। भारत डॉक्टर सलाम अली का हमेशा कर्जदार रहेगा कि उन्होंने भारत को पक्षियों के बारे में इतना कुछ ज्ञान दिया। आइए अब जानते हैं बच्चों में विज्ञान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने वाली इंस्पायर योजना को।

इंस्पायर योजना यानी इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख योजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रतिभाशाली युवाओं को कम उम्र में विज्ञान की शिक्षा और अनुसंधान की ओर आकर्षित करना है। इसकी शुरुआत 2008 में हुई, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस क्षेत्र में बच्चों की सहायता के लिए मौजूद है अटल टिंकरिंग लैब। इस योजना का लक्ष्य युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना और डिजाइन मानसिकता, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, अनुकूली अधिगम

0: भौतिक कंप्यूटिंग जैसे कौशल विकसित करना है। अब बात साइंस अपडेट की। अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ब्राजील को पीछे छोड़कर नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी की कुल स्थापित क्षमता में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व में तीसरे स्थान पर आ गया है। यह उपलब्धि 2025 से 26 में 55.29 गीगावाट की रिकॉर्ड वृद्धि के बाद हासिल हुई, जिससे भारत का गैर जीवाश्म ईंधन का लक्ष्य समय से पहले पूरा हो रहा है। आइए सुनते हैं एक साक्षात्कार वैज्ञानिक डॉक्टर निलॉय खरे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज से। साक्षात्कार ले रहे हैं धर्मेंद्र कुमार।
1: श्रोताओ नमस्कार, आप सभी का विशेष कार्यक्रम वैज्ञानिकी में स्वागत है और आज का अंक है प्रकृति पृथ्वी और विज्ञान। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अर्थ साइंटिस्ट गेट जी वैज्ञानिक श्री निलॉय खरे, जो पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है। खासकर हिंदी भाषा में विज्ञान लेखन और वैज्ञानिक जानकारी को सरल रूप में जन जन तक पहुंचाने की इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अर्थ साइंस के विभिन्न पहलुओं जिसमें जलवायु, महासागर और अर्थ के अंतर्गत जो भी है, इनके विभिन्न एस्पेक्ट्स पर ये उल्लेखनीय इन्होंने कार्य किया है। तमाम पहलुओं पर आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले श्री निलॉय सर, आपका स्वागत है हमारे आकाशवाणी पटना के।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: सर। आप ग्रेट जी वैज्ञानिक है जिनका महत्वपूर्ण दायित्व है विभिन्न जिस क्षेत्र में रहते हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि ग्रेट जी वैज्ञानिक के रूप में प्रमुख जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं।
2: मंत्रालय में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में जहां मैं कार्यरत हूं
1: जी,
2: सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आप सब लोगों को कि भारत वो विशिष्ट देश कहलाता है जहां पे पृथ्वी विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर संपूर्ण मंत्रालय स्थापित है। विश्व में और कोई ऐसा देश नहीं जहां पे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। तो ये मैं सरकार को इसकी तहे दिल से बधाई भी देता हूं कि बहुत ही सोच समझ के किया हुआ ये कदम है। वैज्ञानिक जी मंत्रालय में वरिष्ठतम पोजिशन होती है और हम लोगों का काम ये होता है कि देश में विज्ञान से संबंधित प्रमुखता, पृथ्वी विज्ञान से संबंधित जितनी भी विद्याएँ हैं
1: जी जी,
2: उनका अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग हो, उनका अच्छी तरीके से प्रसारण हो, लोगों तक विज्ञान उनकी भाषा में पहुंचे, तो ये सारे काम हम लोग को दिए जाते हैं और हम उसको अपने कर्तव्य को निभाते हैं।
1: अर्थ साइंस या अर्थ साइंस के साइंटिस्ट के रूप में अगर हम एक बात कहें कि पृथ्वी विज्ञान के अंतर्गत सरल भाषा में कहे एक आम लोग किन किन पहलुओं को शामिल किया जाता है और उनके अंतर्गत रिसर्च और तरह तरह के जो कार्य किए जाते हैं क्या शामिल किया जाता है अर्थ साइंस
2: जी में? यदा शास्त्रों में लिखा है कि पृथ्वी जल पावक गगन समीरा पंच तत्व अदम शरीरा, तो ये जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है या पृथ्वी विज्ञान अपने में जो है ये इन पाँचों तत्वों के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान है और इनके ऊपर सजग रूप से काम करता है
1: जी जी।
2: चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो वातावरण के हो, जैसे भारत मौसम विज्ञान है
1: जी जी।
2: उसका पूर्वानुमान है, समुद्री संसाधन है, ध्रुवीय क्षेत्र है, हिमालय है, जलवायु परिवर्तन, ये सारे क्षेत्र जहाँ जहाँ जो पृथ्वी जो है वो मानव के रहने के लिए अनुकूल हो, उन सबको करने के लिए हम उस दिशा में कार्य करते हैं। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मैं कहूँ तो सभी विषयों का एक समेकित रूप है, एक सबका मिला जुला रूप है, क्योंकि इसमें हर विज्ञान का अपना अपना भूमिका है और पृथ्वी विज्ञान मानवता के लिए एक बहुत ही विशिष्ट विषय है, मैं इसे बिना किसी संदेह के कहूँगा।
1: जी जी बिल्कुल। पृथ्वी विज्ञान महत्वपूर्ण घटकों जैसा कि आपने कहा जियोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, इन्वायरमेंट जो पर्यावरण से संबंधित है, सबको एक तरह से समेकित रूप से रिजल्ट जो निकलता है वो हित के लिए और एक पहले कई चीज़ों में अनुमान के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। कुछ हम जलवायु परिवर्तन और उस जलवायु पर भी बातचीत करेंगे। पहले हम पृथ्वी को लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर के भी पार्ट को भी आप लोग इसमें अध्ययन करते होंगे, रिसर्च करते होंगे, तो प्रमुख घटक क्या क्या है अगर एक संक्षेप में हम जानना चाहेंगे कि पृथ्वी के अंदर और क्या कुछ क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।
2: ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। पृथ्वी विज्ञान में जैसे अंग्रेजी में थोड़ा सा क्रायोस्फीयर हुआ
1: जी जी,
2: या लिथोस्फीयर हुआ, या ओशन स्फीयर हुआ, हाइड्रोस्फीयर हुआ, ये जहाँ जैसे इसको शुद्ध हिंदी में कहूँ तो जैसे पानी हुआ, समुंदर हुआ, बर्फ़ हुआ, पृथ्वी के अंदर की बातें हुई, तो इन सबको जो है हम अध्ययन करते हैं पृथ्वी विज्ञान के अंतर्गत। तो हमारा मंत्रालय इन सबके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान दे रहा है। दूसरा प्रश्न जो आपने किया कि क्या हम पृथ्वी के अंदर की संरचना के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा आता है जिसे कहते हैं कि लिथोस्फीयर
1: जी।
2: पृथ्वी से संबंधित जो जानकारी होती है वो लिथोस्फीयर कैटेगरी में आती है और इसके लिए हमारा एक विशिष्ट संस्थान है कलाट, जो पूना से करीब 190 किलोमीटर दूरी के ऊपर है सतारा डिस्ट्रिक्ट में
1: जी जी।
2: तो वहाँ पे पृथ्वी के अंदर तीन होते हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट, तो इनकी अध्ययन करने के लिए वो

0: ये 6 घंटे की हो जाती है, 1 हफ्ते की हो जाती है, 1 महीने की हो जाती है,
1: जी जी।
0: और नाउ कास्टिंग अभी क्या हो रहा है 5 मिनट के बाद,
1: जी जी।
0: तो ये मौसम विज्ञान में पॉसिबल हो रहा है, लेकिन अभी भूकंप में नहीं हो पा रहा। तो हम लोग का प्रयास है कि इस क्षेत्र में भी काम करें ताकि हम जो है भूकंप के बारे में जान सके।
1: और ये बहुत ज़रूरी भी है, लगातार आप काम कर रहे हैं। भूकंप की आपने बात की, तो हम लोग सामान्य तौर पर जानते हैं कि प्लेट्स होते हैं और ये आपस में प्लेट टेक्टोनिक वगैरह की जो प्रक्रियाएँ होती हैं, बेसिकली सामान्य तौर पर यही जानकारी है। तो क्या वास्तविक रूप से यही है या फिर कुछ और है भूकंप के कारण?
0: बेसिकली जो भूकंप बात में है वो एनर्जी पृथ्वी के अंदर जो एनर्जी संचित हो जाती है वो उसका जब निकास होता है कहीं से भी
1: जी,
0: तो वो कहाँ से हो, जहाँ कोई वीक जोन हो जाएगा या कहीं कोई मूवमेंट हो गया। तो मूवमेंट इसलिए होता है कि पूरा पृथ्वी जो वो मुख्यतः 7 प्लेटों से बनी हुई है
1: जी, जी।
0: जिसे हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, वो जो आपस में एक दूसरे के समांतर चलती रहती हैं तो उससे एनर्जी भी रिलीज होती है और जहाँ जहाँ वीक पॉइंट होते हैं वहाँ से कभी कभी आपके लावा भी आ जाता है। और जब मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है तो उससे हमें झटके महसूस होते हैं जिसको कि हम भूकंप का नाम देते हैं। और हमने हर जगह करीब 160 से ज़्यादा हम लोगों ने उपकरण लगाए हुए हैं कि कहीं पे भी अगर हल्का भी कंपन होता है 2 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा तो हम उसकी रिपोर्टिंग कंटिन्यूसली करते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल जो होता है उसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को और SDMA NDMA इन सबसे हम लोगों का बाकायदा पारस्परिक एक्सचेंज होता रहता है।
1: ज्वालामुखी भी इसी के कारण होता है, जैसा कि आपने कहा कि जहाँ पर कमजोर प्लेट्स मिलते हैं अंदर की जो एनर्जी वो बाहर निकलती है, तो क्या वो ज्वालामुखी के रूप में निकलती
0: है? जी, वो ज्वालामुखी भी का स्रोत तो बेसिकली एनर्जी रिलीज करने का ही होता है। उसमें होता है कि नीचे का जो मोल्टन लावा होता है बाहर आ जाता है, तो उसको ज्वालामुखी, कुछ उसमें से सुषुप्त होते हैं, कुछ अभी एक्टिव होते हैं, तो ये होते ही रहते हैं, ये इनको कोई रोक नहीं सकता।
1: पृथ्वी विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या कुछ रहस्य है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता।
0: पृथ्वी में अगर आप देखें तो सबको पता है कि जीवन की उत्पत्ति समुद्र से हुई है
1: जी।
0: और समुद्र से ही पहले एक कोशीय जीव थे, बाद में मल्टी कोशीय होते हुए आज हम होमो सेपियंस जिसे कहते हैं बने हैं। तो ये जो पूरा अंतराल है एक कोशीय से लेकर के हमारे होमो सेपियंस तक के, इन सबका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड चट्टानों में, समुद्र के अंदर के तलछटों में ये अवेलेबल रहता है। इसी को हम जो है वो जीवाश्म कहते हैं
1: जी।
0: बड़े होते हैं तो उनको मेगा जीवाश्म कहते हैं, छोटे अगर तो जो माइक्रोस्कोप के नीचे देखे जाते हैं उसको हम सूक्ष्म जीवाश्म या माइक्रो फॉसिल कहते हैं। ये जो माइक्रो फॉसिल बेस असली में होते हैं ये बहुत अपने वातावरण के जो प्रति बड़े सेंसिटिव होते हैं
1: जी जी।
0: तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर में परिवर्तन आया, थोड़ा सा सैलिनिटी में परिवर्तन आया, थोड़ा सा आपका जो है वो करंट के फ्लो में परिवर्तन आ गया, तो ये अपनी मॉर्फोलॉजी उसमें परिवर्तन ले आते हैं, अपने केमिकल कंपोजिशन में परिवर्तन ले आते हैं, अपने टेस्ट में जो इसकी बॉडी को कवर होता है
1: जी जी।
0: उसमें परिवर्तन ले आते हैं। इनको जब हम पढ़ते हैं, इनको एनालाइज करते हैं
1: जी जी।
0: तो डेटा जैसे टेम्परेचर पे हुआ, सैलिनिटी पे हुआ, डेंसिटी पे हुआ, करंट मूवमेंट के ऊपर, तो ये प्रॉक्सी डेटा बताने बहुत ही कारगर यंत्र होते हैं और काफ़ी काम हो चुका है इनके ऊपर। तो सूक्ष्म विज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण थी, इवन जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके ऊपर भी सूक्ष्म विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है।
1: इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन जो खासकर इधर हम लोग देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, तो ये किन मुख्य कारणों से होता है, क्या इसका अध्ययन आपके क्षेत्र में किया जा रहा है?
0: देखिए, मैं क्योंकि भू विज्ञान का छात्र रहा हूँ और अभी भी छात्र ही हूँ
1: जी जी।
0: जलवायु परिवर्तन कोई अनहोनी घटना नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: एक जियोलॉजिस्ट के अगर उससे दृष्टिकोण से मैं बात करूँ तो ये भूगर्भ काल में कई दफ़े जलवायु परिवर्तन हुआ। आपने हिमकाल सुना होगा, लिटिल आइस एज सुना होगा, एकदम मास एक्सटेंशन हो गया, खूब गर्मी बढ़ गई, डायनासोर खत्म हो गए, तो इन सबका कारण जलवायु परिवर्तन थे। आज जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं तो मेन मुद्दा जो है वो दो चीज़ें, एक तो हम क्योंकि महसूस करने की पोजिशन में हैं
1: जी,
0: जब अतीत में हुआ तो उस टाइम पर हम लोग नहीं थे, तो जानवर आनवर थे तो वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगा था, और दूसरा ये है कि आज जो मानव, हम और आप, जो अंधी दौड़ में, विकास की अंधी दौड़ में जो दौड़ लिए हैं बिना पर्यावरण की परवाह किए, और जिस हिसाब से हम अंधाधुंध जीवाश्म तेल या आपका फॉसिल फ्यूल जिसे कहते हैं और नाना प्रकार के प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, इससे क्या है कि एक छतरी सी बनती जा रही पृथ्वी के ऊपर, जिसे कि हम अगर आम भाषा में कहें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, उसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। और पृथ्वी का तापमान बढ़ना बहुत बड़ा खतरे की घंटी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने मेंटेन किया कि 1.5 से ज़्यादा नहीं बढ़ना, क्योंकि अगर 1.5 के आगे बढ़ गया, कारण ये है कि 1.5 तक तो हम मेंटेन कर रिवर्स करने की सिचुएशन

0: में होते हैं, 1.5 से अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ गया तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है।
1: आप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में काम कर रहे हैं, वहाँ पर हैं, भारत के दृष्टिकोण, जैसा कि आपने बात भी किया, नेट जीरो प्रोग्राम भी चल रहा है, कार्बन का सबसे कम जैसे उत्सर्जन कम किया जाए और लेवल की आपने बात की, भारत विश्व परिप्रेक्ष्य में लगातार प्रयास हो रहा है, भारत हमेशा अग्रणी भूमिका भी निभाता है, वर्तमान समय में भारत की क्या यहाँ पर रोल है और क्या कुछ प्रयास किए?
0: भारत एक देश ऐसा देश है ना जो अग्रणी होता भी है और जो कहता वो करता भी है।
1: जी जी,
0: मैं बहुत गर्व के साथ ये कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखिए इवन पटना में भी, आप किसी में दिल्ली में चले जाइए, जो प्रयास सरकार कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बसें जो इलेक्ट्रिक की हो गई हैं,
1: जी,
0: पेट्रोल की और डीजल की बसें वहाँ पे इवन बैन की जा रही, तो ये जो छोटे छोटे प्रयास हो रहे हैं इससे इमीडिएट इफेक्ट इन चीज़ों का नहीं आता, लेकिन
1: दुर्गामी
0: साल, दो साल, पाँच साल जब तक हमने टारगेट बनाया है तब तक 100% जो कार्बन उत्सर्जन की मात्रा है वो काफ़ी कम होगी, और हम अपना जो उद्देश्य है कि 1.5 से आगे नहीं बढ़ने दें, तो उसमें भारत निश्चय रूप से एक अग्रणी देश बन के आएगा, और जिस दिशा में हम जा रहे हैं विश्व गुरु बनने की, तो इस दिशा में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भी भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर ही है, क्योंकि हमारे प्रयास सार्थक हैं और हमारी सोच बहुत ही पॉजिटिव है।
1: जी, एक महत्वपूर्ण पहलू जल ही जीवन है, जल को हम लोग, हर कोई, माननीय प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि एक एक बूंद जल का अमृत समान है, उसे बचाना है, तो भविष्य को लेकर जल संसाधन, चूंकि पृथ्वी विज्ञान से जुड़े हुए हैं, आप भी इससे कनेक्ट हैं, तो जल संकट को कम से कम किया जाए और उस पर जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम आपकी बात रखना चाहें तो क्या, कैसे इसको, जल संकट को, या क्या समाधान है और किस प्रकार हम लोगों को सचेत रहना चाहिए?
0: जल संकट आप सभी लोग सुनते आ रहे हैं कि अगला विश्व युद्ध जल के लिए होगा।
1: जी जी बिल्कुल,
0: और ये कहीं ना कहीं सत्य भी लगता है, प्रतीत होता है, क्योंकि जिस हिसाब से जल के अलावा और भी प्राकृतिक संसाधन जिसका दोहन हो रहा है, वो उससे भाई जो प्रकृति का हर चीज़ की एक सीमित सीमा होती है, अगर उसके आगे आप चले जाओगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट आएगा। तो अब जैसे इसके प्रयास क्या है कि भाई आप प्रिकॉशनरी, एक अंग्रेजी में सेइंग है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो आप पहले से ही उसका प्रिकॉशन लेने लगी है कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना कर दीजिए, आप ग्राउंड वाटर का जो लेवल नीचे होता जा रहा है आप ऐसे प्रयास कीजिए कि जब रेन हो तो पूरा पूरा जो सॉइल जो उसको एब्जॉर्ब करे, आपकी ग्राउंड वाटर का लेवल ऊपर बढ़े, तो आपका ग्राउंड वाटर का रिसोर्स जो सोर्स वो भी बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ रहने लायक पृथ्वी छोड़ के जाएंगे, ये इस कल्पना के साथ अगर हम अपने प्रयास करें, और ये गिलहरी प्रयास हैं, ये भी अच्छी बता दूँ, क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है, जलवायु इतना बड़ा विषय है जिसमें हर आदमी एक एक कदम रखेगा तो इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छी प्रगति होगी, लेकिन ज़रूरत है आज की कि हर आदमी को अपने में सेंसिटिव होना, और बस जैसे मंत्रालय का कार्य है कि लोगों को सेंसिटाइज करना।
1: जी जी,
0: कि भाई आप निश्चित हो कि आपकी अगली पीढ़ी इसका फल भुगतेगी।
1: बिल्कुल सही आपका प्रयास है और हम इसकी सराहना भी करते हैं कि आम लोग तक आपके प्रयास अगर नहीं पहुंचते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। आपने कई किताबें भी लिखी हैं विज्ञान के हिंदी में। चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले 20-30 वर्षों में पृथ्वी विज्ञान का जो भविष्य है उसको आप कैसे देखते हैं?
0: आने वाला भविष्य, आने वाले दिन जो है पृथ्वी विज्ञान के, मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा, और हमारे जो ध्रुवीय क्षेत्र में उपलब्धियां हो रही हैं, हम नए नए स्टेशन बना रहे हैं अंटार्कटिका में, आर्कटिक में हमारे नए नए इक्विपमेंट लग रहे हैं, ओशन में हम नया वेसल खरीद रहे हैं जिसे पोलर रिसर्च वेसल कहते हैं, हमारा स्टेशन हिमांश जो है वो हिमालय पे है, तो कुल मिलाकर के जो जो प्रगति हो रही है चारों दिशाओं में पृथ्वी विज्ञान के किसी भी आयाम को आप ले लीजिए, हमारा डीसेलिनेशन प्लांट जो है वो कावरत्ती में चले जाइए, लक्षद्वीप किसी आइलैंड पे चले जाइए, वहाँ पे लगा हुआ है। अब मैं एक बार वहाँ गया ऐसी पर्यटक के रूप में, तो लोग हर एक घंटे में पानी खुलता था, जिस आदमी जीवन भर मीठा पानी ना पिया उसको डीसेलिनेशन का रिवर्स ऑस्मोसिस करके टेक्नोलॉजी लगाई हमारे इंस्टीट्यूट ने और उसको मीठा पानी मिले, तो हमने ये कहाँ थे, बोले पता नहीं कुछ भगवान जैसे लोग आए उन्होंने ये कर दिया। तो एक बूंद पानी आदमी को अगर आप पहुँचाने में सार्थक खो रहे हैं, तो मैं कहते विज्ञान और वैज्ञानिक दोनों का उद्देश्य और दोनों का जीवन सफल मानूंगा मैं, कि आपने आपका किया हुआ एक छोटा सा कार्य एक आदमी को के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है, और विज्ञान से क्या चाहिए।
1: बिल्कुल, अब विज्ञान हमारे देश को जो है तरक्की में निरंतर रूप से लगे हुए हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल जी ने भी कहा है कि जय विज्ञान इनको सराहा और उन्होंने ये बल भी दिया कि विज्ञान के सहारा हमारा देश जो है तरक्की करेगा और निश्चित रूप से आगे आने वाला, जैसा कि वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री का उद्देश्य है, भविष्य में विश्व गुरु बनेंगे। सर, आप लगातार इसमें प्रयास करते रहते हैं, आपको धन्यवाद। आप समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, आपने पृथ्वी विज्ञान के अलग अलग पहलुओं को बड़े ही सरल

0: और रोचक भाषा में हमें और हमारे श्रोताओं को बताया, अपना अनुभव साझा किया। एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इस साक्षात्कार के बाद अब समय हो चला है हमारे लास्ट सेगमेंट का, सवाल हमारे जवाब आपके।

सबसे पहले पिछले अंक में पूछे गए सवालों के जवाब हम आपको देते हैं। सवाल था, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति यानी आईपीआर पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई थी? जवाब है 12 मई 2016। जवाब है 12 मई 2016। दूसरा सवाल था, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 25 अप्रैल को। अब समय है हमारे आज के सवालों का। पहला सवाल है, गुस्से में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? सवाल एक बार फिर से सुनिए, गुस्से में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? दूसरा सवाल, भारत में गिद्धों के तेजी से विलुप्त होने के मुख्य कारण क्या हैं? सवाल एक बार फिर से सुनिए, भारत में गिद्धों के तेजी से विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? श्रोताओं, आज के वैज्ञानिकी में बस इतना ही। अगले बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आपसे एक निवेदन, अगर आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े कोई भी सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है feedback@aarpatna@gmail.com। तो श्रोताओं, प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार के साथ अपनी साथी रानू सिंह को दीजिए विदा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटनाएं सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना

0: केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
2: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
3: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ट बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में 1975 में देश पर इमरजेंसी थोपी गई। कांग्रेस सरकार में संवैधानिक पदों और एजेंसियों के शीर्ष पद पर सीधे सरकार के स्तर से नियुक्ति की जाती थी, जबकि अब ये नियुक्तियां समितियों द्वारा की जाती हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी की हकीकत जानती है और इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संवेद गान शिक्षा।
5: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हो ना असमिया भाषा गीत?
6: जी हाँ।
5: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का, प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। एई माती रे,
6: माली रे।
5: एई माती रे मोरो मोते,
6: मोरो मोते।
5: माती के, सुमिलो,
6: सुमिलो।
5: माटी के सुमिलो,

0: माती के सुमिलो हो गया ना यहाँ तक, आगे लिखो। ए माती ते,
1: ए
0: माती ते जीवन, ए माती ते ज नहीं बोलना, इसको ज बोलना, ये ए माती ते जीवन सोबी, जीवन
1: सोबी,
0: जी कैसे ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना, तो जीवन सोबी आकी आकी, दो बार आकी आकी आकी मोसीलो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद, दूर आकाहार, ये जो ना आका आकाश श को बोलते हैं वहां ख की तरह से, तो आकाश ये ख और ह के बीच में, आका खार भी नहीं आका हार भी नहीं, आका हार, आका हार लिखो, दूर आका हार, रोहन कियोनु लागे लागे, खागोर तोलीर, खागोर खागोर ख नहीं बोलना ख, खागोर तोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर तोलीर, मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू लागे लागे,
1: लागे लागे।
0: इसके आगे है आहा आहा, फिर मातीर बुकुत, मातीर बुकुत, मौनोर मालोती, बुटोलो मौनोर मालोती बुटोलो। इसके बाद फिर वही आ जाएगा, ए माती रे मोरो मोते, फिर दूसरा अंतरा है मौनोर
1: मौनोर
0: कोरोनी रे,
1: कोरोनी रे
0: हुरोर हुरोर पापोरी रे,
1: पापोरी रे
0: पापोरी रे आजी, इतना हो गया ना
1: जी।
0: आगे हुकुमार,
1: हुकुमार
0: थापो,
1: थापो
0: नाहुजुवा,
1: नाहुजुवा
0: हुकुमार थापो नाहुजुवा, आगे लिखा है ना
1: जी।
0: खुंदौर खुदीनौर,
1: खुदीनौर
0: खुदीनौर नहीं ख नहीं ख, खुदीनौर
1: खुदीनौर
0: नौतून,
1: नौतून
0: दृष्टि
1: दृष्टि,
0: ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके, दृष्टि
1: दृष्टि
0: दृष्टि
1: दृष्टि
0: श नहीं सही बोलना, दृष्टि
1: दृष्टि,
0: कौनो
1: कौनो
0: ना हुआ,
1: ना हुआ
0: आगे ना
1: जी, जी।
0: अच्छा ठीक है, अब गाना सिखाना शुरू करते हैं, स्वर दीजिए जरा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समवेत गान शिक्षा।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है आंचल। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन।

लीजिए सुनिए, किशोर कुमार और साथियों को। फिल्म का नाम है याराना, गीतकार हैं अनजान, संगीतकार राजेश रोशन।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: लीजिए सुनिए फिल्म शान का ये गाना। आवाजें हैं मोहम्मद रफी, आर डी बर्मन और साथियों की। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

लीजिए सुनिए, मुकेश और सुमन कल्याणपुर को, फिल्म का नाम है साथी, गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार नौशाद।

लिए सुनिए किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर पार्टी के केंद्रीय नेताओं से चर्चा के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं। श्री चौधरी ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जीतन राम मांझी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। प्रदेश की सभी पंचायतों में इस महीने की 19 तारीख से प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन पंचायत सरकार भवन या इसके आसपास किसी सार्वजनिक स्थान पर होगा। इसका मकसद आम नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जदयू अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने आज अपनी पहली राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की है। निशांत कुमार की इस यात्रा का नाम

भाव यात्रा रखा गया है। पटना स्थित पार्टी मुख्यालय से यात्रा के लिए रवाना होने से पूर्व निशांत कुमार ने कहा कि इस यात्रा का मकसद समाज में सौहार्द और सद्भाव की भावना को मजबूत बनाना है। यात्रा के दौरान जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे। इधर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि निशांत कुमार की यात्रा से पार्टी के सभी लोग उत्साहित हैं। श्री चौधरी ने कहा कि इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पार्टी ने पूरी तैयारी की है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सिवान नगर थाना क्षेत्र के आंदर ढाला के समीप 29 अप्रैल को हुए चर्चित गोलीकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सोनू कुमार को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मारा गया अपराधी पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे की हत्या में शामिल था। जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र में अपराधी के छिपे होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस एनकाउंटर पर कहा कि अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लिया है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में की थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस अवसर पर मीडिया में काम करने वाले सभी कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में आंधी बारिश की स्थिति लगातार बनी हुई है। आज राजधानी पटना सहित विभिन्न जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और हवा चल रही है। इससे तापमान में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 19 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं विभाग ने किशनगंज जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला सम्राट चौधरी की क़्यादत वाली रियासती काबीना की तौसी के सिलसिले में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इस मौजू पर पार्टी के मरकज़ी रहनुमाओं से बातचीत के लिए वज़ीर आला दिल्ली में हैं। श्री चौधरी ने दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर रेल अश्वनी वैष्णव, दाखला के मरकज़ी वज़ीर ममलकत नित्यानंद राय, मरकज़ी वज़ीर ललन सिंह और जीतन राम मांझी समेत दीगर कई सरकर्दा रहनुमाओं से मुलाकात की। वज़ीर आला ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वज़ीर दिफा से तरक्की याफ्ता बिहार के हदफ को पूरा करने पर गुफ्तगू हुई। श्री चौधरी ने बताया कि वज़ीर रेल से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने, बेहतर रेल राबता और बिहार की हमा जहत तरक्की में सुरअत लाने पर तबादला ख्याल हुआ। रियासत की सभी पंचायतों में इस महीने के 19 तारीख को हरेक महीने के

0: और तीसरे मंगल को सहयोग कैंप का इनेकाद किया जाएगा। इसका इनेकाद पंचायत सरकार भवन या इसके आसपास किसी उमूमी मकाम पर होगा। इसका मकसद आम शहरियों को बेहतर इंतजामी सहूलतें मुहैया कराना है। जनता दल यू सरबराह और साबिक वजीर आला नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आज अपना पहला सियासी सफर का आगाज किया है। निशांत कुमार के इस सफर का नाम सद्भाव यात्रा रखा गया है। पटना वाक़े पार्टी सदर दफ्तर से यात्रा के लिए रवाना होने से कबल निशांत कुमार ने कहा कि इस यात्रा का मकसद समाज में खैर सगाली और हम आहंगी के जज्बे को फ़रोग देना है। यात्रा के दौरान जदयू कानून साजिया पार्टी के लीडर श्रवण कुमार और पार्टी के रियासती सदर उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे। इधर नायब वजीर आला विजय कुमार चौधरी ने कहा कि निशांत कुमार की यात्रा से पार्टी के सभी लोग हौसला मंद हैं। श्री चौधरी ने कहा कि इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए पार्टी ने पूरी तैयारी की है। सिवान टाउन थाना हलका के आंध्र ढाला के नज़दीक 29 अप्रैल को हुई गोलीबारी में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए अहम मुलजिम सोनू कुमार को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। मारा गया मुलजिम साबिक एमएलसी मनोज सिंह के भांजे के कत्ल में मुलविस था। ज़िला के बड़हरिया थाना हलका में मुलजिम के छुपे होने की तला मिलने पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही जराइम पेशा अनासिर ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में खूनखार जराइम पेशा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। बीजेपी के रियासती सदर संजय सरावगी ने इस इनकाउंटर पर कहा कि जराइम पेशों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आज आलमी योम आज़ादी सहाफ़त है। ये प्रेस की आज़ादी को फ़रोग देने और आलमी सतह पर प्रेस की आज़ादी का जायज़ा लेने का मौका है। इस साल का मौजू पुरअमन मुस्तकबिल की तामीर है। आलमी योम प्रेस का ऐलान अक़वामे मुत्तहदा की जनरल असम्बली ने 1993 में किया था। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने इस मौके पर मीडिया में काम करने वाले सभी कारकुनों और मुलाजमीन को दिली मुबारकबाद दी हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की मजबूती में आज़ादाना और मुनसिफाना सहाफ़त का रोल इंतहाई अहम होता है। इस मौके पर पूरी रियासत में कई प्रोग्राम का अहतमाम भी किया जा रहा है। मगरबी हवाओं के ज़ेर असर रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में आंधी बारिश की हालत लगातार बनी हुई है। आज राजधानी पटना समेत मुख्तलिफ ज़िलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं और हवा चल रही है। इससे दर्जे हरारत में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत का औसत कम से कम दर्जे हरारत 19 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात से अगले 24 घंटों के दौरान रियासत के बेशतर हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा के साथ बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं महकमा ने किशनगंज ज़िले में भारी बारिश का इम्कान भी जताया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के कुल 9175 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु पद के अनुसार 23 से 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी

कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न विभागों में जूनियर ट्रांसलेटर तथा सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या अंग्रेजी माध्यम के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री में अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स या 2 एवं 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

कर्मचारी चयन आयोग ग्रेड सी और डी के लिए स्टेनोग्राफर के कुल 731 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी।
1: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग

0: अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
1: केरलम विधानसभा की 140 सीटों के लिए 9 अप्रैल को लगभग 79% मतदान हुआ था।
2: वरिष्ठ अधिकारियों ने केरलम के सभी 140 मतगणना केंद्रों पर तैयारियों के अंतिम दौर की समीक्षा की है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे ये प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। अधिकारियों को कल सुबह 6 बजे तक मतगणना केंद्रों पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। मतगणना एजेंटों को भी मतगणना शुरू होने से 1 घंटा पहले रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए QR कोड वाले पहचान पत्र को साथ रखना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की गई है। स्मिथ एम पल्लू रूथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कारिक्काल, यनम और माहे में होगी।
3: पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना लासपेट इलाके में स्थित 3 केंद्रों पर होगी। ये मतगणना केंद्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इन जिलों में निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में पुलिस विभाग और अर्धसैनिक बलों द्वारा 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
4: सुपरविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
5: सभी पार्टियों ने मतगणना प्रक्रिया की तैयारी के लिए अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है। DMK और TVK ने मतगणना के दिन गड़बड़ी की आशंका जताते हुए राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। राज्य के 234 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। सभी मतगणना केंद्रों पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। EVM और VVPAT मशीनों को पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम से मतगणना केंद्रों में भेज दिया गया है। राज्य भर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मतगणना केंद्रों के पास यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। राज्य में 9 अप्रैल को लगभग 86% मतदान हुआ था।
6: जनादेश 2026।
7: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
6: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
7: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
6: जनादेश 2026।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
8: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से

0: करा। टोटल 9 इसमें चार बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंडओवर कर दी गई है।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य में कदाचार, शासन व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोजित एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र में नशे की हालत में भाग लिया, जो चिंता का विषय है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल मोहाली में लोक मिलनी के दौरान कहा कि विपक्षी दल उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल जनता के कल्याण के लिए राज्य सरकार के कार्यों से ईर्ष्या करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक प्लस से अलग होने के बाद ये लगातार तीसरा महीना होगा जब ओपेक प्लस तेल का अधिक उत्पादन करेगा। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी।
2: इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
3: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 1,50,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
1: श्री सारंगी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश भर में 38,00,000 घरों को शामिल किया जा चुका है। और बात मौसम की, उत्तराखंड में कई इलाकों में रुक रुक कर वर्षा जारी रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों में विभिन्न स्थानों पर हुई बारिश के कारण प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के अनुसार आज और कल भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। विभाग ने इस दौरान गर्जन के साथ बारिश और तेज आंधी तूफान की चेतावनी दी है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: आज पूर्वोत्तर भारत, केरलम, माहे

0: पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में बादल गरजने और बिजली गिरने की आशंका है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया था। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चलेगी। संयुक्त अरब अमीरात में भी भारतीय मूल के विद्यार्थी नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र करुणा, सेवा और जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता का क्षेत्र है। ईरान ने संघर्ष विराम के लिए अमरीका को 14 सूत्री प्रस्ताव सौंपा है। इसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की रूपरेखा पेश की गई है। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि कूटनीतिक प्रयासों में युद्ध विराम को केवल बढ़ाने के बजाय युद्ध की समाप्ति को प्राथमिकता दी जाए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया, लेकिन कहा कि वे इसकी समीक्षा करेंगे। भारत और कंबोडिया के बीच दूसरे सैन्य अभ्यास सिनबैक्स के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी कंबोडिया रवाना हो गई है। सेना के अपर लोक सूचना महानिदेशक ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह अभ्यास 4 से 17 मई तक होगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच अर्ध शहरी परिवेश में किसी भी अभियान के लिए तालमेल को और बेहतर बनाना है। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हों और ग्रामीण समुदायों के लिए स्पष्ट दिख सकने योग्य परिणाम प्रदान करें। पंचायती राज मंत्रालय ने यह भी बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए मन्ना डे को। फिल्म का नाम है सफर। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी।

लीजिए सुनिए, महेंद्र कपूर, बलबीर जोगिंदर और साथियों को। फिल्म का नाम है आदमी और इंसान। गीत साहिर के हैं, संगीत दिया है रवि ने।

ओए ओए गम की घटाएं हो के खुशियों के रेले हो, खुशियों के रेले हो, ओए ओए दोनों से निभाने वाले हम अलबेले हो, हम अलबेले हो।

लीजिए सुनिए महेंद्र कपूर को, फिल्म का नाम है गोपी। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म दस्तक में, गीतकार हैं मजरूह, संगीतकार मदन मोहन।

लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है समाधि। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 630 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज रहे हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पर। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
0: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहेगी,
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

साथियों, हाजिर हूँ मैं शेफाली कपूर आपके मन पसंद कार्यक्रम मन चाहे गीत के साथ। साथियों, एक लंबे समय के बाद ये कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ है। आप सभी के पत्रों का बेसब्री से इंतजार है हमें। वैसे आज है संडे, रविवार यानी छुट्टी का दिन। आप में से कुछ साथी इस समय चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे, तो कुछ मंडली में बैठकर बातचीत, तो कुछ साथी पेड़ के नीचे चारपाई डालकर मोबाइल या फिर ट्रांजिस्टर सिरहाने रख के बस इंतजार कर रहे होंगे मन चाहे गीत कार्यक्रम का। क्यों, है ना? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम मन चाहे गीत, और ये है आज का आपका अपना पहला मनचाहा गाना।

यकीन मानिए, मनचाहे गीत कार्यक्रम में भी आपके पत्रों से बहार आ जाती है। बहरहाल आपको बता दें कि आज मनचाहे गीत कार्यक्रम में जो पहली फरमाइश पूरी हुई, हमारे इन साथियों ने फरमाइश भेजी थी और फिल्म के नाम जो है वो था जीने की राह। मोहम्मद रफी की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और पसंद हमारे इन साथियों की। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज शिवानी। श्रीमाली, तो आपकी फरमाइश पूरी हुई। साथियों, आज है दोबारा शुरू हुए कार्यक्रम मनचाहे गीत का दूसरा दिन, तो फटाफट पोस्टकार्ड पर अपनी पसंद का गीत अपने नाम और पते के साथ भेज दीजिए और इंतज़ार कीजिए अपने पसंदीदा गीतों के शामिल होने का। बहरहाल अब हम बढ़ेंगे आज के कार्यक्रम में आपकी दूसरी पसंद की ओर, जो है गुनाहों का देवता फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत और पसंद किसकी, हितू रांची से हमारे श्रोता प्रवीण कुमार की।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गुनाहों का देवता फिल्म का ये गाना सुना। अगली फरमाइश किसकी होगी, किस गाने के लिए होगी, सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
2: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
1: जिंदगी की राहें उन्हें ले आई फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।

0: बसेरा,
1: जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है।
0: 1984 दुनिया।
2: तू चांद नगर की शहजादी, मैं जिस धरती का पंजाबी।
0: 1993 फिल्म साहिबा।
3: कैसे जियूंगा मैं।
0: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
1: नजरों से
0: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: काजल है।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। साथियों, अभी तक आप सभी के कुछ ही फरमाइशी पत्र हम तक पहुंचे हैं, तो भाई जल्दी जल्दी पत्र लिखिए, हमें भी

इंतज़ार है आपके फरमाइशी खतों का। और हाँ, एक बात और, अपना नाम और पता साफ अक्षरों में लिखें ताकि हम आपका नाम और पसंद आपकी साफ साफ पढ़ सकें। तो चलिए अब बढ़ा जाए आज के इस कार्यक्रम के अगले गाने की ओर। और हमारे किन साथियों की पसंद है सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले ये गाना।

0: इंदुभाई राठौर और कुमार आशीष, और इसी गाने को पसंद किया था ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और अतीक अंसारी। चलिए एक संदेश और सुन लेते हैं, उसके बाद आज के कार्यक्रम का अगला गाना।
1: तुम्हें याद करते करते
2: छाया गीत
1: लग जा गले।
2: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
3: सपने अब
2: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
3: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
2: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीव

हम वफा करके भी तन्हा रह गए। निकाह फिल्म से आप सुन रहे थे सलमा आगा की आवाज। हसन कमाल ने इसे लिखा था और रवि की तर्ज थी। और पसंद किसकी थी ये भी बता दी जाए। इसे पसंद किया था जिला वाशिम बनोजा तांडा मैथुन से सानिका राठौर, एस आर टेलर, जय राठौर, सुनील राठौर।

तो चलिए इस संदेश के बाद बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश की ओर। तो बता दी जाए कि ये पेशकश कौन सी है। पापा कहते हैं, हाँ पापा कहते हैं फिल्म का नाम है। उदित नारायण की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, राजेश रोशन का संगीत। और पसंद किसकी? पसंद है हमारे इन श्रोताओं की, गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज। आप सबकी पसंद पर आपका पसंदीदा ये गाना।

पापा कहते हैं फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम यहीं पूरा होता है। साथियों, एक से बढ़कर एक आपकी फरमाइशें रहीं। अब आज के लिए शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग में कल आपने सुना नाटक इंस्पेक्टर जनरल का पहला भाग, आज सुनते हैं दूसरा और आखिरी भाग। ये नाटक गोगोल के प्रसिद्ध नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की।
1: अरे आप लोग खड़े ही रह गए, बैठिए ना। मेयर साहब
2: जी,
1: आप तो सचमुच बहुत ही सज्जन पुरुष हैं और मैं समझा था कि आप मुझे
2: डॉक्चिंस की जहां तक मैं सोचता हूँ ये अपने को छिपाए रखना चाहते।

0: ठीक है, हम भी ये जाहिर नहीं होने देंगे कि हम इसे पहचान गए हैं।
1: लेकिन आप इससे बातें तो कीजिए, तभी तो ये खुलेगा।
0: तुम ठीक कहते हो।
2: हुजूर, मैं कुछ कहने की दृष्टि
3: नहीं। हाँ कहिए कहिए।
2: नहीं, मैं अपने को इसी योग्य नहीं।
3: अरे आप कहिए तो।
2: देखिए, वो मेरे मकान में एक बहुत ही साफ सुथरा और हवादार कमरा है, अगर आप वहाँ। देखिए कृपया इस बात का कोई दूसरा मतलब ना निकालिएगा, मेरे मन में तो देखिए
3: क्या बात करते हैं। मैं तो खुशी से ऐसी अच्छी जगह जाने के लिए तैयार।
2: अब आपसे क्या कहूँ, मेहमान नवाजी का तो मुझे बचपन से ही शौक है।
3: मेरा सौभाग्य है कि आपसे मेरी भेंट हो गई।
1: हुजूर ने मुझे याद किया।
4: बिल्ला वो तो मैंने आपको सुबह ही दे दिया था।
3: मेरे पास इन बेकार चीजों को देखने के लिए वक्त नहीं है। ये बताओ कुल कितना बचा?
2: हां जी, आप क्यों खामखा परेशान होते? वेटर तुम जाओ, पैसे हम पहुंचा देंगे।
4: जी बहुत अच्छा।
2: हुजूर आप शहर का मुआयना करना चाहेंगे?
3: मुआयना
2: जी?
3: आपका मतलब?
2: शायद आप ये देखना चाहें कि यहाँ के दफ्तरों और दूसरी संस्थाओं में कैसा काम वाम होता है।
3: आपकी खुशी।
0: डॉबचिंस्की, मैं तुम्हें दो पर्चियां लिख देता हूँ, एक अस्पताल में जेमलियानिका को दे देना और दूसरे मेरी पत्नी को दे।
3: जी बहुत अच्छा।
2: आप इजाजत दें तो मैं अपनी पत्नी को दो शब्द लिख दे।
3: जरूर जरूर। पर यहाँ कागज तो होगा नहीं। खैर कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए कि आप इस बिल के पीछे लिख दीजिए।
2: जी शुक्रिया शुक्रिया। तुम फिक्र ना करना, इंस्पेक्टर साहब को बढ़िया खाना और एक बोतल शराब मिलने की देर है, सब मामला ठीक हो जाएगा। वो मैडीरा की बोतल ठीक रहेगी।
0: डॉबचिंस्की, ये लो। चलिए हजूर।
3: आसिफ, तुम मेरा सामान लेकर आ जाना।
0: हाँ, तुम किसी से भी मेयर साहब का बंगला पूछ सकते हो, समझे ना। आइए हजूर, आइए।
5: ओह, इंस्पेक्टर जनरल ऊंचे दर्जे के लेखक भी हैं। अच्छा डॉबचिंस्की, उसकी उम्र कितनी होगी?
6: उसकी आंखें काली हैं या भूरी?
5: मारिया तू चुप रह।
1: एकदम गबरू जवान, चेहरा ऐसा रौबदार कि अच्छा खासा आदमी दहशत खा जाए। अरे हाँ, मेयर साहब ने आपके लिए चिट्ठी दी थी।
5: ये लाओ मुझे तो
1: लीजिए। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी देख लूँ अस्पताल का मुआयना कैसा चल रहा है।
5: मिश्का मिश्का, अरे कहाँ मर गया? मारिया बेटी अब हम जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए, वो आने ही वाला होगा।
1: लो वो लोग आ गए।
3: जी सचमुच बहुत अच्छी संस्थाएं हैं आपके शहर में, और सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात से हुई कि आप प्रत्येक यात्री से इन संस्थाओं का निरीक्षण कराते हैं। दूसरे शहरों में तो यात्रियों को अंदर घुसने तक की इजाजत नहीं है।
0: अजी दूसरे शहरों में अफसरों को सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता रहती है। और एक मैं
3: आपने तो खाना भी कमाल का खिलाया मेयर साहब। सुनिए, हमने जहाँ खाना खाया वो अस्पताल ही था ना?
7: जी जी हाँ श्रीमान।
3: लेकिन वहाँ तो बहुत सारी चारपाइयां खाली थी, मेरा मतलब है मरीज थोड़े ही दिखाई दिए।
7: जी बात यह है श्रीमान कि मैं हर चंद यही कोशिश करता हूँ कि मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाए। विश्वास कीजिए हुजूर, हमारे अस्पताल तक आते आते मरीजों का बुखार उतरना शुरू हो जाता है और फिर हमेशा के लिए उतर जाता है।
0: हुजूर, मेयर की जिम्मेदारी के आगे बाकी चीजें कुछ भी नहीं है। दिमाग हर घड़ी शहर के बारे में ही सोचता रहता है, कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए। और अपने परिश्रम का पुरस्कार मैं भगवान से यही मांगता हूँ, हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हमेशा इसी तरह अपना कर्तव्य निभाता रहूं।
3: आप ठीक कहते हैं, आत्मा का सुखी सच्चा सुख है।
0: जी, जी, जी।
3: इसी आत्मिक सुख के लिए मैं कहानियां लिखता हूँ, कविता करता हूँ।
1: देखा डॉबचिंस्की, इंस्पेक्टर जनरल की एक एक बात से पता चलता है कि ये कितना विद्वान आदमी है।
3: मेयर साहब जी, आप अपने काम से थक जाते हैं तो अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? आपको ताश वाश खेलने का शौक नहीं?
0: वाह बेटा, मेरे पेट में घुसकर सब कुछ मालूम करना चाहता है, लेकिन बच्चों मैं अभी हवा नहीं लगने दूंगा। हाँ जी नहीं, मुझे कोई शौक वौक नहीं है, मुझे तो उन लोगों पर तरस आता है जो ऐसी बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद करते हैं।
3: अब साहब ये तो अपना अपना सोचना है, मैं तो अक्सर ताश की बाजी लगा लेता हूँ।
8: बड़े लोगों के बड़े शौक।
0: अरे आ आ आ, आ इधर आ इधर। ये मेरी पत्नी है एना और ये मेरी बेटी मारिया।
3: तो तशरीफ रखिए, इधर बैठिए ना।
6: ये हमारा

0: सौभाग्य है कि इस घर में आपने दर्शन दिए।
1: और मैं कहता हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी अच्छी जगह आकर इतने अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ।
0: आप पीटर्सबर्ग जैसी जगह से आए हैं, इस छोटे से शहर में तो आपको यूं बहुत बुरा लग रहा होगा।
1: क्या क्या कहाँ पीटर्सबर्ग की रौनक और कहाँ, लेकिन विश्वास कीजिए इस वक्त तो मैं पीटर्सबर्ग को बिल्कुल भूल गया हूँ, बिल्कुल। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। मैं बेकार के शिष्टाचार में विश्वास नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी को ये पता ना चले मैं कौन हूँ। लेकिन आखिर कोई कहाँ तक छिप सकता है, बताइए। कहीं भी जाता हूँ लोग फौरन पहचान लेते हैं। देखो इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलेस्कोव जा रहा है। एक बार लोगों ने मुझे कमांडर इन चीफ भी समझ लिया।
0: आप इतने आकर्षक और प्रभावशाली हैं कि
1: नहीं।
0: मैंने सुना है आप खुद भी ऊंचे दर्जे के लेखक हैं।
1: ये तो मैं नहीं कह सकता, पर लिखा मैंने बहुत। मुझे तो अपनी सब किताबों के नाम भी याद नहीं।
0: अगर मैं भूलती नहीं हूँ तो ला मिसराब आप ही का लिखा हुआ उपन्यास। पर मम्मी, ला मिसराब के लेखक तो विक्टर ह्यूगो है। मारिया, तू बीच में मत बोला कर।
1: नहीं, इन्हें डांटिए नहीं। मिस मारिया, आप ठीक कहती हैं, बिल्कुल ठीक कहती हैं। लेकिन इस नाम के दो उपन्यास, उनमें से एक मैंने लिखा है।
0: अच्छा।
1: मैडम, आप लोग कभी पीटर्सबर्ग आइए ना, स्टेशन पर उतरते ही आपको किसी से भी पता चल जाएगा इवान अलेक्जेंड्रोविच का बंगला किधर है।
0: काश हम जा पाते।
1: मैंने तो बंगले को मेहमानों के लिए ही सजा रखा है। मिसाल के तौर पर ड्राइंग रूम के ठीक बीचों बीच मेज पर क्या रखा है? हाँ, एक तरबूज रखा है। उसकी कीमत है सिर्फ 700 रूबल।
2: 700 रूबल?
1: मेहमानों के लिए सूप कहाँ से? पेरिस से बंद डब्बों में मंगाया जाता है। हर रात डरड डरड डरड डांस होता है। दुनिया भर से मेरे नाम चिट्ठियां आती और सब पर लिखा होता है योर एक्सीलेंसी वगैरह वगैरह। एक बार जब मैं होम मिनिस्ट्री में था, वहां का डायरेक्टर जनरल कहीं चला गया
3: जी।
1: सब लोगों की नजरें उस खाली कुर्सी पर थी, लेकिन किस्मत देखे सरकार ने मुझे उस कुर्सी पर बैठा दिया। मैं तो जैसे घबरा गया, सोचा मना कर दूं। लेकिन फिर ख्याल आया, वो है ना अपने वो जार सलामत नाराज हो जाएंगे। मैं जानता हूँ एक दिन जरूर वो मुझे फील्ड मार्शल बना कर रहेंगे। मुझे बहुत मानते।
2: हुजूर,
1: क्या हुजूर लगा रखी है, क्या कहना है
2: जी? आप आराम करना चाहते हो तो मेरा मतलब
1: आराम
2: जी,
1: आराम। खैर, आराम ही करते हैं। साहिबान, खाना बहुत ही अच्छा था।
0: मैं कहती हूँ मारिया, इतना विद्वान और सब व्यक्ति किसी जनरल से कम नहीं हो सकता।
4: जरूर होगा मम्मी, और सुंदर भी कितना है। बार बार मेरी ओर देख रहा था, मुझे तो बहुत शर्म आई।
5: क्या मुसीबत है, सुबह सुबह तुम लोगों ने चेचे मचानी शुरू कर दी। कुछ ख्याल है इंस्पेक्टर जनरल बराबर के कमरे में सो रहे हैं, बराबर के कमरे में। जब से उन्होंने अपने बारे में बताया है, मेरे पांव के नीचे से तो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। जानती हो है ना, शराब के नशे में आदमी दिल के सारे राज खोल देता है।
0: देखो

0: जनरल साहब का नौकर आ रहा है। आसिफ आसिफ
1: जी,
0: क्या साहब अभी सो रहे हैं?
1: जी हाँ।
2: अच्छा आसिफ साहब को क्या क्या बातें पसंद हैं? मेरा मतलब है वो किन किन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं?
3: आसिफ, तुम्हारे साहब की अभी शादी तो नहीं हुई?
2: ओ, तुम लोगों की बकवास बंद होगी या नहीं? भागो यहाँ से तुम दोनों,
0: हम लोगों को बात करने का मौका ही नहीं देते।
1: मालिक ज्यादा नखरे नहीं करते।
2: अच्छा।
1: वो बस इतना ही चाहते हैं कि जहाँ जाएं उनका और मेरा अच्छी तरह स्वागत हो।
2: ये तो होना ही चाहिए, ये तो
1: मालिक मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं।
2: ये तो होना भी चाहिए। अच्छा भैया सुनो, रात तुम्हें तो नींद अच्छी तरह आ गई थी?
1: जी हाँ जी हाँ, खूब सोया।
2: अच्छा तुमने चाय वाय भी पी है?
1: जी जी।
2: खैर एक प्याला गर्म चाय और मंगवाता हूँ। और हाँ सुनो, ये कुछ रूबल तुम अपने पास रख लो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है।
1: आपकी बहुत कृपा है।
2: ऐसा कहो भैया, तुम तो बहुत ही भले और प्यारे आदमी हो।
1: अच्छा मैं जरा देखा हूँ कहीं मालिक जाग ना गए।
2: जरूर जरूर, मैं भी जल्दी से तैयार होकर जाता हूँ।
4: भाई मेरा ख्याल ये है, ज्यादा अच्छा हो हम लोग लाइन बना लें, इंस्पेक्टर जनरल के सामने भेड़ बकरियों की तरह जाएंगे तो वो हमें गोली मार देंगे।
5: ठीक है ठीक है।
4: स्कूल सुपरिटेंडेंट साहब
5: जी
4: आप इधर आ जाइए।
5: जी
4: हेल्थ अफसर साहब आप इनके पीछे, और पोस्टमास्टर तुम इस तरफ आ जाओ।
6: और हम,
4: हमारा क्या होगा?
6: हमारा क्या होगा?
4: मिस्टर बॉब डॉब आप क्यों आए हैं? आप सरकारी मुलाजिम थोड़े ही हैं।
7: जज साहब मेरा एक सुझाव है
4: जी,
7: किसी बहाने से इंस्पेक्टर साहब की जेब गर्म कर दी जाए।
4: अरे भाई यही मैं सोच रहा था, लेकिन वो इतना बड़ा अफसर है, हमारा इरादा समझ गया तो हमें कच्चा ही चबा जाएगा। पर अगर हम ये पैसा भ्रष्टाचार उन्मूलन चंदा कहकर साहब की जेब में डाल दें तो कैसा रहेगा? कहिए क्यों पोस्टमास्टर साहब?
8: एक बहाना ये भी हो सकता है कि हम कह दें साहब हमारे डाकखाने में इतने रूबल का एक गुमनाम मनी ऑर्डर आया है।
7: सुनिए सुनिए, ये सब तरीके गवारू हैं। सभ्य प्रगतिशील और अनुशासनबद्ध देशों की तरह अच्छा यही है कि हम लोग एक एक करके अंदर जाएं, और क्योंकि इस हालत में ये बात दो आदमियों के बीच ही रहेगी। जज साहब पहले आप जाइए।
4: नहीं नहीं नहीं, पहले तुम जाओ हेल्थ अफसर साहब। सबसे पहले उसने तुम्हारे अस्पताल में अन्न जल ग्रहण किया है।
7: बाप रे, किसी बड़े अफसर को देखते ही मेरी तो टांगे कांपने लगती हैं।
9: तो आप ही जाइए ना जज साहब, आप में भाषण देने की बड़ी क्षमता है। हाँ। ऐसा लगता है जैसे प्लेटो बोल रहा है।
7: बिल्कुल जज साहब, जज साहब पहले आप ही जाइए।
4: अच्छा तो मैं ही चलता हूँ
7: जी।
2: कमबख्तों ने कल इतना खिलाया पिलाया कि अभी तक खुमारी चढ़ी हुई, लेकिन आसिफ प्यारे मजा आ गया। दो चार दिन भी यहाँ रह गए तो सेहत बन जाएगी।
7: देखो तो मेरी भी बड़ी खातिरदारी कर रहे हैं, समझ में नहीं आता क्यों। मेयर मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारे साहब को क्या क्या बात ज्यादा पसंद है।
2: ये तुम नहीं समझोगे प्यारे।
7: अच्छा,
2: इन लोगों को मेरे बारे में कुछ गलत फहमी है।
7: अच्छा,
2: कि मैं कोई बहुत बड़ा अफसर
7: हूँ।
2: आइए आइए तशरीफ लाइए। आसिफ तुम जाओ।
4: मैं इस डिस्ट्रिक्ट का शहर हूँ, माफ कीजिएगा हुजूर, मैं इस शहर का डिस्ट्रिक्ट जज हूँ। लेकिन
2: बैठे बैठे आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। सुनाइए आपका काम कैसा चल रहा है?
4: हुजूर ये काम संभालने के 3 महीने बाद ही मेरा काम देखकर सरकार ने मुझे विशेष पुरस्कार प्रदान किया था। और
2: अरे मिस्टर लैपकिन त्यापकिन, आपकी जेब से कुछ नीचे गिरा है?
4: नहीं नहीं नहीं हुजूर, भला मुझे से छोटे आदमी की जेब से क्या गिर सकता है?
2: मैं कहता हूँ जरूर कुछ गिरा है।
4: नहीं कुछ नहीं गिरा हुजूर।
2: ये कितने सारे नोट हैं? अरे भाई आप इन्हें बेकार समझते हैं तो हमें ही दे दीजिए।
4: यहाँ दिन हुजूर, ये लीजिए हुजूर, आप ही के तो हैं।
2: तो ऐसा कीजिए कि ये नोट मुझे उधार दे दीजिए, मैं बाद में वापस।
4: बाद में? ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न कीजिए, मैं आपका अमून समय खराब नहीं करूंगा। मुझे आज्ञा है।
2: जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर। अच्छा आदमी था ये भी, जज होते ही अच्छे हैं, बेचारा 400 रूबल दे गया।
7: श्रीमान मैं अंदर आने की गुस्ताखी कर सकता
2: हूँ? हाँ जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। ठीक है
7: मैं शहर का स्कूल सुपरिंटेंडेंट हूँ।
2: कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपको एक मजेदार किस्सा सुनाऊं? जी है। यहाँ आते हुए रास्ते में एक जगह जी मैं एक अजीब चक्कर में उलझ गया और नतीजा ये कि तब से जेब में एक पैसा भी नहीं है
5: जी। हुजूर अगर आप कुछ और ना समझे तो ये थोड़े से रूबल स्वीकार कर लीजिए।
2: ठीक है ये 400 रूबल मेरे ऊपर उधार समझे
5: जी। मेरे लिए ऐसा सुनना भी पाप है। अच्छा

0: मुझे आगे दीजिए। नमस्ते
1: हाँ हाँ हाँ
0: नमस्ते।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। कौन कौन साहब हैं
0: जी?
1: अरे आप वहाँ खड़े खड़े क्यों कांप रहे हैं? अंदर आ जाइए
0: जी। मेरा नाम जिमलानी का है। कल आपने मेरे अस्पताल को ही अपने दर्शनों से पवित्र किया था।
1: हाँ हाँ हाँ, लेकिन मिस्टर जेमलियानी का, मेरा ख्याल है आज आप कल से कुछ बड़े लग रहे हैं।
0: हो सकता है हुजूर, हो सकता है खुशी पाकर ही आदमी बड़ा हो।

0: देखिए ऐसा कीजिए, एक बार फिर आइएगा और मुझे सारी बातें बताइएगा।
1: जरूर।
0: देखिए यहाँ आते हुए रास्ते में ना जाने कहाँ मेरा बटुआ गिर गया। अगर आप मुझे 400 रूबल उधार दें।
1: जरूर जरूर, ये लीजिएगा। अच्छा मैं फिर आपके दर्शन करूंगा।
0: जी शुक्रिया शुक्रिया, जरूर कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा।
2: नमस्कार श्रीमान, मैं पीटर इवानोविच बाबसिंची हूँ, इस शहर का एक सच्चा नागरिक और जमींदार।
3: श्रीमान मैं पीटर इवानोविच डॉबचिंस्की हूँ, शहर का दूसरा सभ्य नागरिक और जमींदार।
1: जमींदार?
0: आप दोनों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। सुनिए, आपके पास कुछ पैसे होंगे?
2: पैसे?
0: अगर आप मुझे 1000 रूबल उधार दे सके तो।
2: विश्वास कीजिए, मैं घर से इतना पैसा लेकर चला ही नहीं।
3: क्षमा कीजिए, मैं तो घर से ही नहीं आया हूं।
0: कोई बात नहीं, मैं 1000 की जगह 100 रूबल से भी काम चला सकता हूँ।
2: डॉबचिंस्की, तुम्हारे पास 100 रूबल तो होंगे ही, मेरे पास तो कुल जमा 40 है।
3: मेरे पास भी 25 रूबल ही निकले हैं।
2: अरे ध्यान से देखो, तुम्हारी बाई जेब उभरी हुई है, कुछ रूबल अस्तर में नाटक।
0: अरे अरे आप लोग परेशान ना होइए, लाइए 65 ही दे दीजिए। हाँ आप लोग यहाँ किसी काम से आए?
2: जी हाँ श्रीमान, पीटर्सबर्ग में जिन बड़े बड़े अधिकारियों से आपका मिलना जुलना हो उनसे बस इतना अवश्य कह दें कि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं
3: और इस शहर के पीटर इवानोविच डॉबचिंस्की को भी अच्छी तरह से जानते हैं।
0: इसमें क्या है, मैं जरूर कह दूंगा, दो तीन बार कह दूंगा, बल्कि कई बार कह दूंगा, कहीं से कह दूंगा।
2: धन्यवाद श्रीमान।
0: कितने गधे हैं ये लोग, मुझे पीटर्सबर्ग का इंस्पेक्टर जनरल समझ लिया। मैंने भी रात नशे में ना जाने कहां कहां की हाँकी होगी। क्यों ना ये सारी घटना अपने लेखक मित्र ट्रिपिचकिन को लिख भेजूं, वो इस जोरदार मामले पर फटाफट कोई कहानी या फिर ड्रामा लिख डालेगा। अभी उसे चिट्ठी लिखता हूं। प्रिय मित्र ट्रिपिचकिन, तेरी नई रचना के लिए एक मनोरंजक सच्ची घटना भेज रहा हूं।
4: मालिक, शहर के कुछ व्यापारी आपके दर्शन करने और मेयर के शिकायत करने आए।
0: उन लोगों से कह दो फिर किसी वक्त आए, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। वो मुझे कुछ देने के लिए लाए हूँ तो लेना मत भूलना।
4: बहुत अच्छा मालिक।
0: अरे सुनो से
4: जी,
0: तुम एक घोड़ा गाड़ी तैयार करा दो।
4: बहुत अच्छा।
0: कह देना साहब को सरकारी काम से कहीं जाना है। अच्छा अच्छा, जरा रुको जरा रुको, ये चिट्ठी भी डाक में डाल देना।
4: बहुत अच्छा।
0: बाकी मिलने पर तुम्हारा हेलस्त को। मिस्टर वेसेलविच ट्रिपिचकिन, पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, सेंट पीटर्सबर्ग। ये लो
4: लाइए।
0: इन दो दिनों में अच्छी खासी कमाई हो गई।
5: मैं आ सकती हूँ?
0: आइए आइए, वो आए हमारे कमरे में हमारी किस्मत। मिस मारिया, मैं आपकी ही राह देख रहा था।
5: शायद आप किसी जरूरी काम में व्यस्त थे, मैंने आकर।
0: मेरे लिए आपसे बड़ा क्या काम हो सकता है मिस मारिया। ओहो, आप शर्माती हैं तो मैं जैसे अपनी सुत-पुत भूल जाता हूँ।
5: सुनिए, क्या आप मेरी नोटबुक में कुछ कविताएं लिख सकेंगे?
0: क्यों नहीं, काश काश कविताओं की जगह मैं अपना प्यार लिख सकता।
5: प्यार? वो क्या होता है?
0: ये भी जान जाएंगी, मेरे मेरे नजदीक आइए।
5: हम सीधे सादे आदमी हैं, इसी से आप हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं, मुझे जाने दीजिए।
6: मारिया तू यहाँ, ये क्या बदतमीजी है?
0: मेरी सहायता कीजिए मैडम, मैं अब मारिया के बिना नहीं रह सकता, मैं इन्हें जीवन संगीनी बनाना चाहता हूँ।
6: ओह सुन लिया मारिया, तेरी जाति और बेवकूफी के बावजूद आदरणीय मेहमान तुझसे विवाह करना चाहते हैं।
5: मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ।
0: मैडम हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए।
7: हुजूर, हुजूर, हुजूर, मेरे ऊपर दया कीजिए, शहर के व्यापारियों ने जो मेरे खिलाफ शिकायतें की हैं उनमें से एक भी सच नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
6: ओफो, इस वक्त ये बातें बंद कीजिए ना। जानते हैं साहब ने हमारी मारिया का हाथ मांगा है।
7: मूर्ख कहीं की। हुजूर आप मेरी पत्नी की बात पर बिल्कुल ध्यान ना दीजिएगा, ये तो शुरू से ही मूड मती रही
0: पर
7: है।
0: ये सच कह रही हैं, मैं मारिया से विवाह करना चाहता हूँ।
7: हुजूर इस नाचीज से मजाक कर रहे हैं,
0: मेरी बात पर विश्वास कीजिए।
7: मेरी बेटी की शादी इंस्पेक्टर जनरल से, इंस्पेक्टर जनरल से। ओ एंटन एंटोनोविच, आज से तेरी दुनिया ही बदल गई।
4: हुजूर गाड़ी तैयार,
0: हम अभी आते हैं।
1: क्या
7: हुजूर यहाँ से विदा हो रहे हैं?
0: हाँ, वो एक दिन के लिए

0: घर जाना चाहता हूँ। मेरे चाचा बीमार हैं। बस परसों तक वापस आ जाऊंगा।
1: ठीक है ठीक है। मेरा ख्याल है हुजूर इस वक्त आपके पास पैसे कम हो।
0: नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
1: तो सेवा में कितना पेश कर दूं?
0: आप मुझे 200, मेरा मतलब है 400 रूबल दे दीजिए।
1: ये लीजिए, एकदम नए नोट हैं।
0: नए नोट, नई आशा। अच्छा मैं चलता हूँ।
2: मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी।
0: प्रतीक्षा करने में बहुत आनंद आता है मिस मारिया।
1: आपकी यात्रा के लिए हमारी शुभकामनाएं।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: है ना, तुमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अचानक एक दिन हमारी किस्मत के सितारे जगमगा उठेंगे। कल तक तुम एक मामूली मेयर की बीवी थी, लेकिन आज तुम ऐसे आदमी की सास हो जिसके आगे बड़े बड़े अफसर सिर झुकाते हैं।
2: सुनिए जी, अब हम लोग इस छोटे से शहर में नहीं रहेंगे। यहाँ तो अभी से मेरा दम घुटने लगा है।
1: यहाँ रह कैसे सकते हैं? शादी के बाद इंस्पेक्टर जनरल हमें फौरन पीटर्सबर्ग ले जाएंगे। है ना, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन मेयर नहीं रहूंगा।
2: छी छी छी, आप जैसे आदमी के लिए मेयर बनना डूब मरने की बात है। देखना, आप जल्दी ही जनरल या कोई दूसरे बड़े अफसर बन जाएंगे।
1: और फिर देखना मैं शहर के इन बदमाश व्यापारियों की कैसी मट्टी पलीत करता हूँ। बेईमान कहीं के, मेरी शिकायत करने आए थे।
2: छोड़िए जी, हमें इन कबूतरों के मुंह नहीं लगना।
1: हाँ बिल्कुल।
2: अब आप अपना तौर तरीका बदलिए। इन घटिया लोगों के साथ बैठना उठना छोड़िए। काउंट, लॉर्ड वगैरह बड़े बड़े आदमियों में बैठना उठना है।
1: ओ आओ भाई, बाबा डॉक, आओ आओ आओ।
3: मेयर साहब, मेयर साहब, आपको और मैडम एना को बाब चिंस्की की ओर से बहुत बहुत बधाई।
4: और डॉक चिंस्की की ओर से भी बहुत बहुत बधाई।
1: शुक्रिया शुक्रिया। ओहो, आइए आइए मिस्टर स्कूल सुपरिटेंडेंट, तशरीफ लाइए।
5: मुबारक हो मेयर साहब, मुबारक हो। मिसेज एना, मेरी पत्नी भी आपको बधाई देने आई है।
6: भाई मेरी भी हार्दिक बधाई है मेयर साहब।
5: मेरी बात भी कबूल फरमाइए जनाब।
7: लेकिन ये बात बनी कैसे?
1: इसमें आश्चर्य की क्या बात है लियाकत कैप्टन, अफसर पहली भेंट से ही मुझसे बड़ा खुश था। उसने मुझसे मारिया का हाथ मांगा,
2: लेकिन बहुत ही तहजीब से मुझसे कहने लगा, मैं तो आपके गुणों पर मुग्ध हो गया।
8: मम्मी, ये तो उन्होंने मुझसे कहा था।
2: मारिया, बीच में नहीं बोला करते। फिर कहने लगा, अगर आपको मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है तो मैं इस जीवन से मृत्यु ही अच्छी समझता
8: हूं। ओ मम्मी, ये भी उन्होंने मेरे लिए कहा था।
2: हाँ हाँ, मैं कब कहती हूँ कि मेरे लिए कहा था।
1: मित्रों, अब मैं आपका साथ छोड़कर पीटर्सबर्ग चला जाऊंगा, शायद वहां मुझे जनरल बना दिया जाए।
6: अवश्य जाइए, अवश्य जाइए, बड़ा जहाज गहरे पानी में चलता हुआ ही छोड़ देता है।
5: आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली।
9: कई परिश्रम और ईमानदारी का फल कभी न कभी मिलता ही है।
6: हुजूर, इस गरीब को भूल न जाइएगा, अब मुझे आप ही का सहारा है।
9: कोई अच्छा मौका हो हुजूर तो इस नाचीज हेल्थ ऑफिसर को भी याद कर लीजिएगा।
1: जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर।
2: ओफो, आपकी आदत मुझे बहुत बुरी लगती है।
1: क्या?
2: अभी से दुनिया भर से वादे करने लग गए हैं। पता नहीं पीटर्सबर्ग में आपको इन छोटी छोटी बातों के लिए फुर्सत मिलती भी है या नहीं।
10: अंधेर हो गया।
1: क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बात हो गई?
10: अभी अभी अभी अभी डाक भेजने की तैयारी कर रहा था तो उस अफसर द्वारा लिखी चिट्ठी पर मेरी नजर पड़ी।
1: अच्छा,
10: लिफाफे पर लिखा था, मिस्टर टिपिचकिन, पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, सेंट पीटर्सबर्ग। पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट पढ़कर मेरे तो छक्के छूट गए। मैंने सोचा हो ना हो, जरूर बड़े पोस्ट ऑफिस को मेरी शिकायत भेजी जा रही है। मैंने उसे खोलने का इरादा किया।
1: सर, तुम्हारी ये मजाल, इतने बड़े अफसर की चिट्ठी तुमने?
10: पूरी बात तो सुनिए साहब।
1: क्या?
10: पहले तो मैंने लिफाफे को ऐसे ही थैले में डाल दिया, लेकिन जैसे जैसे मेरे दिल से बार बार आवाज आने लगी, लिफाफा खोल ले, लिफाफा खोल ले, नहीं खोलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। आखिर धड़कते दिल और कांपते हाथों से मैंने लिफाफा खोल ही दिया।
1: तुमने इंस्पेक्टर जनरल की चिट्ठी खोलने की जरूरत?
11: हाँ, मेरे साथ ठीक कहते
10: हैं। लेकिन चिट्ठी पढ़कर मालूम हुआ कि वो इंस्पेक्टर जनरल नहीं था। कोई लफंगा था।
1: क्या बकते हो तुम?
10: मैं सच कह रहा हूँ मेयर साहब, आप कहें तो वो चिट्ठी पढ़कर सुना दूं। सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए, प्रिय मित्र टिपिचकिन, तेरी नई रचना के लिए एक मनोरंजक सच्ची घटना भेज रहा हूँ। ये मेरी बहादुरी का नया किस्सा है।
1: अरे
10: खाली जेब होने पर भी मैं किसी तरह इस शहर में पहुंच गया। होटल का मालिक मुझसे तंग आकर मुझे जेल भेजने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक मेरा भाग्य जाग उठा। यहाँ के भौंदू अधिकारियों ने

0: वेशभूषा और रौब दाब देखकर मुझे इंस्पेक्टर जनरल समझ रही है। और नतीजा ये कि अब मैं ठाट से मेयर की कोठी आबाद कर रहा हूँ और लोगों से पैसा समेट रहा हूँ। आगे सुनिए, आगे सुनिए, आगे लिखा है, तुम भी यहाँ के कार्टूनों से मिल लो। एक तो मेयर साहब है, एकदम गधे जैसा दिमाग, शक्ल उल्लू जैसा है।
1: ये कहीं नहीं लिखा, तुम अपनी तरफ से पढ़ रहे हो।
0: यहाँ का हेल्थ ऑफिसर बिल्कुल सर्कस का जोकर है। स्कूल सुपरिंटेंडेंट के सारे शरीर से हींग की बदबू आ रही है।
2: क्या बदतमीजी है ये?
0: एक जज है, वो अव्वल दर्जे का ऊंचा लगता है।
1: क्या कहा?
0: और यहाँ के पोस्ट मास्टर भी हैं, वो साहेबान, मेरा ख्याल है आगे पढ़ना
3: पड़ेगा।
4: यहाँ एक पोस्ट मास्टर भी है जो सख्त बेईमान है और तुम्हारे चपरासी की तरह घटिया शराब पीता है। खैर, कुल मिलाकर ये लोग।
1: बंद करो ये बकवास।
5: मैं तो कहीं कहा नहीं रहा, वो बदमाश सारी जगह मेरी बेवकूफी की कहानी सुनाएगा, सारी दुनिया मुझ पर हंसेगी। मेरी अकल पर तो पर्दा पड़ गया था, लेकिन तुम लोगों को किस मक्खी ने काटा था जो इंस्पेक्टर आ गया कि नारे लगा बैठे? बताओ
4: मेयर साहब, सबसे पहले बाब और डाब ने ही ये गप उड़ाई थी।
2: जी हाँ, ये बाब और डाब की ही करतूत है।
1: नहीं नहीं, भला मैं ऐसी झूठी बात कैसे कहता?
6: भगवान का नाम लीजिए, मेरी इतनी जरूरत हो सकती?
1: तुम दोनों ठग इसी वक्त मेरी आंखों से दूर हो जाओ, निकलो यहाँ से। कम वक्तों ने मुझे चौपट करके रख दिया, मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से।
5: हे भगवान, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा?
1: कौन?
7: मेयर साहब हाजिर हैं।
1: क्या बात है, तुम कौन हो?
7: सरकारी हरकारा।
1: सरकारी हरकारा?
7: पीटर्सबर्ग से इंस्पेक्टर जनरल साहब अभी यहाँ पधारे हैं, होटल में रुके हैं।
1: अच्छा,
7: उन्होंने आज्ञा दी है कि आप और दूसरे सभी अफसर फौरन उनके सामने हाजिर हो जाएं।
1: क्या? इंस्पेक्टर जनरल?

ये था नाटक इंस्पेक्टर जनरल, दूसरा और आखिरी भाग। ये नाटक गोगोल के प्रसिद्ध नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण था। रूपांतरकार शैलेंद्र, भाग लेने वाले कलाकारों के नाम ब्रिजेंद्र मोहन, किशोर कपूर, बलदेव राम नागर, तिलक राज मेहता, जफर अहमद, आर एच चिश्ती, कमला कुमारी चोपड़ा, वीता नवल सिंह, शमशेर सिंह ठाकुर, कुलभूषण खरबंदा, बी एल टंडन, बी आर एल सक्सेना, करतार सिंह पवार और यतीन्द्र श्रीवास्तव। निर्देशक थे सत्येंद्र शरत और ये प्रस्तुति थी विविध भारती की। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।
2: जहां पे

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं जिस धरती का बंजारा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
3: क्या?
0: 1993

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए दूसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना
1: अमजद ने कहीं और दूसरी जगह यूनिवर्सिटी में भी कोई होता है इस किस्म का एक प्ले खेला जो जिसमें अमजद को ए मेरे वतन के लोगों नाम से प्ले खेला था अमजद खान ने, उसको वहाँ ट्रॉफी मिली थी। तो कादर खान ने फिर कहा यार रमेश तुम हमेशा ट्रॉफी ले जाते हो। मैंने कहा भाई मैं क्या, स्क्रिप्ट अच्छी होती है, ये होता है होता है। तो मैंने कहानी पढ़ी थी कृष्णचंद्र की, जामुन का पेड़। मैंने कहा यार इस पर बड़ा अच्छा प्ले बन सकता है। तो सागर साहब और कादर खान दोनों साथ में खड़े थे
2: जी।
1: तो कादर खान हमारे प्ले में मैं आग होता हूँ, मैं मेन रोल करता था, मैं कॉमेडियन का रोल करता था, मेन हीरो का रोल करता था।
2: अच्छा।
1: तो वही हम खड़े थे चर्च गेट पे गेट आउट के बाहर और मैंने कहा यार ये देखो बड़ा अच्छा, कहते यार मुझे दो मैं लिख के दूंगा। मैंने कहा ले लो। जब उसने प्ले लिखा तो मैंने कहा भाई वो प्ले लो यार, कंपटीशन नजदीक आ रहा है। चलो रमेश प्ले बहुत अच्छा बन गया, तुम साले हर बार ट्रॉफी जीतते हो, इस बार मैं ट्रॉफी जीतना
2: हाईजेक हो गया प्ले।
1: हाँ। तो वो प्ले ले लिया उसने।
2: हाँ।
1: अब मैंने दूसरा, मैंने तीन बंदर प्ले खेला
2: जी,
1: तो जिसमें मेरे एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला लेकिन ट्रॉफी कादर खान को मिली।
2: इस बार वो ले गए,
1: ले गए लास्ट। और इसी साल जो है फिर झगड़े हुए, मारामारी, खून खराबा हुआ। मुंशी जी की वाइफ वाइन स्टेज पे,
2: हाँ,
1: के एम मुंशी की वाइफ
2: जी
1: भारतीय भवन की मालकिन, उन्होंने कहा भाई बस लास्ट ईयर है, आइंदा यहाँ कंपटीशन नहीं होगा।
2: हाँ, हाँ,
1: और 13-14 साल से 52 से कंपटीशन चलता आ रहा था या 50 से चलता आ रहा था और ये ईयर था 68 या 69, वो कंपटीशन बंद कर दिया 68 में।
2: बाद में फिर शुरू हुआ,
1: फिर वो उधर बहुत बाद में किया, अभी किया
2: जी।
1: फिर वो किस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि फिर क्या हुआ कि मैं जब इप्टा में काम करना शुरू हो गया कि ये हुआ कि आखिरी क्षमा प्ले हो रहा था जो मैं जिक्र कर चुका था आपसे
2: जी,
1: कि ये प्ले था यादगार मुशायरा, दिल्ली का यादगार मुशायरा।
2: तब तक आखिर क्या थी?
1: अब मैं कॉलेज में पढ़ चुका था समझिए 23 साल,
2: और ये जो टीनेज रोल और बच्चों के रोल
1: वो तो बंद हो चुके थे, बहुत पहले पुरानी बात हो गई। तो अब ये जो इनके साथ 68 में मैंने कुछ एक दो प्ले पंजाबी में किए जो मैं हिंदी में ट्रॉफी ले चुका था, मनमोहन कृष्ण जी के साथ, अचला सिद्धेव के साथ, इनके साथ वो किए, और पंजाबी में वो तुझे आए तुझा पाशी, शतरंज के मोरे को पंजाबी में शतरंज दे मोरे के नाम से खेला
2: जी।
1: और बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा देखने आए थे और बी आर चोपड़ा ने बहुत हंसते रहे, यश चोपड़ा फर्स्ट रो में बैठे थे, जोर से हंसते थे। और प्ले ख़त्म होते उन्होंने कहा बेटा तुम आ जाओ, बी आर चोपड़ा साहब ने कहा मुझसे मिलने आओ। मैं मनमोहन जी के साथ उनके ऑफिस चला गया, बोले तुम पंजाबी पिक्चर मेरे लिए डायरेक्ट करो। उन्होंने पंजाबी में प्ले देखा था। मैंने कहा साहब मुझे तो ग्रामर आती ही नहीं फिल्म की, तो मुझे आप असिस्टेंट रख लीजिए, मैं ग्रामर सीख लूँगा फिर करूँगा आपके लिए। तो उन्होंने कहा बेटा अभी तो कोई पिक्चर चल नहीं रही हमारी, जब कोई अनाउंस होगी तो तुम आ जाना। तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कम्प्लीट हो जाएगी और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त,
2: बिल्कुल।
1: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृष्ण साहब से कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है और मुझे असिस्टेंट रख लेंगे, एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आँख से, तो मैं काफ़ी
2: आगे।
1: तो उन्होंने कहा

0: ठीक है चलो गए तो बियर कपड़ा सुन कहा हाँ हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो मनमोहन जी यश को बुलाओ भाई यश जी आए भाई कहा इसको असिस्टेंट रखो यश अपने पिक्चर में भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे तो फिर बियर चोपड़ा ने कहा 5वां असिस्टेंट बना लीजिए बैठा रहेगा कोने में देखेगा सब
1: जी।
0: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात। नेक्स्ट डे मैंने जाके वो गुजराती में प्ले देखा धुम्मस। संडे था, संडे इनका प्ले होता है जैन कॉलेज में और अरविंद जोशी रोल कर रहे थे और उसमें उनका बेटा जो आज हीरो है तो उसने उसमें अरविंद जोशी मेन रोल भी कर रहे थे। डायरेक्ट प्रवीण जोशी ने किया था शायद। और अरविंद जोशी कौन है, ये शर्मन जोशी के फादर।
1: हाँ हाँ।
0: शर्मन जोशी जो अभी हीरो है इनके फादर। तो वो प्ले मैंने सारा गुजराती में देख लिया, बम्बई में रहता हूँ इसलिए गुजराती सब समझ आती रही। गुजराती दोस्त भी थे, अमृत पटेल मेरा दोस्त था गुजराती का, मेरे नाटकों में उनके साथ काम भी करता था, हिंदी में मेरे साथ खालसा में काम करता था। मैं आया सेट पे, वहाँ कोने में स्क्रिप्ट पड़ी थी हिंदी की, कॉपी लेके पढ़ डाली कोने में, अभी लाइटिंग वाइटिंग चल रही है। एक सेट था बंगले का जिसमें पूरी पिक्चर उस बंगले में ही है, वो पढ़ डाली। अब मैं एकदम क्लियर कट, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ।
1: Yes.
0: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है 5 आने में। फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुरला एक आने का टिकट, वहां जाता 5 आने की पिक्चर, एक आने का खाना और एक आना वापस आना, ठन्नी में
1: काम बन जाता था।
0: काम बन जाता।
1: कौन कौन सी फिल्में देखी
0: सब होगी? कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो मैंने देखी है। बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में, बी आर चोपड़ा की सारी, वी शरणम की सारी,
1: मतलब
0: सारी फिल्में जो अच्छी फिल्में कहलाती थी वो सारी फिल्में मैं छोड़ता नहीं था। पहले दिन जाता था, लाइन लगाता था 5 आने में, वहाँ पे आगे कई बार ब्लैक वाले उठा के पीछे फेंक भी देते थे, छोटा सा दिखता था उठा के पीछे कर देते थे। जो मैं पहला नंबर था तो 25वां नंबर हो जाता था लेकिन टिकट मिल जाता था। तो वो 5 आने का लेके बैठता था, देखा करता था।

0: भी बन चुका था तब तक, बहुत सी बातें, मतलब इस सेट पे जब मैंने सब देख लिया तो पांच चार राइटर वहां थे, अख्तर मिर्जा, अख्तर उलेमान, सीजे पावरी, ये सब वहां पे थे। बी आर चोपड़ा जी भी सेट पे कई बार आते थे, यश चोपड़ा जी खुद थे, तो ये सेट पे सब रहते थे, क्योंकि एक महीने की पिक्चर है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए।
1: हाँ,
0: देख लो कोई लास्ट मोमेंट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो सबकी ड्यूटी थी कि आप सुबह टाइम पे आ जाओ 9:30 और शाम तक 8 बजे तक चलती छुट्टी रहो सब। अब साहब वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया, कहाँ अटका हुआ है, तो मैं भी अपना, क्योंकि मैं धूमत भी देखा, ये भी देखा, और वो क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम क्या समझ रहे हैं, ये क्यों नहीं हो, ऐसा क्यों, उनकी क्वेश्चन जो थे उसका आंसर मैं सोचता जा रहा हूँ, और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें। अचानक वो बी आर चोपड़ा साहब ने मुझे डांट दिया, है कब कल का बच्चा, मैं कोने में चला गया, मतलब मैंने कोई गलत बात कर दी, बड़े बड़े राइटर आप डिस्कस कर रहे हैं, बीच में अपनी होशियारी दिखा रहा हूँ, ये उनके हिसाब से था, कोने में बैठ गया मैं। जब सब डिस्कशन हो गई, बात बनी नहीं उनकी, फिर उन्होंने कहा यहाँ किसी ने कुछ बोला था, मैंने स्कूल के बच्चे की तरह हाथ ऊपर किया, सर नीचे ही रखा, और उन्होंने कहा हाँ बोलो, तो मैंने कहा ऐसा कर ले, तो कुछ जो भी छोटी मोटी, तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे, यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया कि इसको जबरदस्ती 5 वर्ष से रखकर कोने में बैठा, साहब आगे चले, फिर एक जगह और रुक के कहीं इसी तरह डिस्कशन हुई, मैं भी अपने उस तरह ही सोचने लग गया। जब ये सब बोलते रहे इनका, मैं जल्दी कंप्यूटर दिमाग की तरह, राइटर बड़े क्या कह रहे हैं, इसमें से चीज निकालूं, करते करते करते करते मेरी चीज मुझे समझ आई, कुछ समझ आई, तो मैंने फिर चुपचाप बोला नहीं, शोर नहीं किया, हाथ ऊपर किया, तो चोपड़ा साहब ने कहा हाँ बोलो बेटे, मैंने कहा ऐसा कर ले, तो सारे राइटरों ने कहा बहुत अच्छे बेटा, वाह
1: वाह
0: यही चाहिए था,
1: क्या बात है,
0: और वो सब सीनियर राइटरों ने अप्रूव किया, ओके होगी चीज। अब साहब लास्ट डे जब था, तो सुबह से हम लोगों ने काम शुरू किया, सेट टूटना था नेक्स्ट डे, और एंड में लोग सब थक के सो गए, कुछ शॉट यश जी ने लिखवा दिए थे, ये शॉट भी लेने हैं, विदाउट आर्टिस्ट है। उस वक्त मैं और ऑपरेटिव कैमरामैन रोमेश भल्ला जी थे,
1: जी जी,
0: हम दो रह गए थे, बाकी सब सो चुके थे, मतलब फुल 24 घंटे काम कर चुके थे ना।
1: हाँ।
0: लेकिन हम तो अभी अलर्ट थे
1: जी,
0: हम तो अभी बच्चे थे, जोश वाले, तो हमने वो शॉट जैसी के पेपर लिया।
1: हाँ।
0: और वो शॉट ले लिए,
1: वाह वाह,
0: तो जैसी की अचानक आंख खुली, तो उन्होंने कहा ये वो यार वो शॉट ले लो, तो जैसी हमने लिए आप देख लीजिए, पर वो तो उस वक्त तो देख नहीं सकते, तो उन्होंने कहा जी जैसा आपने लिखा वैसा लिया, ऐसा घुमाया कैमरा, ये गोल गोल कैमरा घूमता है सेट के ऊपर, तो नीचे लोग सोए हुए थे इसलिए हमको थोड़ा ऊपर रखना पड़ा, ये बताया उनको कैसा किया, और ये भी ले लिया, वो चीज उसका क्लोजअप भी ले लिया, उसका भी दरवाजे का जो आपने कहा वो ले लिया, ये ले लिया, सब ले लिया, और रमेश वाला पुराना आदमी था उनका जो ऑपरेटिव कैमरा, उनको भरोसा था कि ये झूठ नहीं बोल रहे होंगे, और वो जो कुछ जो बातें मैंने बोली भी थी उनको मेरी समझ पे थोड़ा सा यकीन भी हो चुका था। अलबत्ता वो सेट टूट गया नेक्स्ट डे, उन्होंने चीजें देखी, वो पिक्चर में लगी हुई भी है, वो वाले शॉट लगे हुए। अब साहब वो पिक्चर कम्प्लीट हो गई एक महीने की, अब मैं खाली हो गया, अब उनकी कोई और पिक्चर चल नहीं रही, और मैं चला गया अपना, अपने आप को समझने लग गया था कि अभी है नहीं, मैं कहीं और काम में, तो कहीं और काम करने लग गया, कोई एक जगह जिसके यहाँ कुछ छोटी पिक्चर बन रही है उसके साथ 2-4 दिन काम कर लिया, एक और पिक्चर बाहर वाला कोई आया था, उसने कहा मैं फॉरेन में पिक्चर बनाना चाहता हूँ, ये स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, तो वो कर रहे थे, तो इतने में मैसेज आया।

0: यश जी का, यश जी का मैसेज ऐसे आया कि मैं गया था, मेरा एक प्ले ओपन हो रहा था तन्हाई, जिसमें शौकत कैफी रोल कर रही थी मेन फिल्म एक्टर, रिटायर्ड फिल्म एक्ट्रेस का,
1: शबाना आजमी की माँ,
0: हाँ, और उसमें भरत कपूर उनका बेटे का रोल कर रहा था
1: जी।
0: तो मैंने कहा कि आप प्ले देखने आई, तो वहाँ शशि कपूर शूटिंग नीचे कर रहे थे, उनके पास भी गया, मुझे पता है थिएटर के बहुत वो हैं, तो मैंने कहा शशि जी ऐसा प्ले है मेरा, आप देखने आइए। तो कह रहे हैं बेटा मैं पहले शो पे कभी आता नहीं हूँ, चार पांच शो के बाद आता हूँ। बोला आज देख लीजिए, फिर पांचवा मेरा फिर देख लीजिए, गलतियाँ ही पता चल जाएंगी हमको, समथिंग लाइक दैट। तो अलबत्ता वो भी आ गए देखने, प्ले तेजपाल हॉल में खेला
1: जी।
0: तो प्ले देखने के बाद यश जी ने बोला बेटा तुम कल राजकमल स्टूडियो आ जाओ। फिर आहिस्ता से कहा मैं भाई साहब से अलग होके कंपनी अपनी खोल रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा ऐसे फॉरन का एक आदमी आया, वो चाहता है कि फिल्म बनाऊँ यहाँ पे। नहीं नहीं बेटा तुम आओ मेरे पास। तो नेक्स्ट डे में आया, इन्होंने अपनी यशराज फिल्म शुरू करनी थी, वहाँ पे उन्होंने बताया कि ऐसे पिक्चर बना रहा हूँ, मैं तीन पिक्चर बनाऊंगा, एक में ये मेरा चीफ असिस्टेंट होगा फलाना आदमी, फिर दूसरा बताया ये असिस्टेंट है मेरा, ये दूसरी पिक्चर में जो प्राण मेहरा डायरेक्ट करेंगे उसमें ये चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, और एक पिक्चर मनमोहन कृष्ण डायरेक्ट करेंगे जिसमें तुम चीफ असिस्टेंट होगे।
1: ओके।
0: तो मैंने कहा मैं असिस्टेंट बनना चाहता हूँ, चीफ असिस्टेंट, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, चीफ असिस्टेंट बनने से मेरा कोई नहीं, मुझे आप थर्ड असिस्टेंट रख लीजिए, पाँचवा रख लीजिए, मैं आऊँगा। तो मैं उनको फॉरन वाले को मना कर दिया कि साहब मैं इनकी रेगुलर कंपनी शुरू हो रही है, तो मुझे नौकरी मिल रही है, मैं जा रहा हूँ।

0: जैसे ही तब यहाँ पे पालील पे रहने आ गए थे
1: जी,
0: तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे इतने पैसे मिलेंगे तुम्हें उसके लिए, असिस्टेंसी के लिए। तो मैंने हल्का सा, मैं बीच में थोड़ी देर, मैंने बताया आपको, सचिवालय में नौकरी की, जब मैं प्ले डायरेक्ट करता था ना,
1: हाँ।
0: शफी नामदार, फारूक शेख वगैरह, तो सचिवालय में नौकरी भी करता था, वो टेम्परेरी जॉब था
1: जी।
0: तो वो 15 महीने मिला, 3-3 महीने का एक्सटेंशन होता था
1: जी जी जी।
0: तो 15 महीने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमको नहीं चाहिए आप। तो मैंने पार्टी दी लोगों को कि मैं फ्री हो गया, ये कुलदीप वगैरह सबको पार्टी दी कि अब मैं फ्री हूँ।
1: हाँ।
0: तो फिर मैं आके इप्टा में आके मैंने ये नाटक शुरू किए थे कि आज़ाद हो गया, मेरे को कोई ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं। तो अब जब मैं ये सब कर रहा था ऑलरेडी, तो मुझे वो जो 400 रुपये महीना मिलता था सचिवालय में, तो जो भी यश जी ने मुझे तनख्वाह बोली, तो मैं यश जी वहाँ क्लर्की के 400 रुपये मिला करते थे, यहाँ तो असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, तो देख लीजिए जो देना आप दे दीजिए, मैं ले लूँगा। तो उन्होंने मेरी तनख्वाह 400 रुपये रखी
1: जी जी। वाह वाह।
0: तो 400 रुपये का ये फायदा था कि कोलीवाड़ा से पाली हिल तक 1 रुपया लगता था टैक्सी का।
1: अच्छा।
0: मैं टैक्सी में बैठ के आता था उनके घर में 1 रुपये में, तो 30 रुपये महीने का मेरा वो खर्चा था। बाद में उनकी गाड़ी होती थी।
1: हाँ।
0: उनके साथ राजकमल स्टूडियो जाते थे उनकी गाड़ी में बैठ के, वापस उन्हीं के घर पाली हिल पे आते थे, फिर मुझे जाना होता साधना स्कूल में रिहर्सल के लिए ड्रामे की। वो अपनी गाड़ी भेजते थे, बेटा रामचंद्र को ले जाओ गाड़ी, जाओ तेरे को छोड़ के आ जाएगा, वो मुझे वहाँ छोड़ देता था, मैं आ जाता। तो इन चीज़ों में जो लिंक वाले बातें याद आती हैं याददाश्त में, हुआ ये कि कुछ बम्बई बंद हो गई, हम वापस जब जाते थे ना, तो ड्रामे की जो रिहर्सल कर रहे थे उसमें फारूक शेख, भरत कपूर,
1: हाँ,
0: रमन कुमार,
1: हाँ,
0: तो ये सब काम कर रहे थे। तो हम लोग बस की स्ट्राइक हो गई तो ट्रक में जाया करते थे, तभी एक जमाना था थोड़ी देर तक BST की स्ट्राइक हो गई थी
1: जी जी।
0: तो ट्रक वाला 4 लेता था, 8 लेते थे, और भरत कपूर ने उन दिनों एक फिल्म में हीरो का रोल किया था, वो पिक्चर का नाम था गुप्त ज्ञान, वो सेक्स के बारे में कुछ, ये डॉक्टर थे। जैसे हम ट्रक में बैठते थे, कुछ लोग ऐसे मजदूर टाइप के लोग पास आते थे इनके, डॉक्टर साहब हमने आपसे कुछ पूछना है। तो एक्चुअल देखिए, एक्चुअल डॉक्टर समझने लग गए, और हम लोग सब जो है बैठे, वो तो हम दादर सब लोग उतरते थे, वहां से पैदल खालसा कॉलेज तक, वहाँ भाजी पाव वगैरह खाते थे, फारूक शेख अपना चला जाता था बाइक वाला अपने घर मेमनी बिल्डिंग में, बस में बैठ के, और मैं कोलीवाड़ा पैदल वहाँ से किंग सर्कल से घर पे। तो ऐसा जिंदगी जो चल रही थी, नाटक हो रहे हैं साथ में, ये यश चोपड़ा का ये काम शुरू हो गया।
1: ये दाग फिल्म थी,
0: ये पहली स्वीट दाग,
1: और आप दाग चीफ असिस्टेंट थे?
0: नहीं, पहले मैं चौथा असिस्टेंट था, तीसरा। तो वो क्या हुआ, जो चीफ असिस्टेंट साहब थे बड़े वाले जो नंबर 1 थे, वो उनको इंटीरियर डेकोरेशन कास्ट्यूम की बहुत समझ थी, वो ज़्यादा उस तरफ का करते थे। तो काम जो है वो मुझे, क्योंकि नाटक वाला हूँ, डायलॉग देना,
1: हाँ,
0: रिहर्सल करवाना,
1: चेंजेस करना
0: वो सब मुझे वो था, क्लर्की करना, मैं लिखता था कंटिन्यूटी,
1: हाँ,
0: वो सब करना, तो ये सारा काम मैं करता था। अलबत्ता एक साहब गए, उसका जो दूसरे साहब थे वो यश जी के साथ बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते रहे, वो नाटक वाले नहीं थे, सिनेमा वाले नहीं थे, उधर BA जब इन्होंने इनके संग की थी वहाँ नौकरी कर रहे थे, यश जी ने बुला लिया, अपना दोस्त है बचपन से साथ में थे उनके,
1: हाँ हाँ,
0: तो वो यहाँ आ गए। अब उन्होंने कहा देखो वासुदेव धीर,
1: हाँ
0: भाई देखो पैसे का मामला है, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, ये तुम संभालो। तो उनको कैश, ये सब प्रोडक्शन, वो सब पैसे का मामला उन पे डाल दिया, वो बाकी चीज़ें कर, कास्ट्यूम वगैरह कर रहे थे और सेट का देखते थे और कलर स्कीम का सोचते थे, और ये सारा काम आता था मुझे, टेक्निकल मेरे ऊपर आ गया। क्लैप भी देता था, कंटिन्यू भी लिखता था, डायलॉग भी देता था,
1: हाँ,
0: तो वो सारी चीज़ों से मेरी जो है ना
1: ट्रेनिंग होती,
0: ट्रेनिंग हो गई।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:30 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। श्रोता, हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। सभा के आरंभ में सुनिए युवाओं को संबोधित युववाणी।

0: नहीं इताबे ज़माना खिताब के काबिल, नहीं इताबे ज़माना खिताब के काबिल, तेरा जवाब यही है कि मुस्कुराए जा, तेरा जवाब यही है कि मुस्कुराए जा। बस दोस्तों मुस्कुराते हुए चले जाइए, क्योंकि ये ज़माने की नाराज़गी कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली। तो मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते हुए चलते चलिए। हाफिज जालंधरी के इस शेर के साथ दोस्तों आपका स्वागत है युववाणी के इस नवीन अंक में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त धारिणी।
1: और धारणी के साथ आज आपके लिए हंसी ठिठोलियों की सौगात लेकर आई हूं मैं, यानी आपकी रेडियो दोस्त दिव्या।
0: दोस्तों अपनी रेडियो हम सफर धारिणी और दिव्या का नमस्कार।

0: स्वीकार।
1: और हो जाए तैयार बहुत सारे लाफ्टर डोजेस के लिए। वर्ल्ड लाफ्टर डे के मौके पर जो आपको हमने हंसाया नहीं, तो दोस्तों हमें आज का दिन अधूरा अधूरा सा लगेगा। ढेर सारे जोक्स के साथ वर्ल्ड लाफ्टर डे से जुड़ी चर्चा होगी। दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस के बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी है और इस पर भी आज हम करेंगे बातचीत। दोस्तों आज के स्पेशल सेगमेंट स्वरांजलि में सजेगी सुरों की महफिल, होगी किसी ना किसी कला प्रेमी से बातें।
0: और आज कौन कला प्रेमी हमसे जुड़ेंगे ये आपको आगे ही पता चलेगा। राज को राज रहने देते हैं थोड़ी देर, फिर जानेंगे स्पोर्ट्स अपडेट्स और रोचक तथ्य। चलिए दोस्तों करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे गाने के साथ जिसे सुनकर आपको मजा भी आएगा, एनर्जेटिक भी आप हो जाएंगे और हंसते हंसते आपका पेट कहीं फूल ना जाए। दोस्तों

0: तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मूवी टशन से ये प्यारा सा गाना सुनिधि चौहान, सुखविंदर और उदित नारायण की आवाज में। चलिए दोस्तों अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं प्रेरक पंक्ति के साथ।
1: बिल्कुल धारिणी, आज की प्रेरक पंक्ति है, अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक छोटा सा दीपक जलाया जाए।
0: वाह क्या बात कही है दिव्या, ये पंक्ति भले ही बहुत सरल है लेकिन इसका अर्थ बहुत ही ज्यादा गहरा है।
1: हाँ धारिणी, जब हमारे जीवन में समस्याएं या कठिनाइयां आती हैं तो हम अक्सर शिकायत करने लगते हैं, किस्मत को दोष देने लगते हैं या सिचुएशंस को ही कोसते हैं। लेकिन ये पंक्ति हमें सिखाती है कि समस्या पर ध्यान देने के बजाय समाधान की ओर कदम बढ़ाना ज्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल दिव्या, अगर हम छोटी छोटी कोशिशें भी करते हैं तो धीरे धीरे बड़ी मुश्किलें भी हल होने लग जाती हैं।
1: जी दोस्तों, धारिणी ने बिल्कुल सही कहा, शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक छोटा सा प्रयास बड़ा बदलाव ला सकता है।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, और इसी प्रेरणा के लिए चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला ट्रैक।

0: अभी आपने सुना दोस्तों फिल्म बर्फी से ये बेहतरीन सा गाना जिसे गाया था मोहित चौहान ने, सुर थे शब्द थे स्वानंद किरकिरे के और म्यूजिक दिया था प्रीतम ने।
1: चलिए दोस्तों, अब बारी है चर्चा की वर्ल्ड लाफ्टर डे यानी विश्व हास्य दिवस पर, जो कि इस साल आज के दिन यानी 3 मई को मनाया जा रहा है। इस दिवस को हर साल दोस्तों मई के पहले रविवार को मनाया जाता है, जो कि आज है।
0: वर्ल्ड लाफ्टर डे यानी विश्व हास्य दिवस बस एक स्पेशल डे नहीं बल्कि एक रिमाइंडर भी है कि जिंदगी बस संघर्ष से नहीं, हंसते मुस्कुराते प्रसन्नचित्त होकर संघर्ष करने से सफल और बेहतरीन बनती है। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर मुस्कुराना भूल जाते हैं, जबकि एक छोटी सी हंसी तनाव को कोसों दूर कर मन को हल्का कर सकती है धारिणी।
1: और दोस्तों, अगर हम हंसना चाहते हैं तो मुस्कुराने की वजह हंसने की वजह ढूंढे क्यों? आप खुद किसी की हंसी मुस्कुराहट की वजह बने, फिर देखें बदले में आपको कितनी खुशी मिलेगी दोस्तों।
0: और जहां तक ठहाके लगाकर हंसने की बात करें तो वो किन्हीं की बातों पर, कॉमेडी पर, जोकों पर हमें आ ही जाता है। और आज लाफ्टर डे होने के कारण आपको हंसाना तो जरूरी है दोस्तों।
1: इतने जोर से हंसी दोस्तों की आवाज यहां तक आए। चलिए फिर आपको एक जोक सुनाती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, ये कुछ ऑफिस और घर का सेटअप आप माइंड में इमेजिन कीजिए। बॉस अपने एम्प्लॉय को बोलते हैं कि तुम ऑफिस देर से आते हो। तो कर्मचारी बोलता है, सर मैं तो जल्दी आता हूँ लेकिन रास्ते में मुझे वो गाना याद आ जाता है, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा ठहरो।
0: अब मैं भी एक चुटकुला सुनाती हूँ धारिणी। एक टीचर होते हैं, अगर टीचर कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें 2 सेब दूं, फिर 2 और दूं, फिर 2 और दूं, तो
1: कितने सेब
0: कुल
1: देंगे?
0: वही तो प्रश्न है। टीचर ने वही प्रश्न पूछा।

0: पूछा अपने स्टूडेंट से कि टोटल कितने फल हुए। तो स्टूडेंट ने कहा 7। टीचर ने कहा अरे ये तो गलत है, 2 + 2 + 2।
1: हाँ दिव्या जी, लेकिन 2 + 2 + 2 तीन बार, तो ये 6 हो रहा है। सही तो था, 6 सही
0: तो
1: है।
0: तब स्टूडेंट ने कहा मैम मेरे पास पहले से एक सेब था।
1: बताइए क्या क्या जोक्स होते हैं, क्या क्या जोक्स सुनने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों जोक्स तो हमने सुना दिए, लेकिन क्या आपको पता है इतिहास के पन्नों को पलटें तो

0: क्या जोक्स सुनने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों, जोक्स तो हमने सुना दिए, लेकिन क्या आपको पता है, इतिहास के पन्नों को पलटें तो चुटकुलों का सबसे पुराना प्रमाण हमें प्राचीन यूनान, मतलब कि आज के ग्रीस में मिलता है। फिलोगोलिस नाम की एक किताब, माना जाता है इसे लगभग 1600 साल पहले लिखा गया था। ये दुनिया की सबसे पुरानी जोक वाली बुक कही जाती है दोस्तों। इस किताब में 265 छोटे छोटे चुटकुले और हास्य कथाएं पाई गई हैं।
1: अब थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। विश्व हास्य दिवस की शुरुआत 1998 में भारत में हुई थी। इसे डॉक्टर मदन कटारिया ने शुरू किया था, जो लाफ्टर योग आंदोलन के संस्थापक हैं। उनका मानना था कि हंसी न केवल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि ये लोगों को जोड़ने का भी काम करती है।
0: उस दिन का उद्देश्य लोगों को हंसाने के लिए, प्रेरित करने के लिए और तनाव मुक्त करने के लिए माना जाता है, और साथ ही साथ लोगों को और आगे बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो अपने लाइफ के संघर्ष के साथ साथ हंसते खेलते कूदते आगे बढ़ते रहें। यही इस दिन का उद्देश्य है दोस्तों। आज के समय में दोस्तों, तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं वैसे भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं।
1: ऐसे में हंसी एक प्राकृतिक दवा की तरह काम करती है। यही कारण है कि इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, चलिए अब हंसने के कुछ वैज्ञानिक फायदे भी जान लिए जाए।
0: जरूर जरूर।
1: हंसने से शरीर के एंड्रोफिन हार्मोन रिलीज होते हैं, जो खुशी का एहसास देते हैं।
0: और दोस्तों, इतना ही नहीं, ब्लड प्रेशर को भी हमारी हंसी कंट्रोल करती है।
1: हंसने से इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है दोस्तों, तो हंसते रहिए।
0: और दोस्तों, हंसी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करती है। यही वजह है कि हंसी को बेस्ट मेडिसिन कहा जाता है। दोस्तों, आज के वास्ट एंड फास्ट लाइफ में जहां हम अपना क्वालिटी टाइम स्क्रीन को देते हैं, वहीं अगर थोड़ा सा समय अपनों को दें, उन्हें हंसाएं, उन्हें बहलाएं और खुद भी हंसे उनके साथ साथ, तो जिंदगी हमारी खूबसूरत बन जाएगी दोस्तों, और ये पूरी दुनिया हमें और ज्यादा खूबसूरत लगने लग जाएगी।
1: आप सभी से आग्रह है कि थोड़ा समय दोस्तों खुद को भी दें, अपने आसपास लोगों को भी दें। स्क्रीन टाइम कम करें, क्योंकि आजकल खुशियों के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में उभर रहा है स्क्रीन टाइम।
0: जी बिल्कुल, जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम हो रहा है, उतना ज्यादा ये हमारा दुश्मन बनता जा रहा है।
1: बिल्कुल, आप बगल में बैठ के भी कम्युनिकेशन गैप हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम। तो आप उस मोमेंट को एंजॉय करें जिस मोमेंट में आप हैं।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, और ये तो बेशक बहुत ज्यादा ख्याल रखें इस बात का कि हंसी मजाक करते रहिए, ताकि आप भी खुश रहे, सामने वाला भी खुश रहे। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का अगला ट्रैक, ऑल इज

0: अरे दोस्तों, ऑल इज वेल। जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म थ्री इडियट्स से सोनू निगम और स्वानंद किरकिरे और शान की आवाज में ये हंसी ठिठोली वाला गाना। चलिए दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।
1: आज का दिन बहुत खास है धारिणी, आपको पता है क्यों?
0: हाँ दिव्या, क्योंकि आज हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे लोकतंत्र की एक तरह से आप कह लीजिए नींव है।
1: बिल्कुल दोस्तों, आज है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस।
0: लेकिन दिव्या, प्रेस फ्रीडम डे मनाया क्यों जाता है?
1: ताकि हम मीडिया की स्वतंत्रता के महत्व को समझ सके और उन पत्रकारों को सम्मान दे सके जिन्होंने सच दिखाने के लिए संघर्ष किया। इसलिए हर साल 3 मई को ये दिन हम मनाते हैं।
0: दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आज का दिन सिर्फ एक सेलिब्रेशन का दिन नहीं है, बल्कि एक बहुत जिम्मेदारी वाला, एक बहुत बड़े दायित्व वाला दिन है। और ये हमें याद दिलाता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर चीज़ को निष्पक्ष लोगों के सामने रखें।
1: बिल्कुल धारिणी,
0: दिव्या, आपको पता है कि इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी, जब यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस ने इसे अधिकरण रूप से घोषित किया था।
1: अब बात करते हैं इसके महत्व की।
0: जी दिव्या, बिना स्वतंत्र मीडिया के लोकतंत्र बिल्कुल अधूरा अधूरा सा है।
1: जी हाँ दोस्तों, प्रेस जो है वो जनता और सरकार के बीच एक पुल का काम करती है। लोगों को जागरूक करना, सच्चाई दिखाना, वो भी निष्पक्ष होकर, ये सारे जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रेस के ही हैं।
0: और दोस्तों, यही वजह है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी इसे कहा जाता है। लेकिन दिव्या, क्या ये प्रेस पूरी तरह स्वतंत्र है?
1: देखिए धारिणी, सच्चाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के साथ मीडिया का विस्तार तो हुआ है, मगर कई जगहों पर पत्रकारों को दबाव, सेंसरशिप और खतरे का सामना भी करना पड़ता है।
0: हाँ दिव्या, और सोशल मीडिया के दौर में फेक न्यूज़ भी एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी चुनौती बन के उभर रहा है आजकल।
1: बिल्कुल धारिणी, इसलिए आज के

0: समय में जिम्मेदार पत्रकारिता और भी ज्यादा जरूरी हो रही है, और भी ज्यादा इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ रही है जी।
1: और दोस्तों, आज के दिन हम उन उन सभी पत्रकारों को याद करते हैं जिन्होंने सच के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी।
0: उनका साहस हमें सिखाता है कि सच्चाई की आवाज कभी दब नहीं सकती।
1: आज के युवाओं के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि एक जिम्मेदार जागरूक नागरिक बने और सभी खबरों को सोच समझकर पढ़ें, लिखें, समझें और आगे भी लोगों तक उसे पहुंचाएं।
0: बिल्कुल दोस्तों, फेक न्यूज से बचें और सच्चाई का साथ दें,
1: क्योंकि जागरूक नागरिक ही मजबूत देश की नींव है और वही एक देश को मजबूत बनाता है।
0: आज के इस मौके पर याद रखें, आजाद प्रेस ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है।
1: तो दोस्तों, आप ये ठान लें कि आप हमेशा सच का साथ देंगे और हमेशा सही जानकारी फैलाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी बात पर सुनते हैं अब अगला ट्रैक।

0: अभी आपने सुना ये धमाकेदार सा गाना फिल्म साथिया से, जिसे गाया था आशा भोसले और कार्तिक ने।
1: दोस्तों अब वक्त हो चला है आज के हमारे यानी रविवार स्पेशल सेगमेंट स्वरांजलि का। आज हमसे जुड़ेंगी लोकगीत कलाकार और संगीत प्रेमी खुशी रानी। चलिए सजाते हैं स्वरांजलि के इस विशेष स्वरांजलि को इस विशेष बातचीत के साथ।
2: स्वागत है श्रोताओं आपका हमारे खास सेगमेंट स्वरांजलि में। आज स्वरांजलि में हम आपको सुनाने जा रहे हैं बिहार की लोकगीत की दुनिया में उभरती युवा आवाज खुशी रानी जी को। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है खुशी जी।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजलि जी।
2: खुशी जी, सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हमें और हमारे श्रोताओं को अपनी सुरीली आवाज में कुछ पंक्तियां सुनाएं।

0: दोसिया।
1: बहुत ही प्यारी आवाज है खुशी जी आपकी। इसे सुनने के बाद आपके बारे में जानने की उत्सुकता और बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले आप हमें और हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए।
0: मेरा नाम खुशी रानी है, मैं पटना सिटी की रहने वाली हूँ। मैं लोक गायिका हूँ और मैं लोक गीत सीखते सीखते अपनी पढ़ाई भी पूरी की। मैं कॉम्पिटिशन में भी गई, जिसमें श्रावणी मेला में, बिहार दिवस में और भी कई जिलों में कार्यक्रम की हूँ और आगे भी करती रहूंगी।
1: खुशी जी, संगीत में कई सारी विधाएं हैं। शास्त्रीय संगीत है हमारे पास सुगम संगीत है। लोकगीत ही आपने क्यों चुना? आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली?
0: लोकगीत एक झूमर लगता है, जैसे गाते ही लगता है ना कि हम नाचने लगे। लोकगीत में ये खासियत होता है। शारदा सिन्हा जी से ज्यादा हमको प्रेरणा मिली।
1: तो खुशी जी, लोकगीत का प्रशिक्षण आपने कहाँ से लिया?
0: मैं सरगम कलाकृति केंद्र से ली। हमारे गुरु जी का नाम विनोद पंडित जी है।
1: तो खुशी जी, रियाज पढ़ाई दोनों को साथ में कैसे मैनेज कर रही हैं?
0: मैं रियाज तो सुबह शाम करती हूँ अपने गाने का, और पढ़ाई मैं सारे कामों को समय के साथ चलती हूँ। जैसे अगर मैं पढ़ाई भी की, साथ में म्यूजिक का भी तैयारी की, लोकगीत भी सीखी। सब कुछ का एक समय होता है। जो व्यक्ति समय के अनुसार चलता है उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है।
1: तो खुशी जी, बिहार के लोकगीत के बारे में हमें बताइए, कब, किस मौसम में या किस अवसर पे कौन सा लोकगीत गाया जाता है?
0: लोकगीत अपनी जीवन शैली और संस्कृति को व्यक्त करने के लिए गाया जाता है और ये पारंपरिक गीत होता है। लोकगीत मुख्य रूप से त्यौहार, शादी विवाह, फिर जन्म मृत्यु, फसल कटाई, विभिन्न शुभ अवसर व सामाजिक अवसरों पर गाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ, विवाह की रस्में, फसलों की कटाई और भी कई समुदाय को जोड़ते हुए लोक संस्कृति को दर्शाते हैं।
1: तो खुशी जी, सबसे अच्छा आपको इसमें क्या लगता है? मतलब कौन सा लोकगीत है जो आपके दिल के सबसे करीब है?
0: विवाह गीत शारदा सिन्हा जी का।
1: कुछ पंक्तियां गुनगुना दे
0: तो।

0: दूल्हा।
1: दोस्तों आपको बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं युवा लोक गायिका खुशी जी। खुशी जी, एक कलाकार के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, आपके भी जीवन में आए होंगे। उस दौरान आपने खुद को कैसे संभाला था?
0: मैं तो शुरू से, हमारा जो है बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा।

0: बीवी से ही गुजरी हूँ, लेकिन हमारी मम्मी एक ही बात बोलती थी कि बेटा, पढ़ने वाला बच्चा और कुछ सीखने वाला बच्चा, वो मेहनत करके कोई भी चीज़ को हासिल कर सकता है, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो जॉब हो, किसी भी तरह का प्रतियोगिता हो।
1: बहुत सुंदर कहा करती हैं आपकी माँ। तो आप कहीं, मुझे लगता है आपकी माँ से भी आपकी प्रेरणा जुड़ी हुई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो खुशी जी, भविष्य के लेकर के आपकी क्या प्लानिंग है? कहाँ तक आपको जाना है, या क्या आपने सोच रखा है कि मुझे ये करना है, या कुछ अलग आपने सोच रखा है?
0: ऑल वर्ल्ड में हम अपना पहचान बनाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में कि लोग हमको जाने।
1: लोकगीत के क्षेत्र में आपके सबसे पसंदीदा कलाकार के बारे में तो आपने बताया कि शारदा सिन्हा जी हैं, उनके अलावा और कौन कौन ऐसे गायक हैं जो आपको सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, या आपके अंदर वो हौसला देते हैं कि हाँ, मैं भी ये कर सकती हूँ?
0: अनुराधा पौडवाल दूसरा, क्योंकि उनकी भी विवाह की गीत बहुत अच्छी अच्छी मैंने सुनी है, जो भावुक हो जाते हैं, लोग गाते ही आंख से आंसू आने लगता है, विदाई गीत।
1: फिर आप उनके कुछ पंक्तियां गुनगुनाएं अभी तो।
0: बिल्कुल।

0: खुशी जी, आपकी आवाज़ तो सच में बहुत अच्छी है। खुशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप पढ़ाई करती हैं तो लोकगीत भी करती हैं साथ में, तो आपको क्या लगता है कि अभी आप लोकगीत में ही आगे बढ़ेंगी या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में भी आपने कुछ सोचा है कि आप आगे क्या पढ़ना चाहती हैं?
1: हम लोकगीत से ही आगे बढ़ना चाहते हैं।
0: लोकगीत से जुड़ी आपकी कोई ऐसी यादें हो जो आपको लगता हो कि अरे ये हुआ और आप चाहती हो कि इसको मतलब यहीं पे अब समय रुक जाए, काश ऐसा ही सब कुछ चलता रहे, ऐसा कोई लम्हा रहा हो आपके जीवन में?
1: हाँ, बिहार दिवस में जिस समय हम म्यूजिक पे नहीं उतना ध्यान दे पाते थे लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान था, फिर भी हम उसी बीच में स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन में गए और उस समय हमारा जब चयन हुआ था, दहेज प्रथा का नाटक था, तो उस समय हम विदाई और विवाह गीत दोनों ही गाए थे। उस समय पटना हाई कोर्ट के जज थे, उसने हमें इतना लोगों के बीच में दोबारा बुलाकर सम्मानित किया कि बहुत अच्छा आप गाएं, आप कहाँ सीखते हैं, क्या कर रहे हैं। बोले कि सर हम तो कहीं सीखे नहीं, लेकिन सर हम जो हमारी दादी थी वो हमको 2-3 लाइन विवाह का सुनाई थी, हम उन्हीं से सीखे और आपके सामने हम प्रस्तुत किए।
0: तो अगर आप अपनी दादी की कुछ लाइनें गुनगुनाएं।
1: बिल्कुल।

0: खुशी जी, आपके घर में तो सभी कलाकार ही हैं। तो खुशी जी, अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमारे युवाओं के लिए आपका कोई संदेश हो जो आप उनको देना चाहें, जो आप ही की तरह इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं।
1: म्यूजिक में सबसे पहले तो लोग अगर जो सीखने में रुचि रखते हैं उनको सीखना चाहिए। साथ में हर क्षेत्र में कार्यक्रम होता है, कंपटीशन होता है, जैसे श्रावणी मेला हुआ, सोनपुर मेला हुआ, अभी जो चल रहा है सोनपुर मेला, हर स्टेट में हर जिला में कार्यक्रम होता है, उसमें आवेदन दीजिए। अगर उसमें आपका चयनित हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो इससे पता चलता है कि आप में कुछ कमी है जिससे आपका चयनित नहीं हुआ, और हम मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, प्रतियोगिता में सफल हो सकते।
0: बहुत अच्छा कहा आपने खुशी जी, शुक्रिया कि आज आप हमारे स्टूडियो में आई, और अब स्टूडियो में इतनी प्यारी आवाज अगर मौजूद है तो क्यों ना आज का अंत भी सुरों के साथ ही हो। तो जाते जाते खुशी जी, अगर आप दो चार लाइनें हमारे श्रोताओं को सुना दे ताकि उन्हें भी आनंद आ जाए।
1: बिल्कुल।

0: मजा आ गया। सीता की जन्मभूमि और गांधी की कर्मभूमि बिहार, ये बिहार सुन के। दोस्तों, तो अभी आप सुन रहे थे खुशी रानी से अंजलि सिंह की बातचीत, जो कि एक लोकगीत प्रेमी, लोक गायिका और कला प्रेमी है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना, अपनी रेडियो दोस्त धारिणी और दिव्या के साथ। दोस्तों, वैसे मैं एक बात और कहना चाहूंगी। आज वर्ल्ड लाफ्टर डे तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दिव्या जी मेरे साथ बैठे बैठे मुझे बार बार हंसाए पे हंसाया जाए और आपको ना हंसाए। तो एक लाफ्टर रिमाइंडर वापस से जरूर बनता है। दिव्या, वही जोक सुनाइएगा जो अभी आपने मुझे सुनाया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक के रखी है दोस्तों।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, जो ऐसे है कि पत्नी ने कहा, सुनो जी, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? तो पति ने कहा, मैं भी मर जाऊंगा, ऑब्वियसली। तो पत्नी ने कहा, क्यों? तो पति ने कहा, क्योंकि इतनी खुशी मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा।
0: दिव्या जी, बहुत बहुत बहुत ही कमाल का जोक था। तो चलिए दोस्तों, इसी जोक के साथ अब चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और सुनते हैं ये अगला ट्रैक।

0: तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गाना ऊंचा लंबा का। तो और ये गाना मैं जब भी सुनती हूँ पर्सनली तो मुझे ना अपने बचपन की याद आने लग जाती है, और उम्मीद है कि आपको भी अपने बचपन की याद आने लग जाती हो। जी हाँ दोस्तों, ये गाना कंपोज किया है आनंद राज आनंद ने, और आवाज़ भी इसमें उन्हीं की थी, और मूवी थी वेलकम। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, स्पोर्ट्स अपडेट। चलिए दोस्तों हम जानते हैं आज के दो मुख्य स्पोर्ट्स अपडेट।
1: हाँ दोस्तों, पहला स्पोर्ट्स अपडेट ये है कि अभी मैच हो रहा है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। हैदराबाद ने टॉस जीता और बैटिंग किया फर्स्ट। और हमारा सेकंड स्पोर्ट्स अपडेट है, थॉमस कप 2026 के कल सेमीफाइनल्स खेले गए, जिसमें भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला फ्रांस से हुआ और भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक हासिल किया।
0: चलिए दोस्तों अब इस स्पोर्ट्स अपडेट के बाद हम सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का ये अगला ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गाना केके और सुनिधि चौहान की आवाज में फिल्म टैक्सी नंबर 9211 से।
1: चलिए दोस्तों, अब आपको फिर से एक जोक सुनाया जाए। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बड़े चरम सीमा पे है। तो चलिए आपको थोड़ा ऑनलाइन शॉपिंग का सच सुनाते हैं। पति अपनी पत्नी से पूछता है, सुनो, मैंने ऑनलाइन 5,000 का सूट ऑर्डर किया है। ये पत्नी पूछती है पति से, कहती है उसको। तो पति कहता है कि क्या इतना महंगा? तो पत्नी कहती है, अरे 70% ऑफ था। तो पति कहता है कि इसका मतलब 1,500 का होगा, है ना? तो पत्नी कहती है, हाँ लेकिन मैंने ना एक्चुअली 3 ले लिए हैं।
0: क्या मजेदार बात है
1: दिव्या, आज के दिन आपके आंखों में आखिर ये मगरमच्छ के आंसू क्यों? क्या मेरा जोक आपको इतना बुरा लगा?
0: अरे नहीं, ये आंसू नहीं, हैप्पी टीयर्स है। क्या है?
1: हैप्पी टीयर्स दिव्या, हैप्पी टीयर्स। वाह दोस्तों, आप भी इतना हंसी आज कि आपकी आंखों में भी आंसू, आप भी आपकी आंखें भी आंसुओं से भर जाए। वैसे हंसते हंसते हम रो पड़ते हैं, ये सवाल कभी आपके मन में आया है? ऐसा क्यों होता है?
0: धारणी, मेरे आंसू और हंसी दोनों रुक नहीं रहे हैं, आप ही इसके पीछे का राज बता दीजिए।
1: दोस्तों, हम जोरों से हंसते हैं तो हमारे चेहरे ना सिकुड़ जाते हैं, जिससे आपके जो आंसू हैं उनकी जो नलियां होती हैं, यानी कि जो टीयर डक्ट्स होते हैं हमारे, उन पर ना दबाव पैदा होता है और हमारे आंसू निकल पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, बातों बातों में यूँ तो हम रोचक तथ्य बताते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि हंसते हंसते ही हमने ये रोचक तथ्य बता दिया, क्योंकि मैंने देखा कि दिव्या जी की हंसते हंसते आंखों में ना आंसू भर गई थी।
0: तो और इसका आपने फायदा उठा लिया धारिणी।
1: फायदा सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है, क्योंकि हम सब ने एक रोचक तथ्य जाना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर हो जाए एक और प्यारा सा ट्रैक मूवी फुकरे से।

0: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म फुकरे से ये प्यारा सा गाना, सोहा सोहा माफ कीजिएगा दोस्तों, सोना महापात्रा की आवाज़ में। दोस्तों, इसी के साथ आज की युववाणी का सफ़र पूरा होता है और अब हमें लेनी होगी आपसे इजाज़त।
1: दोस्तों, लेकिन आज आपसे एक वादा करवाए बिना हम विदा नहीं लेंगे। चलिए से वादा कीजिए कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, आप हमेशा मन में हिम्मत, चित्त में प्रसन्नता और चेहरे पर हंसी बनाए रखेंगे।
0: बिल्कुल दोस्तों, कार्यक्रम में कुछ कमी रह गई हो या कुछ आपके सुझाव शिकायतें हो तो हमसे ज़रूर साझा करें। हमारी ईमेल आईडी है feedbackairpatna@gmail.com। दोस्तों, इसी के साथ अब लेते हैं हम इजाज़त। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, फिर मिलेंगे युवाणी की नई कड़ी में।

युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी श्रोता सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे मैथिली कार्यक्रम भारती।

श्रोता नमस्कार। आजुक भारतीमे पवन अपने लोकनिक स्वागत करैत अछि। श्रोता, आइ भारतीमे प्रियंका कुमारीक विचार जानब। विषय होयत आपसी प्रेम आ सौहार्दसँ बाँचत टूटैत परिवार। संगे आइ गीत सुनौती रंजना कुमारी झा। मुजा पहिले आउ हमरा लोकनि किछु गप सप कऽ ली। श्रोता, मोन पारू जे एहिसँ पहिने कतेक दिन भऽ गेल जोर सहर ठहाका लगा कहाँ सब नहि मोन पड़ल। श्रोता, पहिने जहन दलान पर लोक अपन खेत पथारक काजसँ निश्चिंत भऽ बैसै छलाह तऽ रंग बिरंगक गप होइ छल आ हँसी मजाकक संग ठहाका सेहो लगै छल। कोनो तरहक ऊंच नीच हो, समादक आदान प्रदान हो, सब मिलजुलके समाधान तकैत छलाह। समस्त समाजक लोक भावनात्मक रूपे जुड़ल रहै छलाह आ सबसँ पैघ गप ई जे सब गोटे प्रसन्न रहैत छलाह। मुदा नहि छै, किएक ई सब आब निपत्ता भऽ गेल अछि। एहन दृश्य आब देखबामे नहि अबैत अछि

आप जे दृश्य देखा में अबैत अछि, जँ ओकर कल्पना करी तऽ अपन बेगरताक कारण भागम भाग मचल अछि आ लोक अपसेहत भेल छथि। हँसी तऽ नहि जानि कतऽ चलि गेल, लोक तनावक जिंदगी बिताबै छथि आ इएह तनाव स्वास्थ्य के संग सुख शांति छीन लेलक। पहिने सकारात्मक वातावरण आब चिंता आ विवादक वातावरण में बदल गेल अछि। श्रोता, ओ जे हँसी खुशी वाला वातावरण छल तकरे मोन पारबाक लेल सब वर्ष मई मासक पहिल रवि दिन विश्व हास्य दिवस मनाओल जाइत अछि। एहि दिवस के उद्देश्य थिक लोक में हँसबाक लेल प्रेरित करब, जाहिसँ लोक तनाव मुक्त भ सकैत। आजुक समय में तनाव, चिंता आ अवसाद ई सब समस्या बढ़ले जाइत अछि, एना में हँसनाई प्राकृतिक औषधि के काज करैत अछि। श्रोता, इस दिवसक शुरुआत वर्ष 1998 में अपने देश में भेल छल। डॉक्टर मदन कटारिया, जे लाफ्टर योग आंदोलन के संस्थापक छलाह, हुनक कहब छलनि जे हँसी स्वास्थ्यक लेल तऽ फायदा करते अछि, ई लोक के जोड़बाक काज सेहो करैत अछि। हँसऽ सँ शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन बढ़ाइत अछि, जाहिसँ प्रसन्नताक एहसास होइ छै। हँसऽ सँ रक्तचाप माने ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहैत अछि आ ई इम्यून सिस्टम के मजबूत करैत अछि। हँसऽ सँ मानसिक स्वास्थ्य सेहो नीक होइ छै। एहि सब कारणसँ हँसी के सर्वोत्तम औषधि कहल जाइ छै। तऽ श्रोता, अपना जीवन में खुशी अनबाक लेल हँसबाक माध्यम के तकबाक प्रयास करी, अपना के प्रसन्न राखी आ निरोग बनाबी। हँसबाक लेल संग में ओहन समूह बनाबी, एहन ग्रुप बनाबी अपन संगी लोकन के, जे छोटो मोट बात पर जे छै से खुल के हँसैत। खाली समय में जब बैसी तऽ अपन पहिने के समय के स्मरण करी, मोन पारी आ ओहि में जे कोनो अपना से गलती भेल अछि तऽ अनायासे ओहि पर जे छै से हँसबाक तऽ मोन करते छै आ एहि सबसँ जे छै से हँसऽ के एकटा बहाना भेटत आ वह हँसी जे छै से निरोग राखऽ में मदद करत। श्रोता, आई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सेहो मनाओल जा रहल अछि। आजुक ई दिवस लोकतंत्र में मीडियाक भूमिका के महत्व के देखबैत अछि। ई वर्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता माने AI के युग में अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता आ पत्रकारिता के सोझा जे चुनौती थिक तकर समाधान पर केंद्रित अछि। श्रोता, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 के संदर्भ में जाय तो एकर थीम अछि शांतिपूर्ण भविष्यक निर्माण। एहि वर्ष 4-5 मई माने कैला पशु 2026 का जाम्बिया के लुसाका में एकर मुख्य आयोजन हैत। एहि दिवसक उद्देश्य थिक प्रेसक स्वतंत्रताक मूल सिद्धांतक सम्मान करब, दुनिया भरिक मीडियाक स्वतंत्रता के मूल्यांकन करब आ पत्रकारक सुरक्षा सुनिश्चित करब। ई दिवस अभिव्यक्ति के स्वतंत्रताक रक्षा करब आ पत्रकारिताक स्वतंत्रता सुनिश्चित करबाक लेल सरकार के हुनक दृढ़ निश्चय के स्मरण करबैत अछि। श्रोता, गपशप आगा चलते रहत, आउ हमरा लोकनि कार्यक्रम दिस बढ़ी। पहिने सुनी रंजना कुमारी झा सँ ई गीत।

0: श्रोता ई छली रंजना कुमारी झा भगवती गीत सुना रहल छली। गीत निक लागल हैत हिनका से आर गीत सुनब हमसब। श्रोता एखन गप करब पारिवारिक संबंध में। वर्तमान समय भौतिकतावादी समय अछि, एहिमे छोट छोट एहन कारण होइ छै जाहिसँ कि परिवार टूटि जाइ छै आ जँ ओकर जड़ि मे जाय, परिवार टूटबाक जे कारण छै तकर जड़ि मे जाय तऽ मुख्य रूपसँ जे कॉमन एकटा बात होइ छै, सामान्य बात जे होइ छै जे सोझामे आबै छै ओ इएह छै कि परिवारक सदस्यके बीच जे आपसी प्रेम आओर सौहार्द छै ओहिमे कतौ ने कतौ कमी आबै छै। आउ एहि सन्दर्भमे प्रियंका कुमारीके विचार हमरा लोकनि जानी। बिखाइ छै आपसी प्रेम आ सौहार्दसँ बाँचत टूटैत परिवार।
1: आपसी प्रेम और सौहार्द सँ परिवार में एकता और मजबूती बनल रहैत अछि। एहिसँ परिवार के कतेको तरहक संकट सँ बचेबा में मदद भेटैत अछि। परिवारक भावनात्मक स्थिरता और मजबूती के लेल आपसी प्रेम और सद्भाव बहुत जरूरी अछि। आपसी प्रेम आ सौहार्द सँ एकटा परिवार के मजबूत और जीवित राखल जा सकैत अछि। अगर परिवार के सदस्य एक दोसर सँ स्नेह प्रेम करैत छथि, एक दोसर के सम्मान करैत

करैत छथि और एक दोसर के सहयोग करैत छथि, तखने परिवार मजबूत और स्वस्थ रहत। अगर परिवार में आपसी स्नेह, प्रेम और सौहार्द कम रहे तो परिवार में मतभेद और कलह बढ़ सकैत अछि, जाहिसँ परिवार कमजोर भ सकैत अछि। परिवार में प्रेम और सौहार्द बनेबाक लेल किछु छोट छोट तरीका अपनेबाक चाही, जेना कि एक दोसर के सम्मान करबाक चाही, एक दोसर के सहयोग करी, एक दोसर के समय देल जाय। परिवार में हंसी खुशी के माहौल बनेबा में पूर्ण सहयोग करी, एक दोसर के लेल अपना में धैर्यक भावना जागृत करी, जाहिसँ परिवार के टूटे से बचाओल जा सकैत अछि। टूटैत परिवार के बचेबाक लेल जरूरी अछि आपसी प्रेम और सौहार्द, जाहिमे सबसँ आवश्यक अछि परिवारक सब सदस्यक सबटा रिश्ता के मजबूत और खुशहाल राखब, जाहि लेल प्रेम, समर्पण आ सम्मान बहुत जरूरी अछि। एहि लेल हमरा सबके एक संगे मिलजुल के रहबाक चाही, एक दोसर के विचार के, मनोभाव के बुझबाक प्रयत्न करी, अपन खुशी के संगे परिवारक खुशी पर ध्यान देनाय सेहो आवश्यक हेबाक चाही। टूटैत परिवार के बचेबा लेल प्रत्येक सदस्य के योगदान अमूल्य होइत अछि। आपसी प्रेम आ सौहार्द सँ टूटैत परिवार के बचाओल जा सकैत अछि। एहि लेल हमरा सबके परिवारक सब सदस्यक प्रत्येक व्यक्तिक समस्या के सुनबाक चाही, बुझबाक चाही और एक दोसर के सहारा देबाक चाही। जखन कखनो परिवारक कोनो सदस्य मुश्किल दौर सँ गुजर रहल छथि या जीवन डगमग के कगार पर पहुँचल बुझना जाछ, तऽ परिवारक सदस्य लोकनि के चाही जे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर दृष्टि सँ परिवार में सहयोग करथि आ परिवार टूटे सँ बचावथि। परिवारक सदस्यक सब संगे समय बितेबाक चाही, एक दोसर संगे समय बितेला सँ सेहो परिवार स्वस्थ और खुशहाल रहैत छैक। हमरा सबके परिवार के टूटबा सँ बचेबाक लेल अति आवश्यक होयत घर परिवार में गपशप केनाय। गपशप केला सँ कतेको तरहक मोनक गप लोक के निकलैत छैक और कतेको बीमारी सँ लोक रोग मुक्त रहैत छथि। हम तो कहब जे अपना सब अपन घर में परिवारक लोक संगे गपशप अवश्य करी। टूटैत परिवार के बचेबा लेल सब गोटे के कर्तव्य रहैत अछि विशेषतः परिवार के पैघ आ बुजुर्ग लोकनि सँ, जे ओ सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कोनो रूप में अपन परिवार लेल, समाजक हित लेल ठाढ़ रहथि आ परिवार टूटबा सँ रोकथि। परिवारक सदस्य सब सँ अनुरोध अछि जे बच्चा सब संग अपन संस्कृति, परंपरा और सामाजिक मूल्यक चर्चा करथि, जाहिसँ हुनक मनोवृत्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़नि। पारस्परिक प्रेम और सौहार्द के परिवारक पूंजी कहल जाइत छैक, कियाकि परिवार में रहय वाला लोकक भलाई आ खुशी के लेल आपसी प्रेम और सौहार्द महत्वपूर्ण होइत अछि। परिवार में प्रेम और सौहार्द सँ सब दूरी के कम कयल जा सकैत अछि। जाहि तरहें परिवारक आर्थिक स्थिरताक लेल आर्थिक पूंजी जरूरी अछि, ओहि तरहें परिवार के भावनात्मक स्थिरता के लेल प्रेम और सौहार्द विशेष

रूपें जरूरी अछि। एहिसँ परिवार के मजबूती भेटैत छैक। परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करैत छैक। परिवार के बचेबा मे सहायक होइत अछि। एकटा सुखी और स्वस्थ परिवार ओ होइत अछि जते स्नेह, आत्मीयता, अपनापन संग प्रेम और सौहार्द रहे। एहि तरह परिवार मे परिवारक जड़ मजबूत होइत अछि, अटूट होइत अछि। एहन परिवार जल्दी नष्ट नहि होइत छैक, जल्दी नहि टूटैत छैक। अंत मे हम यह कहऽ चाहैत छी जे टूटैत परिवार के बचेबाक लेल जरूरी अछि आपसी प्रेम आ सौहार्द। एहि लेल परिवार के लोक सबके ध्यान रखबाक चाहियनि जे ओ घरक लोक के

0: अपन संग प्रेम और सौहार्द रहे। एहि तरह परिवार में परिवारक जड़ मजबूत होइत अछि, अटूट होइत अछि। एहन परिवार जल्दी नष्ट नहि होइत छैक, जल्दी नहि टूटैत छैक। अंत में हम यह कहा चाहैत छी जे टूटैत परिवार के बचेबाक लेल जरूरी अछि आपसी प्रेम आ सौहार्द। एहि लेल परिवार के लोक सब के ध्यान रखबाक चाहियन जे ओ घरक लोक के नीक कार्य लेल सराहना करैत आ बेजाय कार्य सँ बचबा लेल सही राह आ सही मार्गदर्शन करैत।
1: हाँ श्रोता, प्रेम आ सौहार्द यह एकटा एहन संबंध अछि जे टूटैत परिवार के बचा सकैत अछि। धन्यवाद दियन प्रियंका कुमारी के हुनक एहि वार्ता के लेल। विख्यात छल आपसी प्रेम आ सौहार्द सँ बाँचत टूटैत परिवार। श्रोता, फिर से हम सब रंजना कुमारी झा से सुनी ई अगला गीत।

श्रोता ई छली रंजना कुमारी झा सुना रहल छली झतसार। श्रोता देखू, अस्थमा माने दम्मा सांस संबंधी एकटा व्याधि थिक। दम्माक संबंध में जागरूकता पसरबाक आ ओकर प्रबंधन में सुधार करब एहि उद्देश्य सँ सब वर्ष मई मासक पहिल मंगल दिन विश्व अस्थमा दिवस मनाओल जाइत अछि। 5 मई के मनाओल जाय वाला एहि दिवस में अस्थमाक उपचार आ एकरा कोना रोकल जाय तकरा लेल जागरण पसारब थिक। धुआं धूल गर्दा सँ बच कर रही, इनहेलर के सही तरीका सँ इस्तेमाल करी आ नियमित इस्तेमाल करी आ संगहि नियमित जांच करवा कऽ दमक प्रबंधन कयल जा सकैए। जिनका सांस संबंधी एहि तरहक बीमारी हो हुनका तऽ कनि बच कर रहब जरूरी छै। ओ यदि कोनो गर्दा वाला जगह में जायत तऽ नाक के झाँपि कऽ जायत आ समय समय पर एकर जांच करबैत रहत तऽ एहिसँ जे छै से राहत भेट सकैत अछि। श्रोताओ, कार्यक्रम में आगा बढ़ी, सुनी रंजना कुमारी झासा ई झूमर।

श्रोता ए छली रंजना कुमारी झा सुना रहल छली झूमर। हिनका आजुक सब गीत के लेल मन से धन्यवाद दियन। एते बढ़िया गीत सुनली श्रोता। देखू सड़क पर जखन कखनो चली, सड़क पर जखन कखनो चली तो जे यातायात के नियम छे, सुरक्षा के नियम छे, तकर पालन अवश्य करी। आए दिन सड़क दुर्घटना में बहुत लोगों के जान चल जाए छे, ओ मात्र असावधानी कारण होइ छे। जतय कतौ यातायात के नियम के उल्लंघन होइ छे ओहि ठाम ओ दुर्घटना होइ छे, आ दुर्घटना के कारण कते परिवार समय से पहिने जे छे से तबाही के कगार पर आबि जाइ छे। तऽ श्रोता ई छल आजुक भारती। आजुक भारती से पवन के विदा दियौ। नमस्कार।

श्रोता, अभी आपने मैथिली कार्यक्रम भारती सुना। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए जान लें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शाम 6:20 पर सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार। छः 6:30 पर ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल होगा और 7 हम चर्चा करेंगे खेती गृहस्थी की। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे शाम 7:30 पर और जिले की हलचल 7:47 पर आप सुनेंगे।

शाम 7:52 पर सुगम संगीत का आप आनंद लेंगे। हमारे आज के कलाकार हैं नितिन मुकेश, इनके स्वर में आप सुनेंगे कुछ भजन। आठ बजे वक्त है फिल्म संगीत का।

8:45 पर हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या, रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर उर्दू समाचार खबरें होंगी। रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे रविवार से अखिल भारतीय संगीत सभा।

0: श्रोता, ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म तुम बिन का ये प्यारा सा गाना। इस गाने को लिखा था फैज़ अनवर ने और धुन तैयार की थी निखिल विनय ने। आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: प्रणाम सुगिया बहिन।
1: खूब खुश रही, खूब खुश रही दिव्या बहिन।
0: हाँ, हम देख रही कि अपने खूब भाई हंस रहा थी ना, ठठा ठठा के। विश्व हास्य दिवस ऐसे का।
2: हाँ भाई, देखा खास दिन के बात जो नाला कुछ खास हो है ये के चलना।
0: हाँ,
2: ना
0: हाँ।
2: कई गो ऐसा जो बा मतलब जे काव्य बा, कई गो हास्य के आप
0: जोक रहा है ना
2: बड़ा मतलब।
0: हमने तो भाई ऐसे मिल जाए तो हा हा ही से शुरू
2: है कि ना। देखा हासल बहुत जरूरी बा है ना। हाँ? माध्यम जोन भी हो के है ना।
0: अब एकदम एकरा से स्वास्थ्य भी बढ़िया रहा है। हाँ? जे जब वो न पड़कवा में
2: हाँ?
0: तो देखबो कि ज्यादा आदमी चले से बीच बीच में हाँ? ताली बजत हुन, तब बीच बीच में खड़ा होके ग्रुप बना के हंसत हुन।
2: हाँ?
0: हम पहले सोचल कि भाई ऐसा का कहलन।
2: हाँ?
0: कि भाई इतना हंसी था, पता चल कि भाई ऐसे कैला से तबियत ठीक रहे।
2: हाँ, देखा मतलब अब जोन कहल जाला कि ग्रुप में जाके लोग जोन बा सामूहिक रूप से कुछ ऐसा बात करके हंसता लोग।
0: हाँ?
2: अरे जीवन में काहे नहीं ऐसा कर्म कर जाओ कि मतलब स्वतः जो बा अंदर से जोन बा खिलखिलाहट और हंसी जोन बा
0: एकदम
2: बात बाकी।
0: हाँ?
2: तो ओकरा से तंदुरुस्ती भी एकदम जिंदगी आदमी के
0: मन में खुश रहे।
2: हाँ?
0: अब एगो आव तो देखा। हाँ? कि मुंह फुला के बैठल हत तनका से का बोलवा भाई। एगो के देख के ऐसे ये खुल खुली छूट जाए।
2: और आज का सब।
0: हाँ, सब देखती। एगो और खास बात है।
2: हाँ?
0: कि हर साल 3 मई के सौंसे दुनिया में विश्व प्रेस स्वतंत्र

0: स्वतंत्रता दिवस भी मनावल जाए है ना। तो ई दिन लोकतंत्र के चौथा स्तंभ प्रेस के आजादी के महात्म के रेखांकित करके और ओकरा पत्रकार के श्रद्धांजलि देवे है जे अपन जान जोखिम में डाल के सच के दुनिया के सामने रखा।
1: सही बात बा। देख कहल जाला कि पत्रकारिता कहल जाला कि चौथा स्तंभ की बात जहाँ हमने के करत
0: हाँ।
1: तो सबसे बड़ा चीज बा कि हमनी के अपन जिंदगी कुछ नहीं
0: हाँ।
1: समाज खाती हाँ देश खाती जी
0: हाँ।
1: आदमी सच्चाई के हमेशा जोन बा वो पक्षधर रहेला। पत्रकारिता के मतलब ही यही होला दिव्यावन
0: हाँ।
1: और देखा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के प्रतिवर्ष जैसन तू कहलू कि भाई आज ही के दिन हमने के मनाई ले
0: हाँ।
1: तो सही बात पाए कि ये दिवस के हमने के एक तरह से भी है मतलब पूरे दुनिया भर में मतलब एक जश्न के रूप में भी हमने के मना सकत नहीं। काहे कि से देखा पत्रकार के उनकर काम के दौरान है ना जान गवावे और श्रद्धांजलि के बाद भी तू जो कहलू है ना
0: हाँ, हाँ।
1: सही बात बा कि सही चीज के लिए आदमी और कोई भी दिन मनाई जाए हमनी के अगर मनाई लगा दिव्या
0: हाँ।
1: तो उकर उद्देश्य बा कि सरकार के प्रेस के स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता याद दिलावे खाती
0: हाँ।
1: मीडिया स्वतंत्रता पर हमला के निषेध करल है ना
0: हाँ।
1: विरोध करल हाँ और इतिहास एकर घोषणा जोन बा ना है ना दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जोन बा ना यूनेस्को में कैल गई रहे और एकर सिफारिश जो जोन बा ना दिव्या बहिन
0: हाँ।
1: है ना वो समझ ला कि एकर महत्व के 1991 में है ना
0: हाँ।
1: तो विंड होक घोषणा पत्र के वर्षगांठ के प्रति प्रतीक हमने के मानी ले आ भारत के रैंकिंग में हम कह सकते नहीं हाल के वर्ष में बदलाव भी देखल कल बा।
0: सही गलत देखतीन हर साल एकरा लगी एगो थीम खास करके तैयार कल जाए तो एसो के थीम है शांतिपूर्ण भविष्य के आकार देना मानवाधिकार विकास और सुरक्षा के लेल प्रेस स्वतंत्रता के बढ़ावा देना और एसो के मुख्य वैश्विक सम्मेलन लुसाका जाम्बिया में 4-5 मई के आयोजित कल जेते साल 2026 में प्रेस के स्वतंत्रता के सामने अपना कुछ नया गंभीर चुनौती भी है जेकरा पर विश्व स्तर पर बात हो रहा है
1: हाँ।
0: एकरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जे अभी हमने सब देखे रही है भाई ज्यादा
1: हाँ।
0: यूज कर रही है तब भ्रामक जानकारी सुरक्षा और
1: हाँ।
0: स्वतंत्रता सूचकांक है एकर महात्म है कि भाई दुनिया भर में प्रेस के आजादी के स्थिति के मूल्यांकन करे के
1: हाँ।
0: और मीडिया के स्वतंत्रता पर होवे वाला हमला से बचाव करे के।
1: सही बात बा मीडिया भी अपन दायित्व और अपन जो ये बा ओकरा के समाज में स्थापित
0: हाँ?
1: करे खाती बहुत ही जिम्मेवारी वाला ये बा मीडिया के जो दायित्व बा इतना आसान नहीं खे
0: हाँ, सही में
1: तो समझे के हुई कि मतलब हमने के तरह से दबाव में ना रही
0: हाँ,
1: स्वतंत्र पत्रकारिता
0: कोई के भी लालच में बहकावा
1: हाँ,
0: में भाई नहीं आवे के चाहिए
1: हाँ, हाँ,
0: कोई भी अपन काम है तो भाई उकरा निष्पक्ष भाव से करते
1: एकदम
0: है ना
1: सत्य के सामने
0: हाँ,
1: लावल ही हमने के एक काम बाही
0: हाँ,
1: और निष्ठा पूर्व एकरा के निभाए के चाहिए।
0: ऐसा माध्यम है कि जेकरा में दोनों पक्ष के बात सुनल जाए है कि ना मान लो हम जे कर रही है से भी छापल जाए बतावल जाए दुनिया अजय भाई अगर जो अगला कहे कि ना भाई इस सच न है ऐसे
1: हाँ,
0: है वैसे है
1: हाँ,
0: तो उनकर बात भी देखावल जाए रखल जाए कि भाई
1: दोनों
0: के बात सुनथिन समझथिन
1: हाँ, हाँ,
0: है कि ना तबे होवे के चाहिए। अब हमरा लग रहा है कि कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाए का कर रहलथिन है
1: एकदम एकदम एकदम बिना देर के लिए
0: तब का सुनवा रहलथिन है।
1: अरे आज तो हमरा मन करता है कि एगो हमनी के देवी गीत
0: हाँ
1: अच्छा गायक
0: नीलेश्वर मिश्रा के आवाज में सुनल जाए देवी गीत
1: देवी गीत।

0: वाह बहुत
1: वाह
0: निमन।
1: वाह वाह वाह,
0: ओ
1: बहुत
0: मैया
1: निमन।
0: मोरी आवे
1: आवे
0: के
1: के
0: पड़ी
1: पड़ी
0: है
1: है, तर आवे के,
0: ना।
1: मतलब माई के गोराई के एक तरीका बा। गायक नीलेश्वर मिश्रा के बहुत ही अद्भुत बा, और सचमुच बोल भी उतना ही सुंदर और स्वर भी उतना ही सुंदर है ना।
0: ए सुगिया बहन जी,
1: हाँ
0: अपने सरीवा पिन्ह लेथिन इतना बढ़िया, ई मधु मधुबनी प्रिंटिंग एकरा कहल जाए, पेंट कहल जाए
1: हाँ
0: ना।
1: पेंट,
0: आई पर्सवो में
1: हाँ
0: देख रहा कि बहुत सुंदर,
1: अरे
0: मतलब जूट वाला हवा काम
1: हाँ,
0: कैल हवा, बहुत
1: अरे
0: बढ़िया
1: हमरा
0: लगल था।
1: अपना पसंद बनू कि हम तरह से का कही भाई, एकर देखा सब रंग के कपड़ा पेन्हल, लेकिन ई कपड़ा एकर मधुबनी प्रिंट के जे कोई चीज अगर ले लेलू,
0: तो
1: चाहे
0: बहुत
1: पर्स
0: बढ़िया
1: होके,
0: लगी था
1: सलवार
0: भाई।
1: कमीज होके, दुपट्टा होके, साड़ी होके, एकर एगो मतलब भीड़ में एकदम अलग दिखाई देला
0: अच्छा, तो
1: ना।
0: एकरा मतलब कि कुछ भाई बिहार में एकरा फैलावे के, जैसे कि मान लगे हम कर लली अपने ले लनन, तब भाई एकरा कुछ है व्यवस्था है कि कला के क्षेत्र में बिहार के भाई का स्थिति है हमने के आसपास के,
1: जानल, हाँ जानल
0: है
1: जरूरी
0: ना।
1: बा, तबे ना जेबू भाई बनवावे कि कहाँ कैसे एकरा के और आगे बढ़ाई जाए
0: हाँ, तो
1: बिहार में।
0: कोई भी चीज सीख ली
1: हाँ
0: तो वो आगे जाए के चाहे
1: जाए के
0: ना।
1: चाहिए, सही बात बात
0: तो
1: हो चला।
0: अभी हाँ अभी हमने सब सुनी वार्ता कला के क्षेत्र में बिहार की स्थिति, वार्ताकार हथिन ज्योति मिश्रा।
1: हाँ सुने के।
2: सबसे पुराने और ऐतिहासिक

ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण और जीवंत विरासत वाले राज्यों में से एक है। यह अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कला के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की कला और संस्कृति ने सदियों से देश और दुनिया को प्रभावित किया है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान शताब्दी तक बिहार इतिहासकारों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। मगध जनपद, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य जैसे शक्तिशाली राजवंश बिहार की उपजाऊ धरती पर फले फूले। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और शांति अहिंसा के प्रतीक गौतम बुद्ध जैसे भारतीय इतिहास के महान नाम बिहार की सांस्कृतिक धरोहर हैं। बुद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे विश्व के महान धर्म का उद्गम बिहार से हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप से बिहार विविध कलाओं और शिल्प से समृद्ध है। यहाँ के प्रसिद्ध कला रूपों में चित्रकला, संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प शामिल है। बिहार के शिल्पकार कलात्मक वस्तुओं को बनाने में निपुण है, जिनकी स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत मांग है। कुम्हरार, नालंदा आदि स्थानों पर हुए विभिन्न पुरातात्विक उत्खनन में बिहार के शिल्पकारों की उत्कृष्ट कुशलता और निपुणता स्पष्ट है। मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की वस्तुएं, धातु के बर्तन, पत्थर के बर्तन, आभूषण, लाख की चूड़ियां, लकड़ी और कपड़े की छपाई का काम आदि बिहार के कुछ समकालीन शिल्प हैं, जिनकी कलात्मक सुंदरता और नवीनता भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रसिद्ध है, जिसके कारण देश विदेश के बाजारों में इनकी बहुत मांग है। संगीत और नृत्य कला भी बिहार की कला का महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्यों में झिझिया, फुफनी और जट जटिन है। कला क्षेत्र में दरभंगा का झिझिया नृत्य एक पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। झिझिया नृत्य में महिलाएं अपने हाथों में दिए लेकर नृत्य करती है। इस नृत्य में पौराणिक एवं लोक कथाएं होती हैं। प्रदर्शनकारी कला में बिहार में भोजपुरी, मगही और मैथिली लोक संगीत के साथ साथ प्रसिद्ध भिखारी ठाकुर के विदेशिया जैसे नृत्य और शहनाई वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण उल्लेख है। बिहार के संगीत में शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत प्रमुख हैं। लोक संगीत में विशेषकर भोजपुरी गीत संगीत की लोकप्रियता ने वर्तमान में संगीत कलाकार, गायक, लेखक और तकनीकी कर्मचारियों को बहुत बड़े स्तर पर रोजगार और पहचान प्रदान की है। OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया ने भोजपुरी फिल्म, गीत और संगीत कलाकारों को विशिष्ट पहचान और लोकप्रियता प्रदान की है। बिहार का पारंपरिक गीत बिरहा, सोहर और कजरी ने सोशल मीडिया और सरकारी प्रयासों से देश भर में लोक संगीत में एक नई जिंदगी और लोकप्रियता पाई है। बिहार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा बुद्ध महोत्सव, राजगीर महोत्सव और सोनपुर मेले में लोक गायन और नृत्य के लिए मंच प्रदान किया जाता है। आकाशवाणी पटना, भागलपुर, दरभंगा आदि द्वारा भी नियमित रूप से लोक संगीत की रिकॉर्डिंग होती है और इसका प्रसारण किया जाता है। पटना तथा अन्य कई विश्वविद्यालय लोक संगीत को डिजिटल रूप से संरक्षित कर रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार के लोक संगीत की विश्व भर में अपनी एक पहचान बनी है। इसके अलावा शास्त्रीय संगीत में दरभंगा और बेतिया घराने का योगदान अनूठा है। चित्रकला में बिहार की मिथिला पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। यह पेंटिंग विशेषकर महिलाओं के द्वारा व्यापक रूप से प्रचलित है। यह चित्रकला रामायण काल से महत्व रखती है। मूल रूप से यह चित्रकला कपड़े पर बनाई जाती है और चटक प्राकृतिक रंगों के प्रयोग से इसकी सुंदरता अद्वितीय रूप से लोगों को आकर्षित करती है। मधुबनी चित्रकला में अधिकतर प्रकृति और धार्मिक आकृतियों को दर्शाया जाता है। इसका विषय आमतौर पर देवी देवता, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, तुलसी के पौधे जैसी प्राकृतिक चीजों से संबंधित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इसकी लोकप्रियता इतनी बड़ी है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी कलाकार अपनी पेंटिंग सीधे रूप से बेच रहे हैं। सरकार द्वारा उपेंद्र महर्षि अनुसंधान संस्थान और मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट मधुबनी में इसका नियमित प्रशिक्षण चल रहा है। सरकार द्वारा इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है और मिथिला हाट में इसके नियमित स्टॉल लगते हैं। मधुबनी पेंटिंग अब सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि बिहार की सॉफ्ट पावर और रोजगार का साधन बन चुकी है। हस्तशिल्प में भी बिहार की कला एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहाँ के हस्तशिल्प में बांस का

काम, लतीफ़ा, लकड़ी की नक्काशी, जरी का काम, कसीदा, वस्त्र मुद्रण, आभूषण, पटना कलम, लाख का काम आदि विश्व प्रसिद्ध हैं। बिहार के लकड़ी के फर्नीचर अशोक और मौर्य काल से ही विश्व प्रसिद्ध हैं। बिहार में मिट्टी के बर्तन का भी समृद्ध इतिहास रहा है। मौर्य और गुप्त काल से ही यह कला बिहार में प्रचलित रही है। यहाँ के कुम्हार सुंदर मिट्टी के बर्तन देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ बांस की टोकरियाँ, सूप, घरेलू चटाइयाँ और सजावटी घरेलू सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। टिकुली कला, जिसमें टूटे हुए कांच से बनाई जाने वाली कलाकृति होती है, बिहार की एक विशिष्ट कला है, जिसका मुख्य बाजार पटना, बनारस और कलकत्ता है। बिहार के लाख के कारीगरों की कलात्मकता विश्व प्रसिद्ध है। बिहार में कला के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने हेतु सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे मुख्यमंत्री कला पेंशन योजना, जिसमें 50 वर्ष से अधिक आयु के कलाकारों

0: सुंदर मिट्टी के बर्तन देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ बांस की टोकरियाँ, सूप, घरेलू चटाइयाँ और सजावटी घरेलू सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। टिकुली कला, जिसमें टूटे हुए कांच से बनाई जाने वाली कलाकृति होती है, बिहार की एक विशिष्ट कला है। इसका मुख्य बाजार पटना, बनारस और कलकत्ता है। बिहार के लाख के कारीगरों की कलात्मकता विश्व प्रसिद्ध है। बिहार में कला के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने हेतु सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे मुख्यमंत्री कला पेंशन योजना, जिसमें 50 वर्ष से अधिक आयु के कलाकारों को 3,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन की राशि दी जाती है। बिहार में बिहार कला पुरस्कार 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें 52 उत्कृष्ट कलाकारों को पुरस्कृत किया गया। सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में अन्य पहल भी की गई है, जैसे आर्टिस्ट पंजीयन की सुविधा ऑनलाइन दी गई है। सभी जिलों में 620 सीटों वाले कला के भवन बनाए जा रहे हैं। बिहार बजट में भी बिहार की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और संरक्षण की बात कही गई है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा फिल्म निर्माण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। हालांकि सरकार कला को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चलाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कलाकार और कला के लिए अभी भी विपणन और वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। बिहार में लगभग 4 लाख से अधिक लोग सीधे या परोक्ष रूप से हस्तशिल्प से जुड़े हुए हैं। 2019 के केंद्रीय सांख्यिकी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में हस्तशिल्प की वार्षिक आय लगभग 2500 करोड़ रुपए से अधिक है, लेकिन इन आंकड़ों में उन कलाकारों की जिंदगी के संघर्ष की कहानी नहीं है, जो हर दिन गरीबी, असमर्थता और आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से कला को प्रोत्साहन देने के लिए उत्सव आयोजित किए जाते हैं। कुछ गैर सरकारी संगठन भी कला के विभिन्न रूपों को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत हैं, परंतु बिहार में कला और कलाकारों के समर्थन के लिए आवश्यक बाजार हो और बिक्री बढ़ाने के लिए हर जिले में अवसर बनाए जाए, जहां कलाकार सीधे अपना सामान बेच सके। सरकारी दफ्तरों, रेलवे प्लेटफॉर्म पर मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा, टिकुली कला आदि को लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिए और जीआई वाली कला की नकल रोकने के लिए भी सरकार द्वारा सख्त कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। कला के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि आर्थिक सुरक्षा कलाकारों की तय की जाए। नई पीढ़ी को स्कूल कॉलेजों में भी कला का प्रशिक्षण दिया जाए, कलाकारों की पहचान की जाए और उनकी पहचान और सम्मान के लिए महोत्सव हों और आधुनिकता से लोक कलाकारों को जोड़ा जाए, ताकि लोक कला का डिजिटल डेटाबेस बने और सरकारी काम सीधे लोक कलाकारों को मिल सके। यानी कलाकारों को कला को बाजार दो, सम्मान दो और नई पीढ़ी को सीखने का समुचित अवसर दो। कला स्वयं विकसित होती जाएगी। बिहार की कलात्मक पहचान न केवल ऐतिहासिक स्थलों नालंदा, बोधगया से जुड़ी है, बल्कि आधुनिक समय में भी हम कह सकते हैं कि यह अपनी पारंपरिक शैलियों को संरक्षित करते हुए भी आगे बढ़ रही है।
1: वाह भाई, जानल थी ना कि भाई बिहार में कला के की स्थिति है, है ना?
2: बहुत
1: तो हमनी के एक और आगे बढ़ावे चढ़ावे के कोशिश करे के चाहिए, है ना?
2: बिल्कुल,
1: जरूरी न है कि भाई एक के क्षेत्र में खाली, मतलब बहुत सारा हाथ की पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जिनका भाई पेंटिंग में चाहे कोई भी तरह के चीज में, गाने में, नृत्य में,
2: हाँ अंदर बा ना दिव्या बहन, तो आगे बढ़ाए के ही चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि वही हुनर तहरा पता नहीं के की कहाँ से कहाँ तक तरह के पहुंचा सके,
1: है हाँ,
2: ना
1: हाँ।
2: तो सचमुच जे भी अपना अंदर छुपल जो रुआ अंदर जो कला बा, हाँ, बाहर निकाल
1: निखार थी ना, ओकरा भाई हाँ। घरे में अपने परिवार तक सीमित नहीं रखी,
2: हाँ।
1: ओकरा भाई आगे बढ़ाती है ना
2: एकदम। तो ए वार्ता खाती जोन बा, हाँ। ज्योति मिश्रा के बहुत बहुत धन्यवाद, है ना दिव्या?
1: और हमरा लग रहा है कि भाई गीतनाथ फिर से सुनल जाए,
2: एकदम एकदम
1: सुनथिन। पूर्वी गायक कलाकार हथिन नीलेश्वर मिश्रा
2: सुनेंगे।

0: नंदी के बोलिया न सोहाय पिया लेके अलगे रहम।
1: हाँ बहुत
0: अभी
1: बढ़िया।
0: हमने सब सुन रही है नीलेश्वर मिश्रा से ई पूर्वी झूमर।
1: हाँ
0: अब एक साथ साथ
1: हाँ
0: चौपाल के समय ओरिया रहा है तो अब
1: हाँ
0: बात करम खेती गृहस्थी में।
1: तो
0: खेती गृहस्थी में
1: अब एगो
0: समय हो रहा है
1: हाँ
0: प्रायोजित कार्यक्रम रोजगार के।
1: हाँ सुने के।
2: एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट गरौल रेलवे स्टेशन के पास गरौल वैशाली।
3: रोजगार रोजगार कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आप सबों के घर आंगन में आ चुका है। हम ये प्रिविलेज ले रहे हैं कि हम अपने हाँ वैशाली जिले में एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना कर रहे हैं और इसी सत्र से जी हाँ एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट गोरौल में बीबीए और बीसीए की पढ़ाई होगी यहाँ पर। और नंबर हम बता दें कि इस इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर जो आपको जानकारियां चाहिए तो आप इस नंबर को डायल करें 9155558888 9155558888। एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट AICTE और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। बहुत सारे फोन कॉल आए, कुछ लोगों ने कहा कि ये विजिट भी किए थे। कैंपस अभी बन रहा है ना, कैंपस बन रहा है लेकिन और दूसरे कोर्सेज के लिए बीबीए और बीसीए के लिए पूरा तैयार है क्योंकि प्लानिंग बहुत बड़ी है। पूरा एक कैंपस होगा जिसमें अलग अलग तरीके की पढ़ाई कराई जाएगी। हमने आपको याद दिलाया था पिछले एपिसोड में भी कि ये श्री राज ग्रुप का है जिनका कि श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है और उसकी विश्वसनीयता है, श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल है। तो निश्चित रूप से बीबीए और बीसीए के बाद हेल्थ सेक्टर को भी वहां आना है, इसीलिए अभी भी काम जारी है और आगे वो सतत चलता रहेगा। तो आज के कार्यक्रम में हमें आपको ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि हमने कहा अभी अभी कि श्री राज ग्रुप का है और भी कोर्स आने हैं, तो बस हम जल्दी से दो कोर्स यहाँ हेल्थ सेक्टर के और शुरू करने जा रहे हैं, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का कोर्स। जी हाँ, हमने कहा जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का कोर्स यहाँ शुरू होने जा रहा है और जिसके लिए जानकारियां दी जाने लगी।

0: हैं और इस कार्यक्रम रोजगार के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं अभी अभी। कैसा लगा बीसीए बीबीए कंप्यूटर भी और हेल्थ के सेक्टर में भी शुरुआत हो चुकी है। हाँ, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की बातें यहाँ होंगी। पटना में भी श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से यहाँ ये कोर्स उसी गुणवत्ता के साथ शीघ्र ही शुरू किया जा रहा है। जो लोग भी इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किए हैं वो 9155558888 ये नंबर है, इस पर जानकारियां ले सकते हैं। आप पटना भी आ सकते हैं और अपने गोरौल में, जी हाँ गोरौल में भी आप, जो संस्कार नगर कॉलोनी है, गोरौल स्टेशन से पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बीचों बीच ये संस्थान स्थित है। वहां के लोगों के लिए और भी कोर्सेज का जुगाड़ हो रहा है, और भी कोर्सेज वहां शुरू किए जाएंगे जिससे गांव का विकास हो सके, ग्रामीण क्षेत्र के युवा हाँ पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहरहाल डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी हमारे साथ इस स्टूडियो में बैठे हैं, आप लोगों से खुद बात करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि बीबीए करने से क्या फायदा, मुख्य फायदे क्या हैं।
0: हाँ,
1: तो मैं अगले बार भी बताया था, इस बार फिर से बताता हूँ
0: जी,
1: कि कैरियर ग्रोथ, अगर आप करियर में आप चाहते हैं कि बहुत एडवांस हो, हम आगे बढ़े, तो यह सबसे अच्छा है। क्योंकि यह क्या करता है कि आपको लीडरशिप रोल में प्रोजेक्ट करता है, लीडरशिप में आपको प्रोजेक्ट ले जाता है, तैयार करता है, और बिजनेस एनालिस्ट करता है, मार्केटिंग मैनेजर के रूप में कराता है कि मार्केट में क्या चाहिए और तुम क्या देना चाहते हो, क्या दे तुम्हारे पास उपलब्ध है
0: जी।
1: तो इस बात को यही कराता है, बीबीए कराता है। उसके साथ साथ हर कोई को अपेक्षा होता है कि हमारा इकोनॉमिकली हम आगे बढ़े
0: जी जी बिल्कुल,
1: तो मास्टर बीबीए करने वाले लोग को ये चांस मिलता है और वो बहुत आगे जाते हैं। क्योंकि हर मार्केटिंग के ऊपर जो रहते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो ग्रेजुएट लेवल के ऊपर के लोगों को गाइड करता है
0: जी,
1: उसको स्किल्ड करता है, उसको ट्रेंड करता है, तो निश्चित रूप से इसका आय भी, इसका जो इसका भी सैलरी होता है जो उन लोग से ऊपर होता है। तो और जो बैचलर करके आते हैं, जैसे इंजीनियरिंग करके आए या और भी कोर्स दूसरे कोर्स करके आए, तो उनको लीड करने के लिए उनसे ऊपर का जो आदमी होता है वो बीबीए वाले होते हैं, बैचलर एडमिनिस्ट्रेटर होता है।
0: बिल्कुल,
1: उसके साथ साथ बहुत सारे जैसे फाइनेंशियल डील होता है तो इसके लिए भी वही यही करते हैं, तो ये उसके लिए होता है। उसके साथ साथ नेटवर्किंग होता है कि ये जो बीबीए वाले होते हैं वो सभी को नेटवर्किंग कर करके एक दूसरे को जोड़ करके रखते हैं, तो ये स्किल जो होता है वो सिर्फ इसी को इम्प्लीमेंट करना होता है, दूसरे लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो इन्हीं को इम्प्लीमेंट करना होता है और आगे चल कर करके यही ये कहने का मतलब कि मैनेजर वगैरह वगैरह तक जाते हैं, बहुत सारे जाते, जितना जितना उसका लेवल होता है उतना वो चाहता है,
0: और हायर एजुकेशन में भी तो जा सकते हैं, बिल्कुल एमबीए कर सकते हैं,
1: बिल्कुल कर सकते हैं। और इसका जो लेवल जो होता है वो राजेश जी, इसका लेवल जो होता है वो वैश्विक स्तर पर होता है, मतलब हाई आज क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या होना चाहिए, अमेरिका में हो रहा है क्या, इंग्लैंड में हो रहा है क्या, यहाँ हो रहा है क्या, हमें करना चाहिए, ये सब जो उसके पास ग्लैंड्स होता है, एटीट्यूड होता है, वो सिर्फ एमबीए ही दिखा सकता है और आगे ले जा सकता है, विजन उसी के पास होता है।
0: बिल्कुल,
1: तो कहने का मतलब कि बीबीए करने का जो रोल है यह बहुत ही बड़ा, एक छोटा सा पेड़ जैसे बीज जो होता है, किसी पेड़ का बीज जो होता है उसमें पेड़ पौधे नहीं दिखते हैं, फल नहीं दिखते हैं, लेकिन उसमें सब कुछ निहित रहता है। उसी तरह जैसे ही बीज को डालते हैं तो अपने आप को अस्तित्व को समाप्त कर करके और उसके बाद बड़े फल बीज पेड़ का जन्म देता है, और उसके बाद उसमें से कितने फल निकलते हैं, तो उसी तरह से बीबीए भी है, इसी तरह का है कि ये बीज है जो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ने पर इसका ग्लोरेंस बहुत ज्यादा आता है और ये फ्लोरिश कर कर करके बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है।
0: बीसीए की बात आगे आप करें उससे पहले बता दें कि कार्यक्रम रोजगार चल रहा है, मैं हूं राजेश और डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी बैठे हैं, आपके सवालों का, आपके जिज्ञासाओं का जवाब दे रहे हैं। कार्यक्रम रोजगार हम लेकर आ रहे हैं एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना इसी सत्र से हो रही है आपके गोरौल में, और ये है स्टेशन गोरौल स्टेशन और पीएससी, या आप गोरौल चौराहा कह लें,

0: उसके ठीक बीच में है एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बीबीए और बीसीए की पढ़ाई के लिए, जो कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त भी है। सबसे पहले देखना चाहिए कहीं अगर पढ़ने जा रहे हैं तो संस्था कहां से मान्यता प्राप्त है, कौन लोग पढ़ा रहे हैं, कौन सा ग्रुप है। तो ये ग्रुप है श्रीराज ग्रुप है, जिसका नर्सिंग कॉलेज है, बहुत सारी चीजें हैं, हॉस्पिटल है उसकी अगली कड़ी है। और जिन लोगों ने जाकर देखा है साइट पर कॉलेज में, वो अभी भी देख रहे हैं कि अब एक्सटेंशन होता ही चला जा रहा है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। नंबर नोट करें 9155558888 9155558888। अब पटना आने की कोई जरूरत नहीं, ना मुजफ्फरपुर जाने की कोई जरूरत है, एकदम गोरौल में एकदम स्टेशन से उतरिए और पैदल आ जाइए आप। हाँ, इंस्टीट्यूशन आपके ही आपके घर के पास आ गया। हालांकि आपने राजेश को हमेशा सुना है, हम कहते हैं कि प्रोफेशनल पढ़ाई कीजिए, जी हाँ, जिसमें बीसीए और बीबीए का नाम जरूर लेते हैं और कहते हैं कि ये वो पढ़ाई है जिसको पढ़कर आगे आप जा सकते हैं। साथ में हम ये भी कहते हैं लगातार युवा साथियों कि बिला वजह बाहर जाने की जरूरत नहीं। बिहार की बात करते रहे कि बिला वजह बिहार से बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, सारा कुछ अपने बिहार में है। और अगर जो आपने नजर उठाकर देखा ना, तो सब कुछ आपको यही मिल जाएगा। और इसी की कड़ी में डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से एक दफा हमारी बात हो रही थी, इन्होंने कहा गोरौल में किसी हेल्थ सेक्टर की बातें चल रही थी, वैसे में बातचीत के क्रम में बीसी और बीबीए की भी चर्चा चली और देखिए बातें हुई और आपके घर में इंस्टीट्यूशन खुल गया, एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। जी हाँ, खुला ही नहीं, और हमने अभी आपको जानकारी दी कि डॉक्टर साहब से बात चल रही थी और योजनाएं बहुत बड़ी हैं, तो एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट कैंपस में ही श्रीराज ग्रुप का अगला जो कोर्स है, जो हम बार बार आपको जानकारी दे रहे हैं कि बीसीए और बीबीए के बाद हेल्थ सेक्टर का जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का कोर्स भी शुरू होने जा रहा है, आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, खास करके जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इसी कैंपस में एसएस प्रोफेशनल में आपको जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का कोर्स भी मिलेगा। वही गोरौल हम समग्र रूप से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए एकदम उनके विकास के लिए तत्पर हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, और लगातार ये डिसीजन लिया जा रहा है। तो आसपास के जितने लोग हैं, गोरौल के लोग हैं, भगवानपुर हैं, मुजफ्फरपुर हैं, आप छपरा तक के लोग हैं, बिदुपुर है, जंदाहा है, महुआ है, ये पूरा इलाका जो कभी सोचता था कि बाहर जाना होगा, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर की बात है, घर में ही संस्थान है। हम चाहते हैं कि एक एक बच्चा आगे बढ़ जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक और जानकारी देना चाहते हैं ग्रामीण युवाओं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो सरकार पढ़ने के लिए 4 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर लोन भी दे रही है, वो सारी सुविधाएं आपको यहां मिल सकती हैं। सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा का लाभ उठाइए और घर बैठकर ही अपने करियर को, अपने रोजगार को, अपने व्यावसायिक शिक्षा को, अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए, पैसे की भी अब कोई चिंता नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं।
1: हाँ डॉक्टर साहब, बीसीए के बारे में आप कुछ बता रहे थे।
2: देखिए बीसीए एमबीए तो बताया कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से था, बीबीए, और उसके बाद बीसीए आता है
1: जी।
2: यह भी एक तेजी से बढ़ता आईटी सेक्टर में सबसे अच्छा कोर्स है
1: जी,
2: आईटी सेक्टर का सबसे अच्छा कोर्स है। आईटी सेक्टर में बहुत रेवोल्यूशन आया है और उस रेवोल्यूशन में बीसीए जो है जो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है।
1: हाँ।
2: और इसके कारण क्या है कि यह तुरंत कहने का मतलब कि यह सबसे उम्दा कोर्स हो जाता है और तुरंत इसको मार्केट में ला करके नेटवर्क खड़ा करके और उसके बाद पूरा अपने बिजनेस को, अपने वो एंटरप्रेन्योर को, अपने कह सकते हैं वो जो संस्थान है उसको आगे ले जाने के लिए जो विजन तैयार करता है वो बीसीए ही तैयार करता है और उस तरह से कंप्यूटराइज यील्ड निकालता है उसमें से, तो ये काम जो है बीसीए

0: ये वाले ही कर सकते हैं, एमसीए वाले ही कर सकते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है,
1: बहुत बड़ा क्षेत्र है। और थैंक यू डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका आभार अभिनंदन युवा साथियों की तरफ से कि आपने इतने वाइब्रेंट कोर्स को आपने रिस्क लिया और गोरौल में उतार दिया। हाँ, वहाँ वहाँ एकदम सारी चीजें आपने उपलब्ध करा दी हैं। युवा साथियों, गोरौल में SS प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि गोरौल स्टेशन से निकलिएगा और PSC की तरफ बढ़िएगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको कहते हैं उसकी तरफ बढ़िएगा, बाजार भी है। तो ठीक उसके बीचों बीच है SS प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए ठहरने का भी इंतजाम है, हॉस्टल की व्यवस्था है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया भी था कि 20 किलोमीटर तक जो है वो आप आपके लिए गाड़ी को भी अवेलेबल कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। नंबर एक बार बता दें फिर डॉक्टर साहब आगे बढ़ेंगे। नंबर नोट करें, 9155558888 9155558888। हाँ, जिन लोगों को अगर उन्होंने बायोलॉजी से इंटरमीडिएट किया है, रिजल्ट्स आ गए हैं, तो देर करने की जरूरत नहीं है। GNM और BSc नर्सिंग, GNM और BSc नर्सिंग के कोर्स भी यहाँ शुरू होने जा रहे हैं, आप जानकारियां ले सकते हैं। और जैसा कि हम बार बार कहते हैं, कोविड काफी समय निकल गया लेकिन आज भी हेल्थ के सेक्टर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। कहते हैं ना, टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, टेक्निकल पढ़ाई को चुनिए और आश्वस्त हो जाइए, हेल्थ सेक्टर में आप रोजगार कर सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं। रोजगार बोले तो सरकारी या निजी क्षेत्र में स्वरोजगार भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन को ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए। फिलहाल चलने से पहले एक बार नंबर बता दें, 9155558888, 9155558888 ये नंबर है। आप चाहें तो बात कर लीजिए डॉक्टर NP प्रियदर्शी से। चलते हैं, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे SS प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, गरौल रेलवे स्टेशन के पास, गरौल वैशाली।
3: तो अभी हमने सब सुन रही है प्रायोजित कार्यक्रम रोजगार। अब सुगिया बहन, अपने जो हमारा एक दिन कद्दू के कोफ्ता खिलेलन हल, बहुत बढ़िया लगल हल। अब चना के दालों में कद्दू डाल के बनेले हल, है ना?
4: अरे बहुत निमन, बहुत रंग बिरंगा कद्दू के भाई, कोफ्ता बढ़ले बा, दाल में डाल के बढ़ले बा, ओकर बजका खा, ओकर रायता बना के खा,
3: स्वास्थ्य लगी बढ़िया है, कम मर मसाला में बना है कि ना?
4: सबसे बड़ा बात
3: ना कि भाई बहुत तेल मसाला डाल के, तो भाई बहुत बढ़िया हो गए है ना। मगर देखती कद्दू के फसल में कीट के हमला, पैदावार बहुते नुकसान पहुंचावे। भाई कोई चीज खाए तो ओकरा के फसल के लगावल बहुत जरूरी है, और ओकरा देखभाल भी कैल बहुत जरूरी है। ताई किसान भाई से हमनी यह सब बात करम है कि ना? तो देखती सबसे पहले लाल कद्दू बीटल के बारे में जान ली, तो ई सबसे आम कीट है जे पौधा के निकले खेवा ओकरा पर हमला कर है। आ एक लक्षण है कि कीट पत्ती के खा के ओकरा में छेद कर दे है, और जेकरा से कि पौधा सूख सक है, तो एकर उपचार लगी भोरे के बखत, मतलब भोरे भोर जब ओस हो तब पत्ती पर लकड़ी के राख के छिड़काव करथिन। और दूसर भाई है कि नीम के तेल, जे बहुत सारा चीज में कीड़ा मकोड़ा वाला में तो काम देवे करे, अपने जानवे करथिन, तो नीम के तेल के स्प्रे करथिन, ओकरा पर छिड़काव करथिन।
4: हाँ, देखा भाई संवाद दिव्या बहन की, सही बात तू कहलू कि भाई कद्दू के कीट के फल जे बा अंदर से जे अंडा देवेला, जेकरा फल जोन बा ओकरा में अगर संक्रमण लग गई तो सड़े लागी, है ना? देखो लक्षण ही बा कि फल के ऊपर छोटा छेद देखे दिखाई देला, फल के अंदर से उ गिर के जोन बा नु गल जाला ओकरा से, आ ओकरा बाद उ गिर जाला। हाँ, एकर उपचार हमनी के कह सकतनी कि खेत में, है ना, फेरोमिल ट्रैप लगाए के चाहिए, और प्रभावित फल के इकट्ठा करके आ मिट्टी में जोन कहला ओकरा के गाड़ देवे के चाहिए, यानी दबा देवे के चाहिए, है ना?
3: देखिन तेसर में है माहू चाहे एफिडियस, तो ई छोट कीट पत्ती के नीचे चिपक के ओकर रस चूसा है, तो एकर लक्षण में पत्ती पीला पड़ के मुड़े लगा है और ऊपर छिपछिपा पदार्थ जमा हो जाए, तो एकर उपचार लगी तेज पानी के धार

0: से पति के धो देथिन। तो अपने भाई गिर जेते तेज धार से धोतीन
1: हाँ,
0: था।
1: गिरिए जाइए।
0: हाँ, तो देखतीन ओकर बाद पियर चिपचिपा काट के प्रयोग करथिन ओकरा
1: अच्छा
0: निकाले लगी।
1: हाँ, तो देखा ऐसा बा दिव्या बहन की एकदम हमनी के और भी कई चीज बा, जैसे कि एपी लाचना बीटल जोन बा
0: हाँ
1: लक्षण कीट के पत्ती के हरा भाग के खुरच के है ना वो
0: हाँ
1: खा जाला, ई रोग जोन बा। आ एकरा से पत्ती जोन बा ना वो जालीदार दिखे लागेला ई रोग लगला से। तो
0: हाँ
1: एकर उपचार जोन बा ना हाथ से कीट औरी अंडा के इकट्ठा करके जोन कीट बा
0: हाँ
1: ओकरा के नष्ट कर देवे के चाही। और अगर हमने के ध्यान ई कुल तरह से रखम ना
0: हाँ
1: दिव्या बहन,
0: हाँ
1: तो हमने के कीट से बचाव अपन फसल के कर सकतनी।
0: हाँ
1: आ ओकर मतलब कद्दू के बात कहलू तो भाई कद्दू के हमने के आनंद भी उठा सकतनी
0: ये है।
1: और कर सकती एक अधिक अगर होई उपजी तो ओकरा में व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी
0: हाँ ये
1: फायदा
0: है।
1: बा
0: आ
1: हमने के।
0: देखती नहीं से बचाव लगी एक
1: हाँ
0: सामान्य सुझाव में
1: हाँ
0: 5% नीम के बीज के अर्क
1: हाँ
0: के नियमित छिड़काव कीट के दूर रखा है। चाहे मिलिंचिंग है ओकर खेत के सफाई रखे और मिलिंचिंग के उपयोग करथिन जेकरा से कि कीट के पनपे के जगह नहीं मिले। तो
1: हाँ
0: एक के जगह पर बार बार कद्दू के फसल भाई नहीं लगाथिन। ये नहीं कि वही
1: हाँ
0: जगह लगा रही है और फिर
1: हाँ
0: वही जगह लगाथिन,
1: ना
0: ऐसा ना करे के चाहिए। और अगर कीट के हमला बहुते ज्यादा है तो अपने कोई विशेषज्ञ से सलाह लेथिन है ना, चाहे ओकरा से मेलाथियन है जैसन दवाई के सीमित मात्रा में उपयोग कर
1: कर
0: सकथिन। तो भाई
1: सकता
0: ज्यादा होती तब ना एक भाई बेचियो सकिए,
1: हाँ सही
0: अपनों
1: बात
0: खाए
1: है
0: और दूसरों के खिलाए,
1: और क्या
0: ओकरा
1: और
0: से भाई पैसा भी
1: क्या
0: कमावे के बात है
1: सही
0: कि
1: बात
0: ना।
1: है सही बात। तो अब का विचार।
0: अब हमरा लग रहा है कि भाई एगो और गीत सुनल जाए
1: हाँ हाँ
0: है ना,
1: हाँ
0: देशभक्ति गीत सुनल जाए
1: सुने के
0: नीलेश्वर मिश्रा से।
1: सुने के।

0: वाह, बहुत निमन। अभी
1: अपन
0: हमने
1: देश
0: सब
1: महान बहुत सुंदर
0: हाँ
1: लगल ही।
0: अभी हमने सब सुन रही देशभक्ति गीत नीलेश्वर मिश्रा से।
1: हाँ,
0: तहिनका बहुत एक धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और
1: तो
0: एक साथ साथ हमने के समय भी ओरिया रहा
1: चले
0: है ना, तो घर
1: चले
0: चले गए।
1: चले।
0: प्रणाम सुखिया बहन।
1: हाँ, खूब खुश रह दिव्या बहन।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: Small town, but global dreams. Now top-class engineering education is right here in Bihar. One government engineering college in every district. 38 premier institutes across the state. World-class education without leaving Bihar. Advanced labs, smart classrooms, experienced faculty, and excellent placement support for a strong engineering career.
5: Admissions based on JEE Main 2026 or BCECE merit. Online registration is open. Last date, 5 May 2026. For more information, visit bcecebord.bihar.gov.in.

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर, एनडीए के वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात। राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सरगर्मी तेज। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र और जदयू नेता निशांत कुमार सद्भाव यात्रा के तहत आज पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर पहुंचे। ये उनकी पहली राजनीतिक यात्रा है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण। और मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश भागों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात की अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर पार्टी के केंद्रीय नेताओं से चर्चा के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं। श्री चौधरी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जीतन राम मांझी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 6 मई को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक बुलाई है। ये बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय में शाम 5 बजे होगी। इस सत्र के दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। यह दिवस लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया के महत्व को रेखांकित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। आज विश्व

0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में पत्रकारिता की स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और उसकी भूमिका पर व्यापक चर्चा की जा रही है।
1: इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस अवसर पर मीडिया में काम करने वाले सभी कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर कहा कि यह दिवस लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और जागरूक समाज को बढ़ावा देने में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। श्री कुमार ने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समाज के लिए एक सजग प्रहरी के रूप में काम करता है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। जदयू अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने आज अपनी पहली राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की है। निशांत कुमार की इस यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा रखा गया है। पटना स्थित पार्टी मुख्यालय से यात्रा के लिए रवाना होने से पूर्व निशांत कुमार ने कहा कि इस यात्रा का मकसद समाज में सौहार्द और सद्भाव की भावना को मजबूत बनाना है।
2: हमने इसका नाम सद्भाव यात्रा दिया है। इसका यही अर्थ है सबको साथ लेके चलना, अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सबको साथ लेके चले, सबके साथ प्रेम का भाव रहे, भाईचारे का भाई भाव रहे। गांधी जी ने भी चंपारण की धरती से अपना पहला सत्याग्रह किया था, पिताजी ने भी सारी यात्राएं वहीं से की, मैं भी अपनी वहीं से यात्रा शुरू कर रहा हूँ। इसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, अपने कार्यकर्ता भाइयों से मिलना, उनकी बातों को सुनना।
0: बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा पटना से सड़क मार्ग से वैशाली, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण होते हुए आज शाम पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर पहुंची। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। निशांत कुमार आज वाल्मीकि नगर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद कल यहीं से दोबारा यात्रा शुरू होगी। यात्रा के दौरान जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि निशांत कुमार की यात्रा से पार्टी के सभी लोग उत्साहित हैं।
3: उनको पूरे पार्टी की शुभकामना है और पार्टी के सभी लोग उत्साहित हैं। निशांत जी की यात्रा निश्चित सफल होगी, इसलिए कि कार्यकर्ता तो उत्साहित है ही, आम लोगों में भी इसके प्रति जागरूकता है और सभी लोग चाहते हैं कि निशांत जी ज्यादा से ज्यादा सक्रिय हो।
0: वहीं जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने कहा है कि निशांत कुमार इस यात्रा से जमीनी स्तर पर और मजबूत होंगे।
4: यात्रा आपस में प्रेम का, आपस में मोहब्बत का, आपस में भाईचारा का यात्रा होगा। निशांत कुमार जी जमीनी स्तर की सच्चाई को परखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और समझ बुझ करके इस तरह को और भी ऊंचाई पर ले जाने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव से सरकार को ताकत देंगे।
0: राज्य सरकार ने बिहार राजस्व सेवा के 47 अधिकारियों का निलंबन खत्म कर दिया है। पिछले 9 मार्च को सामूहिक अवकाश पर चले जाने के कारण इन्हें निलंबित किया गया था। निलंबित पदाधिकारियों ने 30 अप्रैल को बिना शर्त सामूहिक अवकाश से लौटने की घोषणा की थी। इसके बाद सभी को निलंबन मुक्त किया गया है। इन अधिकारियों को संबंधित जिलों में योगदान का निर्देश दिया गया है। प्रदेश की सभी पंचायतों में इस महीने की 19 तारीख से प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन पंचायत सरकार भवन या इसके आसपास किसी सार्वजनिक स्थान पर होगा। इसका मकसद आम नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में बिहार सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भाजपा नेता अजय आलोक ने कहा है कि पार्टी पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाएगी। श्री आलोक ने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भरोसा नहीं रह गया है।
1: लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहे ममता हो, चाहे कांग्रेस हो, डीएमके हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनको कोई भरोसा नहीं रह गया। लगातार हारते हारते ये मानसिक रूप से इतना विक्षिप्त हो चुके हैं कि कभी ये चुनाव आयोग को कोसते हैं, कभी ये ईवीएम को कोसते हैं, कभी ये केंद्रीय सुरक्षा बलों को कोसने लगते हैं। इनको सिर्फ कोसने के अलावा कुछ नहीं बचा, अब सुप्रीम कोर्ट को भी कोसने लगे। विपक्ष को दावे करने दीजिए, नतीजे आने दीजिए। यकीन मानिए, शानदार प्रदर्शन एनडीए का होगा। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में सरकार बनाएगी और एनडीए तमिलनाडु में सरकार बनाएगी, इसमें कोई शक और शुभा नहीं है।
0: सिवान नगर थाना क्षेत्र के आंदर ढाला के समीप 29 अप्रैल को हुए चर्चित गोलीकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सोनू कुमार को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। मारा गया अपराधी पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे की हत्या में शामिल था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस एनकाउंटर पर कहा कि अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लिया है।
2: अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। सोनू यादव का एनकाउंटर हो गया है, अपराधी था, कई अपराध में लिप्त था और देखिए उस दिन गाड़ी सटा गोली मार के हत्या कर दिया, तो अब तो माला चढ़ाना ही है ना अपराधी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है जो अपराधी है उसको माला पहनाना नहीं है, उसको माला चढ़ाना है। तो अपराध मुक्त बनाने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी लिए और समूल नाश किया जाएगा अपराधियों को। अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या बिहार छोड़ दे।
0: राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने कहा है कि पिछले 20 वर्षों में बिहार ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। पटना में आयोजित बिहार एजुकेशन समिट को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बिहार को केवल आर्थिक निवेश ही नहीं बल्कि बौद्धिक और संस्थागत रुचि को भी आकर्षित करना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसे संस्थान विकसित करने की जरूरत है जहां छात्रों को प्रौद्योगिकी, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए खुद को सशक्त बनाने का मौका मिले। राज्यपाल ने अनौपचारिक शिक्षा जैसे सेमिनार, संगोष्ठी और संवाद के जरिए विचारों के आदान प्रदान पर भी जोर दिया। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में आंधी बारिश की स्थिति लगातार बनी हुई है। आज राजधानी पटना सहित विभिन्न जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और हवा चल रही है, इससे तापमान में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 19 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है।
3: दिनांक 4 मई राज्य के उत्तर भाग में कुछ स्थानों पर एवं दक्षिण भाग में एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, मधुबनी एवं सुपौल जिले में ओलावृष्टि होने की संभावना है और किशनगंज जिले में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड के फुलकाहा थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर पुलिस ने 94 लीटर नेपाली शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। रोहतास के सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन ने जिले में निर्माणाधीन मॉडल अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान

0: कई महत्वपूर्ण कार्य लंबित पाए जाने पर सिविल सर्जन ने नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने मधेपुरा जिला मुख्यालय और उदाकिशनगंज कोर्ट परिसर में नवनिर्मित कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की प्राथमिकता न्याय को लोगों के द्वार तक पहुंचाना है। कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र के लाभा जीरो माइल चौक के समीप चल रहे अवैध अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी सेंटर को सील कर दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी प्रद्युम सिंह यादव के निरीक्षण के दौरान अस्पताल संचालक किसी तरह के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए। किशनगंज में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत अवैध कोयला लदे 3 ट्रकों को जब्त किया गया है। कार्रवाई के दौरान चालक समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रोहतास के सासाराम नगर थाना क्षेत्र के चौखंडी मोहल्ले में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने के मामले में हुई हिंसक झड़प में एक युवक गोली लगने से घायल हो गया। घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। DSP दिलीप कुमार ने बताया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर, NDA के वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात। राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सरगर्मी तेज। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र और जदयू नेता निशांत कुमार सद्भाव यात्रा के तहत आज पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर पहुंचे। ये उनकी पहली राजनीतिक यात्रा है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण। और मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश भागों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
1: रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
2: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो। ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
1: RBI कहता है, जानकार बनिए,
2: सतर्क रहिए। स्पेशल कैंप्स ऑन अनक्लेम असेट्स आर बीइंग कंडक्टेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर 2025।
3: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है कटिहार जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी।
4: कटिहार जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत स्वगणना का कार्य संपन्न हो गया। 1 अप्रैल से शुरू हुआ यह अभियान 1 मई तक जारी रहा। इस दौरान नागरिकों ने जनगणना की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से स्वयं भागीदारी सुनिश्चित की। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि स्वगणना के बाद अब जिले में मकान सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि 2 मई से 31 मई तक प्रगणक घर घर जाकर स्वगणना के दौरान भरी हुई जानकारी सत्यापन करेंगे और जिनकी जानकारी छूट गई है उन्हें भी शामिल करेंगे।
5: जो हाउस के नंबरिंग देने का काम है वो शुरू किया गया है, जिसका हम लोग पर्यवेक्षण कर रहे हैं। और जो हमारे प्रगणक हैं वो सब जगह जाकर के मकान का से नंबरिंग करेंगे और उसके बाद 5 तारीख से घर घर जाकर के वो प्रश्नों के उत्तर लेना शुरू करेंगे। मेरी सभी जिलावासियों से अपील है कि चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जनगणना का, और आने वाले समय में जो भी नीतियां जो भी सरकार के निर्णय होंगे उससे जो आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे उसी के आधार पर लिए जाएंगे, इसलिए सारी जानकारी सटीक और सही दें और जो हमारे प्रगणक आपके घर में जाएंगे उनका सहयोग करें।
4: जिले में रसोई गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में LPG गैस सिलेंडर उपलब्ध है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए सभी गैस एजेंसियों को नियमित रूप से होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उपभोक्ता घर बैठे गैस बुकिंग कर निर्धारित समय के भीतर सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। बेमौसम बारिश और आंधी की वजह से आम के पेड़ों से

झड़ रहे टिकोले ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, जिससे आम के बगीचे धीरे धीरे सूने होते जा रहे हैं। काल वैसाखी के प्रभाव से जिले के मौसम में अचानक बदलाव हुआ, जिसके कारण भारी बारिश के साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई। इस बरसात से आम, लीची, कटहल, पपीता समेत कई बागवानी फसलों को भारी नुकसान पहुँचा है। सबसे ज्यादा असर आम के बगानों पर देखने को मिल रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक पंकज कुमार ने बताया कि सामान्य तौर पर इस समय तापमान 30 से 35

0: मात्रा को 5 लीटर पानी में घोलकर शाम के समय छिड़काव करने से टिकोले गिरना कम किया जा सकता है।
1: अगर आप अपने बगीचे में सिंचाई करते रहें, हल्की नमी बना के रखते हैं, इससे भी टिकोले कम गिरते हैं। साथ ही साथ जो प्लानोफिक्स नाम की एक हार्मोन की दवा आती है, उसका 5 लीटर पानी में 1 ml दवा मिला करके स्प्रे करने से आम के टिकोलों में गिरने की जो समस्या है वो कम होती है। साथ ही साथ पोषण प्रबंधन के रूप में 1 लीटर पानी में 4 ग्राम बोरेक्स को घोल करके अगर छिड़काव करते हैं तो टिकोले के गिरने की समस्या जो है वो सुधरती है।
0: राज्य सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में नई पहल की है। इसके तहत अब जमीन खरीदने वाले व्यक्ति को खरीद से पहले सरकारी जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही करीब 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए घर बैठे निबंधन की सुविधा भी लागू की जाएगी। कटिहार निबंधन कार्यालय के जिला अवध निबंधन पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि जमीन की खरीद बिक्री में होने वाले फर्जीवाड़े, विवाद और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। अब कोई भी खरीदार जमीन खरीदने से पहले उसकी पूरी सरकारी जांच कर सकेगा। इसके लिए अंचल कार्यालय से सत्यापित रिपोर्ट प्राप्त करने की सुविधा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। जिला निबंधन कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में पुराने जमीन दस्तावेजों की चोरी कर उनमें फर्जी नाम जोड़कर जमीन बेचने वाले अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह का कटिहार पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में पटना और कटिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ये गिरोह बिहार के विभिन्न जिलों के निबंधन कार्यालयों में लावारिस, दान की गई या सरकारी जमीनों के दस्तावेज चोरी कर उनमें हेर फेर कर बिक्री करता था। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अभिजीत कुमार सिंह ने बताया कि गिरोह ऐसे दस्तावेजों को निशाना बनाता था जिनकी निगरानी कम होती है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कटिहार जिले के करीब 400 निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले हजारों छात्रों का अब तक अपार कार्ड नहीं बनने को लेकर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चंद्र चौधरी ने बताया कि जिले में करीब 400 निजी विद्यालयों के 1.5 लाख से अधिक छात्रों का अभी तक अपार कार्ड नहीं बना है, जिसके कारण निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 57% बच्चे अब भी इस व्यवस्था से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि सभी निजी विद्यालयों को 30 जून तक हर हाल में अपार कार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है।
2: अभी आप सुन रहे थे कटिहार जिले के हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी।
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आज सुनेंगे नितिन मुकेश के स्वर में कुछ भजन।

सीता जैसी पवित्र पतिव्रता आदर्श नारी को फिर से वनवास दे दिया गया और वह भी गर्भावस्था में। अंततः विरह वेदना सहती जानकी ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में दो सुंदर तेजस्वी बालक लव और कुश को जन्म दिया और फिर एक दिन

श्रोता, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इसके अंतर्गत आपने नितिन मुकेश के स्वर में कुछ भजन सुना। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, आइए आनंद ले फिल्म संगीत का। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में आइए सुने फिल्म क्यामत से क्यामत तक का ये गाना। इस गाने को लिखा है आनंद मिलिंद ने और धुन तैयार की है मजरूल सुल्तानपुरी ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक को सुना अपने फिल्म कयामत से कयामत तक में। बोल लिखे थे आनंद मिलन ने और धुन तैयार की थी मजरूल सुल्तानपुरी ने।

राजू बन गया जेंटलमैन, इसका फिल्म से भी आपने ये गाना सुना कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में, मदन पाल के संगीत और जतिन ललित, माफ़ कीजिएगा, मदन पाल का लिखे इस गीत को सुरों से संवारा था जतिन ललित ने, संगीत से संवारा था जतिन ललित ने।

0: फिल्म दुश्मन का भी आपने ये गाना सुना लता मंगेशकर और कुमार शानू की आवाज़ में। बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की थी उत्तम सिंह ने। आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लेते एक छोटा सा अंतराल।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

इस प्यारे से गाने को आपने सुना फिल्म संघर्ष से, सोनू निगम की आवाज़, जतिन ललित का संगीत और समीर का बोल थे। आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

कुमार शानू को अभी आपने सुना फिल्म डुप्लीकेट में, जावेद अख्तर के बोल और धुन अनु मलिक के। इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। प्रवीण रतन सहाय के स्वर में सुनते हैं कुछ गजल।

0: श्रोता, आप सुन रहे थे प्रवीण रतन सहाय के स्वर में कुछ गजल, कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल परीक्षण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस प्रक्षेपण की उपलब्धि पर सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
2: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
2: केरलम में मतगणना

0: की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: केरलम के 140 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना में 43 जगहों पर 32,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने का निर्देश भी दिया गया है। मतगणना की मेजों पर अधिकारियों की तैनाती और रैंडमाइजेशन का तीसरा दौर कल सुबह 5 बजे होगा। मतगणना शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बार बेहतर प्रदर्शन का पूरा भरोसा जताया है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
2: पुदुचेरी में राजनीतिक पार्टियां और आम जनता विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू

0: सुबह 5 बजे होगा। मतगणना शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बार बेहतर प्रदर्शन का पूरा भरोसा जताया है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
2: पुदुचेरी में राजनीतिक पार्टियां और आम जनता विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। 9:30 बजे से शुरुआती रुझानों के सामने आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल लगाए गए हैं, साथ ही डाक मतपत्र के लिए 35 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना के लिए कुल 859 अधिकारियों को तैनात किया गया है। मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय बल शामिल है। पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने सभी संबंधित पक्षों से गिनती की प्रक्रिया को सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में पूरा सहयोग देने की अपील की है। पुदुचेरी से बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी।
3: असम में मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किया गया है। मतगणना राज्य के 35 जिलों में स्थापित 40 केंद्रों में होगी। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र बनाया गया है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट में 2-2 केंद्र तथा नौगांव में 3 केंद्र स्थापित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी 126 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स द्वारा की जाएगी। उनके सहयोग के लिए लगभग 6,000 काउंटिंग कर्मी और 2,300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने 2026 के विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: जनादेश 2026।
4: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
0: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
4: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
0: जनादेश 2026।
1: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत, हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी को अवलोकन करने की क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके जुनून का प्रमाण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बारे में हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
5: आईआईटी मद्रास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 5 विद्यार्थियों द्वारा स्थापित गैलेक्स आई ने आज मिशन दृष्टि के द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। सुयश सिंह, डेनिल चावड़ा, किशन ठक्कर और अन्य युवाओं द्वारा बेंगलुरु में 2021 में आरंभ किए गए इस स्टार्टअप ने आज भारत की क्षमता का परिचय दिया है। उनके द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट विश्व का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सेंसर का मिला जुला उपकरण डाला गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस अग्निकांड में हुई जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। ये समाचार

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वो ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की विमान कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानों का संचालन कर रही हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। ईरान ने संकेत दिया है कि यदि अमरीका अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करता है और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध समेत आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वो हॉर्मुज जल्द हमरू मध्य के आसपास तनाव को कम करने के लिए तैयार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल गरज के साथ तेज बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार पुणे जिले के नासरापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1,00,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए प्रतिदिन समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें यह कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर सिर्फ एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। IPL क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल

0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. All set for counting of votes tomorrow for West Bengal, Assam, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry assembly elections. Robust security arrangements in place for smooth counting. Indian space startup Galaxy launches Mission Drishti, world's first Optosar satellite aboard SpaceX's Falcon 9 rocket. Vice President and Prime Minister hail the feat. UAE resumes normal flight operations to multiple destinations in India after brief suspension amid West Asia conflict. IMD issues orange alert for heavy rainfall along with thunderstorms and gusty winds over several parts of North India tomorrow. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat host Sunrisers Hyderabad by 7 wickets. Gujarat Titans facing Punjab Kings at Ahmedabad in another fixture. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं अब्दुल वाहिद। मगरबी बंगाल, आसाम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी असेंबली इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती के लिए जो कल कराई जाएगी, ये अमल खुशुसलूबी से जारी रहे, इसके लिए वसी हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। भारत के खला से मुतालिक स्टार्टअप गैलेक्स आई ने मिशन दृष्टि को खला में भेजा है, जो स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए भेजा जाने वाला दुनिया का पहला ऑप्टोसार मसनूई सयारचा है। नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने इस कारनामे पर मुबारकबाद दी है। मुत्तहदा अरब इमारात ने मगरबी एशिया तनाजे के दौरान अपनी परवाजों को कुछ दिन तक मुअत्तल रखने के बाद भारत की कई जगहों के लिए परवाजें दोबारा मामूल के मुताबिक चलानी शुरू कर दी हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने कल शुमाली भारत के बहुत से इलाकों में मूसलाधार बारिश, गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाओं के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मेहमान सनराइजर्स हैदराबाद को शिकस्त दी, जबकि एक और मैच अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के दरमियान जारी है। अब खबरें तफसील से। चार रियासतों मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, आसाम और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुदुचेरी में असेंबली इंतखाबात की कल होने वाली वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आसाम में वोटों की गिनती के लिए सभी 35 जिलों में 40 मराकज कायम किए गए हैं। 59 खवातीन समेत 722 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आसाम में वोटों की शफाफ और बिला रुकावट गिनती को यकीनी बनाने के लिए कसीर जहती हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। गिनती के पूरे अमल पर 126 काउंटिंग मुशाहिदीन करीबी नजर रखेंगे। इस अमल में मदद के लिए वोटों की गिनती से वाबस्ता तकरीबन 6000 अहलकार और 2300 से ज्यादा माइक्रो मुशाहिदीन तैनात किए गए हैं। आसाम के आला इंतखाबी अफसर अनुराग गोयल ने 2026 के इंतखाबात को तारीखी करार दिया है, क्योंकि यहां तकरीबन 3 दहाइयों के बाद वाहिद मरहले में पोलिंग कराई गई है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं रजी अहमद।
1: मगरबी बंगाल में 77 गिनती मराकज पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तफसील हमारे नामानिगार से।
3: चुनाव कमीशन के मुताबिक पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जाएगी, उसके बाद कई राउंड में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से डाले गए वोटों की गिनती होगी। गिनती के अमल को शफाफ और बिला रुकावट बनाने के लिए मरकजी फोर्सेज, रियासती पुलिस अहलकारों और चुनाव अहदेदारों को तैनात किया गया है। स्ट्रांग रूम्स और काउंटिंग हॉल्स में सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं और कसीर जहती हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। कोलकाता से संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: इस दौरान चुनाव कमीशन ने जुनूबी 24 परगना के फाल्टा असेंबली हलके में वोटिंग के पूरे अमल को मनसूख करने का गैर मामूली कदम उठाया है। इस हलके में सभी 285 पोलिंग बूथों पर इस महीने की 21 तारीख को फिर से वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। तमिलनाडु में वोटों की गिनती के लिए 10,545 अहलकार तैनात किए जा रहे हैं, जिनकी मदद 4,624 माइक्रो मुशाहिदीन करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
4: इस चुनाव में रियासत की सियासत में बहुत से नए किरदार शामिल हुए हैं, साथ ही नई नस्ल ने इंतखाबी अमल में काफी दिलचस्पी दिखाई है।

0: सियासी पार्टियों ने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया है और ऑनलाइन जबानी बहस और तकरार भी हुई है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: पुदुचेरी में भी वोटों की गिनती के लिए वसी हिफाजती इकदामात किए गए हैं। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए पुदुचेरी के आला इंतखाबी अफसर पी जवाहर ने बताया कि पूरा अमल चुनाव कमीशन के मुकर्रर करदा मुशाहिदीन की निगरानी में शफाफ तरीके से किया जाएगा। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: अब जबकि चुनाव के नतीजे आने में बहुत कम वक्त रह गया है, सियासी पार्टियां और आम लोग नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो अगले 5 साल के लिए पुदुचेरी के मुस्तकबिल के लिए अहम होगा। वोटों की गिनती के लिए 859 अहदेदार तैनात किए गए हैं। गिनती के सभी मराकज पर मीडिया सेंटर्स कायम किए गए हैं ताकि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को तेजी से मुसद्दका मालूमात फराहम किए जाने को यकीनी बनाया जा सके। पुदुचेरी से बिबिन एसनाद की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं रजी अहमद।
1: केरलम में सभी 140 गिनती के मराकज पर सीनियर अहदेदारों ने तैयारियों का जायजा लिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: रियासत भर में 43 मकामात पर 32,000 से ज्यादा पुलिस अहलकार तैनात किए गए हैं। जिला इंतखाबी अफसरों को हिदायत दी गई है कि अगर वो जरूरी समझें तो इजाफी बंदिशें आयद करें। अब जबकि वोटों के शुरू होने में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, सीपीएम की सरबराही वाले एलडीएफ, कांग्रेस की सरबराही वाले यूडीएफ और बीजेपी की सरबराही वाले एनडीए ने बेहतर कारकर्दगी की यकीन का इजहार किया है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुरुथिस की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के खलाई शोबे के स्टार्टअप गैलेक्स आई ने आज दुनिया का पहला ऑप्टोसार सयारचा कामयाबी के साथ खला में भेजा है। स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए इस मिशन दृष्टि को अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया से खला में भेजा गया है। इस मिशन का वजन 190 किलोग्राम है। यह जमीन के मुशाहदे वाला अब तक का सबसे बड़ा मसनूई सयारचा है और इसे किसी प्राइवेट भारतीय कंपनी ने तैयार किया है। ये नए दौर के स्टार्टअप्स में शामिल है जो खलाई टेक्नोलॉजी को मजीद वसत दे रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
0: बेंगलुरु में कायम गैलेक्स आई की बुनियाद 2021 में आईआईटी मद्रास के 5 साबिक तलाबा ने रखी थी, जिनमें दीगर के अलावा सोयाज सिंह, दैनिल चौड़ा और किशन ठक्कर शामिल है। इस स्टार्टअप को मिशन दृष्टि की कामयाबी पर दुनिया भर से तवज्जो हासिल हुई है। इस सयारचे को खला में दागा जाना भारत की खलाई टेक्नोलॉजी से मुतालिक स्टार्टअप्स की बढ़ती हुई सलाहियतों के मैदान में एक बड़ी पेशरफ्त है। ये जमीन का मुशाहिदा करने वाला अपनी नौइयत का दुनिया का पहला मस्नूई सयारचा है जो बादलों और अंधेरे के पार भी तस्वीरें ले सकता है। स्टार्टअप्स गैलेक्स आई ने इसरो के खला में पेशरफ्त और ऑथोराइजेशन कौमी मरकज इन स्पेस का शुक्रिया अदा किया है कि उसने इनकी आजमाइशी बुनियादी ढांचों को ये शरफ बख्शा। अब इसरो का नया स्पेस इंडिया लिमिटेड इस स्टार्टअप्स की मदद कर रहा है कि वो अपने सयारचे से खींची हुई तस्वीरों को आलमी सतह पर तकसीम करे। बेंगलुरु से सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मिशन दृष्टि इख्तरा और मुल्क की तामीर के तई नौजवानों के जज्बे का सबूत है। उन्होंने गैलेक्स आई के बानी अफराद और इसकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने अपने पैगाम में कहा है कि इस पेशरफ्त से खला से मुतालिक प्राइवेट शोबे में भारत की बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा होता है। उन्होंने ये भी कहा कि मिशन दृष्टि भारत के खला के कमर्शियल इको निज़ाम की राह में एक अहम कदम है और यह मिशन सभी मौसमों में जमीन की हमा वक्त मुशाहदाती सलाहियत का हामिल है। मुत्तहदा अरब इमारात की जनरल शहरी हवाबाजी अथॉरिटी ने यूएई के फजाई हदूद के अंदर मामूल की सभी फजाई खिदमात दोबारा शुरू करने और मगरबी एशिया में उभरती हुई सूरत हाल के दरमियान किए गए आर्जी एहतियाती इकदामात को खत्म करने का ऐलान किया है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत और मुत्तहदा अरब इमारात की एयरलाइंस ने यूएई से भारत में कई मकामात पर परवाजें बहाल कर दी हैं। वजारत ने कहा है कि तेहरान में भारतीय सिफारतखाने ने अब तक 2,500 भारतीय शहरियों को जमीनी सरहद के रास्ते मुल्क से बाहर जाने में सहूलतें फराहम की हैं। हुकूमत ने आज कहा है कि वो मगरबी एशिया में तनाज़े के पेश नज़र तवानाई की सप्लाई, बहरी खिदमात और भारतीय शहरियों की मदद को यकीनी बनाने के सभी इकदाम कर रही है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने कहा है कि एलपीजी की जखीरांदोजी और काला बाजारी रोकने के लिए मुल्क भर में कार्रवाइयां जारी हैं। वजारत ने मजीद बताया कि कल तक एक

1,900 से ज्यादा छापे मारे गए थे। मुल्क भर में एलपीजी सिलेंडरों की ऑनलाइन बुकिंग में कुल सनती बुनियाद पर 99% का इजाफा किया गया। इस साल मार्च से अब तक तकरीबन 6,04,000 पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं और 2,68,000 इजाफी कनेक्शन के लिए बुनियादी ढांचे कायम किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की वजारत ने आज उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट को मुस्तरद कर दिया है जिनमें कहा गया है कि इस साल के आखिर तक आधार की शक्ल महज एक फोटो और एक क्यूआर कोड कर दी जाएगी। वजारत ने वजाहत करते हुए कहा है कि इस तरह की तब्दीलियों का कोई मंसूबा नहीं है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ने सर्जरी की एक नई तकनीक तैयार की है जिसे रीढ़ की हड्डी में शदीद किस्म की खराबियों के इलाज के सिलसिले में एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। एम्स ने एक बयान में कहा है कि यह तरीक़ाकार पिछले 7 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे उन मरीजों के लिए एक उम्मीद पैदा हुई है जिन्होंने बीमारी के इब्तदाई दौर में सर्जरी के शदीद खतरात और इलाज के महदूद मुतबादिल का सामना किया है। हुकूमत ने बच्चों में डायबिटीज मेलिटस के बारे में एक रहनुमा दस्तावेज जारी किया है। यह दस्तावेज सेहत आमा खिदमात बहम पहुंचाने में बेहतरीन तौर तरीकों के बारे में हाल ही में अख्तिताम पजीर कौमी कॉन्फ्रेंस में जारी की गई। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने बताया कि इस पहल से भारत उन खास मुल्कों के ग्रुप में शामिल हो गया है जिन्होंने बचपन में ही हो जाने वाली जियाबतिस की देखभाल को सेहत आमा के निजाम में शामिल कर लिया। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के दोयम के रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इस ताज़ा फ्रेमवर्क से 4 अनासिर पर मबनी तरीक़ाकार को इस्तेहकाम हासिल होता है जो इस तरह हैं: पैदाइश के वक्त खामियां, बीमारियां, कमियां और नशोनुमा में ताखीर। इसमें सेहत को दरपेश नए दौर के चैलेंजेस भी शामिल हैं जो इस तरह हैं: गैर मुतअद्दी बीमारियां, दिमागी सेहत और रवैया जाती तशवीश। इसमें किसी बच्चे की नशोनुमा के हर मरहले में अलग से की जाने वाली मुदाखलतों की बजाय लगातार देखभाल पर जोर दिया गया है। आकाशवाणी की खबरों के व्हाट्सएप चैनल ने 1,00,000 फॉलोअर्स का संगमील तय कर लिया है। व्हाट्सएप चैनल पर रोजाना की खबरें, ताजा तरीन खबरें और अलर्ट्स फराहम किए जाते हैं। दिल्ली में आज सुबह शाहदरा के विवेक विहार इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में बड़े पैमाने पर आग लग जाने के हादसे में 9 अफराद हलाक हो गए। समझा जाता है कि ये आग एक एयर कंडीशनर फट जाने की वजह से लगी। आग बुझाने वाली 14 गाड़ियों को काम पर लगाया गया जिन्होंने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग के इस हादसे में जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने इस हादसे में मरने वालों के करीबी रिश्तेदारों के लिए वज़ीर आज़म के कौमी राहत फंड से 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। भारत के महकमे मौसमियात ने कल शुमाली भारत के बेशतर इलाकों में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ शदीद बारिश की पेशगोई की है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और विदर्भ में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आज मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद के जरिए दिए गए 166 रन के निशाने को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 ओवर्स और 2 गेंदों में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। अहमदाबाद में खेले जा रहे आज के दूसरे मैच में पंजाब किंग्स ने मेजबान गुजरात के सामने जीत के लिए 164 रन का निशाना रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 9 विकेट पर 163 रन बनाए हैं। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। मगरबी बंगाल, आसाम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी असेंबली इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती के लिए जो कल कराई जाएगी ये अमल खुशसलूबी से जारी रहे इसके लिए वसी हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। भारत के खलाई शोबे के स्टार्टअप गैलेक्स आई ने आज दुनिया का पहला ऑप्टोसार सयारचा कामयाबी के साथ खला में भेजा है। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने इस कारनामे पर मुबारकबाद दी है। मुत्तहदा अरब इमारात ने मगरबी एशिया तनाजे के दौरान अपनी परवाजों को कुछ दिन तक मुअत्तल रखने के बाद भारत की कई जगहों के लिए परवाजें दोबारा मामूल के मुताबिक चलानी शुरू कर दी हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने कल शुमाली भारत के बहुत से इलाकों में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाओं के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुत्तहदा अरब इमारात की जनरल शहरी हवाबाजी

0: अथॉरिटी ने यूएई के फजाई हदूद के अंदर मामूल की सभी फजाई खिदमात दोबारा शुरू करने और मगरबी एशिया में उभरती सूरत हाल के दरमियान किए गए आर्जी एहतियाती इकदाम को खत्म करने का ऐलान किया है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत और मुतहदा अरब इमारात की एयरलाइंस ने यूएई से भारत में कई मकाम पर परवाजें बहाल कर दी हैं। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आज मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद के जरिए दिए गए 166 रन के निशाने को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 ओवर्स और 2 गेंदों में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। इससे कबल सनराइजर्स हैदराबाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर्स में 165 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अहमदाबाद में खेले जा रहे आज के दूसरे मैच में पंजाब किंग्स ने मेजबान गुजरात के सामने जीत के लिए 164 रन का निशाना रखा है। इसी के साथ
1: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में अप्रैल माह से प्रारंभ 3 कड़ियों की श्रृंखला में दूसरा रूपक साहित्य और संस्कृति की सतत आवृत्ति आकाशवाणी। आलेख आनंद श्रीवास्तव का है, प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक साहित्य और संस्कृति की सतत आवृत्ति आकाशवाणी।
2: समय की तरंगों पर तैरती एक ऐसी आवाज जिसने 9 दशकों तक भारत के हृदय की धड़कन को शब्द दिए हैं। आज जब आकाशवाणी अपनी यात्रा के 90 वर्ष पूरे कर रहा है तो हम लौट रहे हैं उस विरासत की ओर जहां स्वर और शब्द मिलकर राष्ट्र की चेतना जगाते थे।
3: ये आकाशवाणी है।
2: ये शब्द सिर्फ एक सूचना नहीं, एक संस्कृति की धड़कन है। जब किताबें कुछ ही लोगों की मेज तक सीमित थी तो इस आवाज ने बंद दरवाजों को खोलकर साहित्य और संस्कृति को आम आदमी के चूल्हे चौके और बैठक तक पहुंचाया।
4: एक ऐसा मंच जहां शब्द पन्नों की कैद से आजाद होकर सीधे हिंदुस्तान के दिल में उतर गए। 90 साल और एक अटूट रिश्ता, ये कहानी है आकाशवाणी और भारतीय साहित्य के साथ संस्कृति के उस मिलन की जिसने भारत की सोच को गढ़ा।
5: साहित्यकार जो देना चाहता है वो अनेक आगत युगों तक रहेगा और उसकी रचना कालजयी हो सकती है, समय की सीमा को पार करती है। साहित्यकार को जीवित रखने के लिए उसके सृजनात्मक शक्ति को अच्छे रखना होगा।
2: यह आवाज थी कवयित्री महादेवी वर्मा की। 50 और 60 के दशक में आकाशवाणी के गलियारे भारत के साहित्यिक संसद जैसे थे। यहाँ निराला अपनी गूंजती आवाज में कविता पढ़ते थे तो बच्चन अपनी मधुशाला की रूह उतारते थे।

0: ये थी हरिवंश राय बच्चन के स्वर में उनकी कृति मधुशाला की कुछ पंक्तियां।
1: पद्मश्री से सम्मानित हिंदी पत्रकार और लेखक विजयदत्त श्रीधर का मानना है कि साहित्यकारों को मंच प्रदान करने के साथ साथ भाषा और विषयों के चयन को लेकर आकाशवाणी ने अपनी अनूठी पहचान दशकों से कायम रखी है।
2: आकाशवाणी का भारत के जनजीवन में लोक प्रसारक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है और उसका महत्व जब अकेला प्रिंट मीडिया था सामने तब भी बरकरार था, टेलीविजन मीडिया आया तब भी बरकरार रहा, अब सोशल मीडिया और निजी चैनलों की बाढ़ आ गई है तब भी आकाशवाणी का महत्व बरकरार है और इसका कारण है उसकी विश्वसनीयता, उसकी भाषा में, प्रस्तुति में, विषयों के चयन में संयम है, एक सुसंस्कृति है। फिर आकाशवाणी ने कई बहुत अद्भुत काम किए, पहले किसानों की, विज्ञान संबंधी, युवाओं के लिए कितनी सारी जानकारियां ये नियमित रूप से आकाशवाणी समाज तक पहुंचाता रहा है।

0: साहित्यकारों के लिए आकाशवाणी एक संस्कार रहा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखिका,
1: वो रेडियो के लायक है कि नहीं, इसमें कोई कठिन शब्द तो नहीं है। पापा हमेशा कहा करते थे कि भाई रेडियो की भाषा सरल भाषा होनी चाहिए। विष्णु प्रभाकर के नाटक देखिए, रेडियो से ही वो इतने विख्यात साहित्यकार बने, क्योंकि रेडियो में जो था कि उनकी कहानी नाट्य रूपांतर हुआ था और वो जा न सकी। गृहस्थी नाम की कहानी थी उनकी, जो अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में प्रथम आई थी, उसी पर रेडियो का नाटक बना और वो नाटक जाने कितनी बार खेला गया। मैंने ही अनुवाद किया था जब मैं एमए में आई, तो मैंने डॉक्टर फॉस्टर्स मार्लो का जो प्ले है दिल्ली स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ, वो बहुत सुना गया। आप समझो उस समय आकाशवाणी एक गढ़ था कि जो भी अच्छी रचना है तो सबसे पहले सोचते थे इसको रेडियो को दे दे।
2: बहुत सारे श्रोताओं को ये सुनकर आश्चर्य होगा कि साहित्यकारों को भी आकाशवाणी में ऑडिशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। वरिष्ठ साहित्यकार अब्दुल बिस्मिल्ला एक ऐसा ही अनुभव साझा करते हुए कहते हैं,
3: आकाशवाणी से संबंध बना तब मुझे लगा कि ये तो केवल गाने तक सीमित नहीं है भाई, और केवल समाचार तक सीमित नहीं है, और सामान्य जनता जो है वो गाने गानों पर लोकगीतों के बड़ी बहार थी सा, इसमें साहित्य भी कहीं होता है ये तो हमें पता ही नहीं था। ये तो सब पता चला जब पहली बार मुझे ही जब पहली बार बुलाया गया, ये बात मैं कर रहा हूँ 74 से 80 के बीच का कोई सन रहा होगा, कि जबकि बनारस में रेडियो स्टेशन खुला। अच्छा, रेडियो में तो ये भी था कि समय के आधार पर उतने समय में वो समाप्त हो जाए। मेरी कहानी पहुंची जब वहाँ तो डायरेक्टर साहब ने मुझे बुलवाया, इसमें फिर ऑडिशन होता है, कहानी हमारी उनके पास थी, कहा कि इसको कुछ नहीं करना, पढ़ना है आप और इतने मिनट में इसको खत्म करना है। तो पता चला हर तीसरे महीने में बुलाया जाने लगा वहाँ, तो कभी कविता पाठ, तो कभी कहानी पाठ, कभी वार्ता के लिए कोई विषय दे दिया, कभी कोई बड़ी हस्ती पहुंच गए तो कहते थे साहब इंटरव्यू आप ले लीजिए। इसके बाद तो फिर साहब फिर वो इतने प्रसारण शुरू हो गए और मुझे यह देखकर वाकई प्रसन्नता हो रही है कि वो आज भी जारी है, जबकि जैसा कि लोग कहते हैं कि अब तो आ गया मोबाइल का युग, लेकिन इसके बावजूद भी आकाशवाणी न केवल सक्रिय है बल्कि ये भी भूमिका को अदा कर रहा है और आज भी साहित्य को महत्व उतना ही दे रहा है। आप लोगों के लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि हम इसका भाग रहे हैं, हिस्सा रहे, अंग रहे हैं।
0: आकाशवाणी के जरिए साहित्य सिर्फ महानगरीय हिंदी तक सीमित नहीं रहा, आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों ने भारतीयता के असली रंग बिखेरे। जालंधर से हीर रांझा की गूंज हो, कोलकाता से टैगोर की रचनाएं, या चेन्नई से संगम साहित्य की चर्चा, आकाशवाणी ने भारत को एक सूत्र में पिरोया।
2: आकाशवाणी का ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन सर्व भाषा कवि सम्मेलन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास रहा है, जिसका प्रसारण 1956 से होता आया है और ये सिलसिला आज भी जारी है। आकाशवाणी सर्व भाषा कवि सम्मेलन का हिस्सा रहे वरिष्ठ साहित्यकार और कवि अब्दुल बिस्मिल्ला अपने अनुभवों को कुछ यूं साझा करते हैं।
3: 26 जनवरी जो होती है उस पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन यह आकाशवाणी कराता था, हमको इसकी जानकारी थी नहीं। तो जो कविता हमारी चुनी गई थी वो कविता हमें भेजी गई और हमसे कहा गया कि आप इसका अंग्रेजी अनुवाद, तो अंग्रेजी अनुवाद जरूरी होता है क्योंकि वो अंग्रेजी से फिर वो विभिन्न भाषाओं में अनुवाद होता है, यानी हर भाषा की कविता का हर भाषा में अनुवाद होता है।
2: उत्तर पूर्व से लेकर पूरे देश तक आवाजों को जोड़ने वाला सेतु रहा आकाशवाणी। कवि और नाटककार राजीव कुमार फुकन के अनुभव इसे और खास बनाते हैं।
4: बचपन से ही रेडियो पर प्रसारित होने वाली कविताएं, नाटकों और साहित्य के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता गया। लेखन के दौरान रेडियो पर प्रसारित होने वाली नाटक, उनकी कहानियां और पात्र मेरे मन में बसे रहती है। अखिल भारतीय रेडियो के कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित होता है। जब मेरी कविताएं या नाटक अखिल भारतीय रेडियो पर प्रसारित होते हैं तो मुझे उनका जीवंत रूप दिखाई देते हैं। जीवन के हर क्षेत्र के लोगों का आकाशवाणी से गहरा

0: जुड़ाव रहा है और यह आज भी कायम है।
1: सिर्फ कविता कहानी ही नहीं, हवा महल और झलकी जैसे कार्यक्रमों ने कहानी कहने की कला को पुनर्जीवित किया। रेडियो नाटकों ने अंधा युग और आषाढ़ का एक दिन जैसे कालजयी नाटकों को उस व्यक्ति तक पहुंचाया जिसने कभी थिएटर नहीं देखा था।
2: और इन सब से लोगों में पढ़ने की ललक जगी। रेडियो पर सुनी गई कहानियों ने पुस्तकालयों की कतारें लंबी कर दी। आकाशवाणी सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि एक ऐसी पाठशाला रही जहां कलाकारों को तराशा गया।
1: नाटकों के माध्यम से अपना करियर शुरू करने वाले और बाद में टीवी और फिल्मों में लोकप्रिय अभिनेता बने राजीव वर्मा अपने शुरुआती दिनों को कुछ यूं याद करते हैं।
3: पहले तो मैं आकाशवाणी को ही धन्यवाद करना चाहूंगा कि इसने मेरे रंगमंच टेलीविजन और सिनेमा के जो मेरा एक लंबा अरसा रहा है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा योगदान मैं आकाशवाणी का मानता हूँ। आकाशवाणी ने मेरी आवाज को, मेरे तलफ्फुज को, उच्चारण को और मेरी जो एक अभिव्यक्ति की जो एक कला है उसको जो परिमार्जन किया है आकाशवाणी ने ही किया है। आकाशवाणी से मेरा संबंध मुझे लगता है कि 1967 से है। 67 में मैं यहाँ ऑडिशन दिया था और उसके साथ फिर युवावाणी में भी मैं काफी काम किया हूँ एक कैजुअल अनाउंसर की तरह। तो ये मैं ये समझता हूँ कि मेरे व्यक्तिगत जीवन की और मेरे व्यक्तित्व के निर्माण और परिमार्जन की सबसे बड़ी जो शिक्षा मुझे मिली है वो आकाशवाणी से मिली है। और उस समय यानी हम लोगों को शहर में और कहीं भी अगर जाते थे तो आकाशवाणी के कलाकार के नाम से जाना जाता था। मुझे ये सौभाग्य रहा कि मैं कुछ साल दिल्ली में भी रहा, कुछ साल बल्कि काफी साल मैं 4-5 साल इंदौर में रहा और बंबई में तो 30-35 साल गुजारे। मैंने सारी जगह मैं आकाशवाणी विविध भारती से कनेक्टेड रहा और लगातार मैं वहां जाता रहा। तो ये नशा जो है ये खत्म नहीं हो सकता, श्रोताओं के दिमाग से भी ये सबसे बड़ी बात है।
1: एक दौर था जब शास्त्रीय संगीत महफिलों तक सीमित था, लेकिन आकाशवाणी ने इसे आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के माध्यम से वैश्विक पहचान दी। खजुराहो हो या कोणार्क, हर बड़े उत्सव की गूंज आकाशवाणी के माध्यम से करोड़ों कानों तक।

0: प्रख्यात ध्रुपद कलाकार पद्मश्री उमाकांत गुंदेचा बताते हैं,
1: मैं और मेरा छोटा भाई रमाकांत, हम दोनों भाई जो है वो 1985 में जो है हमने पहला ऑडिशन दिया था और उस समय हमें सीधा बी हाई ग्रेड मिला था। उस समय बी हाई एकदम डायरेक्ट आना बहुत बड़ी बात होती, ये हम लोगों की भी खुशकिस्मती रही कि फिर कहीं हम लोग गए नहीं, यानी यहाँ इस आकाशवाणी से शुरुआत किया और अभी तक हम इसी आकाशवाणी से यानी आकाशवाणी भोपाल से हम लोग जुड़े हुए हैं। आकाशवाणी का अपना जो स्टाफ कलाकार स्टाफ रहा है वो भी एक बहुत बड़ा योगदान आकाशवाणी का रहा है कि जो अच्छे अच्छे कलाकार जिन्होंने रेडियो आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दी हैं और सेवाएं देकर के जो है उन्होंने अपना घर भी चलाया है, उस तरीके से उनकी कला को भी एक बल मिला है। तो मैं समझता हूं कि आकाशवाणी का प्रसारण होने वाला कार्यक्रम है ये तो अपनी जगह है, लेकिन वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान कलाकार समाज को इकट्ठा करके कलाकारों को जो है यहाँ पर रखा।
0: भारत के महान शास्त्रीय गायक या गायिकाएं, चाहे ध्रुपद हो, खयाल हो या ठुमरी, हर कलाकार की एक ही चाह, आकाशवाणी का ग्रेड। आकाशवाणी का ग्रेडेशन सिस्टम केवल एक प्रमाण पत्र नहीं बल्कि कलाकार के लिए सम्मान की सबसे बड़ी मुहर बन गया। ए ग्रेड या टॉप ग्रेड कलाकार होना भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में एक तपस्या की सिद्धि जैसा माना जाता है। उस्ताद अमजद अली खान,
2: ऑल इंडिया रेडियो का

बहुत पुराना संबंध है मेरा। मैं बहुत छोटा था अपने पिताजी के साथ, ग्वालियर से आता था यहाँ। उस वक्त पिताजी को टॉप ग्रेड आर्टिस्ट थे ऑल इंडिया रेडियो के, 150 रुपया मिलता था। अर्ली 60s की बात है, दैट वाज द हाईएस्ट फी ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, टॉप ग्रेड म्यूजिशियंस।

0: दिल्ली के भव्य स्टूडियो से दूर आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों ने भारत के असली हृदय यानी लोक संस्कृति को जीवित रखा। आकाशवाणी के लोक संगीत कार्यक्रमों ने यह साबित किया कि भारत केवल राज्यों का समूह नहीं बल्कि लोक संस्कृतियों का एक अटूट सूत्र है।
1: गुणवत्ता को सर्वोपरि रखते हुए हर तरह के कार्यक्रमों को जगह देना, हर वर्ग के श्रोताओं को अपने साथ जोड़ना आकाशवाणी की सबसे बड़ी ताकत रही है। पद्मश्री से सम्मानित गायिका मालिनी अवस्थी कहती हैं,
2: 2:30 बजे लोक संगीत का कार्यक्रम प्रतिदिन आकाशवाणी से होता था। अब वक्त बदल गया होगा शायद, वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए। अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहाँ भी यहाँ भी, वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहाँ पे खाटी कलाकार गाते थे, तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं। लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहाँ के पारंपरिक लोक कलाकार, उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे और मुरारी लाल जी को भी सुनते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते थे। एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता, सुबह 7:15 बजे दिल्ली आकाशवाणी से होता था, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में के स्वर आरोह अवरोह पकड़ो फिर एक वो। बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासीय संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था। मंगलवासी हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था।
0: कुछ ऐसे कार्यक्रम जिन्होंने इतिहास रचा, वंदना के भक्ति स्वर हूँ, विविध भारती का रंगारंग सफर, संगीत सरिता, संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम, रेडियो रूपक या फिर रेडियो नाटक, इन कार्यक्रमों ने कला और संस्कृति को आम आदमी की भाषा में पिरोया। शास्त्रीय संगीत और खासकर कर्नाटक म्यूजिक को गरिमा प्रदान करने में आकाशवाणी ने महती भूमिका निभाई है। भारत के कई आकाशवाणी केंद्रों में बतौर प्रशासक और प्रसारक जुड़े रहे डॉक्टर वागीश शास्त्री, जो अपने आप में बड़े संगीतज्ञ रहे, उनके अनुभव किसी दस्तावेज से कम नहीं है।
3: मुझे बड़े बड़े कलाकारों से मिलने का मौका जरूर मिला, रविशंकर जी, विजय राघव राव जी, हाफिज अहमद खान साहब, सुमति मुटाटकर जी, कर्नाटक म्यूजिक में डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्णा, शमंगुड़ी श्रीनिवास अय्यर, जी एन बाल सुब्रमण्यम, श्रीरंगम गोपाल रत्नम, संध्यावंदनम श्रीनिवासराव, टी के गोविंद राव, येमिनी शंकर शास्त्री, महान कलाकार आकाशवाणी के साथ जुड़े थे। ये तरह वाद्य वृंदा भी एक हिंदुस्तानी यूनिट दिल्ली में और चेन्नई में एक कर्नाटिक यूनिट साउथ इंडियन म्यूजिक बेस करके, तो उसमें पूर्ण चंद्र राव, कामा शास्त्री, येमिनी शास्त्री, शंकर शास्त्री, ऐसे लोग उधर काम किया। दिल्ली में सचदेव पवार जी जैसे लोग भी, उसका कंडक्टर जैसे काम किया, और बहुत सारे गेस्ट कंडक्टर्स जैसे पंडित रविशंकर जी, वायलिन विद्वान लालगुड़ी जयरामन, टीवी गोपाल कृष्ण जी, बहुत सारे लोग आके मध्य वृंदा में नया नया रचना कंपोज करके, तो हर प्रकार से आकाशवाणी का शास्त्रीय संगीत कर्नाटिक हिंदुस्तानी दोनों सिस्टम का कायम रखने के लिए बहुत प्रयास किया है और सफल प्रयास किया है।

सारे लोग आके मध्य वृंदा में नया नया रचना कंपोज करके, तो हर प्रकार से आकाशवाणी का शास्त्रीय संगीत, कर्नाटिक हिंदुस्तानी दोनों सिस्टम का कायम रखने के लिए बहुत प्रयास किया है और सफल प्रयास किया है।

0: song.
1: Hello there, listeners. Welcome to the magical world of music.
0: Those were such happy times and not so long ago.
1: Come, dream away in a session of Western music where we try to dream a rainbow to every cloud.
0: But they're back again, just like a long-lost friend.
2: आकाशवाणी ने जहां भारतीय संगीत की परंपराओं को सहेजा, वहीं पाश्चात्य संगीत के श्रोताओं के लिए भी हमेशा कुछ नया, कुछ अनूठा प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यही वजह रही कि एक समर्पित श्रोता वर्ग आकाशवाणी के पाश्चात्य संगीत कार्यक्रमों को सराहता आया है। इन्हीं प्रयासों की कहानी वरिष्ठ प्रसारक और आकाशवाणी की पाश्चात्य संगीत इकाई से जुड़े रहे मनोज माइनकर अपने अनुभवों के जरिए कुछ यूं साझा करते हैं।
3: न सिर्फ भारतीय कला संस्कृति बल्कि विश्व की कई विधाओं को भी आकाशवाणी ने अपने श्रोताओं तक पहुंचाया है सुलभ अंदाज में। आकाशवाणी में पाश्चात्य संगीत जैसे विधा से मेरा संबंध लगभग 37 वर्षों का रहा है। मेरे कार्यकाल के दौरान 1989 में जब मैंने ज्वाइन किया था आकाशवाणी, मैं उन लोगों के भी संपर्क में आया जिन्होंने मुझसे पहले शायद 37 या 37 से ज्यादा समय इसी क्षेत्र में बिताए थे। आकाशवाणी के पास वेस्टर्न म्यूजिक की जितनी वैरायटी, जितनी विधाएं, जितनी उपविधाएं रही हैं और हैं, उतनी संभवतः किसी अन्य चैनल पर आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। अच्छा, बात सिर्फ वेस्टर्न क्लासिकल की नहीं है, वेस्टर्न म्यूजिक में बहुत सारी विधाएं हैं और आकाशवाणी पॉप से लेकर रॉक, फिर रॉक की उपविधाएं, जैज, कंट्री, डिवोशनल, वर्ल्ड म्यूजिक, न जाने कितने तरह का संगीत अपने श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करता था। कुछ कार्यक्रम ऐसे थे, अ डेट विथ यू, फोर्सेस रिक्वेस्ट, या युवाणी चैनल पर संडे रिक्वेस्ट, और प्रस्तुतिकरण का अंदाज, एक इनफॉर्मल स्टाइल जो होता है, वो एफएम के आने से पहले भी रहा है पाश्चात्य संगीत अनुभाग के कार्यक्रमों में। तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि वसुधैव कुटुंबकम का जो सार हमारे पूरी कार्यप्रणाली में निहित है, हमारा जो वेस्टर्न म्यूजिक का बुके रहा है, वो उसका एक बहुत ही खूबसूरत एक सिंबल है, एक सूचक है। ये प्रवाह थमने वाला नहीं है।

0: इंडस्ट्री में रहा है और आपको मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: क्या आपने कभी रंगों को सुना है या कभी पत्थर पर चलती छेनी की संगीतबद्ध टंकार को महसूस किया है? आकाशवाणी ने इस असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। अचरज की बात है कि एक ऐसा माध्यम जो केवल सुनाई देता है, उसने चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला को भी करोड़ों लोगों की कल्पनाओं में जीवंत कर दिया।
2: The builders of a great empire needed to establish their authority on Indian soil, to make their presence seen and felt. This is how they did it, through architecture, to leave a mark on Indian skies.
3: अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र हूं या आधुनिक शिल्पकार रामकिंकर बैज की विशाल प्रतिमाएं, आकाशवाणी के रेडियो फीचर ने इन मूक कलाकृतियों को भी जबान दी।
1: आकाशवाणी के आर्काइव आज दुनिया की सबसे बड़ी सांस्कृतिक संपत्तियों में से एक हैं। महात्मा गांधी की आवाज हो या महान संगीत साधकों की दुर्लभ धरोहर, यहाँ इतिहास सांस लेता है।
3: चाहे वो बंगाल का बाउल हो, झारखंड का झुमेर, छत्तीसगढ़ की पंडवानी या दक्षिण भारत की यक्षगान शैली, आकाशवाणी ने इन विलुप्त होती कलाओं को न केवल मंच दिया बल्कि उन्हें रिकॉर्ड कर भविष्य के लिए सुरक्षित भी किया। लेखक, कवि और अभिनेता के साथ साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव, कार्यकारी और अकादमिक प्रमुख सच्चिदानंद जोशी कहते हैं,
4: हम सब जानते हैं कि लोक संगीत अलग अलग क्षेत्रों में होता है, लेकिन अगर उसे व्यापकता देने का कहीं काम किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है। बुंदेली लोकगीत कौन सा हो, बघेली लोकगीत कौन सा हो, निमाड़ी लोकगीत कौन सा हो, मालवी लोकगीत कौन सा हो, वो सब लोकप्रिय कराने में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो दूरस्थ अंचल है वहाँ पर जाने वाला माध्यम आकाशवाणी ही है, तो चाहे वहाँ पर उनकी उनकी संस्कृति को पहुँचाने का काम हो, चाहे बाहर की कोई और संस्कृति की झलक उस क्षेत्र में पहुँचाने का काम हो, तो दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर आकाशवाणी की पहुंच है। भारत की पूरी लोक गीतों की परंपरा का ये संभवतः विश्व में सबसे बड़ा आर्काइव होगा और उसमें भारत के हर प्रांत की तमाम जनजातियों के गीत संग्रहित हैं। आकाशवाणी का अपना बहुत अच्छा क्लासिकल म्यूजिक का भी बहुत अच्छा आर्काइव है, थिएटर का, नाटकों का तो निश्चित तौर पर है ही आर्काइव, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और देश के मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मूर्धन्य साहित्यकार होगा जो आकाशवाणी पर नहीं आया होगा, निश्चित तौर पर उस समय तो आए ही हैं। तो ये इतना बड़ा काम सहेजने का काम आकाशवाणी करता है।
1: जाने माने साहित्यकार, व्यंगकार और पत्रकार यशवंत व्यास साहित्य और संस्कृति के नजरिए से आकाशवाणी को एक समृद्ध खजाना मानते हैं।
5: आकाशवाणी एक ऐसी बूंद है जो मन पर गिरते ही यादों को जिंदा कर देती है। कितनी ही विलक्षण आवाजें इसकी दुनिया में सुरक्षित हैं, शब्द, गीत, संवाद, संगीत, सुबह उठने की धुन और रात के आखिरी गीत। वे दिन थे जब युवाणी में कविता सुनाकर आदमी मशहूर हुआ जाता था, नाटक और खबरों की पहली और आखिरी पनाह गाह थी रेडियो की वो फ्रीक्वेंसी। अभी भी वो खजाना है, अभी भी वो सबक है तमाम शोर शराबे के बीच यादों के उजाले का। आकाशवाणी अभी भी अपने साथ रहती है उसी तरह।
3: शब्दों और आवाजों की इस विरासत ने पीढ़ियों को जोड़ा है, संस्कृतियों को सवारा है और प्रतिभाओं को पहचान दी है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि भारत की आत्मा की गूंज है। सुनते रहिए आकाशवाणी।
6: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में तीन कड़ियों की श्रृंखला में दूसरा रूपक, साहित्य और संस्कृति की सतत आवृत्ति आकाशवाणी। आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर आनंद श्रीवास्तव और नवोदिता मिश्रा, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी भोपाल, आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय। प्रस्तुति सहयोग।

0: हमदम। इंडी पॉप जैसी विधा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली आवाज उषा उथुप के लिए आकाशवाणी एक गाइड, साथी और प्रेरणा रहा है।
1: हमारे दिनों में तो आकाशवाणी सुनती थी, ऑल इंडिया रेडियो, इसी से मैं बड़ी हुई हूँ। मैं तो हमेशा से कहती आ रही हूँ दैट रेडियो इज माय कंपेनियन, माय इंस्पिरेशन, माय गाइड, माय एवरीथिंग। अगर रेडियो ना होता तो इट वुड बी इम्पॉसिबल। रेडियो इज द मोस्ट पावरफुल मीडियम इन द होल वर्ल्ड एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड दैट वी हैव ऑल इंडिया रेडियो। हमारी फेवरेट प्रोग्राम थी मधुर गीतम, जिसमें सारे लैंग्वेजेस होते थे, मलयालम, तेलुगु, फिर कन्नड़ा, तमिल, सब होता था। तो इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट एंड फौजी भाइयों की फरमाइश, दैट वाज माय फेवरेट प्रोग्राम।
2: फिल्मों और फिल्मी गानों को हिट कराने में भी आकाशवाणी का कोई सानी नहीं रहा है। वरिष्ठ फिल्म निर्माता और निर्देशक केसी बुकाड़िया बीते दौर को कुछ यूं याद करते हैं।
3: आकाशवाणी ने हमेशा हम लोगों के गाने बजाए, उन गानों के माध्यम से, इनके माध्यम से गाने लोगों तक पहुंचते रहे, गाने हिट हुए और हिट होने की वजह से फिर लोग पब्लिक सिनेमा हॉल में आते थे। तो आपका बहुत योगदान फिल्म

सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: जी आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज प्रस्तुत है नीरज मिश्र का सितार वादन। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सितार वादक नीरज मिश्र बनारस घराने की सुदीर्घ समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। संगीत के क्षेत्र में उनका प्रवेश मात्र 5 वर्ष की अवस्था में हुआ, जब उन्होंने अपने पिता और गुरु सुप्रसिद्ध सितार वादक अमरनाथ मिश्र से सितार वादन की विधिवत शिक्षा आरंभ की। गहन प्रशिक्षण के पश्चात नीरज मिश्र ने प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सितार में स्नातकोत्तर और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एमफिल की डिग्री हासिल की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार नीरज मिश्र ने देश विदेश में अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें संकट मोचन संगीत समारोह, गंगा महोत्सव, ताज महोत्सव, कबीरा महोत्सव, ICCR संगीत समारोह प्रमुख हैं। उन्होंने यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में भी सितार वादन की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां दी हैं, जिनमें इटली, स्विट्जरलैंड और फ्रांस शामिल हैं। आज के कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर संगत की है आकाशवाणी के बी हाई ग्रेड कलाकार देव नारायण मिश्र ने। नीरज मिश्र अपने सितार वादन का आरंभ राग दरबारी में आलाप, जोड़ और झाला से कर रहे हैं। विलंबित मसीद खानी गत, मध्य लय और द्रुत गत 3 ताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स एडिशन ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय नीरज मिश्रा, अ डिस्टिंग्विश्ड एंड इंटरनेशनली अक्लेम्ड सितार माइस्ट्रो representing the rich cultural and musical heritage of renowned Banaras Gharana. Born in Varanasi, Neeraj Mishra's formal initiation into the world of music began at early age of 5 under the able guidance of his father and guru, Amarnath Mishra. Later on, Neeraj Mishra earned his Prabhakar from Prayag Sangeet Samiti and completed M.Muse in Sitar from Banaras Hindu University and M.Phil from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth. An A-grade artist of Akashwani, Neeraj Mishra has performed in various prestigious festivals across India and abroad, such as Sankat Mochan Sangeet Samaroh, Kashi Ganga Mahotsav, Taj Mahotsav, Kabira Festival, ICCR Horizon Series, World Cultural Festival in India, and has captivated audiences across Europe, Middle East, Italy, Switzerland and France. In tonight's program, accompanying him on tabla is Dev Narayan Mishra, a B high grade artist of Akashwani. Neeraj Mishra is beginning his sitar recital tonight with Alap Jod Jhala in Rag Darbari. Vilambit Masit Khanigat, Madhilay and Drutgat is set to 3 taal.

0: आपने सुना राग दरबारी। नीरज मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री में सितार वादन। विलंबित मसीद खानी गत 3 ताल में, मध्य लय 1 ताल में और द्रुत गत 3 ताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग दरबारी। नीरज मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितारे साइटल इन राग बागेश्री। विलंबित मसीद खानी गत इज इन 3 ताल, मध्य लय इज इन 1 ताल एंड द्रुत गत इज सेट टू 3 ताल।

0: अब बागेश्री के पश्चात नीरज मिश्र आज अपने कार्यक्रम का समापन सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र भैरवी में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग बागेश्री, नीरज मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र भैरवी।

0: आप सुन रहे थे सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र भैरवी में धुन। कलाकार थे नीरज मिश्र। आज के रविवासरीय संगीत सभा में आपके साथ तबले पर संगति की देव नारायण मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र भैरवी प्लेड ऑन सितार बाय नीरज मिश्रा इन टू नाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। Accompanying him on tabla was Dev Narayan Mishra. Recorded earlier at Akashvani Varanasi, this program came to you from Delhi station of Akashvani.

0: पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरल में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 164 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

केंद्र है। रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। समाप्त होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:45 पर हम फिर उपस्थित होंगे अपने कार्यक्रमों के साथ इसी मीटर पर। तब तक के लिए आज्ञा दें, शुभ रात्रि, जय हिंद।